सुप्रभात, हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर। आज बुधवार है, शक संवत 1948 की वैशाख माह की 30वीं तिथि, तदनुसार 20 मई सन 2026। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 5:56 हो रहे हैं। अब हमारी आज की प्रसारण सभा आरंभ होती है।

0: ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है, FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर। सवेरे के 6 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे जिन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आकर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में इटली पहुंच गए हैं। राजधानी रोम में हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत किया गया। श्री मोदी की ये 2 दिन की यात्रा भारत और इटली के बीच व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगी। इटली में भारत की राजदूत वाणी सरराजू राव ने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के बीच आगामी वर्षों में प्रतिभा के आदान प्रदान तथा नवाचार और गतिशीलता के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ने की उम्मीद है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में आयोजित 3rd भारत नॉर्डिक सम्मेलन को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि नॉर्डिक देशों के साथ भारत की भागीदारी को पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक भागीदारी के स्तर पर ले जाने का निर्णय लिया गया है।
2: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियो थर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
1: पश्चिम बंगाल सरकार ने महिलाओं के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए 3000 रुपए की मासिक वित्तीय सहायता की अन्नपूर्णा योजना अधिसूचित कर दी है। महिला और बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग की ये योजना 1 जून से

0: प्रभावी होगी। इस योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों के आधार से जुड़े बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से भेजी जाएगी। इस योजना के लिए 25 से 60 वर्ष की महिलाएं पात्र हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के बाद पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य सरकार में आरक्षण के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग की 66 श्रेणियों को अधिसूचित किया है। इसके अलावा अन्य पिछड़ा वर्ग ए का 10% और अन्य पिछड़ा वर्ग बी का 7% आरक्षण रद्द कर दिया गया है। कलकत्ता उच्च न्यायालय आरजी कर दुष्कर्म हत्या मामले में आगे की जांच के लिए पीड़िता के अभिभावकों और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के आवेदन पर कल सुनवाई करेगा। पीड़िता के अभिभावकों ने अपराध की आगे की जांच के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर मामले में एक से अधिक व्यक्तियों के शामिल होने का दावा किया है। भारतीय रेल ने ब्रॉड गेज नेटवर्क का 99.6% विद्युतीकरण पूरा कर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इस वर्ष मार्च तक ब्रॉड गेज रेलवे लाइन का 69,873 किलोमीटर से अधिक मार्ग विद्युतीकृत हो चुका था। इस उपलब्धि के साथ भारत ने यूरोपीय संघ, ब्रिटेन और अमेरिका सहित कई प्रमुख देशों को पीछे छोड़ दिया है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो शनिवार से भारत की 4 दिन की यात्रा पर रहेंगे। ये उनकी पहली भारत यात्रा होगी। अमेरिकी विदेश विभाग ने बताया कि श्री रूबियो कोलकाता, आगरा, जयपुर और नई दिल्ली की यात्रा करेंगे। नई दिल्ली स्थित अमेरिकी दूतावास ने बताया कि श्री रूबियो 26 मई को क्वाड समूह की बैठक में शामिल होंगे। क्वाड समूह में ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमरीका शामिल हैं। नई दिल्ली के प्रधानमंत्री संग्रहालय में आज से महात्मा गांधी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित 3D अवतार आगंतुकों के लिए खोल दिया गया है। आगंतुक महात्मा गांधी के 3D अवतार के साथ संवाद कर सकेंगे और अत्याधुनिक तकनीक के माध्यम से बापू की आत्मा को जीवंत कर सकेंगे। संग्रहालय का ये तीसरा AI संचालित इंटरैक्टिव होलो बॉक्स होगा। IPL क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ राजस्थान की प्लेऑफ में पहुंचने की संभावना बनी हुई है। पहले बल्लेबाजी करते हुए लखनऊ सुपर जायंट्स ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 220 रन बनाए। जवाब में राजस्थान रॉयल्स ने 5 गेंद शेष रहते ही लक्ष्य हासिल कर लिया। वैभव सूर्यवंशी ने 93 रन की शानदार पारी खेली, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। ये मैच कोलकाता में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं FM 107.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। सवेरे के 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है चिंतन।
2: अहिंसा सत्य का प्राण है, स्वर्ग का द्वार है, जगत की माता है, आनंद का अजरस स्रोत है, उत्तम गति है, शाश्वत श्री है और है मानव मात्र के लिए परम धर्म। शतपथ ब्राह्मण के वचन तथा अहिंसा, सत्य असत्य, ब्रह्मचर्य परिग्रह, मानस का उद्घोष, परम धर्म श्रुति, विदित अहिंसा, योग दर्शन की उक्ति, सर्वत्र सर्वदा सर्वभूतानाम नाभिद्रोह, अहिंसा, पुराणों का सार, पापाय पर शीर्णनम, वैदिक युग की अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा के महत्व को व्यक्त करते हैं। प्राचीन ग्रंथों और महर्षियों के उद्घोष, सर्व कल्याणेषु भूतेषु आत्मवत् सर्वभूतेषु, सर्वभूतेषु कल्याणेषु, वसुधैव कुटुंबकम्, तमसो मा ज्योतिर्गमः, सभी अहिंसा के प्रेरक हैं। अहिंसा क्या है? तीर्थकर महावीर ने कहा है कि जब आत्मा रागी, द्वेषी या मूढ़ हो जाती है तो हिंसा करती है। शब्द, रूप, गंध, रस, स्पर्श और भाव की तृष्णा के पीछे चलने वाला अज्ञानी जीव अपने स्वार्थ के कारण विभिन्न प्रकार के नश्वर तथा स्थावर जीवों को हिंसा करता है। उन्होंने कहा है,

0: क्योंकि हिंसा पाप है और दया का संबंध धर्म से है। अतः देव या गुरु के निमित्त हिंसा करना उचित नहीं है। महावीर ने 18 धर्म स्थानों में प्रथम स्थान अहिंसा को प्रदत्त किया है। इसका उन्होंने सूक्ष्मता से अनुभव किया है। उनके मतानुसार सब जीवों के प्रति संयम रखना ही अहिंसा है। शत्रु अथवा मित्र सभी प्राणियों में समभाव की दृष्टि रखना ही अहिंसा है। अहिंसा त्रस अथवा स्थावर सभी प्राणियों को कुशल क्षेम मंगल करने वाली है। आत्मा ही हिंसा है और आत्मा ही अहिंसा है। महावीर ने बताया कि हिंसा की जड़ विचारों की उत्पत्ति है। वैचारिक असमन्वय से मानसिक उत्तेजना बढ़ती है और वो फिर वाचिक और कायिक हिंसा के रूप में अभिव्यक्त होती है। शरीर जड़ है, वाणी भी जड़ है। जड़ में हिंसा अहिंसा के भाव नहीं होते हैं। इनकी उद्भव भूमि मानसिक चेतना होती है। दूसरों के प्रति ही नहीं किंतु उनके विचारों के प्रति भी अन्याय मत करो। अपने को समझने के साथ साथ दूसरों को भी समझने की चेष्टा करो। इसे महावीर ने बौद्धिक अहिंसा बताया है। अहिंसा के विषय में संत ज्ञानेश्वर ने विस्तृत सुस्पष्ट व्याख्या करते हुए कहा है, संसार को सुखी करने के एकमात्र उद्देश्य को ध्यान में रखकर किसी गया प्रतीक शारीरिक वाचिक मानसिक कार्य ही अहिंसा कहलाता है।
1: अभी आप अहिंसा पर चिंतन सुन रहे थे। वाचन स्वर विनय ध्यानी के थे। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है, FM 100.5 MHz पर। लीजिए अब सुनिए भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। वंदना कार्यक्रम में सर्वप्रथम मातृभूमि को करते हैं नमन इस देशभक्ति रचना के साथ।

जिस मनुष्य की वाणी मीठी है, जिसका कार्य परिश्रम से युक्त है, जिसका धन दान करने में प्रयुक्त होता है, उसका जीवन सफल है। भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से।

भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम की अगली और अंतिम भक्ति रचना।

अभी आप भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है, FM 107.5 MHz पर। सवेरे के 6:40 हुए, लीजिए प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान।

माया, मोह, ईर्ष्या आदि के लक्षण बताते हुए काकभुशुंडी कहते हैं, मनोरथ कीड़ा है और शरीर लकड़ी। जिस प्रकार लकड़ी में घुन लग ही जाता है, उसी प्रकार मनुष्य के मन में संतान, संपत्ति और सम्मान पाने की लालसा पैदा होती है। माया की सेना संपूर्ण जगत में व्याप्त है। माया से मुक्ति राम कृपा के बिना नहीं मिल सकती।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान। हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं, FM 100.5 MHz पर। सवेरे के 6:50 हुए हैं। लीजिए सुनिए हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा और उनका प्रसारण समय।

रात्रि 9:15 पर स्पॉटलाइट और रात्रि 9:30 पर चर्चा का विषय है। ये दोनों कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। रात्रि 10:00 आप सुनेंगे कार्यक्रम आपकी फरमाइश। रात्रि 8:00 श्रीमती शुभ्रा कुकरेती से सुनिए का अंग्रेजी वार्ता, विषय होगा अ बैलेंस बिटवीन राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज।

रात्रि 8:15 पर आप सुनेंगे सुगम संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत हरिओम शरण के गाए भजन। शाम 4:02 पर शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत आप सुनिएगा पंडित कुमार गंधर्व से ख्याल गायन। शाम 4:30 पर आज एक कलाकार में कलाकार होंगे फिल्म निर्देशक सुबोध मुखर्जी। शाम 5:10 पर युवा श्रोता सुनेंगे कार्यक्रम युववाणी।

शाम 5:45 पर पर्वतीय अंचलों का कार्यक्रम ग्राम जगत प्रसारित किया जाएगा। शाम 7 बजे किसान साथी कृषि जगत कार्यक्रम के अंतर्गत सुनेंगे विश्व मधुमक्खी दिवस पर मधुमक्खी एक कर्मठ श्रमिक, इस विषय पर श्री अजय सैनी से बातचीत।

सवेरे 7:10 पर आप सुनेंगे देशभक्ति फिल्मी गीत। सवेरे 7:30 पर शैल संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत सुनिएगा मोहन सिंह बोहरा और साथियों के गाए कुमाऊनी लोकगीत। नमस्कार, देहरादून कार्यक्रम सुनना न भूलें सवेरे 8:30 पर।

0: सदाबहार फिल्म संगीत का आनंद आप लेंगे सवेरे 9 बजे। प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे प्रसारित किया जाएगा सवेरे 10:02 पर। सवेरे 10:35 पर लोक संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे रक्षा बोराई के गाए कड़वाली लोकगीत। योगेश खेतवाल के गाए भजन सुगम संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनेंगे दोपहर 12:12 पर। दोपहर 12:30 पर जनानों का वास्ता कार्यक्रम के अंतर्गत बहने सुनेंगी श्रीमती सिमरन कंडवाल से कड़वाली वार्ता। विषय होगा पहाड़ माँ बालिका शिक्षा। एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा दोपहर 1:30 पर। सैनिकों के लिए कार्यक्रम आप सुनेंगी दोपहर 2:30 पर। तो ये थी रूपरेखा हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। हम आकाशवाणी के 13 केंद्र से बोल रहे हैं FM 100.5 MHz पर। सवेरे के 6:55 हो रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे जिन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।
1: AM आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंताम प्रवाचक डॉक्टर गणेश हेगड़े। अथ वार्ताः। भारतं तथा नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड इत्येते देशाः मिलित्वा स्वद्विपक्षीय सम्बन्धं हरित प्रौद्योगिकीं नवाचार रणनीतिक सहयोगं च सुदृढीकर्तुं विचार विमर्शान् कृतवन्तः। प्रधानमंत्री श्री मोदी ह्यः नॉर्वे देशस्य राजधान्याम् ओस्लो नगरे तृतीय भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलने भागं गृहीत्वा नॉर्डिक देशानां नेतृभिः सह संयुक्त पत्रकार सम्मेलनं संबोधयन् घोषणामेतां कृतवान्।
2: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियो थर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सेंसिटिविटी में एक्सपर्टीज को, सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज को भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
1: प्रधानमन्त्रिणा मोदिना प्रोक्तं यत् विगत दशवर्षेषु भारतस्य नॉर्डिक देशानां च द्विपक्षीय व्यापारः प्रायः चतुर्गुणं वर्धितः वर्तते।
2: 10 वर्षों में हमारा बायलेटरल ट्रेड लगभग 4 गुना बढ़ा है। नॉर्डिक देशों के इन्वेस्टमेंट फंड भी भारत की रैपिड ग्रोथ में अहम साझेदार बन रहे हैं। पिछले एक दशक नॉर्डिक देशों से भारत में निवेश में लगभग 200% की बढ़ोतरी हुई है। तेजी से बढ़ते ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ने भारत की ग्रोथ स्टोरी में तो योगदान दिया ही है, साथ ही नॉर्डिक देशों की अर्थव्यवस्थाओं में भी बहुत सकारात्मक भूमिका निभाई है और हजारों नए जॉब क्रिएट किए हैं।
1: प्रधानमंत्री पुष्टिं कृतवान् यत् भारतस्य नॉर्डिक देशानां च सम्बन्धाः व्यापार आर्थिक सहयोगेन अथ भारत यूरोपीय संघस्य मुक्त व्यापार सन्धिभिः सह सद्यः एव सम्पन्न व्यापार सन्धिभिः नूतन स्वर्णयुगे प्रविष्टाः सन्ति। अस्मिन् अवसरे वदन्तः नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, फिनलैंड, डेनमार्क इत्यादि देशानां प्रधानमन्त्रिणः लोकतन्त्रस्य मूल्यानां नियमाधारित वैश्विकव्यवस्थायाः अद्यतन परिवर्तमान विश्वस्य बहुपक्षीय संस्थासु तत्कालीन परिष्कारस्य च प्रतिबद्धतां पुनरुक्तवन्तः। प्रधानमन्त्री मोदी पञ्चराष्ट्रयात्रायाः पञ्चमे अन्तिमे च चरणे इटली देशस्य राजधानीं रोम नगरम् आगतवान्। भारतस्य समृद्धकला परम्परायाः उत्सवे भव्य सांस्कृतिक संध्यायाः कार्यक्रमे सम्पूर्ण यूरोपतः भारतीय शास्त्रीय संगीतकाराः नर्तकाः च भागं गृहीत्वा प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः स्वागत सत्कारस्य साक्षिणः अभवन्। लोकसभायाः अध्यक्ष ओम बिरला निगम विधि संशोधन विधेयक विंशतिः षड्विंशतिः इत्यस्य कृते संयुक्त समितिं घटितवान् लोकसभा सांसद सुधीर गुप्ता समितेः अध्यक्षरूपेण नियुक्तः वर्तते समितौ लोकसभायाः एकविंशतिः सदस्याः विनोद श्रीधर तावडे सुजीत कुमारः उज्ज्वल निकाम इत्येतैः सह राज्यसभायाः नवसदस्याः कमलजीत सहरावत बैजयंत पांडा डॉ निशिकांत दुबे इत्येतैः सह निम्न सदनस्य सदस्याः च सन्ति भारतीय रेलवे विद्युतीकरणस्य दिशि महत्वपूर्ण कार्यं कुर्वन् 99.6% विद्युत् सम्पर्कं प्राप्नोति यद्धि 370+87,000 किलोमीटर तः अधिकं यावत् प्राप्तम् अस्ति अस्मिन् वर्षे मार्च मासपर्यन्तं भारतेन व्यावहारिक रूपेण स्वस्य ब्राड्गेज जालस्य पूर्ण विद्युत्करणं प्राप्य यूरोपीय संघस्य यूनाइटेड किंग्स अमेरिका संयुक्त राज्यस्य च प्रमुख रेल व्यवस्थाभ्यः अग्रस्थितं वर्तते मणिपुरस्य अपर प्रमुख वस्त्र वाणिज्य उद्योग सचिवः अनुराग वाजपेयी इत्यनेन उक्तं यत् राज्य सर्वकारः राज्यस्य समृद्धानि वस्त्र हस्तकरघ परम्पराणि प्रवर्तयितुं अन्ताराष्ट्रिय विपणिषु निर्यातं कर्तुं च कार्यं कुर्वन् अस्ति आईपीएल इति विंशतिं प्रतिविंशतिः क्रिकेट लीग प्रतिस्पर्धायां अद्य सायं सार्धसप्तवादने कोलकाता नाइट राइडर्स दलं कोलकाता नगरे मुंबई इंडियंस दलं सम्मुखीकरिष्यति इति वार्ताः
3: नमस्कार आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे स्वीडन नीदरलैंड और संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा समाप्त कर इटली पहुंच गए हैं नॉर्वे की 2 दिन की यात्रा के दौरान श्री मोदी ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोरे के साथ द्विपक्षीय बैठक की हमारी संवाददाता ने बताया है कि तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भी प्रधानमंत्री ने भाग लिया
4: ओस्लो दौरे में हुए बहुपक्षीय और द्विपक्षीय बैठकों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरित परिवर्तन नीली अर्थव्यवस्था जहाज निर्माण स्वास्थ्य और रक्षा जैसे क्षेत्रों में निवेश के लिए नॉर्डिक देशों को आमंत्रित किया नेताओं ने पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले सहित सभी प्रकार के आतंकवाद की स्पष्ट और कड़ी निंदा की सारे प्रधानमंत्रियों ने भारत नॉर्डिक देशों के सहयोग को और गहरा करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई अगला शिखर सम्मेलन फिनलैंड में हेलसिंकी में आयोजित किया जाएगा संगीता गोडबोले आकाशवाणी न्यूज ओस्लो नॉर्वे
3: रोम हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत किया गया यात्रा के दौरान भारत और इटली के बीच व्यापार निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में समझौता होने की संभावना है इटली में भारत की राजदूत वाणी सर्राजू राव ने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के बीच नवाचार और गतिशीलता के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ने की उम्मीद है इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन को संबोधित किया उन्होंने कहा कि नॉर्डिक देशों के साथ भारत की भागीदारी को पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक भागीदारी के स्तर तक ले जाने का निर्णय लिया गया
2: इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियोथर्मल और फिशरीज नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे
3: पश्चिम बंगाल सरकार ने महिलाओं के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए 3,000 रुपये की मासिक वित्तीय सहायता की अन्नपूर्णा योजना अधिसूचित कर दी है महिला और बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग की यह योजना 1 जून से प्रभावी होगी इस योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों के आधार से जुड़े बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से भेजी जाएगी इस योजना के लिए 25 से 60 वर्ष की महिलाएं पात्र हैं इस योजना का ऑनलाइन पोर्टल 1 जून 2026 को शुरू किया जाएगा भारतीय रेल ने ब्रॉड गेज नेटवर्क का 99.6% विद्युतीकरण पूरा कर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है इस वर्ष मार्च तक ब्रॉड गेज रेलवे लाइन का 69,873 किलोमीटर से अधिक मार्ग विद्युतीकृत हो चुका है इस उपलब्धि के साथ भारत ने यूरोपीय संघ ब्रिटेन और अमेरिका सहित कई प्रमुख देशों को पीछे छोड़ दिया है नई दिल्ली के प्रधानमंत्री संग्रहालय में आज से महात्मा गांधी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित 3D अवतार आगंतुकों के लिए खोल दिया जाएगा। आगंतुक महात्मा गांधी के 3D अवतार के साथ संवाद कर सकेंगे और अत्याधुनिक तकनीक के माध्यम से बापू की आत्मा को जीवंत कर सकेंगे। इससे पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल और पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम के AI संचालित होलोबॉक्स स्थापित किए जा चुके हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो शनिवार को भारत की 4 दिन की यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचेंगे। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने बताया कि श्री रूबियो कोलकाता, आगरा और जयपुर भी जाएंगे। श्री रूबियो 26 मई को क्वाड समूह की बैठक में शामिल होंगे। क्वाड समूह में भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका शामिल हैं। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी ने सेना खेल नियंत्रण बोर्ड के अंकित और रेलवे के जयेश पाटिल पर 3 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। दोनों खिलाड़ी डोपिंग जांच में विफल रहे थे। अंकित ने 69वीं राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप में 3रा स्थान और पाटिल ने 5वां स्थान प्राप्त किया था। आरोपों को स्वीकार करने के बाद दोनों खिलाड़ियों के प्रतिबंध की अवधि में 1 साल की कमी कर दी गई है। IPL क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। राजस्थान ने 221 रन का लक्ष्य 7 विकेट के नुकसान पर 5 गेंद शेष रहते हासिल कर लिया। वैभव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इससे पहले लखनऊ सुपर जायंट्स ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 220 रन बनाए थे। प्रतियोगिता में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। ये मैच कोलकाता में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। उत्तर प्रदेश भीषण लू की चपेट में है। प्रदेश में बढ़ता तापमान हर दिन नए रिकॉर्ड बना रहा है। बांदा में तापमान लगातार 3रे दिन 48.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
5: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अभिषेक मुखोपाध्याय। Prime Minister Narendra Modi arrived in Rome last night on an official visit to Italy. Mr. Modi was received at the airport by Italy's Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs and International Cooperation, Antonio Tajani. Mr. Modi will hold talks with his Italian counterpart, Giorgia Meloni, and President Sergio Mattarella and discuss with them ways to boost India-Italy cooperation. Indian Ambassador Vani Sarraju Rao said the PM's visit would provide an important opportunity to address issues related to the mobility and welfare of the Indian community. She expressed optimism that the movement of Indian students, currently around 5,000 in Italy, as well as academicians and researchers, is likely to increase in the near future. Before arriving in Rome, the Prime Minister was in Oslo, Norway, where he participated in the 3rd India-Nordic Summit. This is the final leg of his 5-nation tour. Earlier yesterday, Indian Nordic nations comprising Norway, Sweden, Denmark, Finland and Iceland elevated the bilateral ties to a green technology and innovation strategic partnership. Mr. Modi made the announcement while addressing a joint press meet with leaders of Nordic nations after attending the 3rd India-Nordic summit in the Norwegian capital Oslo.
6: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियोथर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सेंसिटिविटी में एक्सपर्टीज को, सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज को भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
5: Prime Minister Modi said investments from Nordic countries in India rose by 200% in the past decade. Prime Minister Modi affirmed that the relations between India and the Nordic countries are set to usher in a new golden era with the recently concluded trade agreements including trade and economic partnership and India-EU free trade deal. The West Bengal government has notified the Annapurna Yojana to provide assured monthly financial assistance of 3,000 rupees to women for the socio-economic upliftment. The scheme introduced by the Department of Women and Child Development and Social Welfare will come into effect from the 1st of next month. Under the scheme, the financial assistance will be transferred directly to the Aadhaar-linked bank accounts of eligible beneficiaries through direct benefit transfer or DBT. Director General of Civil Aviation has directed the inspection of fuel control switches of an Air India Boeing 787-8 aircraft at the original equipment manufacturer facility in the presence of DGCA officers. According to the DGCA, the Air India Boeing 7878 aircraft VT-ANX was grounded on 2nd of February this year after operating flight AIC-132 from London's Heathrow Airport to Bengaluru. Union Health Minister Jagat Prakash Nadda reaffirmed India's commitment to universal health coverage, digital health innovation and global health solidarity at the 79th World Health Assembly in Geneva. Addressing the assembly themed Reshaping Global Health, a Shared Responsibility, Mr. Nadda highlighted that India has operationalized over 1,85,000 Ayushman Arogya Mandirs across the country, delivering comprehensive primary health care services right at the community level. U.S. Secretary of State Marco Rubio will be on a four-day visit to India from the 23rd of this month. This will be his first visit to India. The U.S. Department of State announced the visit. State Department spokesman Timmy Pigott said during his travel from the 23rd to 26th of May, Mr. Rubio will visit Kolkata, Agra, Jaipur and New Delhi. Mr. Pigott said he will discuss energy, security, trade and defense cooperation during meetings with senior Indian officials. The U.S. Embassy in New Delhi has said that Mr. Rubio would attend the Quad meetings on the 26th of May. In IPL cricket, Rajasthan Royals defeated Lucknow Super Giants by 7 wickets in a high-scoring match in Jaipur last night, keeping the playoff hopes alive. Rajasthan Royals overhauled the massive target of 221 runs with 5 balls to spare and 7 wickets in hand. As the league stage nears its end, 5 teams remain in contention for the lone remaining playoff spot. And that is the end of this news bulletin.
0: हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। सवेरे के 7:10 हुए हैं, लीजिए अब सुनिए देशभक्ति फिल्मी गीत। कार्यक्रम का पहला गीत कविता कृष्णमूर्ति, मोहम्मद अजीज और साथियों की आवाजों में है। फिल्म का नाम है कर्मा।

0: पूरे उत्तराखंड में शुरू हो चुकी है जनगणना। पहले चरण में 25 अप्रैल से 24 मई 2026 तक प्रगणक द्वारा घर घर सर्वे किया जाएगा। आपकी सभी जानकारी पूरी तरह सुरक्षित और गोपनीय रखी जाएगी। कृपया सही और पूर्ण जानकारी दें, यही आपके क्षेत्र के विकास की नींव है। जनगणना 2027 आपकी भागीदारी, देश की प्रगति। ये सूचना जनगणना कार्य निदेशालय उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
1: लीजिए कार्यक्रम का अंतिम देशभक्ति गीत सुनिए, मल्लाडे की आवाज में। फिल्म का नाम है काबुलीवाला।

0: अभी आप देशभक्ति पर आधारित फिल्मी गीत सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं, FM 100.5 MHz पर। सवेरे के 7:20 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं नीता कांडपाल। पहले मुख्य समाचार। पूर्व मुख्यमंत्री मेजर जनरल भुवन चंद खंडूरी का आज पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बस्तर में आयोजित मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में मानंदा राजजात यात्रा और कुंभ मेले की तैयारियों का विषय प्रमुखता से उठाया। राज्य सरकार ने जिला योजना के तहत सभी 13 जिलों के लिए 1,018 करोड़ रूपये से अधिक की धनराशि स्वीकृत की और उत्तराखंड में पेट्रोल डीजल और LPG की आपूर्ति सामान्य। IOCL ने अफवाहों से बचने की अपील की। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री मेजर जनरल सेवानिवृत्त भुवन चंद खंडूरी का अंतिम संस्कार आज हरिद्वार में पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। उनके निधन पर राज्य सरकार ने आज सार्वजनिक अवकाश और 3 दिन का राजकीय शोक घोषित किया है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूरी का जीवन किसी एक व्यक्ति की कहानी नहीं बल्कि राष्ट्र के प्रति पूर्ण समर्पण की जीवंत गाथा रहा। 1 अक्टूबर 1934 को प्रारंभ हुई उनकी जीवन यात्रा भारतीय सेना के रणक्षेत्रों से लेकर लोकतंत्र के सर्वोच्च मंचों और उत्तराखंड की जनसेवा तक पहुंची, लेकिन हर भूमिका में उनकी पहचान एक ही रही, राष्ट्र प्रथम। 1954 में भारतीय सेना की कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर्स में कमीशन प्राप्त करने के साथ उन्होंने मातृभूमि की सेवा का जो संकल्प लिया उसे जीवन भर निभाया। उन्होंने 1962 के भारत चीन युद्ध, 1965 और 1971 के भारत पाक युद्धों में देश के लिए अपना कर्तव्य निभाया। सीमा पर बिताए गए वे वर्ष केवल एक सैनिक के साहस की कहानी नहीं है बल्कि उन अनगिनत त्यागों की भी कहानी है जो एक सैनिक का परिवार मौन रहकर करता है। सेना में लगभग 36 वर्षों की गौरवपूर्ण सेवा के दौरान उन्होंने नेतृत्व, साहस और कर्तव्य निष्ठा की ऐसी मिसाल स्थापित की कि 26 जनवरी 1982 को उन्हें अति विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया। मेजर जनरल के पद से सेवानिवृत्त होने के बाद भी उन्होंने विश्राम का मार्ग नहीं चुना। 1991 में सार्वजनिक जीवन में प्रवेश कर उन्होंने जनसेवा को अपना नया दायित्व बनाया। खंडूरी पहली बार 1991 में गढ़वाल लोकसभा सीट से सांसद चुने गए। इसके बाद वे कई बार संसद पहुंचे और भाजपा के मजबूत पहाड़ी चेहरे बनकर उभरे। केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में उन्हें सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय का दायित्व मिला। ये वही दौर था जब देश में सड़क क्रांति की नींव

0: की गई। देश के दूरस्थ गांवों को सड़क से जोड़ने के पीछे खंडूड़ी की प्रशासनिक दृष्टि और शक्ति को आज भी याद किया जाता है। 2007 में उत्तराखंड में भाजपा की सरकार बनने के बाद भुवन चंद्र खंडूड़ी पहली बार मुख्यमंत्री बने। उनका कार्यकाल जीरो टॉलरेंस और सख्त प्रशासन के लिए जाना गया। भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी छवि इतनी मजबूत थी कि सरकारी मशीनरी तक में उनका नाम अनुशासन के प्रतीक के रूप में लिया जाता था। हालांकि उनकी सख्ती कई नेताओं और विधायकों को असहज भी करती रही। 2009 लोकसभा चुनाव में भाजपा के खराब प्रदर्शन की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए उन्होंने मुख्यमंत्री पद छोड़ दिया, लेकिन पार्टी ने 2011 में फिर उन पर भरोसा जताया और दूसरी बार उन्हें मुख्यमंत्री बनाया। भुवन चंद्र खंडूड़ी एक ऐसे राजनेता रहे जिनमें सादगी, ईमानदारी और प्रशासनिक दृढ़ता एक साथ दिखाई देती थी। उत्तराखंड राज्य निर्माण के बाद की राजनीति में उनकी भूमिका हमेशा निर्णायक मानी जाएगी। उनके निधन के साथ उत्तराखंड ने एक ऐसा जननेता खो दिया जिसकी पहचान सत्ता से ज्यादा सिद्धांतों और अनुशासन से थी। मजबूत लोकायुक्त कानून, प्रशासनिक सुधार और जनहित को सर्वोच्च रखने का उनका आग्रह सदैव याद रखा जाएगा। आकाशवाणी समाचार के लिए समाचार कक्ष से आशुतोष उनियाल।
1: केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ के बस्तर में आयोजित मध्य क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सहभागिता की। बैठक में राज्यों के बीच बेहतर समन्वय, आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने, आधारभूत संरचना के विकास तथा जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर विचार विमर्श किया गया। बैठक में मुख्यमंत्री धामी ने वर्ष 2027 में उत्तराखंड में आयोजित होने वाले विश्व प्रसिद्ध महानंदा राजजात यात्रा और कुंभ मेले की तैयारियों का विषय भी प्रमुखता से उठाया। उन्होंने कहा कि ये आयोजन देश की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत से जुड़े महत्वपूर्ण अवसर हैं, जिनके सफल संचालन के लिए केंद्र और राज्यों से समन्वित सहयोग की आवश्यकता होगी। मुख्यमंत्री ने सीमावर्ती राज्यों के बीच समन्वय बढ़ाने, साइबर अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण, आपदा प्रबंधन व्यवस्था को सुदृढ़ करने तथा तकनीकी संसाधनों के अधिकतम उपयोग पर भी बल दिया। उन्होंने कहा कि आधुनिक चुनौतियों से निपटने के लिए राज्यों के बीच सूचनाओं के आदान प्रदान और संयुक्त प्रयासों को और मजबूत बनाया जाना आवश्यक है।
2: ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
1: राज्य सरकार ने जिला योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए प्रदेश के सभी 13 जिलों को विकास कार्यों के लिए कुल 1,018,20,60,000 रुपए की धनराशि आवंटित की है। ये राशि जिलों की आवश्यकताओं के अनुरूप निर्धारित की गई है। आवंटित धनराशि में अनुसूचित जाति उपयोजना के अंतर्गत 200,22,10,000 रुपए, अनुसूचित जनजाति उपयोजना के लिए 30,07,00,000 रुपए तथा सामान्य मद में 787,97,80,000 रुपए शामिल हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस धनराशि से जिला योजना के माध्यम से स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप आधारभूत संरचना, ग्रामीण विकास, पेयजल, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा अन्य जन उपयोगी योजनाओं को गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार संतुलित और समावेशी क्षेत्रीय विकास के लिए प्रतिबद्ध है। वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद उत्तराखंड में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की निर्बाध आपूर्ति जारी है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के राज्य स्तरीय समन्वयक कृष्ण कुमार गुप्ता ने कहा कि तेल उद्योग अपने व्यापक आपूर्ति नेटवर्क के माध्यम से ईंधन की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने बताया कि टर्मिनल, डिपो, एलपीजी बॉटलिंग प्लांट और रिटेल आउटलेट के जरिए राज्य भर में आपूर्ति सुचारू रूप से जारी है। सभी पेट्रोल पंपों पर ईंधन वितरण बिना किसी प्रतिबंध के निर्धारित सुरक्षा और परिचालन मानकों के अनुरूप किया जा रहा है। घरेलू उपभोक्ताओं को एलपीजी की आपूर्ति भी सामान्य रूप से जारी है तथा राज्य भर में वितरण व्यवस्था सुचारू बनी हुई है। आईओसीएल ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे अनावश्यक रूप से ईंधन की खरीद या संग्रहण से बचें, साथ ही ईंधन उपलब्धता से जुड़ी सही और प्रमाणित जानकारी के लिए केवल तेल विपणन कंपनियों के आधिकारिक संचार माध्यमों पर ही विश्वास करें। प्रदेश में गर्मी का असर लगातार बढ़ता जा रहा है। मौसम विभाग ने हरिद्वार, देहरादून और उत्तरकाशी के आसपास के क्षेत्रों में आज और कल कहीं कहीं लू चलने की संभावना जताई है। इस बीच राजधानी देहरादून में कल आज अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया गया।

0: है। मौसम विभाग ने लोगों को दोपहर के समय तेज धूप से बचने और पर्वतीय क्षेत्रों में खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने की सलाह दी है। प्रदेश में चारधाम यात्रा पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ जारी है। राज्य सरकार और पर्यटन विभाग के अनुसार अब तक 16,50,000 से अधिक श्रद्धालु चारों धामों के दर्शन कर चुके हैं। देश विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने से यात्रा मार्गों और धामों में निरंतर रौनक बनी हुई है। और अब एक नज़र समाचार पत्रों की सुर्खियों पर। पूर्व मुख्यमंत्री मेजर जनरल भुवन चंद खंडूरी के निधन की खबर आज सभी समाचार पत्रों की सुर्खियों में है। अमर उजाला लिखता है, लंबी बीमारी के बाद पूर्व मुख्यमंत्री मेजर जनरल खंडूरी का निधन, अंतिम दर्शन आज होंगे। इसी खबर पर दैनिक जागरण की सुर्खी है, चला गया सरहद और सियासत का सच्चा सिपाही, आज हरिद्वार में होगी अंत्येष्टि। हरिद्वार में दो बाघों को जहरीला पदार्थ देकर मारने की घटना भी लगभग सभी समाचार पत्रों में प्रमुख के साथ प्रकाशित की गई है। हिंदुस्तान समाचार पत्र के अनुसार इस घटना के संबंध में वन विभाग ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जबकि तीन अन्य आरोपी फरार हैं। एक अन्य खबर पर हिंदुस्तान समाचार पत्र लिखता है, उपनल कर्मियों को पक्का करने के लिए सरकार ने उच्च न्यायालय से फिर समय मांगा है। अर्थ जगत की खबरों के साथ दैनिक जागरण लिखता है, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाकर विदेशी मुद्रा बचाई जाएगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पूर्व मुख्यमंत्री मेजर जनरल भुवनचंद खंडूरी का आज पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बस्तर में आयोजित मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में मां नंदा राजजात यात्रा और कुंभ मेले की तैयारियों का विषय प्रमुखता से उठाया। राज्य सरकार ने जिला योजना के तहत सभी 13 जिलों के लिए 1,018 करोड़ रूपये से अधिक की धनराशि स्वीकृत की और उत्तराखण्ड में पेट्रोल डीजल और एलपीजी की आपूर्ति सामान्य। IOCL ने अफवाहों से बचने की अपील की। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन पूर्वाह्न 10:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं, FM 100.5 MHz पर। इस समय सवेरे के 7:30 हुए हैं। लीजिए शैल संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत सुनिए मोहन सिंह बोरा और साथियों के गाए कुमाऊनी लोकगीत।

0: पूरे उत्तराखंड में शुरू हो चुकी है जनगणना। पहले चरण में 25 अप्रैल से 24 मई 2026 तक प्रगणक द्वारा घर घर सर्वे किया जाएगा। आपकी सभी जानकारी पूरी तरह सुरक्षित और गोपनीय रखी जाएगी। कृपया सही और पूर्ण जानकारी दें, यही आपके क्षेत्र के विकास की नींव है। जनगणना 2027 आपकी भागीदारी, देश की प्रगति। ये सूचना जनगणना कार्य निदेशालय उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
1: मोहन सिंह बोरा और साथियों की गायक कुमावनी लोकगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से।
2: करत गणेशा पांचों देव रक्षा करा, ब्रह्मा विष्णु महेशा, ये खेलिहानी ताशा बिगरा का शुरू करा, राजा चिला राम बना बाशा।

नर नारी व्याकुल भई सारे यजद्यगा बुझानी भरा चुननी न घरा सुन माता के कही तिले राम का वनवास दिवास तिले न गौ करा।

राम लक्ष्मण सीता सहिता बुझ गई खेत जी पासा। सिया पलारा कन कम सारा मेला जाड़ू होला खेवटा।

खेडले राम लक्ष्मण सीता सीता समुद्र पारा।

0: खुशहाल।
1: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
2: पारदर्शिता एवं जन कल्याण को प्राथमिकता देते हुए उत्तराखंड में लागू की गई समान नागरिक संहिता, नकल विरोधी कानून, भू कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून, अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम 2025 के माध्यम से प्रशासनिक व्यवस्था को किया गया और भी मजबूत।
1: मानस खंड मंदिर माला मिशन, श्री केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के पुनर्विकास एवं शीतकालीन यात्रा जैसी पहलुओं से पर्यटकों की संख्या बढ़कर पहुंची 6 करोड़ के पार।
2: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की डगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
3: शैल संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत इस समय आप सुन रहे हैं मोहन सिंह बोरा और साथियों की गायक कुमावनी लोकगीत।

0: अभी आप मोहन सिंह बोहरा और साथियों के गाए कुमाऊनी लोकगीत शैल संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है, FM 100.5 MHz पर। सवेरे के 8 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे जिन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।
1: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा बेटा, नाम ही है PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। दोनों नेता भारत, पश्चिम एशिया, यूरोप, आर्थिक गलियारे के लिए सहयोग बढ़ाने पर चर्चा और वर्ष 2025 से 2029 तक संयुक्त रणनीतिक कार्रवाई योजना की समीक्षा करेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार 25 से 60 वर्ष की महिलाओं के लिए प्रतिमाह 3,000 रुपए की आर्थिक सहायता वाली अन्नपूर्णा योजना 1 जून से शुरू करेगी। एक राष्ट्र एक चुनाव की संयुक्त संसदीय समिति ने कहा, लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने से लगभग 7 लाख करोड़ रुपए की बचत और भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 1.6% की वृद्धि होगी। नागर विमानन महानिदेशालय ने इस वर्ष के शुरू में तकनीकी गड़बड़ी के बाद एयर इंडिया के बोइंग 787-8 विमान के ईंधन नियंत्रण स्विच की आगे की जांच के आदेश दिए। और आईपीएल क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। दोनों नेता भारत, पश्चिम एशिया, यूरोप, आर्थिक गलियारे के लिए सहयोग बढ़ाने पर चर्चा और वर्ष 2025 से 2029 तक संयुक्त रणनीतिक कार्रवाई योजना की समीक्षा करेंगे। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार, रक्षा, परिवहन, समुद्री सुरक्षा, बंदरगाह संबंधी सहयोग और स्वच्छ ऊर्जा सहित प्रमुख क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। इटली से हमारी संवाददाता की रिपोर्ट।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज क्विरिनल पैलेस में इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेला से मुलाकात करेंगे, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया जाएगा। आज के कार्यक्रमों में प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ताएं, प्रेस वक्तव्य, समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान, द्विपक्षीय बैठकें और खाद्य एवं कृषि संगठन का दौरा शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी मोरस निग्रा ब्लैक मलबरी का पौधा भी लगाएंगे। ये एक ऐसी प्रजाति है जो अपने पाक, औषधीय और सांस्कृतिक महत्व के कारण भारत और इटली को प्रतीकात्मक रूप से जोड़ती है। रोम से सुपर्णा भाटिया।
3: प्रधानमंत्री मोदी इटली की अपनी पहली द्विपक्षीय यात्रा पर कल रात रोम पहुंचे। इटली के विदेश मंत्री एंटोनियो ताजानी ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने श्री मोदी के सम्मान में रात्रि भोज का आयोजन किया। अनंतारा प्लाजो नायदी होटल पहुंचने पर प्रवासी भारतीय समुदाय ने श्री मोदी का उत्साहपूर्वक स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी ने भी गर्मजोशी से समुदाय के सदस्यों से हाथ मिलाया। हाल के वर्षों में भारत इटली संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है और अभी संबंध निर्णायक मोड़ पर पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के संयुक्त लेख में दोनों नेताओं ने कहा है कि दोनों देशों के बीच संबंध सौहार्दपूर्ण मित्रता से विकसित होकर एक विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक पहुंच गए हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में 3रे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि नॉर्डिक देशों के साथ भारत की भागीदारी को पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक भागीदारी के स्तर तक ले जाने का निर्णय लिया गया है।
5: इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियोथर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
3: नॉर्वे की दो दिन की यात्रा के दौरान श्री मोदी ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोरे के साथ द्विपक्षीय बैठक की। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
6: ओस्लो दौरे में हुए बहुपक्षीय और द्विपक्षीय बैठकों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरित परिवर्तन, नीली अर्थव्यवस्था, जहाज निर्माण, स्वास्थ्य और रक्षा जैसे क्षेत्रों में निवेश के लिए नॉर्डिक देशों को आमंत्रित किया। नेताओं ने पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले सहित सभी प्रकार के आतंकवाद की स्पष्ट और कड़ी निंदा की। सारे प्रधानमंत्रियों ने भारत नॉर्डिक देशों के सहयोग को और गहरा करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। अगला शिखर सम्मेलन फिनलैंड में हेलसिंकी में आयोजित किया जाएगा। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी न्यूज, ओस्लो, नॉर्वे।
3: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने जिनेवा में 19वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में सभी के लिए स्वास्थ्य कल्याण, डिजिटल स्वास्थ्य नवाचार और वैश्विक स्वास्थ्य एकजुटता के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई है। वैश्विक स्वास्थ्य का पुनर्निर्माण एक साझा दायित्व विषय पर आयोजित सभा में श्री नड्डा ने संपूर्ण सरकार और संपूर्ण समाज के दृष्टिकोण पर आधारित सभी के लिए स्वास्थ्य कल्याण की दिशा में भारत की प्रगति का उल्लेख किया।
7: India is accelerating towards universal health coverage.
8: भारत गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच का विस्तार करके सभी के लिए स्वास्थ्य कल्याण की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसके लिए हमने 185,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित किए हैं। इसके अलावा हम महामारी की तैयारियों और आपातकालीन राहत के लिए मजबूत और सुदृढ़ सार्वजनिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध
7: हैं। Pandemic preparedness and emergency responses.
3: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
9: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
10: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
9: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल सरकार ने महिलाओं के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए 3,000 रुपए की मासिक वित्तीय सहायता की अन्नपूर्णा योजना अधिसूचित कर दी है। महिला और बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग की ये योजना 1 जून से प्रभावी होगी। एक रिपोर्ट।
8: इस योजना के अंतर्गत राशि पात्र लाभार्थियों के आधार से जुड़े बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से भेजी जाएगी। इस योजना के लिए 25 से 60 वर्ष की महिलाएं पात्र हैं। पात्र महिलाएं आयकर का भुगतान नहीं करती हों और किसी भी स्थायी सरकारी नौकरी में कार्यरत ना हो। नए आदेश के अनुसार लक्ष्मी भंडार योजना के सभी वर्तमान लाभार्थी स्वतः ही अन्नपूर्णा योजना में स्थानांतरित हो जाएंगे। नए आवेदकों के लिए अन्नपूर्णा योजना का ऑनलाइन पोर्टल 1 जून 2026 को शुरू किया जाएगा। कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
3: एक राष्ट्र एक चुनाव पर गठित संयुक्त संसदीय समिति ने कहा है कि लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकाय चुनाव एक साथ कराने से करीब 7,00,000 करोड़ रुपए की बचत हो सकती है। इससे देश के सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर में 1.6% की बढ़ोतरी हो सकती है। समिति के अध्यक्ष और लोकसभा सांसद पीपी चौधरी ने कल शाम गुजरात के गांधीनगर में पत्रकारों को ये जानकारी दी।
11: मैं जो इनपुट मिला है उसमें हमने और कहा इसको और इम्प्रूव करो और एक रोल मॉडल के रूप में हम पूरे देश में सारे सरकार को हम भेजेंगे भाई इस रूप में आप हमें अपनी रिपोर्ट प्रिपेयर करके दो। जैसे इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट करे, इंडस्ट्रीज में क्या लॉस होता है, प्रोडक्शन का कितना लॉस होता है, लेबर एक तरह से दूसरे तरह माइग्रेट करती है, सबको कहा अपनी रिपोर्ट प्रिपेयर करें और उसका संकलन करके आगे दे सके।
3: नागर विमानन महानिदेशालय ने एयर इंडिया के बोइंग 787-8 विमान के ईंधन नियंत्रण स्विच की जांच मूल उपकरण निर्माता केंद्र पर महानिदेशालय के अधिकारियों की उपस्थिति में करने का निर्देश दिया है। महानिदेशालय के अनुसार एयर इंडिया के बोइंग 787-8 विमान का संचालन इस वर्ष 2 फरवरी को लंदन के हीथ्रो हवाई अड्डे से बेंगलुरु के लिए उड़ान AIC-132 संचालित करने के बाद रोक दिया गया था। एक रिपोर्ट।
12: यह कार्रवाई पायलट डिफेक्ट रिपोर्ट में दर्ज एक प्रविष्टि के बाद की गई थी। इसमें कहा गया था कि बायां ईंधन नियंत्रण स्विच थोड़ा सा दबाने पर रन से कट ऑफ स्थिति में फिसल जाता है और चयनित स्थिति में ठीक से लॉक नहीं होता है। महानिदेशालय ने कहा कि एयर इंडिया ने मूल उपकरण निर्माता की निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार और महानिदेशालय के अधिकारियों की उपस्थिति में ईंधन नियंत्रण स्विच का निरीक्षण और कार्यात्मक परीक्षण किया। निरीक्षण परिणामों और उपलब्ध साक्ष्यों की समीक्षा के बाद निष्कर्ष निकाला गया कि ईंधन नियंत्रण स्विच यांत्रिक रूप से डिजाइन के अनुसार कार्य कर रहा था। था और इकाई को सेवा योग्य घोषित किया। हालांकि महानिदेशालय ने निगरानी के अंतर्गत निर्देश दिया है कि ईंधन नियंत्रण स्विचों का भविष्य में निरीक्षण किया जाए। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
3: भारतीय रेल ने ब्रॉड गेज नेटवर्क का 99.6% विद्युतीकरण पूरा कर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इस वर्ष मार्च तक ब्रॉडगेज रेलवे लाइन का 69,873 किलोमीटर से अधिक मार्ग विद्युतीकृत हो चुका था। इस उपलब्धि के साथ भारत ने यूरोपीय संघ, ब्रिटेन और अमेरिका सहित कई प्रमुख देशों को पीछे छोड़ दिया है। नई दिल्ली के प्रधानमंत्री संग्रहालय में आज से महात्मा गांधी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित 3D अवतार आगंतुकों के लिए खोल दिया जाएगा। आगंतुक महात्मा गांधी के 3D अवतार के साथ संवाद कर सकेंगे और अत्याधुनिक तकनीक के माध्यम से बापू की आत्मा को जीवंत कर सकेंगे। और अब खेल समाचारों के साथ हैं आनंद पाठक।
13: आईपीएल क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने कल रात लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही राजस्थान की प्लेऑफ में पहुंचने की संभावना भी बनी हुई है। राजस्थान रॉयल्स ने 221 रन का लक्ष्य 7 विकेट के नुकसान पर 5 गेंद शेष रहते हासिल कर लिया। वैभव सूर्यवंशी ने 93 रन की शानदार पारी खेली। वैभव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। यह मैच कोलकाता में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। वरिष्ठ भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली ने भारतीय हॉकी खिलाड़ियों के फिटनेस स्तर की सराहना करते हुए इसे खेल के लिए समर्पण की पहचान बताया है। कोहली ने कहा कि क्रिकेटरों की फिटनेस भारतीय हॉकी खिलाड़ी की फिटनेस के 15% के बराबर भी नहीं है। सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2026 के लिए भारतीय दल की पहली सूची की घोषणा कर दी गई है। यह प्रतियोगिता इस महीने की 25 तारीख से 6 जून तक गोवा में आयोजित की जा रही है। उधर राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी ने सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड के अंकित और रेलवे के जयेश पाटिल पर 3 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया है। दोनों खिलाड़ियों का डोपिंग टेस्ट पॉजिटिव आया था। अंकित ने राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप में 3रा स्थान जबकि पाटिल ने 5वां स्थान प्राप्त किया था। दोनों खिलाड़ियों ने आरोपों को स्वीकार कर लिया जिसके परिणाम स्वरूप उनकी अयोग्यता अवधि में 1 वर्ष की कमी हुई है।
3: और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश में अगले 2 दिन भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है। प्रदेश में बढ़ता तापमान हर दिन नए रिकॉर्ड बना रहा है। एक रिपोर्ट।
14: राज्य के बुंदेलखंड इलाके का बांदा जिला लगातार 3रे दिन भी देश का सबसे गर्म क्षेत्र बना हुआ है, जहां अधिकतम तापमान 48.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। राज्य के अन्य हिस्सों में भी भीषण गर्मी से राहत नहीं मिली है और कई स्थानों पर दिन का अधिकतम तापमान 44 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है और रात के समय भी तापमान 30 डिग्री के आसपास पहुंच रहा है। पारा बढ़ने से आम जनजीवन पर तो असर पड़ा ही है, पशु पक्षी भी सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए राज्य में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
3: मध्य प्रदेश भी भीषण गर्मी की चपेट में है। राज्य में पहली बार पारा 47 डिग्री तक पहुंच गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं आकर्षिता सिंह।
15: धन्यवाद विशाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नॉर्वे यात्रा लोकसत्य सहित कई अखबारों में है। भारत नॉर्वे के बीच अंतरिक्ष, हेल्थ, डिजिटल क्षेत्रों सहित 12 समझौते। भारत नॉर्डिक समिट में पीएम मोदी के शब्द नवभारत टाइम्स में है। आतंकवाद पर हो एक रुख, कोई समझौता नहीं, कोई दोहरा मापदंड नहीं। प्रधानमंत्री मोदी की इटली यात्रा पर दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों का साझा लेख दैनिक जागरण में है। रणनीतिक साझेदारी के युग में भारत और इटली शीर्षक से छपे लेख के अनुसार भारत का तेजी से बढ़ता नवाचार तंत्र और कुशल पेशेवरों की बड़ी संख्या तथा इटली की उन्नत औद्योगिक क्षमता दोनों देशों के सहयोग को स्वाभाविक और रणनीतिक सहयोगी बनाती है। आवारा कुत्तों पर सर्वोच्च न्यायालय का आदेश सभी अखबारों के मुख पृष्ठ पर है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, खूंखार कुत्तों को सजाए मौत। शीर्ष न्यायालय ने कहा, बच्चों और बुजुर्गों के जीवन को भाग्य के भरोसे नहीं छोड़ सकते। राजस्थान पत्रिका ने सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को दिया है, भयमुक्त जीवन लोगों का अधिकार। नक्सलवाद की तरह 3 वर्ष में हर केस खत्म करने का लक्ष्य, गृह मंत्री अमित शाह का ये बयान दैनिक भास्कर में है।
3: धन्यवाद आकर्षिता। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। दोनों नेता भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे के लिए सहयोग बढ़ाने पर चर्चा और वर्ष 2025 से 2029 तक संयुक्त रणनीतिक कार्रवाई योजना की समीक्षा करेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार 25 से 60 वर्ष की महिलाओं के लिए प्रतिमाह 3000 रुपए की आर्थिक सहायता वाली अन्नपूर्णा योजना 1 जून से शुरू करेगी। एक राष्ट्र एक चुनाव की संयुक्त संसदीय समिति ने कहा, लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने से लगभग 7 लाख करोड़ रुपए की बचत होगी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
16: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Abhishek Mukhopadhyay. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to hold talks with his Italian counterpart Giorgia Meloni in Rome today. Two leaders to discuss ways to boost cooperation on India-Middle East-Europe economic corridor and review joint strategic action plan 2025-2029. West Bengal government to roll out Annapurna scheme providing 3,000 rupees per month to women aged 25 to 60 years from June 1st. Joint Parliamentary Committee on One Nation, One Election says simultaneous Lok Sabha and Assembly elections can save nearly 7 lakh crore rupees and increase India's GDP growth by 1.6%. DGCA orders further inspection of fuel control switch of an Air India Boeing 787-8 aircraft following technical snag earlier this year. And in IPL cricket, Rajasthan Royals beat Lucknow Super Giants by 7 wickets in Jaipur. Prime Minister Narendra Modi arrived in Rome last night on an official visit to Italy. Mr. Modi was received at the airport by Italy's Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs and International Cooperation, Antonio Tajani. Later, Italian Prime Minister Giorgia Meloni hosted a dinner in honor of Mr. Modi. After the dinner, PM Modi reached Anantara Palazzo Nayadi Hotel, where a jubilant and cheering Indian diaspora welcomed him. Mr. Modi will hold talks with his Italian counterpart, Giorgia Meloni, President Sergio Mattarella, and discuss with them ways to boost India-Italy cooperation. PM Modi's visit will focus on how to boost India-Italy cooperation, especially focusing on the India-Middle East-Europe Economic Corridor, IMEC. The Joint Strategic Action Plan 2025-2029 will also be reviewed. Mr. Modi will also be visiting the headquarters of the Food and Agriculture Organization, FAO, and strengthening India's commitment to multilateralism as well as global food security. A correspondent covering the Prime Minister's visit has filed this report.
4: Prime Minister Narendra Modi will call on the President of Italy, Sergio Mattarella, at the Quirinal Palace today, where he will be accorded a guard of honor. The day's engagements include delegation-level talks, press statements, exchange of memoranda of understanding, bilateral meetings, and a visit to the Food and Agriculture Organization. Prime Minister Modi will also plant a Morus nigra black mulberry tree, a species that symbolically connects India and Italy through its culinary, medicinal, and agricultural significance. This is Suparna Bhatia from Rome.
16: Earlier yesterday, Indian Nordic nations comprising Norway, Sweden, Denmark, Finland and Iceland elevated the bilateral ties to a green technology and innovation strategic partnership. Mr. Modi made the announcement while addressing a joint press meet with leaders of Nordic nations after attending the third India-Nordic summit in the Norwegian capital Oslo.
5: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियोथर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सेंसिटिविटी में एक्सपर्टीज को, सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज को भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
16: Prime Minister Modi said investments from Nordic countries in India rose by 200% in the past decade.
5: 10 वर्षों में हमारा बायलेटरल ट्रेड लगभग 4 गुना बढ़ा है। नॉर्डिक देशों के इन्वेस्टमेंट फंड भी भारत की रैपिड ग्रोथ में अहम साझेदार बन रहे हैं। पिछले एक दशक नॉर्डिक देशों से भारत में निवेश में लगभग 200% की बढ़ोतरी हुई है। तेजी से बढ़ते ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ने भारत की ग्रोथ स्टोरी में तो योगदान दिया ही है, साथ ही नॉर्डिक देशों की अर्थव्यवस्थाओं में भी बहुत सकारात्मक भूमिका निभाई है और हजारों नए जॉब्स क्रिएट किए हैं।
16: Prime Minister Modi affirmed that the relations between India and the Nordic countries are set to usher in a new golden era with the recently concluded trade agreements, including trade and economic partnership and India-EU free trade deal. A correspondent covering the Prime Minister's visit to Norway has filed this report from Oslo.
6: A joint statement released after the third India-Nordic summit outlines the areas of shared goals and vision of India and the five Nordic countries. They decided to elevate their relations to a green technology and innovation strategic partnership. This reflects their shared commitment to sustainability, innovation and green growth. They encouraged collaboration in research, innovation and talent mobility. In the multilateral and bilateral engagements during his Oslo visit, Prime Minister Narendra Modi invited Nordic investments in areas such as green transition, blue economy, shipbuilding, health and defense. In light of the India-EU FTA and TEPA agreement, he conveyed India's keenness for stronger economic and commercial ties with the Nordic region. On the global issues, the leaders together advocated for rules-based world order and reformed multilateral system. They underlined the importance of de-escalation in the conflict regions. The leaders unequivocally and strongly condemned terrorism, including the terrorist attack in Pahalgam. The Prime Ministers reaffirmed their commitment to further deepen the India-Nordic cooperation. The next India-Nordic summit would be held in Helsinki, Finland. Sangeeta Gorbole, Akashvani News, Oslo, Norway.
16: West Bengal government will roll out Annapurna scheme providing 3,000 rupees per month to women aged 25 to 60 years from June 1st. The money will be credited directly through direct benefit transfer, DBT, into the Aadhaar-linked bank accounts of eligible beneficiaries. To qualify for the scheme, women must be aged between 25 and 60 years, must not be paying income tax, and must not hold any permanent government employment or receive a regular salary pension from the state, central, statutory, panchayat, municipal, local bodies, or government-aided educational institutions. Under the new order, all existing beneficiaries of the Lakshmir Bhandar scheme will be automatically migrated to the Annapurna Yojana. For new applicants, an online portal for the Annapurna Yojana will launch on June 1st, 2026. The Joint Parliamentary Committee JPC on One Nation, One Election has said the simultaneous Lok Sabha, Assembly and local body elections can save nearly 7 lakh crore rupees, improve governance efficiency and increase India's GDP growth by up to 1.6%. Addressing a press conference in Gandhinagar, JPC chairperson P.P. Chaudhary said India had followed a synchronized election system until 1967 when Lok Sabha and the State Assembly elections were conducted together. He said the cycle was disturbed after the premature dissolution of 7 state assemblies in 1968 and later during the emergency period. Gradually, elections across states went out of synchronization. Mr. Chaudhary said several institutions, including the Election Commission, the Law Commission and parliamentary committees, had over the years recommended simultaneous elections.
17: सारी परिस्थितियों को देख करके हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की दूरदृष्टि
18: प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कॉन्स्टिट्यूटेड एन 8 मेंबर कमेटी अंडर द लीडर

नमस्कार, देहरादून के सभी श्रोताओं को संगीता सेमवाल का नमस्कार। श्रोताओं, उत्तराखंड ही नहीं बल्कि पूरे देश ने एक ऐसे व्यक्तित्व को खो दिया है जिन्होंने सेना की वर्दी में देश की सेवा की और राजनीति में रहकर जनसेवा को अपना धर्म बनाया। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री और सरल व्यक्तित्व के धनी भुवन चंद्र खंडूरी अब हमारे बीच नहीं रहे। वे लंबे समय से अस्वस्थ चल रहे थे। उत्तराखंड की राजनीति में सबसे सख्त, ईमानदार और अनुशासित चेहरे में इनका नाम शामिल है। 1 अक्टूबर सन 1934 को देहरादून में जन्मे मेजर जनरल सेवानिवृत्त भुवन चंद्र खंडूरी ने राजनीति में आने से पहले भारतीय सेना में लंबी सेवा दी थी। आप पहली बार 1991 में गढ़वाल लोकसभा सीट से सांसद चुने गए थे। साल 2007 में मेजर जनरल सेवानिवृत्त भुवन चंद्र खंडूरी मुख्यमंत्री बने। वे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री 2007 से 2009 तक बनाए गए। उनकी काम करने की शैली सेना से मिलती जुलती थी। वे बेहद सख्त और बेहद ईमानदार मुख्यमंत्री के तौर पर जाने जाते हैं। 2011 में दूसरी बार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने। मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूरी उत्तराखंड में एक मजबूत व्यक्तित्व के रूप में जाने गए हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने विकास, सड़क निर्माण, पारदर्शिता और सुशासन पर विशेष बल दिया। वे कम शब्दों में बड़ी बातें कहने वाले व्यक्तित्व के थे। जनता उन्हें एक ऐसे नेता के रूप में याद करती है जिन्होंने सत्ता को सेवा का माध्यम माना। कल यानी 19 मई 2026 को उन्होंने अंतिम सांस ली। वे 91 वर्ष के थे। आकाशवाणी देहरादून की पूरी टीम की ओर से हम उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मेजर जनरल सेवानिवृत्त भुवन चंद्र खंडूरी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, नमन करते हैं।

आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्कार देहरादून। लीजिए सुनिए अखबारों की सुर्खियां। नई शिक्षा नीति के तहत शिक्षण संस्थान करेंगे कार्य, हुए करार। स्पोर्ट्स कॉलेज में प्रवेश के लिए जून में होगी परीक्षा। क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय की ओर से बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए 26 मई को रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। 92 पदों पर मिलेंगे भर्ती के अवसर। 8 ब्लॉकों में भी शुरू हुआ जनगणना सर्वे। लाखा मंडल में खुदाई के दौरान मिली प्राचीन मूर्ति और हर किसी ने नम आंखों से प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूरी को किया याद। और अब मौसम। अब सुबह से ही झुलसाने लगी है गर्मी, दोपहर में सड़कें वे बाजार हुए सूने। देहरादून में आज का अधिकतम तापमान 39.7 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23.1 डिग्री सेल्सियस रहेगा। ये थी अखबारों की सुर्खियां और अब लीजिए सुनिए इतिहास में आज के दिन की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं। वर्ष 1932 में आज ही के दिन भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी विपिन चंद्र पाल का निधन हुआ था। लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक के साथ विपिन चंद्र पाल ने भी भारत की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया था। इन तीनों को लाल बाल पाल की तिगड़ी कहा जाता था। विपिन चंद्र पाल ने सन 1905 में बंगाल के विभाजन के विरोध में अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन किया था। उन्हें बड़े पैमाने पर जनता का समर्थन प्राप्त था। विपिन चंद्र पाल और अरविंदो घोष एक ऐसी क्रांति के प्रमुख नायक थे जिसमें पूर्ण स्वराज और स्वदेशी आंदोलन के तहत पूरे देश में विदेशी उत्पादों का बहिष्कार किया गया था। वर्ष 1609 में आज ही के दिन विलियम शेक्सपियर के सोनेट्स यानी गीतों का संग्रह पहली बार प्रकाशित किया गया था। सन 1498 में आज ही के दिन पुर्तगाल के खोजी यात्री वास्को डी गामा ने यूरोप और भारत को जोड़ने वाले समुद्री रास्ते की खोज की थी। वास्को डी गामा भारत में समुद्र के रास्ते आने वाले पहले यूरोपियन थे और अपनी पहली यात्रा के दौरान वे कोझिकोड पहुंचे थे। कोझिकोड को कैलिकट के नाम से भी जाना जाता है। आज ही के दिन वर्ष 1891 में प्रसिद्ध वैज्ञानिक थॉमस एल्वा एडिसन ने कैनेटोस्कोप के पहले प्रोटोटाइप को दुनिया के सामने रखा था और यही दुनिया का पहला फिल्म प्रोजेक्टर था। इसलिए सिनेमा के इतिहास में ये तारीख बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये तो थी इतिहास की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं जो हमने आपके साथ साझा की। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्कार देहरादून।

बांध दिए क्यों प्राण प्राणों से, बांध दिए क्यों प्राण प्राणों से, तुमने चिर अनजान प्राणों से, ये विदेह प्राणों का बंधन, अंतर ज्वाला में तपता तन, मुक्त हृदय सौंदर्य ज्योति को दग्ध कामना करता अर्पण। नहीं चाहता जो कुछ अपान प्राणों से, बांध दिए क्यों प्राण प्राणों से, तुमने चिर अनजान प्राणों से। श्रोताओ, ये जो चंद पंक्तियां हमने आपके साथ साझा की, ये पंक्तियां लिखी हैं हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवि सुमित्रा नंदन पंत ने। आज के दिन सन 1900 में इनका जन्म उत्तराखंड के कौसानी में हुआ था। सुमित्रा नंदन पंत हिंदी साहित्य में छायावादी युग के महान कवियों में से एक थे। उत्तराखंड की वादियों में जन्मे सुमित्रा नंदन पंत ने प्रकृति को जिस सौंदर्य और कोमलता से अपनी कविताओं में उतारा, वह हिंदी साहित्य में अद्वितीय माना जाता है। हिंदी साहित्य के महान कवि आकाशवाणी देहरादून की पूरी टीम की ओर से उनकी जयंती पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और अब आपको सुनाते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

पूरे उत्तराखंड में शुरू हो चुकी है जनगणना। पहले चरण में 25 अप्रैल से 24 मई 2026 तक प्रगणक द्वारा घर घर सर्वे किया जाएगा। आपकी सभी जानकारी पूरी तरह सुरक्षित और गोपनीय रखी जाएगी। कृपया सही और पूर्ण जानकारी दें, यही आपके क्षेत्र के विकास की नींव है। जनगणना 2027 आपकी भागीदारी, देश की प्रगति। ये सूचना जनगणना कार्य निदेशालय उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।

0: खुशहाल।
1: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
2: पारदर्शिता एवं जन कल्याण को प्राथमिकता देते हुए उत्तराखंड में लागू की गई समान नागरिक संहिता, नकल विरोधी कानून, भू कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून, अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम 2025 के माध्यम से प्रशासनिक व्यवस्था को किया गया और भी मजबूत।
1: मानस खंड मंदिर माला मिशन, श्री केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के पुनर्विकास एवं शीतकालीन यात्रा जैसी पहलुओं से पर्यटकों की संख्या बढ़कर पहुंची 6 करोड़ के पार।
2: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की डगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
3: श्रोताओ, 20 मई यानी आज विश्व मधुमक्खी दिवस है। आज के दिन ही मधुमक्खी पालन का आधुनिक तरीका ईजाद करने वाले जोहान डिजरजोन का जन्म हुआ था। उन्हीं की याद में विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य मधुमक्खियों के महत्व, योगदान और उनके संरक्षण को लेकर जागरूकता बढ़ाना है। श्रोताओ, आज विश्व मधुमक्खी दिवस पर बात उन नन्हे मेहनत कश जीवों की जो बिना शोर किए हमारी दुनिया को जीवन स्वाद और संतुलन देते हैं। श्रोताओ, जब भी हम शहद का नाम सुनते हैं हमारे मन में मिठास खुल जाती है, लेकिन उसे एक बूंद शहद के पीछे हजारों मधुमक्खियों की अथक मेहनत छिपी होती है। ऐसा माना जाता है कि 75% फूलदार फसलें परागकण के लिए मधुमक्खियों पर निर्भर है। फल, सब्जियां, सरसों, बादाम, सूरजमुखी, इन सब की पैदावार में मधुमक्खियों की बड़ी भूमिका है। अगर मधुमक्खियां ना हो तो खेतों की हरियाली, फूलों की खुशबू और हमारी थाली का स्वाद भी प्रभावित हो जाएगा। श्रोताओ, एक खास बात जो हम इन नन्हे जीवों से सीख सकते हैं और वो हमें सिखाती हैं, मधुमक्खियाँ हमें टीम वर्क भी सिखाती हैं। एक छत्ते में हजारों मधुमक्खियाँ अनुशासन और मेहनत के साथ काम करती हैं। ना कोई शिकायत, ना कोई दिखावा, सिर्फ कर्म। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्कार देहरादून।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नमस्कार देहरादून। हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं FM 100.5 MHz पर। सवेरे के 9 बजे हैं, लीजिए सुनिए सदाबहार फिल्म संगीत।

लता मंगेशकर की आवाज में अभी आपने सुना फिल्म रानी रूपमती का ये गीत। संगीत एसएन त्रिपाठी का था और गीत रचना थी भारत की। और अब लीजिए सुनिए मुकेश की आवाज में फिल्म मेरा नाम जोकर का ये गीत। संगीत शंकर जयकिशन का है और गीत के बोल लिखे हैं शैलेंद्र ने।

सदाबहार फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से। और अब लीजिए सुनिए फिल्म पूरब और पश्चिम का ये गीत, मुकेश की आवाज में। संगीत कल्याण जी आनंद जी का है और रचना इंदिवर की।

0: मुकेश की आवाज में लीजिए, सुनिए फिल्म आनंद का ये गीत।
1: कहीं दूर जब दिन ढल जाए

कभी कभी। अभी आपने सुना इस फिल्म का गीत मुकेश की आवाज में, संगीत खय्याम का था, गीत के बोल लिखे थे साहिर लुधियानवी ने। और अब लीजिए सुनिए फिल्म दो आंखें बारह हाथ फिल्म के इस गीत में लता मंगेशकर को। संगीत वसंत देसाई का है और शब्द रचना है भारत व्यास की।

सदाबहार फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से। अभी आपने किशोर कुमार की आवाज में फिल्म अमर प्रेम का ये गीत सुना, और अब लीजिए सुनिए फिल्म मुकद्दर का सिकंदर से ये गीत किशोर कुमार की आवाज में। संगीत कल्याण जी आनंद जी का है और शब्द रचना है अनजान की।

सदाबहार फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से। और अब लीजिए सुनिए आंधी फिल्म का ये गीत, किशोर कुमार और लता मंगेशकर के युगल स्वरों में। संगीत आर.टी. बर्मन का है और गीत के बोल लिखे हैं गुलजार ने।

सफर फिल्म का गीत अभी आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज़ में, संगीत कल्याण जी आनंद जी का था और शब्द रचना इंदिवर की। और अब लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अंतिम गीत, फिल्म का नाम है वो कौन थी। आवाज़ लता मंगेशकर की है, संगीत मदन मोहन का और शब्द रचना है राजा मेहंदी अली खान की।

0: अभी आप सुन रहे थे सदाबहार फिल्म संगीत। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है, FM 107.5 MHz पर। सवेरे के 9:45 हुए हैं। लीजिए सेहत कार्यक्रम के अंतर्गत सुनिए फिजियोथेरेपी चिकित्सा पद्धति में कितनी सहायक, इस विषय पर डॉक्टर सूर्य प्रकाश भट्ट से कल्पना पंकज की बातचीत।
1: कार्यक्रम सेहत आप सभी का स्वागत है। श्रोताओं नमस्कार। आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ है डॉक्टर कुमार प्रशांत, जो कि श्वास एवं छाती रोग विशेषज्ञ हैं दून मेडिकल कॉलेज देहरादून में। डॉक्टर साहब, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। डॉक्टर साहब, आज हमारी चर्चा का विषय है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, यानी कि COPD, कारण, लक्षण और उपचार। डॉक्टर साहब, ये COPD क्या है?
2: एक एक आम फेफड़े की बीमारी है जिसमें वायु प्रवाह बाधित हो जाती है और सांस लेने में समस्या पैदा होती है मरीज को।
1: जी, यानी कि मरीज को सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, दिक्कत। सेहत कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। श्रोताओं नमस्कार। आज की इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं डॉक्टर सूर्य प्रकाश भट्ट और चर्चा का विषय रहेगा फिजियोथेरेपी चिकित्सा पद्धति में कितनी सहायक। डॉक्टर साहब, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है।
2: धन्यवाद।
1: डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि फिजियोथेरेपी क्या है?
2: ये फिजियोथेरेपी एक ऐसी पद्धति है कि जैसे मेडिकल लाइन में आप जो मेडिसिन से जो ठीक नहीं हो पाता है उसके बाद फिर फिजियोथेरेपी से ही उसका ट्रीटमेंट होता है। जैसे कोई लंबर कमर में दर्द होता है, ऑपरेशन होना होता है, लेकिन कुछ कारणों की वजह से हार्ट की प्रॉब्लम है, कुछ ऐसी प्रॉब्लम है कि उनको एनेस्थीसिया नहीं दे सकते हैं, तो फिर उनको एडवाइज करते हैं कि आप फिजियोथेरेपी ही कराइए और उसमें भी 100% रिजल्ट है।
1: जी, तो इसके अलावा भी फिजियोथेरेपी कब जरूरी हो जाती है?
2: फिजियोथेरेपी जैसे आजकल हमारे बच्चे भी हैं जो फ़ोन पे बहुत ज़्यादा सारा, मतलब कॉलेज स्कूल के बच्चे भी फ़ोन पे काम कर रहे हैं या जो ऑफिसों में काम कर रहे हैं कंप्यूटर में झुक के काम करते हैं, तो जो हमारी सर्वाइकल जो कॉर्ड होती है ये नीचे हम झुक के काम करते हैं। अब हम वीडियो देख रहे हैं या बच्चे वीडियो देख रहे हैं लगातार, एक एक दो दो घंटे तक हम लगातार झुक के देखते हैं, उससे हमारी जो सर्वाइकल जो कॉर्ड होती है वो टेढ़ी होने से और नर्व को दबाना शुरू कर देता है।
1: जी,
2: बीच में उसमें कैल्शियम आ जाता है और उसकी वजह से क्या होता है कि हाथ में झंझनाहट होना शुरू हो जाता है
1: जी,
2: और सर भारी, उल्टी करना, ऐसे बहुत सारे सिम्टम्स हैं उसमें, हाथ में झंझनाहट, काम हाथ काम नहीं करना, नींद आना, बहुत BP भी बढ़ जाता है इसकी वजह से
1: जी,
2: अगर
1: जी,
2: हमारा
1: जी।
2: सर्वाइकल बढ़ जाता है।
1: तो ऐसे में फिजियोथेरेपी सहायक है।
2: सहायक है
1: डॉक्टर साहब, बहुत सी बार ये देखते हैं कि कभी कभार देखते हैं कि एक्सीडेंट हो जाते हैं, दुर्घटनाएं हो जाती हैं, ऐसे में बहुत सारी इंजरी हो जाती है, तो ऐसे में भी बहुत सी बार क्या सलाह दी जाती है फिजियोथेरेपी की?
2: बिल्कुल। एक्चुअल में मैंने देखा है कि एक्चुअल में ये हमारे जो पहाड़ की जो यहाँ पे स्थिति है, यहाँ पे एक्सीडेंट होते हैं, कोई बस गिरती है और लगभग 400 मीटर नीचे चली जाती है गिर के, और वहाँ से जब हम उसको शिफ्ट करते हैं पेशेंट को, कैजुअलिटी को, मैंने देखा है लोग खींच के ले आते हैं, उठा के कंधे में ला के ले आते हैं उसको रोड तक। जब तक वहाँ पे आदमी लेटा गिरा हुआ रहता है या रोड पे जब एक्सीडेंट होता है वहाँ पे गिरा हुआ रहता है तब तक ठीक रहता है, बोलता है कि मैं ठीक हूँ या मेरे को मदद करिए, लेकिन जैसे ही हम उसको शिफ्ट करते हैं हॉस्पिटल या रोड नीचे नदी से या नदी के गिरे गधेरे से गाड़ी से जब एक्सीडेंट होता है लेके आते हैं, तो जब रोड पे लेके आते हैं तब तक आदमी खत्म हो चुका होता है। उसका कारण यही है कि हमें पता नहीं, हमारा जो लंबर होती है ये कमर की जो रीढ़ की हड्डी होती है L4 L5 के आसपास, तो यहाँ पे एक ये और एक सर्वाइकल गर्दन की जो हड्डी होती है ये दो जगह ऐसे मूवमेंट करती है बॉडी, मतलब हिलती डुलती है। अब होता है जब हिट होता है तो वहाँ पे फ्रैक्चर, हड्डी जो बोन्स होती है फ्रैक्चर हो जाती है, और जब फ्रैक्चर होने के बाद क्या होता है, जब नीचे गिरता आदमी तो सीधी जगह पे पड़ा रहता है, लेटा रहता है, तो उस समय हड्डी अपनी जगह रहती है, लेकिन जैसे ही हम उसको शिफ्ट करते हैं हमें पता नहीं होता कि शिफ्ट कैसे करना है, तो आदमी 4 से 6 मिनट के अंदर खत्म हो जाता है वो, तो उसमें कहीं ना कहीं पता ही नहीं होता हमको, हम लोगों को ना ध्यान नहीं देते हैं। तो उसको शिफ्ट करने का तरीका सिंपल सा है कि कभी भी हम हार्ड बोर्ड से उसको शिफ्ट करें, एक्सीडेंट के मामले में कोई रोड पे पड़ा हुआ है, या हम अक्सर वही होता है कि लोग विक्रम या एम्बुलेंस किसी में, मतलब अपनी गाड़ी में 4-5 लोग उठा के उसको एक्सीडेंट वाले को गाड़ी में डाल देते हैं और हॉस्पिटल लेके जाते हैं, 15 से 20 मिनट में हॉस्पिटल पहुंच जाता है, लेकिन वहां पे कहते हैं कि उसको एक्सपायर डेट, तो वही वहां पे भी वही स्थिति होती है कि हम लोगों को अगर पता होगा कि हमारी जगह सेंसिटिव है, उसमें हार्ड बोर्ड के रखने के बाद ही हम उसको शिफ्ट करें।

0: जी
1: या
0: जी
1: सर्वाइकल कॉलर पहना के शिफ्ट। अगर हमें ये पता होगा कि हमारी गर्दन में यहाँ पे हड्डी फ्रैक्चर हो सकती है, तो ऐसी हमारी दिनचर्या में भी ये दबाता है, नुकसान करता है, और ऐसे एक्सीडेंट के मामले में तो हमारी जिंदगी भी ले लेता है।
0: जी
1: थोड़ी सी सावधानी से हमारी जिंदगी बच सकती है।
0: जी डॉक्टर साहब, घटनाएं होती हैं, दुर्घटनाएं होती हैं, तो ऐसे में बहुत सी बार जब हम देखते हैं कि चोट तो कहीं पे भी लग सकती है,
1: जी
0: किसी भी शरीर के अंग पर लग सकती है, तो ऐसे में क्या जब दूसरी शरीर में जगहों पर जब चोट लग जाती है, वहां पर भी क्या फिजियोथेरेपी काम करती है?
1: नहीं, फिजियोथेरेपी तो उसके बाद काम करती है, जैसे कहीं ऑपरेशन हो गया है और हाथ मुड़ता नहीं है, पाँव मुड़ता नहीं है,
0: जी
1: या आजकल नी रिप्लेसमेंट हो रहा है, उसके बाद फिजियोथेरेपी तो करनी ही पड़ती है।
0: जी
1: उसी के बाद आदमी को फिर नॉर्मल दिनचर्या में आ पाता है। फिजियोथेरेपी जो हमारे पेशेंट हॉस्पिटल में बेड पे कोई लंबे टाइम तक पड़ा हुआ है, कोमा में पड़ा हुआ है, फिजियोथेरेपी नहीं कराएंगे तो बेड सोल हो जाएंगे, बेड सोल हो जाएंगे तो आदमी फिर उसकी लाइफ बहुत वैसी हो जाएगी। तो फिजियोथेरेपी हमारे घर में भी और हम लोगों को भी थोड़ी बहुत जानकारी हर आदमी को होनी चाहिए।
0: तो ये क्यों जरूरी है? क्या इसके बाद इंसान स्वस्थ हो सकता है?
1: बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है। जैसे अभी मैं सर्वाइकल की बात कर रहा है, किसी को 10 साल से सर्वाइकल है
0: जी
1: और बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, अब वो फिजियोथेरेपी के बाद तो रिलीफ मिल जाता है, लेकिन उसके बाद हम घर में एक्सरसाइज से भी उसको निदान कर सकते हैं उस बीमारी का।
0: तो ये जो एक्सरसाइज बताई जाती है, व्यायाम बताए जाते हैं,
1: जी
0: क्या आप लोग बताते
1: हम
0: हैं?
1: लोग बताते हैं, एक्सरसाइज सिखाते हैं, तो एक्सरसाइज आदमी घर में करता रहेगा तो कभी भी दोबारा प्रॉब्लम नहीं होगी।
0: जी। डॉक्टर साहब, क्या फिजियोथेरेपी पहले भी होती थी?
1: हाँ, पहले ही बोलती थी, अब समय बदल गया, मशीनें आ गई हैं। अभी जैसे हम ट्रैक्शन लगाते हैं, किसी की लंबर प्रॉब्लम है, नस दबरी कमर पे, L4 L5 के पास अगर हमें ट्रैक्शन देना हो तो हम 30 35 किलो या 40 किलो वेट देना हो, अब घर पे यार वैसे बिना मशीन के भी पहले देते थे हम, कि हमें पता कि 40 किलो वेट खींचना है कैसे खींचना है, लेकिन आजकल मशीनें आ गई, मशीन में फिट कर दिया, ट्रैक्शन लगा दिया, मशीन खींचती रहती है अपने हिसाब से। तो
0: जी,
1: मशीनों का काम भी है, हमारा अपना भी है,
0: तो
1: बिना
0: ये एक
1: मशीनों
0: नई
1: का
0: चिकित्सा पद्धति
1: बहुत
0: है
1: अच्छी आ गई आज की डेट
0: जी,
1: में।
0: तो और उसमें अब क्या परिवर्तन हुए हैं?
1: परिवर्तन यही हुआ कि मशीनों से, मतलब मशीनें हमें हमें हम लोगों को बहुत रिलीफ मिल गया है, कि हमें अपने हाथ का काम नहीं करना पड़ता। ये हर किसी को, जैसे किसी को 30 किलो वेट देना है, पता चला हाथ से ज़्यादा खींच के वो 25 ही दे रहा है या ज़्यादा दे रहा है, तो मशीन पे फिक्स है कि उसको जितने किलो फिक्स कर देंगे उतना ही हम उसको वेट के हिसाब से हम ट्रैक्शन खींचते हैं। जैसे किसी का 60 किलो वेट है उसको ज़्यादा देना है, कोई बच्चा है 40 किलो वेट है, अगर महिला है उसको कम ट्रैक्शन देना, तो हाथ से भी देते हैं और उससे देते हैं। थेरेपी एक योगा होता है, जैसा योगा नहीं है ये पर्टिकुलर उसी चीज़ के लिए हम एडवाइज़ करते हैं कि जो जिस चीज़ में प्रॉब्लम होती हो। बाकी योगा एक्सरसाइज में तो सब कुछ आता है पूरा बॉडी का, लेकिन कोई अगर किसी चीज़ का, कोई भी शरीर का कोई अंग काम ढंग से नहीं कर रहा है, जैसे पैरालाइज की बात करते हैं, आज की डेट में पैरालाइज की बहुत ज़्यादा पेशेंट्स आ रहे हैं, क्योंकि बीपी हेमरेज होता है एक्सीडेंट के मामले से, या तो ब्लड प्रेशर बढ़ने से ब्रेन हेमरेज होता है और फिर पैरालाइज हो जाता है आदमी को। अब हमारे गाँव में, हमारे पहाड़ों में लोग क्या करते हैं, उसको तेल मालिश करते हैं और घर में सब बोलते हैं कोई तेल मालिश करिए ठीक हो जाएगा, लेकिन वो लोग कभी भी ठीक नहीं हो पाता है।
0: जी
1: तो उसका इलाज फिजियोथेरेपी है, तो फिजियोथेरेपी में हम लोग मालिश के लिए मना करते हैं, वो लोग मालिश करवाते हैं, हम लोग मालिश के लिए मना करते हैं, और फिजियोथेरेपी में 100% उसको 2 या 3 महीने में आदमी चलने फिरने लग जाता है।
0: जी अच्छा, लंबी बीमारी है डॉक्टर साहब किसी को, तो क्या वो फिजियोथेरेपी से ठीक हो सकता है?
1: 100% 100%
0: तो ऐसे में किन बीमारियों के लिए आप बताना चाहेंगे कि उसमें फिजियोथेरेपी उपयोगी है?
1: जैसे जैसे पैरालाइज की बात कर रहे थे हम लोग, जो बहुत सीरियस वाले मामले, क्योंकि जिंदगी लाइफ आदमी का एक मोड़ पे ऐसे आ गया कि उसके बाद बेड पे चलेगा, उसको यूरिन भी बेड पे करवा रहे हैं, हाथ पे पाँव पे बिल्कुल बिल्कुल भी जान नहीं होती और चल नहीं सकता है वो, तो उस स्थिति में हम लोग, जैसे हमारे पास आज के टेक्निकल के मामले में जैसे IFT टेंस होती है ना, तो उसको हम लगाते हैं, वो एक मशीन होती है घर पे जाके, छोटी सी मशीन होती है एडवाइस, उसको डिवाइस को लगा करके और उसको नर्व सिस्टम को मजबूत करता हो, साथ में एक्सरसाइज करते हैं, तो आदमी फिर 1 1.5 महीने में फिर बिठाना शुरू कर देते हैं, चलना शुरू हो जाता है, बहुत 2 3 महीने मतलब काफी ठीक हो जाता है, मतलब
0: जी
1: अपना दिनचर्या काम करना शुरू कर देता हो।
0: और भी किन रोगों में उपयोगी हो सकती है ये?
1: फिजियोथेरेपी तो मेनली हर जगह में उपयोगी, जैसे मैंने बताया कि जैसे आज की डेट में कमर में महिलाएं, जैसे हमारे घरों में काम करती हैं
0: जी
1: दिन भर, मतलब खड़े खड़े काम करते हैं, खड़े रोटी खड़े होके बनाना है, तो हम बैठ नहीं पाते हैं, उससे हमारे लंबर की जो लंबर में कैल्शियम आना शुरू जाता है और नर्व्स को दबाना शुरू करता है, तो हमारे पाँव में नीचे दर्द रहता है हमेशा, महिलाओं के ज़्यादातर महिलाएं क्योंकि घर में काम करती हैं, अगर पोछा मारना तो खड़े खड़े करते हैं, तो बैठते नहीं हो, तो हमारा हमारा दिनचर्या जब चेंज हो गया, इस वजह से क्या होता है कि लंबर प्रॉब्लम हो जाती है। आजकल लंबर प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है हमारे पास, जो पेशेंट आते हैं कमर दर्द की और गर्दन दर्द की सबसे ज़्यादा होते हैं, है ना, उसका कारण वही है कि हम लोग योगा नहीं कर पाते हैं, अपना बॉडी के अपना अपने लिए समय नहीं दे पाते हैं। अगर
0: जी
1: हम लोग हर आदमी अपने लिए सुबह 10 15 मिनट या और फिर एक्सरसाइज, तो मेरे 5 मिनट, योगा तो 1.5 घंटा 2 घंटा लगता है, लेकिन जो एक्सरसाइज टेक्निक करवा रही है, अगर 5 मिनट भी हमने अपने दे दिए तो हम पूरे मतलब 24 घंटे के लिए फिट रह सकते हैं।
0: डॉक्टर साहब, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जैसे बहुत सी बार शरीर में दर्द हो जाता है किसी भी पार्ट में, तो ऐसे में क्या हम फिजियोथेरेपी करवाएं उससे पहले?

0: प्राथमिक उपचार ले सकते हैं।
1: बिल्कुल ले सकते हैं। हमारे शरीर में किसी को कोई भी प्रॉब्लम होती है
0: जी
1: तो सबसे ज़्यादा हमारी पहले पल्स बढ़ जाती हैं। तो हमारे मदर फादर, हमारे घर में जो भी हो, हम अगर हमारे फादर कोई ड्यूटी जा रहा है, मदर ड्यूटी जाती हैं, बच्चे को अगर लगता है कि माँ तबीयत ठीक नहीं है, तो हम लोग पल्स लेना हर आदमी को आना चाहिए घर में।
0: जी
1: तो जो अंगूठा होता है हमारा, ये दाएं, अगर दम बाएं हाथ का अंगूठा, दाएं हाथ से आप 2-3 उंगलियों से किनारे से अंगूठे के पीछे दबा सकते हैं जहाँ पे घड़ी पहनते हैं, और वहाँ पे जब हम तिकुने में दबाएंगे तो हमारी फीलिंग होती है, नर्व सिस्टम जाता है और हमारी पल्स रेट शुरू हो जाता है चलना।
0: जी जी
1: तो अगर पल्स रेट जैसे हमारा नॉर्मली जो महिलाओं की 72 या नॉर्मल 68, 70, 72 के आसपास नॉर्मल होती है, लेकिन महिलाओं की 10 अधिक होती हैं तो उसे हम नॉर्मल मानते हैं, 82 के आसपास, और 60 साल से ऊपर अगर कोई पुरुष है उनके 60 से अगर आसपास आ रही तो उसे हम नॉर्मल मानते हैं।
0: जी
1: लेकिन
0: जी
1: इससे अगर कम ज़्यादा, बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, घटी हुई है, इसका मतलब आदमी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, शुगर बढ़ा है, कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो हमारे सबसे पहले हमारा पल्स रेट घट या बढ़ जाता है। तो
0: जी
1: ये सबसे देखने के लिए बहुत अच्छा तरीका है, और हर किसी को पल्स लेना आना चाहिए घर में। एक
0: जी
1: दूसरा मेरा मानना है कि CPR के बारे में, आज की डेट में अटैक बहुत ज़्यादा पड़ रहे हैं, और अभी कल की बात है, कोई चाय पी बना रहा था, घूम के आया, 1 घंटा घूमने के आने के बाद, और चाय पीने, उन्होंने चाय पत्ती डाल दी थी और उसके बाद वहीं पे नीचे गिर गया। जब तक चाय, उन्होंने देखा कि चाय अभी तक आया नहीं तो आदमी तब तक एक्सपायर हो गया था। फिर उन लोगों को कुछ पता नहीं था, हॉस्पिटल लेके गए तो 20 मिनट लग जाते हैं। तो जो हमारे पास गोल्डन आवर्स होते हैं 4 से 6 मिनट होते हैं, मतलब 4 से 6 मिनट के अंदर अगर किसी का हार्ट फेल हो गया, हम उसको रिवर्स कर सकते हैं, उसको
0: जी
1: बचा सकते हैं। तो वो कब बचा सकते हैं, अगर हमें घर वालों को नॉलेज होगा। तो उसमें हम सिंपल सा, मेरा मानना है ये CPR इसे जो हम बोलते हैं, हमारा घर का हर आदमी को पता होना चाहिए, आदमी को सीधे लिटा दें, और जो हमारा चेस्ट होती है तो चेस्ट को ऊपर से हम जो ब्रेस होते हैं हर किसी के, महिला पुरुष के, लेफ्ट और राइट में, तो हमारे जो हार्ट होता है लेफ्ट की तरफ होता है, ठीक ऊपर 20 सेंटर में वहाँ पे लेंगे, और 75 हमारा लेफ्ट की तरफ होता है, 25 हमारा राइट की तरफ होता है, मतलब बीच में। तो यहाँ पे हमने दोनों हाथ से जितनी ताकत है हमारे पास उसको, रिब्स को दबाएंगे वहाँ पे, हार्ट जहाँ पे हार्ड है ऊपर से दबाएंगे, और 1 मिनट में 30 से 100 बार दबाएंगे। और फिर अगर हमारा कोई परिवार का अपना है तो उसको माउथ टू माउथ ऑक्सीजन भी दे सकते हैं,
0: जी
1: और इसमें हम 3-4 बार लगातार करते रहेंगे जब तक एम्बुलेंस हमारी आ रही है, उनको भी फोन कर दीजिए। तब तक क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि दूसरे 2-3 मिनट के बाद आदमी रिवर्स कर जाता है, वो बच जाता है, उसको सांस अचानक, उसको जो हार्ट, जहाँ जो पंपिंग बंद हो रखा है, वो अचानक शुरू हो जाता है। ये हर किसी को आना चाहिए आज की डेट में।
0: जी
1: हम लोग स्कूलों में जाके भी ट्रेनिंग देते हैं, लेकिन हमारे इससे आपके प्रोग्राम से लोगों को जरूर पता चलेगा कि CPR के बारे में बचाया जा सकता है। हॉस्पिटल
0: जी
1: जाके नहीं बचाया जा सकता, लेकिन घर में उसको बचाया जा सकता है 100% उस
0: जी
1: आदमी को।
0: जी डॉक्टर साहब, हम बहुत सी बार देखते हैं कि शरीर में दर्द होने लगता है। अब शरीर में दर्द किसी भी पार्ट में हो सकता है, तो ऐसे में हमारे जो आम जनता है, जैसे महिला है या पुरुष है, ऐसे में हम लोग क्या कर सकते
1: उसमें हमें डॉक्टर्स के पास, फिजिशियन के पास जाना चाहिए। अगर शरीर में, पूरी बॉडी में पेन हो रहा है
0: हैं?
1: तो हमें दिखाना चाहिए। लेकिन ऐसा होता है कई बार, क्या होता है अगर कोई पर्टिकुलर कुछ एक जगह पे, हाथ पे एक तरफ जा रहा है, पाँव एक हाथ में, सर में एक तरफ जा रहा है, तो जैसे अर्थ से रिलेटेड आपको लगता है, अर्थ वाले को दिखाइए, फिजिशियन को दिखाइए, लेकिन डॉक्टर के पास जरूर दिखाना चाहिए पहले। मेनली लोगों को फिजियोथेरेपी के बारे में आज की डेट में बहुत कम लोगों को पता है। हमारे पास जो पेशेंट आते हैं, न्यूरो सर्जन पहले अपने आप देखते हैं, उसके ऑर्थोपेडिक सर्जन अपने आप देते हैं, या दवाइयाँ देते हैं। जब उन्हें लगता है कि सर्वाइकल में ऑपरेशन सक्सेस है नहीं, लंबर में तो सक्सेस है, सर्वाइकल में बहुत कम सक्सेस है, तो सर्वाइकल फिर हमारे पास ही भेजते हैं कि इनको ट्रैक्शन लगाइए। 1.5 से 2 महीने, 2-2 3-3 महीने तक हम ट्रैक्शन लगाते हैं, 7 किलो 8 किलो वेट, वो गर्दन की जो एक्सरसाइज, जो हड्डी जो नज़दीक आ जाती है, चिपक जाती है, उसमें गैप बनाने की कोशिश करते हैं, और उससे गैप बनने से क्या होगा कि वो रिलीज हो जाता है, और हाथ जो झंझनाहट है या चाय का कभी नहीं पकड़ पाता आदमी, वो चाय पीने लग जाता है, अपना काम भी दिनचर्या करने लग जाता है।
0: जी, तो फिजियोथेरेपी अगर कहें कि व्यायाम का दूसरा नाम है, कह
1: वही है,
0: सकते हैं?
1: कह सकते हैं, लेकिन फिजियोथेरेपी में हमें समय बहुत कम, कभी ने कहा हमें व्यायाम में, योगा में 1.5 घंटा 2 घंटा चाहिए होता है, लेकिन फिजियोथेरेपी में अगर 5 मिनट भी हमने अपने सीख के दे दिए पूरे शरीर के, तो 5 मिनट और पूरे शरीर के हम एक्सरसाइज कर सकते हैं।
0: तो बस इसमें एक विशेषज्ञ की निर्देशन भी ये सब किया
1: बिल्कुल
0: जाता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल जी,
0: जी डॉक्टर साहब, सूर्य प्रकाश भट्ट जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने फिजियोथेरेपी चिकित्सा पद्धति में कितनी सहायक विषय पर विस्तार से हमें जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी आप सेहत कार्यक्रम के अंतर्गत फिजियोथेरेपी चिकित्सा पद्धति में कितनी सहायक, इस विषय पर डॉक्टर सूर्य प्रकाश भट्ट से कल्पना पंकज की बातचीत सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का 13वां केंद्र है, FM 100.5 MHz पर। श्रोताओं, आपको एक बार पुनः याद दिला दें, रात्रि 9:15 पर स्पॉटलाइट और रात्रि 9:30 पर चर्चा का विषय है। ये दोनों कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। रात्रि 10 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम।

0: आपकी फरमाइश। रात्रि 8 बजे श्रीमती शुभ्रा कुकरेती से सुनिएगा अंग्रेजी वार्ता, विषय होगा अ बैलेंस बिटवीन राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं FM 100.5 MHz पर। सवेरे के 10 बजने वाले हैं, लीजिए सुनिए FM न्यूज हेडलाइंस।
1: ये आकाशवाणी है, अब आप नीता कांडपाल से न्यूज हेडलाइंस सुनिए। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री मेजर जनरल सेवानिवृत्त भुवन चंद खंडूरी का अंतिम संस्कार आज हरिद्वार में पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। सुबह 10:30 बजे देहरादून स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में सभी लोग उनके अंतिम दर्शन कर सकेंगे। मेजर जनरल खंडूरी के निधन पर राज्य सरकार ने आज सार्वजनिक अवकाश और 3 दिन का राजकीय शोक घोषित किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने जन सुरक्षा को देखते हुए रैबीज से संक्रमित लाइलाज बीमारी से ग्रस्त या अत्यधिक खतरनाक कुत्तों को पहली बार मौत का इंजेक्शन दिए जाने की अनुमति दी है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में नीट यूजी की दोबारा परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने टिहरी जिले के फाकोट में आयोजित क्षेत्र पंचायत समिति की बैठक में क्षेत्र के विकास कार्यों, जनहित योजनाओं और स्थानीय समस्याओं से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा की। राज्य सरकार ने जिला योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए प्रदेश के सभी 13 जिलों को विकास कार्यों के लिए कुल 1,018,20,60,000 रुपए की धनराशि आवंटित की है। प्रदेश में चार धाम यात्रा पूरे श्रद्धा और उत्साह के साथ जारी है। राज्य सरकार और पर्यटन विभाग के अनुसार अब तक 16,50,000 से अधिक श्रद्धालु चारों धामों के दर्शन कर चुके हैं। बागेश्वर जिले में लगभग 17,52,00,000 रुपए की लागत से 45 नाली भूमि पर एक अत्याधुनिक राज्य अतिथिगृह का निर्माण किया जाएगा। वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद उत्तराखंड में पेट्रोल, डीजल और LPG की निर्बाध आपूर्ति जारी है और प्रदेश में गर्मी का असर लगातार बढ़ता जा रहा है। मौसम विभाग ने हरिद्वार, देहरादून और उत्तरकाशी के आसपास के क्षेत्रों में आज और कल कहीं कहीं लू चलने की संभावना जताई है। इस बीच राजधानी देहरादून में कल अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया गया। आप सुन रहे थे न्यूज हेडलाइंस।
0: ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है FM 100.5 MHz पर। सवेरे के 10:02 हुए हैं, लीजिए सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे।

हाय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लम्हे प्रोग्राम। मैं हूं आपका आरजे चेतन। दोस्तों, आज के समय में व्यस्त जीवन शैली, बढ़ती महंगाई और इंटरनेट पर बढ़ती निर्भरता के कारण सेल्फ मेडिकेशन और सेल्फ डायग्नोसिस लोगों की आदत बन चुकी है। बिना किसी स्वास्थ्य विशेषज्ञ से सलाह लिए लोग फार्मासिस्ट को समस्या के लक्षण बताकर दवाई ले लेते हैं। हालांकि ये आदत गंभीर बीमारी को जन्म दे सकती है। आज हम इस लम्हे प्रोग्राम के माध्यम से बताएंगे कि किस तरह

0: उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
1: पारदर्शिता एवं जन कल्याण को प्राथमिकता देते हुए उत्तराखंड में लागू की गई समान नागरिक संहिता, नकल विरोधी कानून, भू कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून, अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम 2025 के माध्यम से प्रशासनिक व्यवस्था को किया गया और भी मजबूत।
0: मानस खंड मंदिर माला मिशन, श्री केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के पुनर्विकास एवं शीतकालीन यात्रा जैसी पहलुओं से पर्यटकों की संख्या बढ़कर पहुंची 6 करोड़ के पार।
1: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की डगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
2: लोक संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत इस समय आप सुन रहे हैं रक्षा बोराई के गाये कड़वाली लोकगीत।

रक्षापुराई के गायक कडवाली लोकगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से। आइए सुनते हैं इन्हीं के स्वर में कार्यक्रम का ये अगला कडवाली लोकगीत।

0: अभी आप रक्षा पुराई के गाए कड़वाली लोकगीत लोक संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत सुन रहे थे।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगू।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242।
1: ओ 870-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर।
0: FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। सुबह के 11 बजे हैं, आप सुनिए कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश।

नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं एफएम 100.5 आकाशवाणी देहरादून और मैं हूं आपकी उद्घोषिका सुहासिनी। लेकर आई हूं आपका फेवरेट प्रोग्राम जिसका नाम है व्हाट्सएप फरमाइश। तो बस भेज दीजिए अपनी पसंद के गीत के बोल, साथ में फिल्म का नाम और अपना नाम व पता। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7088000731। और इसी के साथ अब बढ़ते हैं पहले गीत की फरमाइश की ओर, जिसकी फरमाइश करता है हरियाणा से विनय मोहन खारवन, मीनाक्षी प्लोमा और डॉक्टर ईशानी। मजनू का टीला से श्रोता है कमल, मधु, सागर, उमंग, आकांक्षा मलिक और माही मलिक। मध्य प्रदेश से अशोक वर्मा, अर्चना, अनुज, आयशी, रमेश चंद्र, शेख मुसा भाईजान, राजकुमार बोडाना, संजय बामनिया, माया कान्हा और कृष्णा। जमानिया जिला गाजीपुर से फरमाइश करता है सुरेश जायसवाल, उर्मिला, दीपक, स्वाति, देव कुमार, आर्य कुमार और विपिन जायसवाल। साथी फरमाइश लिख भेजी है जिला रंगारेड्डी एकलव्य नगर से बिजली, वेंकटेश, श्यामला, आयांश, बेलसी, सियोना। और साथ ही फरमाइश करता है जिन्होंने अपनी फरमाइश लिख भेजी है मारहरा दरवाज़ा एटा से नबी हसन अब्बासी, शहनवाज अब्बासी, नवेद हसन, रसीद वारसी, सुहेल हसन अब्बासी, अनम अब्बासी और यशफ अब्बासी, साथ ही मुबीन, इशरत। और साथ ही फरमाइश करता है दिल्ली से तुलसी मस्कीन, वीना, चैतन्य मस्कीन, आशीष मस्कीन, चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु और रिधान खुराना। इन सभी श्रोताओं ने फरमाइश की है फिल्म याराना से इस गीत की।

पूरे उत्तराखंड में शुरू हो चुकी है जनगणना। पहले चरण में 25 अप्रैल से 24 मई 2026 तक प्रगणक द्वारा घर घर सर्वे किया जाएगा। आपकी सभी जानकारी पूरी तरह सुरक्षित और गोपनीय रखी जाएगी। कृपया सही और पूर्ण जानकारी दें, यही आपके क्षेत्र के विकास की नींव है। जनगणना 2027 आपकी भागीदारी, देश की प्रगति। ये सूचना जनगणना कार्य निदेशालय उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।

0: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
1: पारदर्शिता एवं जन कल्याण को प्राथमिकता देते हुए उत्तराखंड में लागू की गई समान नागरिक संहिता, नकल विरोधी कानून, भू कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून, अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम 2025 के माध्यम से प्रशासनिक व्यवस्था को किया गया और भी मजबूत।
0: मानस खंड मंदिर माला मिशन, श्री केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के पुनर्विकास एवं शीतकालीन यात्रा जैसी पहलुओं से पर्यटकों की संख्या बढ़कर पहुंची 6 करोड़ के पार।
1: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की डगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
2: पापा
3: लाइए
2: 3,000।
3: क्यों भाई?
2: मेरी पॉकेट मनी।
3: अरे अभी तो सिर्फ 2,000 ही कैश है।
2: ए पापा, बुलेट ट्रेन के जमाने में बैलगाड़ी चला रहे हो? डिजिटल पेमेंट चलाओ। है नहीं, हाँ सीधे UPI से पेमेंट करो, इट्स इजी।
3: अरे वाह, मुझे भी सिखाओ। अपने 1,000 ले जाओ,
2: अपना मोबाइल लाओ।
3: ले ले।
4: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
5: हर लेन देन अब है आसान।
6: जो लिसनर्स हमसे अभी जुड़े हैं उन्हें बताना चाहेंगे, कार्यक्रम चल रहा है व्हाट्सएप फरमाइश, और आप अपनी फरमाइश भेज सकते हैं 7088-000-731 पर। बढ़ते हैं श्रोताओं अगले गीत की ओर, जिसे सुनना चाहा है बेरड़ी से राजेश सोनी, कंचन ढोमने, गायत्री वैष्णवी, चंचल, अर्जुन और धीरज ने। साथ ही फरमाइश लिख भेजी है वड़िंगखेड़ा पंजाब से मिंटू, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा ने। टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा, स्वीटी छाबड़ा। करीमनगर से श्रोता हैं लक्ष्मी नारायण, विजय अभिनय और साई किरण। शेरवानी स्कूल गंजनवारा उत्तर प्रदेश से फरमाइश लिख भेजी है आफ्ताब अंसारी, रियाज, मोहम्मद कैफ, अनवर, लुबना अंसारी और आलिया अंसारी ने। किशोर नगर अमरावती से हीरामन शेंडे, शीला देवी और सिद्धार्थ गुड़ा ने। साथ ही फरमाइश करता है इंदौर मध्य प्रदेश से नारायण खर्चे, ललिता, गणेश, कार्तिक, परी, स्वाति, प्रयाग चौधरी, देविका चौधरी ने। उत्तम नगर दिल्ली से कमला रानी, बोधराज खोरवाल, गीतिका रानी, भानु प्रकाश। और साथ ही फरमाइश करता है नेहरू पार्क निजामाबाद तेलंगाना से अजीज भाई, मतीन भाई, शेख चंद, फारूक फूलवाले, सैयद खलील, मुबीन भाई, MD यासीन और मूसा करीम ने। अजीत कसाना, माया देवी, ऋतिक, आदित्य कसाना, ग्राम व पोस्ट लदावली से इन्होंने अपनी फरमाइश लिख भेजी है। साथ ही फरमाइश करता है श्री सुधाकर राजे जाधव, प्रशांत कुमार संचेत, सर्वद देशमुख, प्रथमेश, प्रणाली, सानवी और कल्पना देशमुख। ग्राम पंचायत कालेगांव जाफराबाद से इन्होंने अपनी फरमाइश लिख भेजी है। कुड़ी सेक्टर 5 सूर्यनगरी जोधपुर राजस्थान से श्रोता है रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित, गर्वी और हिमाक्ष। रविंद्र मोहन दास, आशा देवी, राघव कुमार, भानुप्रिया, अनुराग मोहन, मेघा राशि, माधुरी किरण, जिला किशनगंज बिहार से इन्होंने अपनी फरमाइश लिख भेजी है। तेलंगाना से मोहम्मद वहीद रुमानी, डॉक्टर मोहम्मद जमीर, मोहम्मद फजी, मोहम्मद जुनैद, जुबैर मुकरम, नोमान फुरकान, जाकिर और फजिल। फुलोंग निजामाबाद तेलंगाना से इन्होंने अपनी फरमाइश लिख भेजी है। और नर्मदा पार्क मंगलभेड़ा से अलीम मुजाहिद पटेल, नदीम पटेल। इन सभी श्रोताओं ने फरमाइश की है फिल्म दिलवाले से इस गीत की।

FM 100.5 MHz पर यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। सुबह के 11:17 हुए हैं। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम वर्ड्स ऑफ फरमाइश। अगला गीत सुनना चाहा है श्रोताओं मोहम्मद नासिर हुसैन पटेल, अमीना पटेल, ग्राम जखणगांव, अहमदनगर से। साथ ही फरमाइश लिख भेजी है व्हाइट फील्ड बेंगलुरु से भारत भूषण, अंजु श्रीवास्तव, दिव्यन्दु भूषण, संस्कृति और पौरुष ने। उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका खोरवाल और भानु प्रकाश। इसके अलावा जिनकी फरमाइश हम तक पहुंची है श्रोता हैं बुलंद शहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, प्रवीण अब्बासी, शहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान और अबान अब्बासी, योगेंद्र नायक, गीता नायक, निहारिका, सुशांत और सुरेश चौरसिया, जिला कासगंज, यूपी से। इन्होंने अपनी फरमाइश लिख भेजी है। साथ ही फरमाइश लिख भेजी है जवाहर नगर दुर्ग से आरसी कामड़े, करुणा, मीना, अश्विनी और विपुल कामड़े ने। जमशेदपुर से श्रोता है अरजिंदर भाटिया, अंजल भाटिया, पप्पी, सोनू। संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति और ओजस्वी। साथ ही फरमाइश लिख भेजी है विरम गांव गुजरात से अजीत भावसार, प्रमिला, भावेश, सनी और जैमीन भावसार ने। मुजफ्फरनगर से सलमान अख्तर, पोषण बंछोर, चंद्रकिरण, प्रीति और छाया बंछोर, ग्राम पहरा दुर्ग छत्तीसगढ़ से इन्होंने अपनी फरमाइश लिख भेजी है। हनुमानगढ़ राजस्थान से रजाक मोहम्मद, समीम बेगम, इमरान खान और इरफान खान। रघुवीर नगर से श्रोता है दिलावर, हसीना बानो, एलिजा और लड्डू। सहारनपुर से सोनाली, आशा नारंग और सुरेश नारंग। रघुवीर नगर से दिलावर और साथ ही फरमाइश लिख भेजी है कस्बा गन्नौर यूपी से फारूक अली खान, फैजी फराज, फरीन, फरहान, फारिया और ताहिरा। दुबिहा निवादा जिला गाजीपुर से श्रोता है प्रतीक, रोशनी, प्रांजल राय। कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से ओम प्रकाश, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय और हैप्पी राय। तेलंगाना चौटुपल से कस्तूरी रमदू, उमा देवी, पृथ्वी और नारायण। इन सभी श्रोताओं ने फरमाइश की है फिल्म चांदनी से इस गीत की।

0: खुशहाल।
1: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
2: पारदर्शिता एवं जन कल्याण को प्राथमिकता देते हुए उत्तराखंड में लागू की गई समान नागरिक संहिता, नकल विरोधी कानून, भू कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून, अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम 2025 के माध्यम से प्रशासनिक व्यवस्था को किया गया और भी मजबूत।
1: मानस खंड मंदिर माला मिशन, श्री केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के पुनर्विकास एवं शीतकालीन यात्रा जैसी पहलुओं से पर्यटकों की संख्या बढ़कर पहुंची 6 करोड़ के पार।
2: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की डगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
3: यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। FM 100.5 MHz पर सुबह के 11:25 हुए हैं। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश। अगले गीत की फरमाइश हमें लिख भेजी है सागर लखनादौन जिला सिवनी मध्य प्रदेश से लाडली जी चौबे रिमझिम और सक्षम चौबे ने। गणेश चौक छिंदवाड़ा से माही दुबे, पलक मधुर दुबे, सतीश लाला जी और राजेंद्र दुबे। अल्ताफ हुजरे, सैफुल्ला सबाहत, किरत हुजरे और रेहान शेख सांगली जिले के जज शहर से इन्होंने अपनी फरमाइश लिख भेजी है। सतीश अनेजा, विमला अनेजा चंडीगढ़ से साथ ही फरमाइश लिख भेजी है। सूरज वर्मा, ऋषभ कनक और भावना रिंग रोड नर्मदा नगर मध्य प्रदेश से। दादरी गेट भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल, किरण, कपिल, कुणाल मेहरा। लोरमी चचेड़ी छत्तीसगढ़ से श्रोता है कमलकांत मरावी, प्रमिला नेहा, पुष्पराज और ऋषभ मरावी। करीमनगर से लक्ष्मी नारायण साथ ही फरमाइश लिख भेजी है। गांव नधाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर जसी, सीता और गीता। विजय मोहन खारबन, मीनाक्षी प्लोमा और हरियाणा से इन्होंने अपनी फरमाइश लिख भेजी है। डुमराव बिहार से डॉक्टर W अंसारी, सोनम अदीबा, दानिश अंसारी।

श्रद्धानंद आर्य, अभयनंद आर्य और परमानंद आर्य। सलीमपुर बक्सर से राज एस डी अंसारी और आसमा अंसारी। संतोष वसाने, ऋषिकेश अनिकेत, उषा वसाने, सागर कटक, विशाल, सोनाली, समर्पण और भक्ति कबली, तिरुपति नगर, नांदुरा, महाराष्ट्र से इन्होंने अपनी फरमाइश लिख भेजी है। आसिफ चौधरी, बेगम रेहाना, अरताफ, अदीब, कादिर चौधरी, स्योहारा जिला बिजनौर से, पाकुड़ झारखंड से श्रोता है उत्तम कुमार भगत, श्वेता किसुतासु, अर्णवानंद, सत्यवानंद, मुन्ना भगत और गुटी भगत। गांव जाखोद राजस्थान से फरमाइश करता है शंभुदयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत सुंदरलाल, योगेश कुमार, दीपक कुमार और कुमारी पूजा खटक। तेलीपारा बिलासपुर छत्तीसगढ़ से गुणवंत श्रीवास, करुणा, आयुष, विवेक, सुमित, सोमू, मानस और अनिता राज। नबी हसन अब्बासी, शहनाज अब्बासी, नवीर हसन, रसीद वारसी, सुहेल हसन, सिकंदर, मुबीन अब्बासी, मारहरा दरवाजा एटा से इन्होंने अपनी फरमाइश लिख भेजी है। मेन रोड तेलहारा से प्रकाश पुरहकर, नर्मदा और सुजाता। उत्तम जमदाड़े, स्वराज जमदाड़े, हनुमान बोड़खे, श्रीमती नंदा बोड़खे, शाहजी बोड़खे, अंबेडकर चौक वकोड़ी से इन्होंने अपनी फरमाइश लिख भेजी है। सीताराम कांगड़ा, बबीता, निखिल, तन्वी, अंकित, एकता कलोनी, रोहतक, हरियाणा से इन सभी श्रोताओं ने फरमाइश की है फिल्म आंधी से इस गीत की।

कार्यक्रम वर्ड्स ऑफ फरमाइश प्रसारित किया जा रहा है एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से। अगला गीत सुनना चाहा है जिला रंगारेड्डी तेलंगाना से कानूगुला गोपाल, महेश्वरी प्रवालिका और विष्णुवर्धन ने। उदयपुर से श्रोता है रमेश भारती, विनीत मिथिल। राजस्थान से धर्मेंद्र छिपा, कपिल, ईशान और पूजा। छत्तीसगढ़ से फरमाइश लिख भेजी है छनूलाल श्रीवास, अनिता पुष्पा, अंजू योगिता और रजन साहू ने। इसके अलावा जिनकी फरमाइश हम तक पहुंची है श्रोता हैं धनौरी तेलीवाला से निसार नौशाद, आलिया और आयान, कानूगुला महेश्वरी, करताल से इन्होंने अपनी फरमाइश लिख भेजी है मंगल जनागल राही, श्रीमती रोशनी, अंकुर जनागल, इंदु, डॉक्टर सुनील जनागल, एमडी पत्रोड़ा से। साथ ही फरमाइश लिख भेजी है सब्जी मंडी बुलढाणा से शबीर हुसैन, शहजाद, मुज्जू बाबा, आयजानम और मुदसर हुसैन ने। इसके अलावा जिनकी फरमाइश हम तक पहुंची है श्रोता हैं रोजी कौर मन्नान से, सैयद मसरूर, शाइना हसन, अक्सा, नाजिया, आफिया, इब्राहिम सद्दाम और अदीब हसन सहारनपुर से। साथ ही फरमाइश लिख भेजी है अनंता भगत, अरुणा, चेतन, सुलोचना भगत, पूना जंक्शन, मस्तानपुरा से, नर्मदा पार्क मंगलवेड़ा से अलीम मुजाहिद और नदीम, मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल सीमा, ग्राम दुलापुर, उत्तर प्रदेश से इन्होंने अपनी फरमाइश लिख भेजी है। डी अशोक कुमार, अविका, जीविका, शानू कुमार, गणेश, अविका आर्ट, श्रीरामपुर से इन्होंने अपनी फरमाइश लिख भेजी है। दिलीप, हर्षा, अक्षय, रुद्रा, राहटगांव कैंप, अमरावती, महाराष्ट्र से, दतरंगी से भागवत, शांति देवी, लीलावती, विनीता और रुद्र वर्मा, नासिर शेख, नाजिर नासिर, साजिद शाहिद, जुनेद, सबीहा, मिखाइल, महाराष्ट्र से इन्होंने अपनी फरमाइश लिख भेजी है। बबलेश पवार, डैनी, मनीष पवार, दिनेश चौहान, बाबूराम, जयपाल, गांधी चौक वार्ड में राजस्थान से। इन सभी श्रोताओं ने फरमाइश की है फिल्म रोटी से इस गीत की।

श्रोताओं, बढ़ते हैं अगले गीत की फरमाइश की ओर, जो हमें लिख भेजे हैं उत्तम नगर दिल्ली से जॉन सीना, बी आर टेलर और सुमन सरिता ने। साथ ही फरमाइश लिख भेजी है राजस्थान से हर्षिता परमेश्वर मीनाक्षी कान्हा, बिहार से मीनाकारी पुंजराज आरती और जयश्री, कलनौर से श्रोता है नरिंदर किरण नितिन और मयंक, कर्नाटक से फरमाइश लिख भेजी है संदीप उदबाले, आकाश विकास करण मंगला उदबाले ने। इसके अलावा जिनकी फरमाइश हम तक पहुंची है श्रोता है आनंद देवगढ़, अवधुत वदी यवतमाल महाराष्ट्र से। इसके अलावा जिनकी फरमाइश हम तक पहुंची है श्रोता है बिजनौर से मोहम्मद वकार फरीदी, सितारा, नसरीन परवीन, रोजी परवीन और बिट्टू, भटिंडा रोड मंडी डबवाली से राजेंद्र नारंग, अंजू मोहित और तानिया नारंग, कृष्णा कॉलोनी हांसी से सुभाष योगी, सुशील बब्बू डब्बू, राजू मिगलानी, यलेंदु तेलंगाना से श्रोता है राजेश खन्ना, अनीता राज खन्ना, सुनीता राज, भानु राज, अमित खन्ना, ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेहराज जहां, आजाद नगर लक्सर, हरिद्वार से इन्होंने अपनी फरमाइश लिख भेजी है। मामलवाड़ी महाराष्ट्र से श्रोता है सोपान ताड़े, बसंत राव और निवृत्री। साथ ही फरमाइश करता है वनस्थलीपुरम हैदराबाद से दोरनाला बालाजी, श्रीमती रेणुका, बद्री हिरणी, लोकेश और साई की कृपा, मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार और नरगिस खातून, जिला मुरादाबाद, ग्राम धुलापुर, उत्तर प्रदेश से इन्होंने अपनी फरमाइश लिख भेजी है। शाहूनगर यवतमाल महाराष्ट्र से श्रोता है राहुल मनवर, सरला विशाल, चेतन रोशनी और बेबी प्रियांशी, प्रेम सिंह जोड़ा, मंजीत कौर जोड़ा, करणवीर करण, दीपिंदर वरिंदर, कुलदीप सुमन, एकम दमन और अभिजोत भटिंडा पंजाब से इन्होंने अपनी फरमाइश लिख भेजी है। इन सभी श्रोताओं ने फरमाइश की है फिल्म मुद्दत से इस गीत की।

कार्यक्रम वर्ड से फरमाइश प्रसारित किया जा रहा है एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से। बढ़ते हैं अगले गीत की ओर, जिसे सुनना चाहा है गोरैया जालंधर से। संदीप मकार, मनोहर लाल गांधी, धर्मवीर कमल साहनी और साथी फरमाइश लिख भेजी है तेलंगाना से भवानी वेंकट मिथुन महादेव, उत्तर प्रदेश से ममता कुणाल, अजमेर शरीफ से सैयद आलम हाशमी, असद अरहम आलम हाशमी। इसके अलावा जिनकी फरमाइश हम तक पहुंची है श्रोता हैं कविता महोबिया, विजय विशाल, सोनू मोनू रानोर, सपना शिविकल सलोनी और पेंटर बाबू, रामगंज खंडवा मध्य प्रदेश से इन्होंने अपनी फरमाइश लिख भेजी है। छत्तीसगढ़ मुंगेली से मोहम्मद इसहाक, खतीजा बेगम, मोहम्मद अशफाक, आफरीन कौसर, मोहम्मद अल्ताफ और नीलोफर फातिमा। साथी फरमाइश लिख भेजी है श्रोता हैं आबाद खान, नबील, आरफा, इल्मा, एसलम सैफी, मास्टर जाहिद अली, मीरा सराय बदायूं से। साथी फरमाइश लिख भेजी है नर्मदा पार्क मंगलवेड़ा से अलीम मुजाहिद और नदीम ने। गांव गाला जिला अम्बाला हरियाणा से श्रोता है राजेंद्र कुमार, मलकीत और राघव। छत्रपति संभाजीनगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप, राशि और श्रीमती शीतल राजेश। हरियाणा से बंसीलाल संधु। इसके अलावा जिनकी फरमाइश हम तक पहुंची है श्रोता है गगनदीप थांदी, तृप्ता कुमार थांदी, डॉक्टर प्रियंका, डॉक्टर प्रशांत, प्रियाम, वामिका और वाणी थांदी। जिला नवाशहर पंजाब से इन्होंने अपनी फरमाइश लिख भेजी है। लाल चलोत्रा, सुनीता, शम्मी, रजनी, आकाशदीप, अनहद और गुरशब्द। गांव कैरो जिला तरन तारण पंजाब से इन्होंने अपनी फरमाइश लिख भेजी है। साथ ही श्रोता है बगेरा दुर्ग से संतोष, सार्थक, समर्थ और शौर्य नामदेव। फुलाई नगर बीड़ महाराष्ट्र से बाला प्रसाद करवा, गीतांजलि, आकाश और आकांक्षा, समशुल कमर राही, शाही फातिमा, अदनान, फैजान, अनु, उस्मान अंसारी, गंज चुंडवारा से। इन सभी श्रोताओं ने फरमाइश की है फिल्म सीआईडी से इस गीत की।

श्रोताओं, अब बढ़ते हैं कार्यक्रम में आखिरी फरमाइश की ओर, जो हमें लिख भेजी है छत्तीसगढ़ से रिजवान, आयशा, सबीहा, अनस और रेहान ने। साथी फरमाइश लिख भेजी है पौड़ी से उमा महेश्वरी, सोनू मोनू, राहुल, जलालाबाद वेस्ट से सूरज, पूनम, विशाल और दिशानी, जलगांव जंक्शन से दिनेश काले, वंदना, डॉक्टर सहानुभूति चक्रधर, आदेश कुमार, प्रोफेसर वसुधा वज्रसेन ने, रानीगंज बंगाल से रवि और इंदर, शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से मुन्ना भाई, पिंकी, आर्यन, कृष्णा और पीहू, अशोक दले, सविता, अनिकेत, रोहिणी, ऋषिकेश, जीविका, सोनिका, अजय, करिश्मा, अविका, कुम्हारगली श्रीरामपुर से इन्होंने अपनी फरमाइश लिख भेजी है, वडाली देशमुख से राजेश, शिवसागर, इंद्रताई, छकुलीताई, खांडवी बुढ़ाना से दीपाली रामधाड़े, सुराज रामधाड़े, सुनैना और तनुज, राजेश वर्मा, मंजू, निशांत, कौशिकी, दीपाली, युवान और आरके राजा, लाल कुर्ती, रुड़की कैंट से इन्होंने अपनी फरमाइश लिख भेजी है, रामपुर से भाई रफत साहब, सईद भाई, राशिद भाई, असद भाई, मोताला बाजार से बबलू ठेकेदार, शेख शकीर, शेख वजीर और सोहिल शेख। इसके अलावा जिनकी फरमाइश हम तक पहुंची है श्रोता हैं गुरविंदर सिंह पांधा, इंद्रजीत, मनवीत, मनविंदर

सिंह, जीएस रामगढ़िया, फ्रेंड्स कलोनी करनाल से इन्होंने अपनी फरमाइश लिख भेजी है। हरियाणा से ईश्वरदयाल काम्भोज, लाजवंती भव्या, अमित कुमार, पुनीत काम्भोज और मेघिल। साथ ही फरमाइश करता है रविन्द्र मोहनदास, आशा देवी, राघव, भानुप्रिया, अनुराग, मेघा, माधुरी। जिला किशनगंज बिहार से इन्होंने अपनी फरमाइश लिख भेजी है। इन सभी श्रोताओं ने फरमाइश की है फिल्म राम तेरी गंगा मैली से इस गीत की।

0: इसी अंतिम गीत के साथ हमारा आज का कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश यहीं पर संपन्न होता है। FM 100.5 MHz पर यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। दोपहर के 12 बजे हैं, अब आप सुनेंगे समाचार जिन्हें आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोम में इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। दोनों नेता भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे के लिए सहयोग बढ़ाने पर चर्चा और वर्ष 2025 से 2029 तक संयुक्त रणनीतिक कार्रवाई योजना की समीक्षा करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार, रक्षा, परिवहन, समुद्री सुरक्षा, बंदरगाह संबंधी सहयोग और स्वच्छ ऊर्जा सहित प्रमुख क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज क्विरिनल पैलेस में इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेला से मुलाकात करेंगे, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया जाएगा। आज के कार्यक्रमों में प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ताएं, प्रेस वक्तव्य, समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान, द्विपक्षीय बैठकें और खाद्य एवं कृषि संगठन का दौरा शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी मोरस निग्रा ब्लैक मलबरी का पौधा भी लगाएंगे। ये एक ऐसी प्रजाति है जो अपने पाक, औषधीय और सांस्कृतिक महत्व के कारण भारत और इटली को प्रतीकात्मक रूप से जोड़ती है। रोम से सुपर्णा भाटिया।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वो इटली की प्रधानमंत्री के साथ होने वाली बैठक को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि दोनों के बीच बातचीत में मुख्य रूप से भारत इटली संबंधों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि रोम पहुंचने पर उन्हें प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ रात के खाने पर मिलने का अवसर मिला, जिसके बाद उन्होंने मशहूर कॉलिसियम का दौरा किया। उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं ने कई विषयों पर अपने विचार साझा किए। प्रधानमंत्री ने इटली के प्रसिद्ध चित्रकार जियांपोलो टोमासिट्टी की भारतीय संस्कृति पर किए गए कार्यों की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि कलाकार ने इटली के रोम दौरे में वाराणसी पर बनी अपनी विशेष पेंटिंग प्रस्तुत की। प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री टोमासिट्टी का भारतीय संस्कृति के प्रति प्रेम 4 दशकों से अधिक पुराना है। एक अन्य पोस्ट में श्री मोदी ने भारतीय नृत्य शैलियों के प्रति 5 इतालवी कलाकारों के प्रेम की भी प्रशंसा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज सियोल में दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री आन ग्यू बैक से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और तकनीकी सहयोग में साझा प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने भारत दक्षिण कोरिया रक्षा, रक्षा उद्योग और रणनीतिक सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि दोनों देशों ने रक्षा साइबर सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौतों का आदान प्रदान किया। इससे पहले श्री राजनाथ सिंह ने राष्ट्र की सेवा में सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आज बीजिंग में द्विपक्षीय संबंधों, ईरान यूक्रेन संघर्ष और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सहित प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर बातचीत की। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वार्ता से बीजिंग और मॉस्को के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूती मिलेगी और संयुक्त राष्ट्र, दक्षिण अफ्रीका परिषद और ब्रिक्स जैसे मंचों के माध्यम से समन्वय बढ़ेगा। ये बैठक अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चीन यात्रा के कुछ ही समय बाद हुई, जहां उन्होंने शी जिनफिंग से क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर चर्चा की थी। पश्चिम बंगाल सरकार ने महिलाओं के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए 3,000 रूपए की मासिक वित्तीय सहायता की अन्नपूर्णा योजना अधिसूचित कर दी है। महिला और बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग की ये योजना 1 जून से प्रभावी होगी। पंजाब पुलिस ने दुबई स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ तस्करी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है, जो सीमावर्ती राज्य पंजाब और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मादक पदार्थों की तस्करी के लिए अबुधाबी से काम कर रहा था। अभियान के दौरान पुलिस ने 14 किलोग्राम मादक पदार्थों के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। आगे की जाँच जारी है। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम भारत में भीषण गर्मी को देखते हुए दिल्ली, पंजाब और हरियाणा के कई हिस्सों में लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया गया है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज 0.35% की गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स 75,157 पर जबकि निफ्टी 23,611 पर कारोबार कर रहा था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Anuja Kumar. Prime Minister Narendra Modi today said that he is looking forward to his meeting with his Italian counterpart Giorgia Meloni later today. He expressed hope that the talks between them will focus on strengthening India-Italy relations. In a social media post, Mr. Modi said that upon landing in Rome, he had the opportunity to meet Prime Minister Meloni over dinner.

0: followed by a visit to the iconic Colosseum. He said both leaders exchanged perspectives on a wide range of subjects. The Prime Minister added that today's talks will continue their conversation on boosting India-Italy friendship. Meanwhile, PM Modi will hold talks with his Italian counterpart, Giorgia Meloni, and President Sergio Mattarella, and discuss with them ways to boost India-Italy cooperation. PM Modi's visit will focus specially on the India-Middle East-Europe Economic Corridor, or IMEC. The Joint Strategic Action Plan 2025 to 2029 will also be reviewed. Mr. Modi will also be visiting the headquarters of the Food and Agriculture Organization, strengthening India's commitment to multilateralism as well as global food security. India-Italy ties have expanded with unprecedented momentum in recent years and have now reached a decisive stage. In a joint article written by Prime Minister Narendra Modi and his Italian counterpart Giorgia Meloni, the two leaders highlighted that relations between the countries have evolved from a cordial friendship into a special strategic partnership rooted in the values of freedom, democracy, and a shared vision for the future. The leaders noted that at a time when the global order is undergoing profound changes, the India-Italy partnership is being guided by regular exchanges at the highest political and institutional levels. They said the partnership is acquiring a new dimension by combining the economic dynamism, societal creativity, and centuries-old civilizational wisdom of both nations. The two leaders said their cooperation reflects a shared understanding that prosperity and security in the 21st century will depend on the ability of nations to innovate, manage energy transitions, and strengthen strategic sovereignty. Defense Minister Rajnath Singh today held a meeting with his South Korean counterpart, An Ju-bak, in Seoul. During the meeting, they discussed ways to further deepen India-South Korea defense industry, and strategic cooperation with a shared commitment towards regional peace, stability, and technological collaboration. In a social media post, Mr. Singh said it was a highly productive meeting as India and South Korea exchanged agreements on promoting defense cyber cooperation. The MOU was exchanged between the National Defense College of India, the Korea National Defense University, and UN Peacekeeping Cooperation. The minister said that he is looking forward to strengthening the special strategic partnership between the two nations. In Bangladesh, an assistant security protocol officer at the Assistant High Commission of India in Chattogram has been found dead at the mission premises in the Kulshi area. Police said the incident occurred yesterday morning. The deceased has been identified as 35-year-old Narinder, a resident of Haryana in India, who was serving at the mission. Police Commissioner Hassan Mohammad Shaukat Ali said no apparent abnormalities were found during the initial examination. He added that the exact cause of death will be known after the autopsy report. The Assistant High Commission of India is in touch with the family to arrange the repatriation of the mortal remains. Chinese President Xi Jinping and Russian President Vladimir Putin held talks in Beijing today, focusing on bilateral relations and key global issues, including Iran, the Ukraine conflict, and international trade. China's foreign ministry said the talks would deepen the strategic partnership between Beijing and Moscow and enhance coordination through forums such as United Nations, SCO, and BRICS. Both nations also highlighted growing cooperation in trade, energy, and security with bilateral trade. India Meteorological Department IMD has issued orange color alert for heat wave to severe heat wave conditions over Delhi, Punjab, Haryana, and Chandigarh today. The weather agency has issued a red color alert over Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, and Vidarbha during the day. IMD has said that heat wave conditions are expected over Himachal Pradesh, Uttarakhand, Rajasthan, Southwest Bihar, and Odisha for next 2 days. And that is the end of this news bulletin.
1: FM 14.5 MHz पर यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। दोपहर के 12:10 हुए हैं। अब सुनिए न्यूज हेडलाइंस।
2: ये आकाशवाणी है। अब आप नीता कांडपाल से सुनिए न्यूज हेडलाइंस। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री मेजर जनरल सेवानिवृत्त भुवन चंद खंडूरी का अंतिम संस्कार आज हरिद्वार में पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जा रहा है। उनके निधन पर राज्य सरकार ने आज सार्वजनिक अवकाश और 3 दिन का राजकीय शोक घोषित किया है। प्रदेश में गर्मी बढ़ने के साथ ही जंगलों में आग लगने की घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं। राज्य में 15 फरवरी से शुरू हुए फॉरेस्ट फायर सीजन के दौरान अब तक 295 स्थानों पर आग लगने की घटनाएं दर्ज की गई हैं, जिनमें 239.47 हेक्टेयर वन क्षेत्र प्रभावित हुआ है। सर्वोच्च न्यायालय ने जन सुरक्षा को देखते हुए रैबीज से संक्रमित लाइलाज बीमारी से ग्रस्त या अत्यधिक खतरनाक कुत्तों को पहली बार मौत का इंजेक्शन देने जाने की अनुमति दी है। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने टिहरी जिले के फाकोट में आयोजित क्षेत्र पंचायत समिति की बैठक में क्षेत्र के विकास कार्यों, जनहित योजनाओं और स्थानीय समस्याओं से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा की। राज्य सरकार ने जिला योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए प्रदेश के सभी 13 जिलों को विकास कार्यों के लिए कुल 1,018,20,60,000 रुपए की धनराशि आवंटित की है। प्रदेश में चारधाम यात्रा पूरे श्रद्धा और उत्साह के साथ जारी है। राज्य सरकार और पर्यटन विभाग के अनुसार अब तक 16,50,000 से अधिक श्रद्धालु चारों धामों के दर्शन कर चुके हैं। बागेश्वर जिले में लगभग 17,52,00,000 रुपए की लागत से 45 नाली भूमि पर एक अत्याधुनिक राज्य अतिथि गृह का निर्माण किया जाएगा। वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद उत्तराखंड में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की निर्बाध आपूर्ति जारी है और प्रदेश में गर्मी का असर लगातार बढ़ता जा रहा है। मौसम विभाग ने हरिद्वार, देहरादून और उत्तरकाशी के आसपास के क्षेत्रों में आज और कल कहीं कहीं लू चलने की संभावना जताई है। इस बीच राजधानी देहरादून में कल अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया गया। आप सुन रहे थे न्यूज हेडलाइंस।
1: यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है, FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर। दोपहर के 12:12 हुए हैं। आप सुनिए कार्यक्रम सुगम संगीत, जिसके अंतर्गत अब आप सुनेंगे योगेश खेतवाल के गाए भजन। तबला पर संगत कर रहे हैं अंकित कुमार, हारमोनियम पर संगत कर रहे हैं शुभम सुहाते।

कार्यक्रम सुगम संगीत के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे योगेश खेतवाल के गाए भजन। तबला पर संगत कर रहे थे अंकित कुमार। हारमोनियम पर संगत कर रहे थे शुभम सोहाते। FM 100.5 MHz पर यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। दोपहर के 12:30 हुए हैं। आप सुनिए कार्यक्रम जनानों का वास्ता।

हमारे संदन ही इन्नी काम न च बणियों। आजकल गर्म बिंडिया होने लगे च तो अपन अपने कुटुंब रिका ध्यान दिया, खास कर एक स्कूलिया नौनियालो। कुछ स्कूलों को तो छुट्टी पड़ गए न और कुछ को पढ़ वाले छन, तो ध्यान रखिया किला कि गर्म बिंडिया होने लगे च। ये मौसम में बच्चों थे यन खाणो दिन, जैसे जो यह गर्मी पड़ने च ना यहाँ का प्रभाव कम पड़, यानी कि हल्कू और पौष्टिक ताज़ा ठंडक तक पहुँचाने वाले खाण को अपन नौनियाल तय दियावा और दगड़ में सरा कुटुम्बर थे भी जरूर दें, या न कि नौनियाले नौनियाल थे। जन की नींबू पैण वे आई छाँच मट्ठा बेलक शरबत और फलों में रसवाल फल तरबूज खरबूजा आदि आजकल तो बड़े बड़े को फल फूल बाजारों में मिल जन। ध्यान रखें यूं फल फूल तो पहले भला करे के धोए दिन और नौनियालों को हाथ भी सुंदर करे धोणो तब खाण चाहिए। और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा दही के और बेलक शरबत छाँच जरूर बार बार दिन चाहिए। और हाजमा को कचुपा को जीरक लूण पीस दिया और वह तक में जरा बुरकी दिया, जैसे कि आज कि यू खाणो फल फूल जल्दी से हजम भी हो जाए। और सभी चीज़ों तन घरम बनाया और खाया, बाजार का तीखा मरचणिया खाणो आजकल कते नहीं खाण। दगड़ो खान पाना दगड़ ही दुपहरमा अनावश्यक बिना कामक बहर नहीं आड़ चाहना, और अगर जरूरी चिल कि जरूरी भी हो ही जा घर में काम तो मुड़मा सूती कपड़ा जरा गिलू सिकोर दिया और बांध दिया और पानी की बोतल अपर दगड़ जरूर ले जाया, किले कि गर्म माँ बार बार गल सुकड़ो रहें गिचू पाणो रहें तो गुड़ गुड़ पानी पीण चाहो चो। और सबसे बलो तो यंच कि रुड़िया दिनों माँ जनी नान दिनों छुट्टी पाड़ तने अपना डब्बा डब्बा उठाई और छाड़ चल गया गाँव वक ठंडी हवा ठंडी पाणो। तभी तो हम बार बार एक बड़े धे लगंदा कि अपर घर के कूड़ बाड़ियों को देख रेख करण चाहो, जैसे क्या कि बगत आण पर हम वक जे सकदा। तो दगड़ो अब ईद की खा रही और आज कार्यक्रम का बाबत आप तो बता दें कि रंत रेबार और छुई बतों का दगड़ ही वे बनो एक गढ़वार्ता आप खातिर लही च पहाड़ मा बालिका शिक्षा। वार्ताकार छन श्रीमती सिमरन कंडवाल। वार्ता दगड़ो हम घड़े में पेटोला पहलिन कर दा कि भुवनेश्वरी का गयों गढ़वली लोकगीत सुन दा, तो आवा सुन दा ये लोकगीत है।

0: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन के नए कीर्तिमान।
1: पारदर्शिता एवं जन कल्याण को प्राथमिकता देते हुए उत्तराखंड में लागू की गई समान नागरिक संहिता, नकल विरोधी कानून, भू कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून, अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम 2025 के माध्यम से प्रशासनिक व्यवस्था को किया गया और भी मजबूत।
0: मानस खंड मंदिर माला मिशन, श्री केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के पुनर्विकास एवं शीतकालीन यात्रा जैसी पहलुओं से पर्यटकों की संख्या बढ़कर पहुंची 6 करोड़ के पार।
1: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की डगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
2: विभिन्न रेवारों का दगड़ी आपन गढ़वाली लोकगीत सुनो। और बयाल उत्तराखंड का पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद खंडूड़ी के निधन से सर्य देश मां शोक की लहर च। और खंडूड़ जी का निधन होने से उत्तराखंड की राजनीति का एक युग समाप्त हो गया है। सरा आकाशवाणी के कुटुंबर की छाड़ बटे हम उनते विनम्र श्रद्धांजलि देना था। और अब कार्यक्रम थे अग्नि सरकंदा और भेबंदो आपा कौन पटाना लग्या था एक गढ़वार्ता विशेष पहाड़ माँ बालिका शिक्षा वार्ताकार छन श्रीमती सिमरन कंडवाल। तो आवाज सुनदा ई वार्ता थे।
3: एक सुंदर पर्वतीय राज्य च जैते देवभूमि बुले जाम यख की प्राकृतिक सुंदरता नदी जंगल और यखक रोतेलू पहाड़ पूरे देश मा प्रसिद्ध च। प्राकृतिक सुंदरता जितना सुंदर च उतना ही सुंदर और मयल्द यखक मनखी छन। उत्तराखंड का पहाड़ी मूल रहवासी तय मेहनती और ईमानदार मने जाम। पहाड़ मा पहाड़ जन बढ़ पुड़ दो सुबेर बेटी बेखन तकन काम कन पुड़ दो। पहाड़ मा रहवास कन वन मनखियों मा यखक महिला बहुत मेहनती हुनन। आज भी गौ मा महिला खूब मेहनत करनी छन। अब तो घर कामक दगड़ी नौकरी और स्वरोजगार भी कना छन। आज से ही ना बल्कि बहुत पहल बिटी यखक नौनी घर कामक दगड़ी अपड़ी पढ़े भी कर दन। और आज उत्तराखंड का पहाड़ी क्षेत्र मा यदि नौनिक शिक्षक बाबत बात करे जावा ते यखक नौनी अपर हुनर हर क्षेत्र मा दिखानी छन। ये साल 28 अप्रैल 2026 कुणी जब उत्तराखंड बोर्ड का परिणाम एन वे मा 10वीं बोर्ड मा बालिका वर्ग मा 96% और इंटरमीडिएट मा 88% छात्रा उत्तीर्ण वेन। यूं परिणाम तय देखिकन लगणु की पहाड़ी क्षेत्र मा बालिका शिक्षा मा प्रगति होनी च। धरातलीय स्थिति दिखे जावत पहाड़ी क्षेत्र मा बालिका घर कामक दगड़ी पढ़े भी कना छन। जेक परिणाम उत्तराखंड बोर्ड CBSE बोर्ड मा स्पष्ट तौर पर दिखेणु च। आज का नौनी चंट चितवाल वेगिन ऊँ तय शिक्षक महत्व पता च। पहाड़क नौनी ये सब खैरी खाणक बाद भी आज हर जगह अपर भी और अपर माँ पिता नाम भी रोशन कनी छन। आज पहाड़ का नौनी पढ़ी लेखिकन एथर बढ़ना छन। आज गौ मा मीडिया सोशल मीडिया बिटी नौनियों मा जागरूकता आनी च। जेका कारण वो आज ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन तक नहीं सीमित नहीं छन बल्कि रोजगार परक और टेक्निकल शिक्षा लेकन सम्मानित पदों पर काम करीकन अपर परिवार और समाज मा प्रगति करनी छन। अब ऊ जमन नीच कि नौनियों तक 10वीं या 12वीं पास करेकन बस ऊँग ब्यो करे दयावा। अब ऊँग माँ पिता भी चंड चितवाल वेगिन ऊ भी अपन नौनिक शिक्षक खातिर

खूब प्रयास करना छन और उत पढ़ाना लिखाना छन। नौनिक शिक्षक बाबत आज उत्तराखंडक दूरक पहाड़ी क्षेत्रों में काफी जागरूकता दिखेण में आनी च। आज इंटर कनक बाद अधिकांश नौनी शहरी क्षेत्रों में एकन उच्च शिक्षा ग्रहण करना छन। अब केवल ग्रेजुएशन ही न बल्कि हुनर भी सीखना छन या भली पहल च। उत्तराखंड में महिला साक्षरता दर 2011 जनगणना के हिसाब से 71% छे। यूं 12 सालों में साक्षरता दर और बढ़ गए वेली जे की जानकारी हूण वल वर्तमान जनगणना में मिल जाली। अब नौनी सिर्फ आखर पण तक नहीं सीमित नहीं च बल्कि रोजगार परक भी च। आज सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तक सीमित नहीं च बल्कि अब बेटी तय सशक्त भी बनाना जरूरत। बेटी पढ़ली और रोजगार से जुड़ जाली वैसे अपर परिवारक समाजक दगड़ी राज्यक उन्नति में भी सहयोगी बढ़ल। जे घर में बेटी बुआरी पढ़ी लिखी और सशक्ति वेली उ परिवार अफिक सशक्त बढ़ जाल और नए पीढ़ी तय भी भलू संस्कार और शिक्षा मिलल। अब बेटी स्वरोजगार क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर होना छन। ई सब नौनिक शिक्षा में बढ़ोतरी होने से ही च। आज उत्तराखंड पहाड़ी क्षेत्रक नौनी आत्मनिर्भर बढ़नी छन ई सुखद पहलू च। हालांकि अब गांव में 12वीं के बाद जब नौनी उच्च शिक्षा या फिर रोजगार और तकनीकी शिक्षा खातिर गांव छोड़ी कर जानी छन ये से भी गांव में जनसंख्या कम होनी च। लेकिन वे के बाद भी नौनी पढ़ लेखी कन गांव तय और मजबूत बनाना छन। आशा कार्यकर्ता रूप में हो या फिर ANM बनेकन आंगनवाड़ी से लेकर शिक्षिका या कोई सरकारी विभाग में नौकरी कनवल समाज में जागरूकता लानी छन। पहाड़ी क्षेत्रों में नौनिक शिक्षक खातिर कुछ खैरी आज भी छन। पहाड़ी क्षेत्रों में स्कूल दूर दूर हुनन। बहुत जगह में नौनी तय पढ़ना खातिर बहुत दूर जान पड़ दू। उकाली उंदारी बाटू खराब मौसम और गाड़ी साधनों कमी कारण उतर विद्यालय जान में परेशानी हूं। घर गांव में जंगलक बाट पर लाण अली जान खातिर बुए बाप तक ऊँग दगड़ी जान पड़ दो। हालांकि अजो भी दुर्गम क्षेत्र में बालिका हाई स्कूल और इंटरमीडिएट कनक बाद कुछ परिवार आर्थिक रूप से कमजोर होने का कारण अपर बेटियों तय एथर नहीं पढ़े सकना छन या बीच में ही स्कूल छुड़वाना छन। आज भी दिखण और सुनने को मिल दो कि लोगों की सोच वही पुराने जमाने की छ जक नौनी तय शिक्षा में ज्यादा महत्व नहीं दिए जान छ। पहाड़ी क्षेत्रों में रहवास कनवल मन क्यों तय बहुत परेशानी उठान पड़ दी। ये मत सबसे बड़ी समस्या नौनिक शिक्षक छ। आजक जमन मन नौनी शिक्षा बहुत जरूरी छ इले की शिक्षित बालिका ही समाज परिवार और देशक भविष्य उज्ज्वल बना दी। पहाड़ी क्षेत्र में आज तकनीकी शिक्षक बहुत अभाव छ जे का कारण नौनी उच्च तकनीकी शिक्षा नहीं ले सकना छन। हालांकि आज ये में सुधार दिखेणु छ थोड़ा लेकिन वेक बाद भी उत्तराखंड बालिका शिक्षक क्षेत्र में लगातार एथर बढ़नी छन। सरकार भी बालिका शिक्षक खातिर कई योजना चलाई छ जन निःशुल्क शिक्षा छात्रवृत्ति साइकिल योजना और विद्यालय में बेहतर सुविधा उपलब्ध कराना छ। यूं योजनाओं से गरीब परिवार बेटियों तय पढ़ने का मौका मिलल। आज उत्तराखंड की नौनी डॉक्टर इंजीनियर शिक्षक वैज्ञानिक पुलिस अधिकारी और खिलाड़ी बनेकर राज्य का नाम रोशन करनी छ। उत्तराखंड राज्य में आज महिला शिक्षा दर बढ़ाना खातिर और रोजगार उपलब्ध कराने बाबत राज्य सरकार और केंद्र सरकार पहाड़ी क्षेत्र में NIT नर्सिंग कॉलेज पॉलिटेक्निक कॉलेज खुलनी च। ये से भी बालिकाओं तय रोजगार परक शिक्षा मिलनी च जैसे सरकारी और निजी क्षेत्र में रोजगार का अवसर मिलना छन। ये से भी उन आत्मनिर्भरता बढ़नी च। देश का प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जिन बालिका शिक्षा तय बढ़ावा देने का खातिर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा और योजना चले। ये योजना में बालिकाओं सुरक्षा शिक्षा और सशक्तिकरण तय प्रोत्साहन देकर दी। सुकन्या समृद्धि योजना भी बालिका शिक्षा और ब्योह का खातिर एक लंबी बचत योजना च। ये से भी बालिका तय आर्थिकी मजबूती और शिक्षक बाबत एक सहायता मिलल। राष्ट्रीय बालिका शिक्षा कार्यक्रम कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना इस सभी बालिका शिक्षा तय बढ़ावा देने का शिक्षक खातिर प्रोत्साहन मिलल। ये से उत्तराखंड ही न बल्कि देशक आखिरी छोर में रहवास कनवल नौनीता भी प्रोत्साहन मिलल। बालिका शिक्षा में सुधार लाने का खातिर सरकार पूर्ण प्रयास करनी च और हर नौनीता शिक्षा मिलो ये बाबत अलग

0: अलग योजना सरकार चलानी च। उत्तराखंड सरकार मा बालिका शिक्षा तय प्रोत्साहन देना का खातिर और बेहतर करना खातिर निंदा गोरा योजना मा बारहवीं पास कनवल बालिकाओं तय छात्रवृत्ति योजना दिए जान। ये का दगड़ी शहरी क्षेत्र मा साइकिल और लैपटॉप बालिका शिक्षक प्रोत्साहन खातिर सरकार देने च। वनी पहाड़ी क्षेत्रों में बालिका शिक्षा तय बढ़ावा देने बाबत सरकार अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़ी जाति और आर्थिक रूप से पिछड़ी बालिकाओं तय स्कॉलरशिप देने च, ताकि आर्थिक संकट उनके एथर शिक्षा में नहीं आवा। पहाड़ी क्षेत्र में बालिका शिक्षक उद्देश्य केवल पढ़ लिखण सिखाण नीच बल्कि बालिका और महिलाओं में आत्मविश्वास स्वाभिमान और स्वतंत्र भावना विकास हुए सको यू भी उद्देश्य च। एक पढ़ी लिखी बेटी अपन अधिकारों बाबत जन दी च और समाज में फैली बुरेजन दहेज प्रथा बाल विवाह और लैंगिक भेदभाव खिलाफ आवाज उठाना हिम्मत कर सकती। पहाड़ी क्षेत्र ही ना बल्कि पूर्व समाज में पिछले कुछ दशकों में दिखेण में आई कि समाज की मानसिकता में बहुत बदलाव हुए है। एक जमन चाहिए जब बेटी तय दिल बिटेन भैर भी नहीं निकलन दीन चाहिए और ऊते पढ़ाण समाज में नखरू समझे जान चाहिए। ये भी बोल सके आंदे कि पुरुष समाज ऊंक शिक्षक प्रति हे दृष्टि छई बेटी तय शिक्षा से वंचित रखे जान चाहिए। पहाड़ माँ बुल्द छाई कि क्यकन पढ़ी लिखी कन ससुराल जे कन चुल्लू फुकुण और घास लकड़ी तक कटन, लेकिन आज सोच बदले गया। अब नौनी भुए बाब और खुद नौनी भी शिक्षक क्षेत्र माँ कुछ नाम कमाण चांच। आज गांव से लेकर शहर तकन बेटी स्कूल कॉलेज और विश्वविद्यालयों में अपर उत्कृष्ट प्रदर्शन दिखाने छन। प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल वेकन प्रशासन विज्ञान तकनीकी खेल और कला जनित क्षेत्र में अपर हुनर तय दिखाना छन। आज अभिभावक भी अपर बेटी तय बहुत गर्व से पढ़ाना ही नहीं छन बल्कि ऊँक हर संभव मदद भी करना छन। अब गांव में बेटी बुआरी पूंडियो और चुल्लू तक नहीं सीमित नहीं रह गए बल्कि हर क्षेत्र में पर प्रतिभा तय दिखाना छन। पहाड़ों ही ना बल्कि आम समाज में नौनिक शिक्षा एक सामाजिक सुधार ही नीच बल्कि देशक विकास में एक बहुत बड़ी भागीदारी में मजबूत आधार स्तंभ बिच। ये कारण च कि देश में अद्धा आबादी बेटियों की च। एक शिक्षित बेटी अपर परिवार समाज और देश तय नए बाटू बताने की हिम्मत रख दी और अपर खुटू पर खड़े हुए। जब हर बेटी पढ़ी लिखी वेली तभी समाज में समानता प्रकृति उन्नति और समृद्धि अफिके जाए। इले ही जरूरत च बालिका शिक्षा तय प्राथमिकता दिए जावा। उत्तराखंड पहाड़ी क्षेत्र में बालिका शिक्षा तय महत्व देकन हम पहाड़ तय आर्थिक और सामाजिक रूप में सक्षम बढ़े सकदो। उत्तराखंड पहाड़ी क्षेत्र में आज भी पलायन तय रुकण में महिलाओं की बड़ी भागीदारी च। यदि पहाड़ में बालिका शिक्षा और मजबूत वेली उतें वकी रोजगार को अवसर मिल जाले तो पहाड़ और भी सशक्त हुए जाल। आज भी पहाड़क बेटी पहाड़ बड़ी कन खड़ी छन और यूं डांडी काठियों तय गौरवान्वित कना छन।
1: दगड़ियों अभी आपन सुनिया गढ़वार्ता पहाड़ में बालिका शिक्षा। वार्ताकार छे श्रीमती सिमरन कंडवाल। बणियों आज का समय में महिलाओं थे आत्मनिर्भर होन बहुत जरूरी छ। तभी बुले जान न कि नौनियों पढ़े लिखे लिखे की सशक्त बनाण जैसे वो अपना भविष्य मान नौनी अच्छा से अच्छा करिकना पर घर संभाल और समय आन पर या फिर जरूरत बन पर अपना परिवार की आर्थिक मदद भी कर सक। आप दिखना वेली कि काम काजी जो दीदी बहन छन वो भला करिकन अपर जो बौना काम भी करना छन दफ्तरों में जाना छन और घर का काम भी भला करी संभालना छन आत्मनिर्भर छन। और बहनियों जब हम आत्मनिर्भर हुंदा ना आर्थिक रूप से मजबूत हुंदा हो तो अपने आप ही हम आत्मविश्वास बढ़ जान आत्मविश्वास से हम बढ़ जान्दा तो अपन नौनी होते हैं शिक्षित बनाओ और जैसे कि आज कि अग्नि चली कनो आत्मनिर्भर हो सक। और इन भी नीच कि जो कंपनियां लिखिया छन वो आत्मनिर्भर नहीं हो सकदन इन खारू काम छन जो तो हम करिकन आत्मनिर्भर बन सकदा। सरकारक भी अनेक योजनाएं हमार बाबा चलाए छन बस जरसी जानकारी हो जरूरी च। और अब इन करदा कि कार्यक्रम थे अग्नि सरकंदा और सुनदा लता तिवाड़ी का गयू यू कुमावनी लोकगीत और दगड़मा रेवार।

पूरे उत्तराखंड में शुरू हो चुकी है जनगणना। पहले चरण में 25 अप्रैल से 24 मई 2026 तक प्रगणक द्वारा घर घर सर्वे किया जाएगा। आपकी सभी जानकारी पूरी तरह सुरक्षित और गोपनीय रखी जाएगी। कृपया सही और पूर्ण जानकारी दें, यही आपके क्षेत्र के विकास की नींव है। जनगणना 2027 आपकी भागीदारी, देश की प्रगति। ये सूचना जनगणना कार्य निदेशालय उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।

लता तिवारी का गीत का दगड़ ही अब कार्यक्रम बटन का भगत हो गया, लेकिन जान जान पता में आपने बता दी दू जनों का वास्ता ग्राम जगत अनुभाग द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी देहरादून पिंच 248001 दगड़ो ये पता पर आप चिट्ठी लेख भेज सकता। हम तो सदन ही आप चिट्ठियों को जुगाल रहे और अब यानी मीना उन्याल थे दिया आ गया। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम जनानों का वास्ता, FM 106.5 MHz पर। यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। दोपहर के 1 बजे हैं। अब आप सुनेंगे समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। दोनों नेता भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे के लिए सहयोग बढ़ाने पर चर्चा और वर्ष 2025 से 2029 तक संयुक्त रणनीतिक कार्रवाई योजना की समीक्षा करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार, रक्षा, परिवहन, समुद्री सुरक्षा, बंदरगाह संबंधी सहयोग और स्वच्छ ऊर्जा सहित प्रमुख क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज क्विरिनल पैलेस में इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेला से मुलाकात करेंगे, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया जाएगा। आज के कार्यक्रमों में प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ताएं, प्रेस वक्तव्य, समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान, द्विपक्षीय बैठकें और खाद्य एवं कृषि संगठन का दौरा शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी मोरस निग्रा ब्लैक मलबरी का पौधा भी लगाएंगे। ये एक ऐसी प्रजाति है जो अपने पाक, औषधीय और सांस्कृतिक महत्व के कारण भारत और इटली को प्रतीकात्मक रूप से जोड़ती है। रोम से सुपर्णा भाटिया।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वो इटली की प्रधानमंत्री के साथ होने वाली बैठक को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि दोनों के बीच बातचीत में मुख्य रूप से भारत इटली संबंधों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने इटली के प्रसिद्ध चित्रकार जियाम पावलो टोमासिट्टी की भारतीय

0: रक्षा मंत्री आर्नग्यू बैग से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने क्षेत्र शांति, स्थिरता और तकनीकी सहयोग में साझा प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने भारत दक्षिण कोरिया रक्षा, रक्षा उद्योग और रणनीतिक सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि दोनों देशों ने रक्षा साइबर सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौतों का आदान प्रदान किया। केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि सरकार स्मार्ट विनियमन और उत्तरदायी शासन के माध्यम से बाजार में निष्पक्षता बढ़ाकर नियामक बोझ को कम करने के लिए प्रतिबद्ध है। विश्व मापन दिवस के अवसर पर वर्चुअल रूप से आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह परिकल्पना की है कि भारतीय उत्पादों की गुणवत्ता वैश्विक मानकों और पर्यावरण के अनुकूल होनी चाहिए। देश ने आत्मनिर्भर भारत पहल के अंतर्गत स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने अनमैन्ड एरियल व्हीकल लॉन्च प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल ULPGM-V3 के अंतिम विकास परीक्षण को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। ये देश के रक्षा क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। पंजाब पुलिस ने दुबई स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ तस्करी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है, जो सीमावर्ती राज्य पंजाब और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मादक पदार्थों की तस्करी के लिए अबुधाबी से काम कर रहा था। पुलिस ने 14 किलोग्राम मादक पदार्थों के साथ दो तस्करों को गिरफ्तार किया है। चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आज बीजिंग में द्विपक्षीय संबंधों, ईरान यूक्रेन संघर्ष और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सहित प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर बातचीत की। ये बैठक अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चीन यात्रा के कुछ ही समय बाद हुई है। इस बैठक में उन्होंने शी चिनफिंग से क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर चर्चा की थी। अमेरिका के राष्ट्रपति अगले महीने फ्रांस में आयोजित होने वाले G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। पश्चिम एशिया संघर्ष को लेकर अमेरिका और कई यूरोपीय सहयोगियों के बीच बढ़ते तनाव के बीच ट्रंप इस सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं। IPL क्रिकेट में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। ये मैच कोलकाता में शाम 7:30 बजे शुरू होगा। कल रात राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 100.5 MHz पर यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। दोपहर के 1:05 हुए हैं, आप सुनिए प्रादेशिक समाचार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहली मुख्य समाचार। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूड़ी का अंतिम संस्कार हरिद्वार में पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया। एक राष्ट्र एक चुनाव की संयुक्त संसदीय समिति ने कहा, लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने से लगभग 7,00,000 करोड़ रुपए की बचत और भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 1.6% की वृद्धि होगी। पौड़ी गढ़वाल में श्रीनगर क्षेत्र में डूंगरी पंथ रेलवे सुरंग का SDRF NDRF ने संयुक्त निरीक्षण किया और 23 मई को खुलेंगे हेमकुंड साहिब के कपाट। जिला प्रशासन, सेना और हेमकुंड साहिब ट्रस्ट द्वारा तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं आशुतोष उनियाल और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूड़ी का अंतिम संस्कार आज हरिद्वार में पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित कई वरिष्ठ नेता स्वर्गीय खंडूड़ी जी को अंतिम विदाई देने पहुंचे। इससे पहले उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वर्गीय खंडूड़ी के देहरादून आवास पर उनके पार्थिव शरीर पर पुष्प चक्र अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। उपराष्ट्रपति ने शोक संतप्त परिजनों से मुलाकात कर अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त की और दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। इसके बाद देहरादून स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण सहित कैबिनेट मंत्रियों, विधायकों, पार्टी पदाधिकारियों तथा कार्यकर्ताओं ने पूर्व मुख्यमंत्री के पार्थिव शरीर पर पुष्प चक्र अर्पित कर उन्हें नम आंखों से विदाई दी। मुख्यमंत्री ने पार्थिव शरीर को कंधा देकर अंतिम विदाई दी।

0: प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वर्गीय खंडूड़ी का संपूर्ण जीवन अनुशासन, सादगी, ईमानदारी और राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित रहा। उन्होंने उत्तराखंड के विकास और जनसेवा में जो योगदान दिया उसे यह प्रदेश सदैव याद रखेगा। मुख्यमंत्री ने उनके निधन को राज्य के लिए अपूर्णीय क्षति बताया। एक राष्ट्र एक चुनाव पर गठित संयुक्त संसदीय समिति ने कहा है कि लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकाय चुनाव एक साथ कराने से करीब 7 लाख करोड़ रुपए की बचत हो सकती है। इससे देश के सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर में 1.6% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। समिति के अध्यक्ष और लोकसभा सांसद पीपी चौधरी ने गुजरात के गांधीनगर में पत्रकारों को यह जानकारी दी।
1: मैं जो इनपुट मिला है उसमें हमने और कहा इसको और इम्प्रूव करो और एक रोल मॉडल के रूप में हम पूरे देश में सारे सरकार को हम भेजेंगे भाई इस रूप में आप हमें अपनी रिपोर्ट प्रिपेयर करके दो। जैसे इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट करे, इंडस्ट्रीज में क्या लॉस होता है, प्रोडक्शन का कितना लॉस होता है, लेबर एक तरह से दूसरी तरह माइग्रेट करती है, सबको कहा अपनी रिपोर्ट प्रिपेयर करें और उसका संकलन करके आगे दे सके।
0: नैनीताल जिले के भीमताल विकासखंड में बाखली नाम से ग्राम दुकान का शुभारंभ किया गया। नाबार्ड के सहयोग से शुरू की गई इस दुकान में क्षेत्र के करीब 50 स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं द्वारा तैयार उत्पादों को बिक्री के लिए रखा जाएगा। दुकान में ऐपण कला, रिंगाल शिल्प, जूट उत्पाद, अचार, शहद, मोटे अनाज और अन्य स्थानीय उत्पाद उपलब्ध हैं। नाबार्ड के जिला विकास प्रबंधक मुकेश बेलवाल ने बताया कि ग्राम दुकान जैसी पहल महिला सशक्तिकरण और ग्रामीण आजीविका को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाएंगी।
2: भीमताल में ग्राम दुकान का इनोग्रेशन यहाँ पर किया गया है और ये जो डक्स SHG है यहाँ पर जो बहुत अच्छा कार्य कर रहा था उनको हमने ये दुकान दी। तो इसमें नाबार्ड का 2 साल का इसमें सपोर्ट रहता है, चाहे वो आपकी सैलरी हो या रेंट का दुकान का, उसका नाबार्ड वे करेगा। और इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि जो महिलाएं कम से कम 2 साल तक जो हम सपोर्ट करें आगे खुद इसको चलाएं। और ये ग्राम दुकान से हम चाहते हैं जो बाकी जो SHGs जो बाकी जो इस ब्लॉक में जो अदर SHGs हैं उनका जो प्रोडक्ट है यहाँ के SHG खरीदें और अपनी दुकान के माध्यम से इसको मार्केट करें। तो हम चाहते हैं आने वाले समय पे जो हमारी SHGs हैं उनको एक मार्केटिंग प्लेटफॉर्म जो दुकान दे रही है, साथ में जो अलग अलग एग्जीबिशन होते हैं उसके माध्यम से भी यहाँ पर एक बिजनेस बढ़ने की संभावना है।
0: वहीं समूह से जुड़ी महिलाओं का कहना है कि इस दुकान से स्थानीय उत्पादों को बाजार मिलेगा और महिलाओं की आय में बढ़ोतरी होगी।
3: तो ये फायदा मिलेगा महिलाओं की जो आजीविका है, एक तो अपने पैरों पर खड़ी हो जाएंगी और साथ साथ उनकी आजीविका बढ़ेगी। साथ ही जो हमारे क्षेत्रों में उत्पाद होते हैं, जैसे महिलाएं हैं हमारे क्षेत्रों में हस्तशिल्प बहुत ज्यादा बनाते हैं, जैसे एप्पल हो गया या मोमबत्तियां हो गया या ऊन से बने प्रोडक्ट हो गए। हमारे क्षेत्र में शहद का भी काफी अच्छा प्रोडक्शन होता है, तो वो हम सारा यहाँ राम बाखली दुकान में रखेंगे और उससे क्या है महिलाओं को कहीं ना कहीं आजीविका संवर्धन में सहायता मिलेगी।
4: ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
0: पौड़ी गढ़वाल में श्रीनगर क्षेत्र के अंतर्गत डूंगरी पंथ रेलवे सुरंग का SDRF और NDRF के संयुक्त दल ने विस्तृत निरीक्षण किया। इस दौरान सुरंग की सुरक्षा व्यवस्थाओं, प्रवेश व निकासी मार्गों, आपातकालीन बचाव व्यवस्थाओं और संभावित आपदा की स्थिति में राहत और बचाव कार्यों की तैयारियों का आकलन किया गया। एक रिपोर्ट।
5: संयुक्त दल ने सुरंग के भीतर जाकर विभिन्न सुरक्षा बिंदुओं का निरीक्षण किया और भविष्य में किसी भी आपात स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए आवश्यक रणनीतियों पर चर्चा की। अधिकारियों ने सुरंग में कार्यरत कर्मचारियों को सुरक्षा मानकों के अनुपालन, आपदा के समय त्वरित प्रतिक्रिया तथा समन्वित राहत कार्यों को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। निरीक्षण के दौरान रेलवे अधिकारियों ने दल को सुरंग की संरचना, सुरक्षा उपकरणों, निकासी मार्गों और उपलब्ध आपदा प्रबंधन संसाधनों की विस्तृत जानकारी दी। इसके बाद SDRF और NDRF के दल ने पूरे सुरंग क्षेत्र का भ्रमण कर संवेदनशील स्थलों को चिन्हित करते हुए संभावित जोखिम वाले बिंदुओं का आकलन किया। SDRF निरीक्षक मंजरी नेगी ने बताया कि निरीक्षण का उद्देश्य डूंगरी पंथ रेलवे सुरंग की सुरक्षा व्यवस्थाओं का मूल्यांकन करना और किसी भी आपदा या आपात स्थिति में त्वरित व सुरक्षित राहत बचाव सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक तैयारियों को मजबूत करना है। उन्होंने कहा कि SDRF और NDRF द्वारा समय समय पर ऐसे संवेदनशील स्थलों का निरीक्षण कर सुरक्षा तंत्र को और अधिक प्रभावी बनाया जाता है। आकाशवाणी देहरादून के लिए समाचार कक्ष से संतोष थपलियाल।
0: चमोली जिले में स्थित सिखों के पवित्र तीर्थ स्थल हेमकुंड साहिब

0: के कपाट आगामी शनिवार को श्रद्धालुओं के लिए खोले जाएंगे। इसके लिए जिला प्रशासन, सेना और हेमकुंड साहिब ट्रस्ट द्वारा तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। सेना के जवानों ने कठिन परिस्थितियों में पैदल मार्ग से बर्फ हटाकर रास्ता साफ कर दिया है। वहीं गुरुद्वारा ट्रस्ट द्वारा गोविंद घाट, घांगरिया और हेमकुंड साहिब में गुरुद्वारों को सजाने संवारने का कार्य भी तेज कर दिया गया है। सेवादार यात्रियों की सुविधा के लिए दिन रात जुटे हैं। जिलाधिकारी गौरव कुमार ने बताया कि कपाट खुलने को लेकर सभी तैयारियां तेजी से पूरी की जा रही हैं।
1: 23 तारीख को हेमकुंड साहिब के कपाट खुल रहे हैं। इसके लिए प्रशासन की तरफ से तैयारियां की जा रही हैं। आर्मी के द्वारा पहले उसमें बर्फ काट के रास्ता बनाया गया है। जो वहाँ पर अप्रोच रोड है जो PMDSY की है, उनके द्वारा उसका सुधारीकरण कार्य लगातार किया जा रहा है। ट्रैक मार्ग पे PDOD के द्वारा कार्य किया जा रहा है। साथ ही घोड़ा खच्चर की व्यवस्था को सुचारू करने के लिए इस वर्ष वहाँ पर ऑनलाइन टोकन की व्यवस्था भी प्रारंभ की गई है। जल संस्थान के द्वारा पानी की व्यवस्था और UPCL के द्वारा बिजली की व्यवस्था।
0: प्रदेश में गर्मी का असर लगातार बढ़ता जा रहा है। मौसम विभाग ने हरिद्वार, देहरादून, पौड़ी, उधम सिंह नगर, नैनीताल और उत्तरकाशी के आसपास के क्षेत्रों में आज और कल कहीं कहीं लू चलने की संभावना जताई है। विभाग के अनुसार अगले 2 से 3 दिनों में अधिकतम तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी हो सकती है। मैदानी जिलों में मौसम मुख्य रूप से शुष्क बना रहेगा। वहीं उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों में कहीं कहीं हल्की बारिश और गरज चमक की संभावना है। इन क्षेत्रों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और आकाशीय बिजली चमकने का भी अनुमान है। मौसम विभाग ने लोगों को दोपहर के समय तेज धूप से बचने और पर्वतीय क्षेत्रों में खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने की सलाह दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूड़ी का अंतिम संस्कार हरिद्वार में पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया। एक राष्ट्र एक चुनाव की संयुक्त संसदीय समिति ने कहा, लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने से लगभग 7 लाख करोड़ रुपए की बचत और भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 1.6% की वृद्धि होगी। पौड़ी गढ़वाल में श्रीनगर क्षेत्र में डूंगरी पंथ रेलवे सुरंग का SDRF NDRF ने संयुक्त निरीक्षण किया और 23 मई को खुलेंगे हेमकुंड साहिब के कपाट। जिला प्रशासन, सेना और हेमकुंड साहिब ट्रस्ट द्वारा तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है, एफएम 107.5 मेगाहर्ट्ज पर। दोपहर के 1:15 हुए हैं। आप सुनिए फिल्म संगीत।

मोहम्मद रफी की आवाज में यह गीत अभी आपने सुना फिल्म आंसी। गीत के बोल लिखे थे शकील बदायनी ने और संगीतकार थे नौशाद। फिल्म संगीत को आगे बढ़ाते हैं, अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफी की ही आवाज में, फिल्म का नाम आपकी परछाइयां। संगीत निर्देशन है मदन मोहन का और गीत के बोल लिखे हैं रजा मेहंदी अली खान ने।

0: सुनो ना,
1: हाँ
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है? हाँ
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे?
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
0: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
2: FM 100.5 MHz पर यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। दोपहर के 1:22 हुए हैं, आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं गीता दत्त की आवाज में, फिल्म का नाम बाजी। गीत के संगीतकार हैं SD बर्मन और शब्द रचना साहिर लुधियानवी की।

फिल्म संगीत प्रसारित किया जा रहा है एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से। अंतिम गीत अब आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में। फिल्म का नाम है दिल एक मंदिर। गीत के बोल लिखे हैं हसरत जयपुरी ने और संगीतकार शंकर जयकिशन।

0: शब्दांग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: स्वागत है आप सभी श्रोताओं का कार्यक्रम उमंग में। मैं हूँ विमलेश, नमस्कार।
1: और मैं हूँ अजीत। नमस्कार श्रोताओं, कस्बा बराड़ा, जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, नूर, नमन, सिमरत, गुरकीरत राहुल और गुरशब्द सिंह जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: आप कौन हैं, आपकी क्षमताएं क्या हैं और आपके संस्कार क्या हैं? इन सब का निर्धारण आपके द्वारा किए गए कार्यों के संचय से होता है। आपकी सफलता, आपका व्यवहार और आपके कार्यों का समाज पर प्रभाव ही वो स्वर है जो आपकी अनुपस्थिति में भी आपकी पहचान की घोषणा करता है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुंदर विचार के लिए। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है राधेनगर अकोला महाराष्ट्र से राजेश पी कारिया जी का। लिखते हैं,
2: 14 अप्रैल 2026 का उमंग प्रोग्राम बेहद पसंद आया, जिसमें आपने हाथ से लिखने की आदत के बारे में बताया। ये सही है कि इस डिजिटल युग में हाथ से लिखना बहुत कम हो गया है। ऐसे तो हाथ से लिखने से बहुत से फायदे हैं, जैसे कि याददाश्त तेज होती है, दिमाग शांत होता है, रचनात्मकता बढ़ती है, एकाग्रता सुधरती है, समझ गहरी होती है और हाथ की कसरत भी होती है।
1: आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुंदर संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है ग्राम नागर कोहरा, जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से। संदेश भेजने वाले हैं बबलू साहू, जामुन देवी साहू, पूजा, प्रेम, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा और बेबी आराध्या साहू।
2: केंद्रपाड़ा उड़ीसा से देशदीप दास जी।
1: और चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और बिमला अनेजा।
2: कृष्णा पार्क दिल्ली से याकूब आसमा फकीर, यूसुफ आसमा फकीर, असलम आसमा फकीर और अक्रम आसमा फकीर।
1: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। आप सबका स्वागत है श्रृंखला ये भी जानिए में। तो आइए श्रोताओं, सुनते हैं इस श्रृंखला की अगली कड़ी। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं वर्षा वन यानी रेन फॉरेस्ट की।
2: जी,
1: तो विमलेश जी अब श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं।
2: जी जी जी श्रोताओं, कल हमने ली थी वर्षा वन की सामान्य जानकारी। आगे हम आज चर्चा करेंगे क्षेत्रफल के आधार पर दुनिया के प्रमुख वर्षा वनों की। तो करते हैं शुरुआत अमेजन वर्षा वन से।
1: जी जरूर श्रोताओं, आपने टीवी चैनलों में अमेजन वर्षा वन के रोमांचकारी दृश्यों को जरूर देखा होगा। समाचार पत्रों या अन्य संचार माध्यमों के द्वारा भी इसके बारे में कुछ न कुछ जानकारी तो अवश्य प्राप्त की होगी।
2: जी
1: आइए इसके बारे में थोड़ा और विस्तार से जानते हैं।
2: श्रोताओं, अमेजन वर्षा वन दुनिया का सबसे बड़ा वनस्पति और जीव समृद्ध वर्षा वन है। ये लगभग 55 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और हाँ, इसे समुद्र के बाद पृथ्वी का सबसे बड़ा फेफड़ा भी कहा गया है।
1: ऐसा इसलिए कहा गया है श्रोताओं कि धरती की कुल ऑक्सीजन का लगभग 20% ऑक्सीजन हमें इसी वर्षा वन से मिलता है।
2: जी,
1: जहाँ तक इसके स्थान की बात है तो यह दक्षिण अमेरिका या लैटिन अमेरिका में फैला हुआ है, मुख्य रूप से ब्राजील में,
2: लेकिन इसके कुछ भाग पेरू और कोलम्बिया में भी फैले हुए हैं। यहाँ भारी वर्षा होती है, लगभग 2000 मिलीमीटर प्रति वर्ष से भी अधिक।
1: और श्रोताओं, जहाँ तक इसमें पाए जाने वाले जीव जंतुओं की बात है, यहाँ उनकी लाखों प्रजातियाँ पाई जाती हैं। जानते हैं कुछ दुर्लभ और रोचक जीवों के नाम। तो सबसे पहला जीव है जगुआर। जी हाँ, अमेजन वन का सबसे बड़ा शिकारी, पानी में तैरने और शिकार करने में माहिर।
2: दूसरा है गोल्डन मंकी, बिल्कुल सोने के सुनहरे रंग का दिखाई पड़ता है, केवल अमेजन के जंगलों में ही मिलता है। एक और विशेष मेंढक यहाँ मिलता है, उसे पॉइजन डार्ट फ्रॉग भी कहते हैं। ये बेहद चमकीले रंग वाला मेंढक होता है। इसकी त्वचा में जहरीला पदार्थ होता है जिसे छूते ही तबीयत बिगड़ सकती है, यहाँ तक कि मृत्यु भी हो सकती है। पुराने समय में यहाँ के आदिवासी लोग युद्धों में इस जहर का इस्तेमाल तीरों पर करते थे।
1: और आपने श्रोताओं एनाकोंडा सांप के बारे में तो अवश्य ही सुना होगा। ये दुनिया का सबसे लंबा और भारी सांप है जो पानी में रहता है और बड़े जानवरों का शिकार करता है।
2: एक और चींटी की अनोखी प्रजाति यहाँ पाई जाती है जिसे बुलेट एंट कहते हैं। ये दुनिया की सबसे दर्दनाक डंक वाली चींटी है। कहते हैं इसके डंक मारने पर भाला मारने या तीर लगने जैसा दर्द होता है।
1: तो ये थी कुछ रोचक वन्य जीवों की जानकारी। श्रोताओं, अमेजन का जंगल यह औषधीय वनस्पतियों का बहुत बड़ा भंडार है।
2: जी
1: आइए अब जानते हैं कुछ रोचक तथ्य अमेजन वर्षा वन के बारे में। तो विमलेश जी।
2: जी जी जी, एक सबसे रोचक तथ्य ये है कि अमेजन वर्षा वन ज्यादातर अमेजन नदी के क्षेत्र में फैला हुआ है। ये दुनिया का सबसे बड़ा नदी तंत्र है। मालूम है श्रोताओं, वैसे

0: दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी है, लेकिन जल की मात्रा के दृष्टिकोण से दुनिया की सबसे बड़ी नदी अमेजन है। एक रोचक तथ्य आपको बता दें कि अमेजन नदी में पुल नहीं के बराबर है। लेकिन ऐसा क्यों?
1: ऐसा इसलिए कि भारी वर्षा के कारण अमेजन नदी उफान से भरी रहती है।
0: जी,
1: इसका कोई निश्चित तटबंध नहीं है। कभी कभी
0: इसकी धारा पतली हो जाती है तो कभी कभी बहुत चौड़ी, कभी 2 किलोमीटर ही रहती है तो कभी कभी 10 किलोमीटर तक चौड़ी हो जाती है। इसलिए यदि यहाँ पुल भी बनाए जाते हैं तो लंबे समय तक नहीं टिकते, क्योंकि दुविधा ये रहती है कि पुल की लंबाई या चौड़ाई कितनी रखनी है।
1: इसलिए यह तय पाया गया श्रोताओं कि अमेजन नदी में पुलों से बेहतर नौकायन ही है, और नौकायन कब हो इसका निर्णय नदी के उफान या पानी के कम होने पर किया जाता है।
0: जी, तो श्रोताओं ये थी हमारी आज की जानकारी अमेजन वर्षा वन के बारे में। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से।
1: तो आज का प्रश्न है, अमेजन नदी पर पुल क्यों नहीं बनाए जाते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: अमेजन नदी पर पुल क्यों नहीं बनाए जाते हैं?
1: 8800440559 यानी हमारे IVRS नंबर पर, और audio@cieet.nic.in यानी हमारे ईमेल पर आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं।
0: एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: और श्रोताओ, अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सबसे पहले सुनते हैं कार्यक्रम द क्रो।
0: एक प्रसिद्ध लोक कथा पर आधारित ये कार्यक्रम कक्षा 2 की अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक में मुद्रित है, जिसके द्वारा ये संदेश दिया गया है कि हमें तुरंत किसी की प्रशंसा से प्रभावित नहीं होना चाहिए, लेकिन तथ्यों की जांच कर लेनी चाहिए और प्रशंसा सच में की जा रही है या नहीं ये भी जांच लेना चाहिए।
2: CIET NCERT presents the series Singing the Poem. Under this series, let us listen to the program The Crow.
3: Hello, children.
4: Hello, ma'am.
5: Hello, ma'am.
3: Hello, hello. How are you all?
4: We are fine, ma'am.
6: I am fine, ma'am.
7: How are you, ma'am?
3: I am good. Thank you so much, Vanya. All right. So, children, today I am going to share something with you. Are you ready?
4: Yes, ma'am.
6: Okay, ma'am.
3: All right. You all know that pets are special members of our family, isn't it?
4: Yes,
7: pets are so lovely.
3: Right, Soham.
8: Ma'am, I have a dog. It loves me so much.
3: Riddhi, that's very good. But how do you know that your dog loves you?
8: Ma'am, when I come back home, it leaps and jumps around me with happiness.
3: Wow, that's good. And what about you, Navya?
9: Ma'am, my dog shakes its tail at me.
3: Oh, that's lovely. You have a very nice dog. I'm very happy that you love pets. All right. What about you, Lavish?
10: Ma'am, when I come home, my cat jumps and sits on my lap.
3: Oh, that's so exciting, isn't it?
4: Yes, ma'am.
3: All right. So, we spoke about our animals. What about birds? Do you like birds?
4: Yes, ma'am.
3: Can you name some birds?
6: Sparrow.
3: Okay, Vanya. Good. That's a beautiful small bird. Okay, Soham, you tell.
7: Peacock. It dances so well. It looks so pretty.
3: Yes, peacock is a colorful bird.
10: Ma'am, parrot.
3: Oh, yes. Parrot is a mimic bird. But, children, you have missed a bird. Do you know which bird is missing?
11: Any guesses?
3: Okay, I'll give you a clue. It calls... Absolutely right. Children, I remember a lovely story of a crow. Would you like to listen?
4: Yes, ma'am.
7: It will be fun.
3: So, I'll narrate the poem. Repeat after me. There once was a crow. He was black. As you know.
4: How to be beautiful.
3: He wanted to know. Colorful feathers. He wanted to grow. He found one peacock feather. He stuck it.
5: He stuck it
3: in his tail.
5: Then
3: he found another.
5: He
3: picked up.
5: All
3: without fail. He stuck them. In his wings. Put one on his head. I'm now beautiful. He danced and said. The other crows. Laughed at him.
5: Oh, what a fool you are. You are beautiful in black. We love you. For what you are.
3: So children, now listen to the same poem and a lovely song.
5: Okay.

0: और एक दिन जब वो स्कूल से लौटा तो
1: दीदी दीदी
2: अरे राजू स्कूल से आ गए तुम।
1: हाँ दीदी।
2: अरे ये तुम्हारे हाथ में इतने सारे फूल कहाँ से आए?
1: दीदी सामने के बगीचे में कुछ फूल लगे थे मुझे अच्छे लगे तो मैंने तोड़ लिए।
2: ये क्या राजू, कल पड़ोस के माली काका भी तुम्हारी शिकायत कर रहे थे, कह रहे थे कि तुमने उनके बगीचे में लगे पौधे उखाड़ दिए। क्या ये सच है राजू?
1: दीदी वो तो मैंने।
2: राजू पौधों में भी जान होती है, पता है ना तुम्हें?
1: हाँ दीदी ये तो मैंने पढ़ा है मगर।
2: मगर क्या? अच्छा अब इधर आओ, ये देखो दीवार पर लटकी ये तस्वीर, ये तुम्हारे बचपन की है ना?
1: हाँ दीदी ये तस्वीर तब की है जब मैं बहुत छोटा सा था, अब तो मैं कितना बड़ा हो गया हूँ।
2: बिल्कुल ठीक, उसी तरह पौधे भी बढ़ते हैं, हमारी तरह पौधों को भी भोजन और पानी की जरूरत होती है।
1: भोजन और पानी?
2: हाँ राजू। तुम ऐसा क्यों नहीं करते एक पौधा लगाओ?
1: हाँ दीदी ये तो बहुत अच्छा रहेगा, कल मैं एक पौधा लगाऊंगा।
2: अरे कल क्यों, आज शाम को जब दादाजी बगीचे में घूमने जाएंगे तो तुम भी उनके साथ जाना पौधा लगाने।
1: ये ठीक है दीदी।

0: अच्छा तो राजू बेटा तुम पौधा लगाना चाहते हो?
1: जी दादाजी।
0: देखो बेटा उसके लिए ये जगह ठीक है, यहाँ अच्छी धूप भी आएगी। चलो बेटा पहले ये कंकड़ पत्थर हटाकर ये जगह साफ कर देते हैं।
1: हाँ अब ठीक हो गया।
0: राजू बेटा ये लो खुरपी और इस जगह पर एक छोटा सा गड्ढा खोदो, पर ध्यान रखना कहीं खुरपी हाथ में ना लग जाए।
1: अच्छा दादाजी अभी खोदता हूँ, लाइए खुरपी दीजिए।
0: हाँ ये लो बेटा, इतनी देर में मैं तुम्हारे लिए माली काका से पौधा ले आता हूँ।
1: जी।

0: वाह, ये पौधा कितना सुंदर लग रहा है।
1: देखा बेटा, ये पौधा माली काका तुम्हारे लिए खुद लेकर आए हैं। क्यों माली काका, मैं सच कह रहा हूँ ना?
2: हाँ राजू बेटा, इस पौधे को गड्ढे में रखकर इसकी जड़ों को मिट्टी से ढक दो और उसमें पानी डाल दो।

0: लो माली काका, ये तो मैंने कर दिया।
1: शाबाश राजू बेटा, शाबाश।
0: मगर ये तो बताओ माली काका, ये कौन सा पौधा है?
2: बेटा ये गेंदे का पौधा है।
0: गेंदे का पौधा?
2: जी।
0: गेंदे का पौधा तो सामने वाले बगीचे में भी है, पर उस पर तो कितने सारे फूल लगे हैं।
2: फूल तो बेटा एक दिन इस पौधे पर भी आएंगे।
1: हाँ राजू बेटा, पर उसके लिए तुम्हें बहुत लगन और मेहनत से इसकी देखभाल करनी होगी।
2: हाँ।
0: देखभाल? वो कैसे?
2: देखो बेटा, मैं तुम्हें समझाता हूँ। तुम्हें रोज पौधे को पानी देना होगा और कभी कभी खाद भी डालनी होगी।
0: अच्छा।
2: और पौधे के आसपास की उगी हुई जो घास होती है ना, उसको हटाना होगा।
0: ये तो मैं जरूर करूँगा।
2: हाँ तो ठीक है बेटे। अच्छा आज तो अब बस।
1: राजू बेटा
0: जी?
1: अच्छा अब घर चलें?
0: जी धन्यवाद माली काका।
2: अरे बेटा
1: चलो बेटा
2: जी।
0: चलिए दादाजी।

0: जी सुनते हो?
1: हाँ बोलो जी।
0: राजू कहाँ चला गया?
1: राजू कहाँ चला गया?
2: रात को तो यहीं सोया था।
1: अरे हाँ, लगता है बागीचे में गया होगा।
0: पता नहीं लड़के को क्या हो गया है, जब से इसने पौधा लगाया न खाने की चिंता न खेलने की।
1: जब देखो बागीचे में जाकर पौधे की देखभाल में लगा रहता है।
3: देखो दीदी, उस पौधे में कितने सारे फूल लगे हैं।
4: हाँ, कितने सुंदर लग रहे हैं। अच्छा राजू, क्या मैं एक फूल तोड़ लूं?
3: नहीं दीदी, मैंने इतनी मुश्किल से गड्ढा खोदा, पौधा लगाया, खाद डाली और रोज पानी से सींचा, और अब ये फूल आ गए हैं तो आप इसे तोड़ना चाहती हैं?
4: दीदी, कितने सुंदर लग रहे हैं ये फूल, आप क्यों तोड़ोगी भला?
5: शाबाश राजू, लगता है तुम समझ गए।
3: हाँ दीदी,
5: मेहनत से लगाए हुए पौधे से अगर कोई एक भी फूल तोड़ ले तो कैसा लगेगा?
3: दीदी, ये तो बहुत ही गलत काम है। अब मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम एक पौधा राजू का, और अब हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार,
1: नमस्कार।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: अभी आप सुन रहे थे एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम। श्रोताओं, आपको पुनः याद दिला दें, रात्रि 9:15 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम स्पॉटलाइट। रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम चर्चा का विषय है। ये दोनों ही कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएंगे। रात्रि 10:00 आप सुनेंगे कार्यक्रम आपकी फरमाइश। एफएम 107.5 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। दोपहर के 2:00 को है। अब आप सुनेंगे अंग्रेजी और हिंदी में समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। कृपया प्रतीक्षा करें।
3: गुड आफ्टरनून, दिस इज आकाशवाणी। आई एम अनुजा कुमार विद द मिड डे न्यूज। The headlines. Prime Minister Narendra Modi to hold talks with his Italian counterpart Giorgia Meloni in Rome in a short while from now to boost economic cooperation. Prime Minister Modi and Giorgia Meloni outlined roadmap for India-Italy strategic partnership, highlight several economic initiatives in a joint article. DRDO completes trials of drone-launched unmanned precision-guided missile. Defence Minister terms it a strategic milestone. Supreme Court rejects petition challenging center's decision to undertake caste enumeration. Severe heat wave grips north and central India. Temperature breaches 44 degree mark at several places. And in IPL cricket, host Kolkata Knight Riders to take on Mumbai Indians at Eden Gardens. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi will hold talks with his Italian counterpart Giorgia Meloni in Rome in a short while from now to discuss ways to boost India-Italy cooperation. With a focus on strengthening India-Italy relations, major pacts may be announced later in the day. Both leaders will exchange perspectives on a wide range of subjects. A series of programs will be held in Rome to mark the importance of bilateral relations between the two countries. PM Modi's visit will also focus specially

0: Chinese President Xi Jinping and Russian President Vladimir Putin held talks in Beijing today, focusing on bilateral relations and key global issues, including Iran, the Ukraine conflict and the international trade. China's foreign ministry said the talks would deepen the strategic partnership between Beijing and Moscow and enhance coordination through forums such as the United Nations, SCO and BRICS. Both nations also highlighted the growing cooperation in trade, energy and security, with bilateral trade surpassing $200 billion. The meeting came shortly after US President Donald Trump visited China for discussions with Xi on regional and global developments. U.S. President Donald Trump will attend the G7 summit in France next month amid growing tensions between Washington and several European allies over the Iran conflict. According to a White House official, the summit to be held from June 15 to 17 in Avion-les-Bains in southeastern France will focus on issues including artificial intelligence, trade, critical minerals, immigration and global security. In Congo, the death toll due to Ebola outbreak has risen to 136. Health Minister Roger Kamba informed this amid the spread of deadly virus that has gripped the eastern part of the country. According to Congolese health authorities, the country has recorded 543 suspected cases and 32 confirmed infections, while neighboring Uganda has reported 2 confirmed cases. On to sports. In IPL cricket, Kolkata Knight Riders will take on Mumbai Indians at the iconic Eden Gardens in Kolkata. The match will begin at 7:30 p.m. Yesterday, Rajasthan Royals defeated Lucknow Super Giants by 7 wickets in a high-scoring match in Jaipur last night, keeping their playoff hopes alive. Rajasthan Royals overhauled the massive target of 221 runs with 5 balls to spare. Benchmark domestic equity indices were trading marginally lower in the afternoon session. The Sensex dropped 101 points to 75,100, while the Nifty dipped 24 points to 23,594 when reports last came in. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi to hold talks with his Italian counterpart Giorgia Meloni in Rome in a short while from now to boost economic cooperation. Prime Minister Modi and Giorgia Meloni outline roadmap for India-Italy strategic partnership, highlight several economic initiatives in a joint article. DRDO completes trials of drone-launched unmanned precision-guided missile. Defence Minister terms it a strategic milestone. Supreme Court rejects petition challenging Centre's decision to undertake caste enumeration. Severe heatwave grips north and central India. Temperature breaches 44 degree mark at several places. And in IPL cricket, hosts Kolkata Knight Riders to take on Mumbai Indians at Eden Gardens. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर में रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री मोदी और जॉर्जिया मेलोनी ने एक साझा लेख में भारत इटली महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारी और आर्थिक पहलों का उल्लेख किया। डीआरडीओ ने मानव रहित ड्रोन मिसाइल यूएलपीजीएम MP3 का सफल परीक्षण किया। रक्षा मंत्री ने इसे महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। सर्वोच्च न्यायालय ने जाति आधारित जनगणना करने के केंद्र के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की। उत्तर और मध्य भारत में लू का प्रकोप जारी, कई स्थानों पर तापमान 44 डिग्री के पार। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर में रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता के साथ साथ मौजूदा वैश्विक परिदृश्य पर भी व्यापक बातचीत करेंगे। दोनों देशों के बीच आज कई महत्वपूर्ण समझौते होने की संभावना है। दोनों नेता कई विषयों पर अपने विचार साझा करेंगे। आज की बातचीत से भारत इटली की मित्रता को और बढ़ावा देने पर चर्चा की जाएगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों के महत्व को दर्शाने के लिए रोम में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज क्विरिनल पैलेस में इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेला से मुलाकात करेंगे, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया जाएगा। आज के कार्यक्रमों में प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ताएं, प्रेस वक्तव्य, समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान, द्विपक्षीय बैठकें और खाद्य एवं कृषि संगठन का दौरा शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी मोरस निग्रा ब्लैक मलबरी का पौधा भी लगाएंगे। ये एक ऐसी प्रजाति है जो अपने पाक, औषधीय और सांस्कृतिक महत्व के कारण भारत और इटली को प्रतीकात्मक रूप से जोड़ती है। रोम से सुपर्णा भाटिया।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि वे इटली के प्रधानमंत्री के साथ होने वाली बैठक को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि दोनों के बीच बातचीत में मुख्य रूप से भारत इटली संबंधों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। हाल के वर्षों में भारत इटली संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है और अब ये संबंध निर्णायक मोड़ पर पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने संयुक्त लेख में कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध सौहार्दपूर्ण मित्रता से विकसित होकर एक विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक पहुंच गए हैं। दोनों नेताओं ने कहा कि ऐसे समय में जब वैश्विक व्यवस्था में गहन परिवर्तन हो रहे हैं, भारत इटली साझेदारी उच्चतम राजनीतिक और संस्थागत स्तरों पर नियमित आदान प्रदान से निर्देशित है। दोनों नेताओं ने कहा कि उनका सहयोग इस साझा समझ को दर्शाता है कि 21वीं सदी में समृद्धि और सुरक्षा राष्ट्रों के नवाचार करने, ऊर्जा परिवर्तन का प्रबंधन करने और कूटनीतिक संप्रभुता को मजबूत करने की क्षमता पर निर्भर करेगी। दोनों नेताओं ने कहा कि भारत और यूरोपीय संघ के बीच प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौता दोनों दिशाओं में व्यापार और निवेश के प्रवाह को बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली के प्रसिद्ध चित्रकार जियाम पावलो टोमासिट्टी की भारतीय संस्कृति पर किए गए कार्यों की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि कलाकार ने इटली के रोम दौरे में वाराणसी पर बनी अपनी विशेष पेंटिंग प्रस्तुत की। प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री टोमासिट्टी का भारतीय संस्कृति के प्रति प्रेम 4 दशक से अधिक पुराना है। एक अन्य पोस्ट में श्री मोदी ने भारतीय नृत्य शैलियों के प्रति 5 इतालवी कलाकारों के प्रेम की भी प्रशंसा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज सियोल में दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री आन ग्यूबैक से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और तकनीकी सहयोग में साझा प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने भारत दक्षिण कोरिया रक्षा, रक्षा उद्योग और रणनीतिक सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि इस अत्यंत उपयोगी बैठक में दोनों देशों ने रक्षा साइबर सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौतों का आदान प्रदान किया। ये समझौता ज्ञापन भारत के राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय, कोरिया राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय और संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना सहयोग के बीच हुआ। रक्षा मंत्री ने कहा कि वे दोनों देशों के बीच विशेष रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए उत्सुक हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। देश ने आत्मनिर्भर भारत पहल के अंतर्गत स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने अनमैन्ड एरियल व्हीकल लॉन्च प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल ULPGM-V3 के अंतिम विकास परीक्षण को सफलतापूर्वक किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये देश के रक्षा क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
3: ये परीक्षण आंध्र प्रदेश में कुरनूल के पास DRDO की टेस्ट रेंज में एयर टू ग्राउंड और एयर टू एयर दोनों तरह से किए गए। इस दौरान मिसाइल प्रणाली को एक एडवांस्ड इंटीग्रेटेड ग्राउंड कंट्रोल सिस्टम के माध्यम से संचालित किया गया। इन परीक्षणों से विभिन्न परिस्थितियों में मिसाइल की सटीक मारक क्षमता, विश्वसनीयता और प्रभावशीलता प्रदर्शित होती है। इस मिसाइल को हैदराबाद के रिसर्च सेंटर इमारत ने DRDO के साथ मिलकर विकसित किया है। पूरी तरह से स्वदेशी रूप से निर्मित ये मिसाइल आत्मनिर्भर भारत पहल की बढ़ती उपयोगिता को दर्शाती है। इससे देश के भीतर रक्षा प्रणाली को और सुदृढ़ करने में सहायता मिलेगी। विजयवाड़ा से अल्लू मुरली की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यूएलपीजीएम V3 मिसाइल के सफल विकास परीक्षणों के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, रक्षा सह उत्पादन भागीदारों और उद्योग जगत की सराहना की है। उन्होंने टैंक रोधी भूमिका के लिए हवा से जमीन मोड़ और ड्रोन हेलीकॉप्टर

0: कॉप्टर तथा अन्य हवाई लक्ष्यों के लिए हवा से हवा मोड में इसकी प्रभावशीलता के बारे में जानकारी दी। श्री सिंह ने इसे रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। सर्वोच्च न्यायालय ने जनगणना 2027 के तहत जाति आधारित जनगणना कराने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका आज खारिज कर दी। अदालत ने कहा है कि ये मुद्दा सरकार के नीतिगत अधिकार क्षेत्र में आता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा है कि पिछड़े वर्गों के कल्याणकारी उपाय तैयार करने के लिए सरकार को उनकी संख्या जानना जरूरी है। पीठ ने कहा कि इस तरह के आंकड़े एकत्र करने में कोई बुराई नहीं है और मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र तथा सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से एक जनहित याचिका पर जवाब मांगा है। इसमें सरकारी कानूनी पैनलों और विधि अधिकारियों की नियुक्तियों में महिला वकीलों के लिए 30% आरक्षण की मांग की गई है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने एक ट्रस्ट की याचिका पर नोटिस जारी किया। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि भाजपा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता उत्तर बंगाल का सर्वांगीण विकास है। उन्होंने कहा कि वो विकास परियोजनाओं की समीक्षा और सरकारी योजनाओं के प्रभावों की निगरानी के लिए हर महीने एक बार उत्तर बंगाल का दौरा करेंगे। उन्होंने कहा कि उत्तर बंगाल विकास मंत्री उत्तर बंगाल सचिवालय उत्तरकन्या सिलीगुड़ी में सुबह 9 बजे से 11 बजे तक जनता दरबार का आयोजन करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि जनता दरबार के बाद दिन में 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक अधिकारियों के साथ प्रशासनिक समीक्षा बैठक होगी और उसके बाद उसी दिन दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक विकास मंत्री क्षेत्र के सभी सांसदों और विधायकों के साथ विकास कार्यों को गति देने के लिए समीक्षा बैठक करेंगे। केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि सरकार स्मार्ट विनियमन और उत्तरदायी शासन के माध्यम से बाजार में निष्पक्षता बढ़ाकर नियामक बोझ को कम करने के लिए प्रतिबद्ध है। विश्व मापन दिवस 2026 के अवसर पर वर्चुअल रूप से आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह परिकल्पना की है कि भारतीय उत्पादों की गुणवत्ता वैश्विक मानकों और पर्यावरण के अनुकूल होनी चाहिए। राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र के महानिदेशक नवीन कुमार सिंह ने आज कहा कि देश के डिजिटल अर्थव्यवस्था से वर्ष 2030 तक देश के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में लगभग 20% के योगदान देने की उम्मीद है। वे नई दिल्ली में फिक्की के साइबरकॉम के 7वें संस्करण के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। राष्ट्रीय महिला आयोग ने मध्य प्रदेश के भोपाल में नोएडा की 33 वर्षीय महिला की संदिग्ध मौत का स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर ने मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को पत्र लिखकर त्वरित निष्पक्ष और समयबद्ध जांच सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। महिला आयोग ने 7 दिन में विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट भी मांगी है। पंजाब पुलिस ने दुबई स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ तस्करी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है जो सीमावर्ती राज्य पंजाब और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मादक पदार्थों की तस्करी के लिए अबू धाबी से काम कर रहा था। पुलिस ने 14 किलोग्राम मादक पदार्थों के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूरी का अंतिम संस्कार आज हरिद्वार में पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनके निधन को राज्य के लिए अपूर्णीय क्षति बताया।
1: मेजर जनरल भुवन चंद खंडूरी जी का जाना पूरे राज्य के लिए और देश के लिए बहुत अपूर्णीय क्षति है और उन्होंने सेना के अधिकारी के रूप में देश की रक्षा के लिए अपनी सेवाएं दी, अभूतपूर्व योगदान दिया। उसके बाद भारत सरकार में मंत्री के नाते और राज्य में मुख्यमंत्री के नाते उन्होंने शुचिता, पारदर्शिता और अनुशासन और समय की पाबंदी, ऐसे बहुत सारे अनुकरणीय जो कार्य हैं अपने समय में किए, वो हम सभी के लिए प्रेरणा के स्रोत रहेंगे।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @TIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। उत्तर पश्चिमी और मध्य भारत में लू का प्रकोप जारी है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिन तक दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, ओडिशा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तराखंड में लू की स्थिति बने रहने का अनुमान व्यक्त किया है। राजस्थान के अधिकांश जिले भी इस समय भीषण लू की चपेट में हैं। मौसम विभाग ने आज राज्य के 2 जिलों में लू की स्थिति को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जबकि 14 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट।
2: प्रदेश में भीषण गर्मी और गर्म हवाएं लोगों को परेशान कर रही हैं। ज्यादातर जिलों में दिन का पारा 42 से 46 डिग्री वहीं रात का तापमान 46 से 31 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है। इस बीच चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने अस्पतालों में हीट वेव प्रबंधन को लेकर सभी जरूरी इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। अस्पतालों में हीट स्ट्रोक के मरीजों के लिए अलग से बेड आरक्षित रखने, जरूरी दवाइयां उपलब्ध कराने के साथ छाया और पेयजल का प्रबंध करने को कहा गया है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
0: पंजाब और हरियाणा में भी भीषण गर्मी जारी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मौसम विभाग ने दोनों राज्यों में गर्मी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।
3: चंडीगढ़ स्थित मौसम विभाग के डायरेक्टर सुरेंद्र पाल ने आकाशवाणी को बताया कि आने वाले 3-4 दिनों में मौसम शुष्क रहेगा और तापमान बढ़ेगा। दोनों राज्यों के पश्चिमी जिलों में लू की स्थिति रहेगी। पंजाब में ये जिले अमृतसर, फिरोजपुर, तरनतारन, मानसा, संगरूर, बठिंडा और मुक्तसर होंगे और हरियाणा में हिसार, रोहतक, झज्जर, भिवानी, गुरुग्राम और फरीदाबाद में सबसे ज्यादा गर्मी महसूस होगी। पिछले 24 घंटों में पंजाब में फरीदकोट 47.3 डिग्री सेल्सियस और हरियाणा में रोहतक 46.9 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ सबसे गर्म जिले रहे। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
0: चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आज पेइचिंग में द्विपक्षीय संबंधों, ईरान यूक्रेन संघर्ष और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सहित प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर बातचीत की। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वार्ता से पेइचिंग और मॉस्को के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूती मिलेगी और संयुक्त राष्ट्र, दक्षिण अफ्रीका परिषद और ब्रिक्स जैसे मंचों के माध्यम से समन्वय बढ़ेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अगले महीने फ्रांस में आयोजित होने वाले G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। पश्चिम एशिया संघर्ष को लेकर अमेरिका और कई यूरोपीय सहयोगियों में बढ़ते तनाव के बीच ट्रंप इस सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज मामूली गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 101 अंक गिरकर 75,100 जबकि निफ्टी 24 अंक की गिरावट के साथ 23,594 पर कारोबार कर रहा था। आईपीएल क्रिकेट में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। ये मैच कोलकाता में शाम 7:30 बजे शुरू होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर में रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री मोदी और जॉर्जिया मेलोनी ने एक साझा लेख में भारत इटली महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारी और आर्थिक पहलों का उल्लेख किया। डीआरडीओ ने मानव रहित ड्रोन मिसाइल ULBGM-V3 का सफल परीक्षण किया। रक्षा मंत्री ने इसे महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। सर्वोच्च न्यायालय ने जाति आधारित जनगणना करने के केंद्र के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की। उत्तर और मध्य भारत में लू का प्रकोप जारी और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। FM 100.5 MHz पर दोपहर के 2:30 हुए हैं। आप सुनिए कार्यक्रम सैनिकों के लिए।

सैनिक साथियों जय हिंद। स्वागत है आपका कार्यक्रम सैनिकों के लिए में। आज कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं एक ऐसे नायक की जिसने सीमा पर देश की रक्षा की और सियासत में आकर ईमानदारी की नई परिभाषा लिखी। आज कार्यक्रम में हम बात करेंगे भारतीय सेना के एक ऐसे अनुशासित कर्मठ और प्रेरणादायक अधिकारी की जिन्होंने अपना पूरा जीवन देश सेवा को समर्पित किया। मैं हूं आपकी उद्घोषिका और अगले आधे घंटे हम बात करेंगे भारतीय सेना के वीर अधिकारी मेजर जनरल भुवन चंद खंडूरी जी की।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सैनिकों के लिए। कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे हैं भुवन चंद खंडूरी जी की। इनका जन्म 1 अक्टूबर 1934 को देहरादून में हुआ। बचपन से ही उनमें अनुशासन, मेहनत और देशभक्ति की भावना थी। उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद भारतीय सेना को अपना जीवन समर्पित करने का निर्णय लिया। सन 1954 में वो भारतीय सेना की कोर ऑफ इंजीनियर्स में शामिल हुए। ये सेना की वो शाखा है जो कठिन परिस्थितियों में पुल, सड़कें, सुरंग और सैन्य ढांचे तैयार करती है। किसी भी युद्ध में सेना की गति और मजबूती काफ़ी हद तक इंजीनियरिंग कोर पर निर्भर करती है। खंडूरी जी ने अपने शुरुआती वर्षों में दुर्गम पर्वतीय इलाकों में सेवा दी। बर्फीली चोटियां, सीमावर्ती क्षेत्र और कठिन मौसम, हर परिस्थिति में उन्होंने सैनिक कर्तव्य को सर्वोपरि रखा। उनके साथ ही अधिकारी बताते थे कि वो समय के बेहद पाबंद और अनुशासन प्रिय अधिकारी थे। वो स्वयं कठिनाइयों का सामना करते और अपने जवानों का मनोबल हमेशा ऊँचा रखते थे।

यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर दोपहर के 2:44 हुए हैं। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सैनिकों के लिए। कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे हैं भुवन चंद खंडूरी की। सन 1971 के भारत पाक युद्ध के दौरान भुवन चंद खंडूरी ने महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाई। उस समय वो इंजीनियरिंग रेजिमेंट के कमांडर रहे। युद्ध के समय इंजीनियरिंग कोर का काम केवल निर्माण तक सीमित नहीं होता, बल्कि सेना के लिए रास्ते खोलना, पुल तैयार करना और दुश्मन की बाधाओं को हटाना भी होता है। कहा जाता है किसी भी सेना की ताकत केवल हथियारों से नहीं, बल्कि उसकी तैयारी और रणनीतिक व्यवस्था से तय होती है। खंडूरी जी इसी व्यवस्था के मजबूत स्तंभ बने। उनकी कार्यशैली में तीन बातें सबसे अधिक दिखाई देती थी, अनुशासन, ईमानदारी और सैनिकों के प्रति सम्मान। वो हमेशा कहते थे कि एक अधिकारी की सबसे बड़ी जिम्मेदारी अपने जवानों का विश्वास जीतना है। उनकी नेतृत्व क्षमता के कारण उन्हें सेना में कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य करने का अवसर मिला। उन्होंने इंजीनियर ब्रिगेड की कमान संभाली, सेना मुख्यालय में महत्वपूर्ण दायित्व निभाए और बाद में चीफ इंजीनियर जैसे पदों पर भी कार्य किया।

श्रोताओं, सैनिक जीवन आसान नहीं होता, विशेष रूप से उन अधिकारियों के लिए जो सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क और सैन्य ढांचे तैयार करने का काम करते हैं। भारत के पर्वतीय क्षेत्रों, विशेषकर हिमालयी सीमाओं में काम करना अत्यंत कठिन माना जाता है। बर्फ, भूस्खलन, ऑक्सीजन की कमी और दुश्मन की निगरानी, इन सबके बीच सेना के इंजीनियर जवान लगातार काम करते हैं। भुवन चंद खंडूरी जी ने ऐसे ही क्षेत्रों में वर्षों तक सेवा की। उन्होंने सीमावर्ती इलाकों में सड़क निर्माण और सामरिक ढांचों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। भारतीय सेना और सीमा सड़क संगठन यानी BRO का कार्य देश की सुरक्षा में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। कठिन पहाड़ी क्षेत्रों में सड़कें बनाना केवल विकास नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा का हिस्सा होता है। बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन के कार्यों को सेना की रीढ़ माना जाता है, क्योंकि यही संगठन सीमाओं तक सेना की पहुंच सुनिश्चित करता है।

नजर उस नजर को झुका के ही दम लेंगे हम। तेरी जान फूटी जो कहर की नजर उस नजर

श्रोताओं, भुवन चंद खंडूरी जी को उनकी उत्कृष्ट सैन्य सेवाओं के लिए अति विशिष्ट सेवा पदक यानी AVSM से सम्मानित किया गया। ये सम्मान उन अधिकारियों को दिया जाता है जिन्होंने शांति या युद्ध काल में असाधारण सेवा दी हो। उनके सहकर्मी उन्हें जनरल साहब कहकर सम्मान देते थे। उनकी पहचान एक सख्त लेकिन निष्पक्ष अधिकारी की थी। सेना में लगभग 36 वर्षों की सेवा के बाद वो मेजर जनरल के पद से सेवानिवृत्त हुए, लेकिन सेना से रिटायर होने के बाद भी उनके व्यक्तित्व में वही अनुशासन और राष्ट्रभक्ति दिखाई देती रही।

देश सेवा का मार्ग कठिन जरूर होता है, लेकिन वही जीवन सबसे महान कहलाता है जो राष्ट्र के काम आए। मेजर जनरल भुवन चंद खंडूरी जी को हमारी विनम्र श्रद्धांजलि और सलाम। इसी के साथ मैं लेती हूँ आपसे विदा, सैनिक साथियों जय हिंद।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सैनिकों के लिए। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है, FM 100.5 MHz पर। दोपहर के 3 बजे हैं, आप सुनिए न्यूज हेडलाइंस।
1: ये आकाशवाणी देहरादून है। अब आप आशुतोष उनियाल से सुनेंगे न्यूज हेडलाइंस। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूड़ी का अंतिम संस्कार हरिद्वार में पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर सहित प्रदेश के कई वरिष्ठ नेता उन्हें अंतिम विदाई देने हरिद्वार पहुंचे। मुख्यमंत्री ने उनके निधन को राज्य के लिए अपूर्णीय क्षति बताया। इससे पहले उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूर्व मुख्यमंत्री के देहरादून आवास पर उनके पार्थिव शरीर पर पुष्प चक्र अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इसके बाद देहरादून स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण सहित कैबिनेट मंत्रियों, विधायकों, पार्टी पदाधिकारियों तथा कार्यकर्ताओं ने उनके पार्थिव शरीर पर पुष्प चक्र अर्पित किए। देहरादून में रिस्पना पुल के पास स्थित एक निजी अस्पताल में आग लगने से एक महिला की मौत हो गई, जबकि 10 अन्य झुलस गए। सभी घायलों को उपचार के लिए निकटवर्ती अस्पताल में भर्ती किया गया है। आग लगने के कारण AC का शॉर्ट सर्किट होना बताया जा रहा है। ऑनलाइन दवा बिक्री और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के बढ़ते प्रभाव के खिलाफ प्रदेश के विभिन्न जिलों में मेडिकल स्टोर संचालकों ने अपने प्रतिष्ठान बंद रखकर विरोध दर्ज कराया। ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट तथा उत्तराखंड औषधि व्यवसायी महासंघ के आह्वान पर दवा व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान बंद रखे। पौड़ी गढ़वाल में श्रीनगर क्षेत्र के अंतर्गत डूंगरी पंथ रेलवे सुरंग का SDRF और NDRF के संयुक्त दल ने विस्तृत निरीक्षण किया। इस दौरान सुरंग की सुरक्षा व्यवस्थाओं, प्रवेश व निकासी मार्गों, आपातकालीन बचाव व्यवस्थाओं और संभावित आपदा की स्थिति में राहत और बचाव कार्यों की तैयारियों का आकलन किया गया। चमोली जिले में स्थित सिखों के पवित्र तीर्थ स्थल हेमकुंड साहिब के कपाट आगामी शनिवार को श्रद्धालुओं के लिए खोले जाएंगे। इसके लिए जिला प्रशासन, सेना और हेमकुंड साहिब ट्रस्ट द्वारा तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। और प्रदेश में गर्मी का असर लगातार बढ़ता जा रहा है। मौसम विभाग ने हरिद्वार, देहरादून, पौड़ी, उधम सिंह नगर, नैनीताल और उत्तरकाशी के आसपास के क्षेत्रों में आज और कल

0: कहीं कहीं लू चलने की संभावना जताई है। आप सुन रहे थे न्यूज हेडलाइंस।
1: यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है, एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज पर। दोपहर के 3:02 हुए हैं। अब सुनिए गाने नई तराने।

फिल्म टशन का गीत अभी आपने सुना महालक्ष्मी अय्यर और उदित नारायण की आवाज़ में। गीत के बोल लिखे थे कौशल मुनीर ने और संगीत निर्देशन था विशाल शेखर का। गाने नई तराने प्रसारित किया जा रहा है FM 100.5 MHz पर आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से। अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं कुमार शानू की आवाज़ में, फिल्म का नाम जख्म। संगीत निर्देशन है MM करीम का और शब्द रचना आनंद बख्शी की।

0: पूरे उत्तराखंड में शुरू हो चुकी है जनगणना। पहले चरण में 25 अप्रैल से 24 मई 2026 तक प्रगणक द्वारा घर घर सर्वे किया जाएगा। आपकी सभी जानकारी पूरी तरह सुरक्षित और गोपनीय रखी जाएगी। कृपया सही और पूर्ण जानकारी दें, यही आपके क्षेत्र के विकास की नींव है। जनगणना 2027 आपकी भागीदारी, देश की प्रगति। ये सूचना जनगणना कार्य निदेशालय उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
1: FM 107.5 MHz पर यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। दोपहर के 3:14 हुए हैं। आप सुन रहे हैं गाने नए तराने। अब सुनिए अगला गीत हरिहरन और चित्रा की आवाज़ में, फिल्म का नाम जिद्दी। संगीत निर्देशन है दिलीप सेन का और शब्द रचना समीर सेन की।

0: गाने नई तरहने प्रसारित किया जा रहा है एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से। अगला गीत अब आपको सुनवा रहे हैं फिल्म युवा से मधुश्री और एआर रहमान की आवाज़ में। गीत के बोल लिखे हैं महबूब ने और संगीत निर्देशन एआर रहमान का।
1: हुमा हुमा हुमा

फिल्म सुल्तान का गीत अभी आपने सुना, नेहा भसीन की आवाज़ में। गीत के बोल लिखे थे इरशाद कामिल ने और संगीत निर्देशन था विशाल शेखर का। गाने नए तरह ने प्रसारित किया जा रहा है फिल्म 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से। अब आपको सुनवाते हैं ये अगला गीत, फिल्म का नाम सिंग इज किंग। संगीतकार हैं प्रीतम और शब्द रचना मयूर पुरी की।

सोनू निगम की आवाज में फिर साथियों का गीत अभी आपने सुना। गीत के बोल लिखे थे गुलजार ने और संगीतकार AR रहमान थे। गाने नए तराने आप सुन रहे हैं FM 100.5 MHz पर आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से। अगला गीत अब आपको सुनवा रहे हैं रूप कुमार राठौर की आवाज में। फिल्म का नाम है रहना है तेरे दिल में। संगीत निर्देशन है हरीश जयराज का और गीत के बोल लिखे हैं समीर ने।

0: पूरे उत्तराखंड में शुरू हो चुकी है जनगणना। पहले चरण में 25 अप्रैल से 24 मई 2026 तक प्रगणक द्वारा घर घर सर्वे किया जाएगा। आपकी सभी जानकारी पूरी तरह सुरक्षित और गोपनीय रखी जाएगी। कृपया सही और पूर्ण जानकारी दें, यही आपके क्षेत्र के विकास की नींव है। जनगणना 2027, आपकी भागीदारी, देश की प्रगति। ये सूचना जनगणना कार्य निदेशालय उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
1: FM 100.5 MHz पर यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। आप सुन रहे हैं गाने नए तराने। अगला गीत अब आपको सुनवा रहे हैं अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज में। फिल्म का नाम कयामत से कयामत तक। संगीत निर्देशन है आनंद मिलिंद का और गीत के बोल लिखे हैं मजरूह सुल्तानपुरी ने।

FM 14.5 MHz पर यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। दोपहर के 3:55 हुए हैं। अब आपको सुनवा रहे हैं गाने नए तराने में अंतिम गीत फिल्म फिलौरी से रोमी और पावनी पांडे की आवाज में। गीत के बोल लिखे हैं अनविता दत्त ने और संगीत निर्देशन शाश्वत सचदेव और जसलीन का।

0: अभी आप सुन रहे थे गाने नए तराने, FM 107.5 MHz पर। यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। शाम के 4 बजे हैं, आप सुनिए न्यूज हेडलाइंस।
1: ये आकाशवाणी देहरादून है। अब आप आशुतोष सुनियाल से सुनेंगे न्यूज हेडलाइंस। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूड़ी को हरिद्वार स्थित खड़खड़ी शमशान घाट पर पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। सेना और पुलिस के जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर देकर उन्हें अंतिम सलामी दी। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर सहित प्रदेश के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। मेजर जनरल खंडूड़ी की अंतिम यात्रा में जनसैलाब उमड़ पड़ा और हर वर्ग के लोगों ने नम आंखों से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। देहरादून में रिस्पना पुल के पास स्थित एक निजी अस्पताल में आग लगने से एक महिला की मौत हो गई, जबकि 10 अन्य झुलस गई। सभी घायलों को उपचार के लिए निकटवर्ती अस्पताल में भर्ती किया गया है। आग लगने का कारण अस्पताल में एसी का शॉर्ट सर्किट होना बताया जा रहा है। भारतीय सेना की ओर से अग्निवीर भर्ती के लिए 1 जून से 12 जून के बीच ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा कराई जा रही है। कुमाऊं मंडल के अल्मोड़ा, बागेश्वर, नैनीताल और उधम सिंह नगर जिलों के जिन अभ्यर्थियों ने हल्द्वानी परीक्षा केंद्र का चयन किया है, उनके लिए 5 स्थानों पर परीक्षा केंद्र निर्धारित किए गए हैं। अवैध और अनियंत्रित ऑनलाइन दवा बिक्री के विरोध में प्रदेश के विभिन्न जिले के मेडिकल स्टोर संचालकों ने एक दिवसीय सांकेतिक हड़ताल कर प्रदर्शन किया। ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट और उत्तरांचल औषधि व्यवसायी महासंघ के आह्वान पर केमिस्ट और ड्रगिस्ट ने अपने प्रतिष्ठान बंद रखकर आंदोलन को समर्थन दिया। पौड़ी जिले के उत्तरी झंडीचौड़ में बाल विकास विभाग द्वारा आधुनिक वर्किंग वुमेन हॉस्टल का निर्माण किया जा रहा है। लगभग 3 करोड़ 60 लाख रुपए की लागत से बन रहे इस हॉस्टल से क्षेत्र की कामकाजी महिलाएं सुरक्षित वातावरण में रह सकेंगी। और प्रदेश में गर्मी का असर लगातार बढ़ता जा रहा है। मौसम विभाग ने हरिद्वार, देहरादून, पौड़ी, उधम सिंह नगर, नैनीताल और उत्तरकाशी के आसपास के क्षेत्रों में आज और कल कहीं कहीं लू चलने की संभावना जताई है। आप सुन रहे थे न्यूज हेडलाइंस।
0: यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है, FM 107.5 MHz पर। शाम के 4:02 हुए हैं, आप सुनिए कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत, जिसके अंतर्गत अब आप सुनेंगे पंडित कुमार गंधर्व का ख्याल गायन। आप प्रस्तुत कर रहे हैं राग भीमपलासी।

कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे पंडित कुमार गंधर्व का ख्याल गायन। आप प्रस्तुत कर रहे थे राग भीम पलासी। FM 100.5 MHz पर यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। शाम के 4:30 हुए हैं। अब सुनिए कार्यक्रम एक कलाकार।

श्रोताओं, स्वागत है आपका कार्यक्रम एक कलाकार में, जहां हम आपको रूबरू करवाते हैं बॉलीवुड की किसी एक नामचीन हस्ती से। मैं हूं आपकी उद्घोषिका और आज हम आपको लेकर चलेंगे हिंदी सिनेमा के स्वर्णिम दौर में, उस दौर में जब फिल्मों में मधुर संगीत था, सादगी थी, रोमांस था और पारिवारिक मनोरंजन का खूबसूरत संसार था। आज का हमारा कार्यक्रम समर्पित है हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध निर्देशक और निर्माता सुबोध मुखर्जी को। सुबोध मुखर्जी उन फिल्मकारों में से थे जिन्होंने हिंदी फिल्मों को नई शैली, नई चमक और नया संगीत दिया। उनकी फिल्मों में मनोरंजन के साथ भावनाएं भी थीं और यही कारण है कि आज भी उनकी फिल्में और गीत लोगों के दिलों में बसे हुए हैं। इनका जन्म 1921 को 14 अप्रैल में झांसी में हुआ था। वो प्रसिद्ध मुखर्जी परिवार से संबंध रखते थे जिसने हिंदी सिनेमा को कई कलाकार और फिल्मकार दिए। उनके बड़े भाई सचधन मुखर्जी हिंदी फिल्म जगत के प्रतिष्ठित निर्माता थे। फिल्मों का माहौल बचपन से ही उनके आसपास था, इसलिए उनका झुकाव भी सिनेमा की ओर गया और धीरे धीरे उन्होंने फिल्म निर्माण की बारीकियां सीखी और फिर निर्देशन के क्षेत्र में कदम रखा। श्रोताओं, अब कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस शानदार गीत के साथ जिसने हिंदी सिनेमा में रोमांस की नई पहचान बनाई।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक कलाकार, और हमारे आज के कलाकार हैं फिल्म निर्देशक सुबोध मुखर्जी। सुबोध मुखर्जी एक दूरदर्शी निर्माता थे। वो जानते थे कि दर्शक क्या देखना चाहते हैं। उनकी फिल्मों में कहानी, संगीत और मनोरंजन का एक ऐसा मेल होता था कि फिल्में लंबे समय तक याद रखी जाती थी। उन्होंने 1955 में फिल्म मुनीम जी का निर्देशन किया। इस फिल्म में देवानंद और नलिनी जयवंत मुख्य भूमिकाओं में थे। सुबोध मुखर्जी को एक प्रतिभाशाली निर्देशक के रूप में इस फिल्म से पहचान मिली। अब आपको सुनवाते हैं उसी दौर का एक यादगार गीत।

श्रोताओं, सुबोध मुखर्जी की फिल्मों में संगीत हमेशा बहुत महत्वपूर्ण रहा। वो मानते थे कि अच्छी फिल्में वही हैं जिसके गीत दर्शकों के दिलों तक पहुंच जाएं। उनकी फिल्मों के गीतों को आवाज दी थी महान गायकों मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर, किशोर कुमार और आशा भोसले ने। 1957 में आई फिल्म पेइंग गेस्ट भी उनके चर्चित फिल्मों में शामिल रही। इसमें रोमांस, कॉमेडी और संगीत का शानदार मेल देखने को मिला। पेश है फिल्म पेइंग गेस्ट का ये बेहद खूबसूरत गीत।

FM 100.5 MHz पर यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। शाम के 4:45 हुए हैं। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक कलाकार। हमारे आज के कलाकार हैं फिल्म निर्देशक सुबोध मुखर्जी। श्रोता, 1959 में आई फिल्म लव मैरिज युवाओं के बीच काफी लोकप्रिय हुई। ये फिल्म उस समय के समाज में बदलती सोच को दर्शाती थी। फिल्म में प्रेम, परिवार और आधुनिक विचारों का सुंदर संतुलन देखने को मिला। सुबोध मुखर्जी हमेशा ऐसी कहानियां चुनते थे जो आम लोगों से जुड़ी हों।

0: दिल पे चले कटारी।
1: है मीठी छुरी ये जालिम नजर तुम्हारी,
0: तू झूम के चले तो दिल पे चले।

श्रोताओं, अगर हम सुबोध मुखर्जी के फिल्मी सफ़र की बात करें तो ये कहना गलत नहीं होगा कि उन्होंने हिंदी सिनेमा को एक नया अंदाज दिया। उनकी फिल्मों में कलरफुल लोकेशन, स्टाइलिश प्रस्तुति और खूबसूरत संगीत का अद्भुत संगम देखने को मिलता था। 1964 में आई फिल्म अप्रैल फूल भी उनके चर्चित फिल्मों में रही। इसमें हल्की फुल्की कॉमेडी और रोमांस ने दर्शकों को खूब मनोरंजित किया।

श्रोताओं, सुबोध मुखर्जी का नाम हिंदी सिनेमा के उन फिल्मकारों में लिया जाता है जिन्होंने मनोरंजन को गरिमा और मधुरता के साथ प्रस्तुत किया। उन्होंने लगभग 3 दशकों तक हिंदी सिनेमा में सक्रिय रहकर दर्शकों को बेहतरीन फिल्में दी। 21 मई सन 2005 को सुबोध मुखर्जी इस दुनिया को अलविदा कह गए, लेकिन उनकी बनाई फिल्में आज भी हमें मुस्कुराना, गुनगुनाना और जीवन को खूबसूरती से जीना सिखाती है। श्रोताओं, छोड़े जा रहे हैं आपको इस गीत के साथ। सुनते रहिए आकाशवाणी का देहरादून केंद्र FM 100.5 MHz पर।

इसी अंतिम गीत के साथ हमारा आज का कार्यक्रम एक कलाकार यहीं पर संपन्न होता है। आज का कार्यक्रम केंद्रित था फिल्म निर्देशक सुबोध मुखर्जी पर। FM 100.5 MHz पर यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। शाम के 5 बजे हैं। अब आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और इटली द्विपक्षीय व्यापार को 20 बिलियन यूरो तक पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं। इटली के रोम में प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच साझेदारी में तकनीक और नवाचार मुख्य केंद्र हैं।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि श्री मेलोनी के नेतृत्व में दोनों देशों के संबंधों को नई दिशा और ऊर्जा मिली है। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों की सभ्यता बहुत पुरानी है।
1: रोम को विश्व में इटर्नल सिटी के रूप में जाना जाता है। भारत में मेरी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी काशी उसको भी अनादि और शाश्वत नगर माना जाता है। जब दो सभ्यताएं मिलती हैं तो बातचीत केवल एजेंडा तक सीमित नहीं होती। इसमें इतिहास की गहराई, भविष्य की दृष्टि और मित्रता की सहजता तीनों साथ दिखाई देते हैं।
0: हाल के वर्षों में भारत इटली संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है और अब ये संबंध निर्णायक मोड़ पर पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री मेलोनी ने संयुक्त लेख में कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध सौहार्दपूर्ण मित्रता से विकसित होकर एक विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक पहुंच गए हैं। ये संबंध स्वतंत्रता, लोकतंत्र और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण के मूल्यों पर आधारित हैं। दोनों नेताओं ने कहा कि ऐसे समय में जब वैश्विक व्यवस्था में गहन परिवर्तन हो रहे हैं, भारत इटली साझेदारी उच्चतम राजनीतिक और संस्थागत स्तर पर नियमित आदान प्रदान से निर्देशित है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सियोल में दक्षिण कोरिया के रक्षा अधिग्रहण कार्यक्रम प्रशासन के मंत्री ली जोंग चुल से मुलाकात की। बैठक के दौरान दोनों पक्ष संयुक्त विकास, संयुक्त उत्पादन और संयुक्त निर्यात के अवसर पैदा करने के लिए आपसी प्रयासों का लाभ उठाने पर सहमत हुए। दोनों देशों के नवाचार इकोसिस्टम को आपस में जोड़ने वाली महत्वाकांक्षी काइंड एक्स पहल की क्षमता को पूरी तरह से इस्तेमाल करने के लिए एक रूपरेखा पर भी चर्चा की गई। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने अनमैन्ड एरियल व्हीकल लॉन्च्ड प्रिसिजन्स गाइडेड मिसाइल के अंतिम विकास परीक्षण को सफलतापूर्वक पूरा किया। यह आत्मनिर्भर भारत की पहल के अंतर्गत स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सफल परीक्षण के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, रक्षा सह उत्पादन भागीदारों और उद्योग जगत की सराहना की। उन्होंने इसे रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक रणनीतिक उपलब्धि बताया। सर्वोच्च न्यायालय ने जनगणना 2027 के अंतर्गत जाति गणना कराने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा कि ये मुद्दा सरकार के नीतिगत अधिकार क्षेत्र में आता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि पिछड़े वर्गों के लिए कल्याण

0: सरकारी उपाय तैयार करने के लिए सरकार को उनकी संख्या जानना जरूरी है। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र तथा सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में एक जनहित याचिका का जवाब मांगा है। इसमें सरकारी कानूनी पैनलों और विधि अधिकारियों की नियुक्ति में महिला वकीलों के लिए 30% आरक्षण की मांग की गई है। सरकार ने जम्मू कश्मीर के गांदरबल में कश्मीरी लड़ाकों द्वारा सेना के वाहन पर हमले के बाद सैनिकों के मारे जाने की सोशल मीडिया की खबरों का खंडन किया है। पत्र सूचना कार्यालय की तंत्र जांच इकाई ने बताया कि क्षेत्र में ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे कोलकाता में कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। मुंबई प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो चुकी है, जबकि कोलकाता प्लेऑफ में जाने के लिए अगले दोनों मैचों में जीत के साथ साथ दूसरे टीम के परिणाम पर निर्भर है। मौसम विभाग ने इस सप्ताह उत्तर पश्चिमी और मध्य क्षेत्र में लू की आशंका व्यक्त की है। अगले 4 दिन तक दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, ओडिशा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना, उत्तराखंड में लू चल सकती है, जबकि असम, मेघालय, केरल, माहे, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कल तेज बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी देहरादून को FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 5:05 हो रहे हैं। अब आप सुनेंगे आज की प्रसारण सभा में प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की समय संबंधी जानकारी।

श्रोताओं, अब से थोड़ी देर बाद यानी शाम के 5:10 पर आप सुनेंगे युवा साथियों का दैनिक कार्यक्रम युवाणी। पर्वतीय अंचलों के दैनिक कार्यक्रम ग्राम जगत का समय रहेगा शाम 5:45 पर। किसान श्रोताओं के दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत का समय रहेगा शाम 7:00।

गढ़वाली में प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे शाम 6:50 पर, साथ ही शाम 7:30 पर आप सुनेंगे कुमाऊनी में प्रादेशिक समाचार। कार्यक्रम फिल्म संगीत का समय रहेगा शाम 7:40 पर और रात्रि 8:30 पर।

शाम 7:50 पर आप सुनेंगे आरएनयू देहरादून का विशेष कार्यक्रम राज्य दर्शन। रात्रि 8:15 पर आप सुनेंगे सुगम संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत हरिओम शरण के भजन। फरमाइशी गीतों के कार्यक्रम आपकी फरमाइश का समय रहेगा रात्रि 10:00।

कार्यक्रम स्पॉटलाइट आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रात्रि 9:15 पर। श्रोताओं, ये तो रही जानकारी हमारी आज की प्रसारण सभा में प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की। अब आप सुनेंगे कल की प्रसारण सभा में प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की समय संबंधी जानकारी।

प्रातः 6:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम चिंतन, प्रातः 7:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम शैल संगीत के अंतर्गत रतन सिंह जौनसारी के गाए जौनसारी गीत। प्रातःकालीन सूचना परक कार्यक्रम नमस्कार देहरादून का समय रहेगा प्रातः 8:30। अरेनु देहरादून की विशेष प्रस्तुति जिले की चिट्ठी का समय रहेगा प्रातः 9:00।

दोपहर 12:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम महिला जगत। प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी का समय रहेगा अपराह्न 1:30 पर। सैनिकों के लिए विशेष कार्यक्रम का समय रहेगा अपराह्न 2:30। अपराह्न 3:02 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम गाने नए तराने।

श्रोताओं, ये तो रही जानकारी कल की प्रसारण सभा में प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की। FM 100.5 MHz पर ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। शाम के 5:10 होने को हैं। अब आप सुनेंगे युवा श्रोताओं का दैनिक कार्यक्रम युववाणी।

हेलो, गुड वाली इवनिंग दोस्तों. आप सुन रहे हैं आपका अपना फेवरेट प्रोग्राम युववाणी, और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त सिमरन अग्रवाल. उम्मीद करती हूं आप सभी एकदम स्वस्थ होंगे और अपने डेली रूटीन को देहरादून की चिपचिपी गर्मी के साथ हेल्दी डाइट लेके एडजस्ट कर रहे होंगे. क्यों दोस्तों, सही कह रही हो ना, आजकल बहुत चिपचिपी गर्मी हो रही है. और दोस्तों, ये हमारा, मुझे लगता है, एक रूटीन बन जाना चाहिए कि अब हम अपनी डाइट में कुछ अच्छी चीज़ें भी ऐड ऑन करनी होगी ताकि जो सन का इफेक्ट है हमारी बॉडी पर ना पड़ सके. और दोस्तों, चलिए इस आज खूबसूरत सी शाम की शुरुआत करते हैं एक प्यारी सी शायरी की पंक्तियों के साथ. लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. दोस्तों, जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है, अगर हिम्मत हो तो हर मुश्किल आसान लगती है, और अगर हौसला टूट जाए तो छोटी सी प्रॉब्लम भी बड़ी लगने लग जाती है. तो आज के सफर में चलिए बात करते हैं पीएमई विद्या योजना की. पर उससे पहले दोस्तों, हमारे पास है आपके लिए एक ब्यूटीफुल सा ट्रैक फ्रॉम द मूवी लूडो से, जिसको आवाज़ दी है अरिजीत सिंह ने. तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि इसके बाद हम करेंगे आपसे बहुत सारी बातें.

0: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
1: पारदर्शिता एवं जन कल्याण को प्राथमिकता देते हुए उत्तराखंड में लागू की गई समान नागरिक संहिता, नकल विरोधी कानून, भू कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून, अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम 2025 के माध्यम से प्रशासनिक व्यवस्था को किया गया और भी मजबूत।
0: मानस खंड मंदिर माला मिशन, श्री केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के पुनर्विकास एवं शीतकालीन यात्रा जैसी पहलुओं से पर्यटकों की संख्या बढ़कर पहुंची 6 करोड़ के पार।
1: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की डगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
2: वेलकम बैक दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी स्कीम की जो स्टूडेंट्स के लिए किसी डिजिटल सुपर हीरो से कम नहीं। अब सोचो, अगर पढ़ाई, मोबाइल, टीवी, रेडियो और इंटरनेट सब जगह मिल जाए तो कितना कूल होगा, है ना? एग्जैक्टली वही काम करती है पीएमई विद्या योजना। कोविड के टाइम जब स्कूल्स बंद हो गए थे तब बहुत से स्टूडेंट्स की स्टडीज इम्पैक्ट हुई है। किसी के पास स्मार्टफोन नहीं था, किसी के पास इंटरनेट इशू था, तब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च की पीएमई विद्या इनिशिएटिव, वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म। दोस्तों, इस स्कीम का मेन एम है कि हर स्टूडेंट तक एजुकेशन पहुंच सके, चाहे वो सिटी में हो या फिर विलेज एरिया में। अब चलिए जल्दी से जान लेते हैं कि इसके अमेजिंग फीचर्स क्या क्या हैं। दीक्षा प्लेटफॉर्म, यहाँ स्टूडेंट्स क्लास 1 से लेके क्लास 12 तक के डिजिटल स्टडी मटेरियल्स को ईजिली एक्सेस कर सकते हैं। वीडियोस, क्विज, नोट्स, सब कुछ बहुत ही इजी टू एक्सेस अवेलेबल है। वन क्लास वन चैनल, टीवी चैनल्स के थ्रू डिफरेंट क्लासेस के लेक्चर्स टेलीकास्ट होते हैं दोस्तों यहाँ पर। मतलब अगर इंटरनेट स्लो है, टेंशन नहीं, टीवी से भी पढ़ाई पॉसिबल है अब तो। रेडियो एंड पॉडकास्ट, हाँ जी, एजुकेशन रेडियो पर भी, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जहाँ इंटरनेट रीच कम है। स्पेशल कंटेंट फॉर स्पेशल स्टूडेंट्स, पीएम ई विद्या समावेशी शिक्षा एजुकेशन को भी सपोर्ट करती है विद साइन लैंग्वेज कंटेंट और ऑडियो बुक्स के साथ। दोस्तों, आज का युग डिजिटल है, हम रील्स स्क्रॉल करते हैं, ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं और पता नहीं कितने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर हम अपना टाइम यूं ही स्पेंड कर देते हैं। सो व्हाई नॉट स्मार्ट लर्निंग, स्मार्ट लर्निंग भी तो हमारी जिंदगी का हिस्सा है। दोस्तों, पीएमई विद्या का पर्पस है सिर्फ पढ़ाना नहीं बल्कि लर्निंग को इजी टू एक्सेस बनाना और इंटरेस्टिंग भी। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, स्कूल स्टूडेंट हो या किसी यंगर सिबलिंग का आप अपने सिबलिंग को गाइड करना चाहते हो, सो दिस प्लेटफॉर्म कैन रियली हेल्प फॉर यू। और सबसे बेस्ट पार्ट दोस्तों, बहुत सारा कॉन्टेंट फ्री में अवेलेबल है। तो दोस्तों, डिजिटल दुनिया का स्मार्ट यूज करिए और लर्निंग को बोरिंग नहीं, एक्साइटिंग बनाइए। चलिए सुन लेते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, जो कि लिया गया है फ्रॉम द मूवी बचना है हसीनों से, जिसको आवाज दी है केके और शिल्पा राव ने।

हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर फेवरेट शो युववाणी। दोस्तों, आज हम चलने वाले हैं उत्तराखंड के एक ऐसे ड्रीमी हिल स्टेशन की ट्रिप पर जहां नेचर, पीस और माउंटेन वाइब्स मिलते हैं फुल एस्थेटिक मोड पर। यस दोस्तों, टुडेज डेस्टिनेशन इज ब्यूटीफुल हिल स्टेशन रानीखेत। अगर आप सिटी ट्रैफिक, नॉन स्टॉप नोटिफिकेशन और हेक्टिक रूटीन से बोर्ड हो चुके हो, देन ट्रस्ट मी, रानीखेत इज योर परफेक्ट प्लान। दोस्तों, रानीखेत का मतलब होता है क्वींस मेडो। कहते हैं कि कुमाऊं की रानी इस जगह की खूबसूरती देखकर इतनी इंप्रेस हो गई थी कि उन्होंने यहीं रहने का डिसीजन ले लिया। और ऑनेस्टली, जब आप यहाँ की ग्रीन वैलीज, पाइन फॉरेस्ट और स्नो कवर्ड हिमालयन व्यू देखोगे ना, आप भी सेम फील करोगे। यहाँ की मॉर्निंग्स प्योरली सिनेमैटिक लुक देती हैं दोस्तों। ठंडी हवाएं, पक्षियों की चहचहाट, चाय की गर्मा गर्म सिप और सामने हिमालयस का ब्रेथ टेकिंग व्यू लिटरली आपको एकदम फील कराता है कि आप एक अलग ही प्लेस पर आ गए हो। और गाइस, रानीखेत सिर्फ नेचर लवर्स के लिए ही नहीं बल्कि एडवेंचर लवर्स के लिए भी एक अमेजिंग स्पॉट है। चौबटिया गार्डन, एप्पल, पीच और एप्रिकॉट के ऑर्चर्ड्स आपको अपनी ब्यूटिफुल मेमरी को अपने आपके फोटोज में कैद करने के लिए आपको दोस्तों मजबूर कर देते हैं। झूला देवी टेम्पल, यहाँ हंड्रेड ऑफ बेल्स लगे हुए हैं और एटमोसफेयर इतना पीसफुल है कि माइंड इंस्टेंटली काम फील कराता है और एक अलग ही सुकून सी वाइब्स आपको आने लग जाती हैं। और जो स्पोर्ट्स पर्सन है उनके लिए गोल्फ कोर्स, इंडिया के हाईएस्ट गोल्फ कोर्सेज में से एक है, जो यहाँ पे चारों तरफ से ग्रीनरी से फुल्ली कवर्ड है, जो कि आपको एक रिच वेकेशन वाइब्स देता है। आया ना सुन के मज़ा। और दोस्तों, अगर आप ट्रैकिंग या लॉन्ग नेचर वॉक्स के फैन हो, देन रानीखेत इज लिटरली अ पैराडाइज फॉर यू। सबसे स्पेशल बात पता है क्या है यहाँ पे? रानीखेत की सिंप्लिसिटी। ना ज़्यादा क्राउड है, ना लाउड क्योस है, बस पीस, फ्रेश एयर और नेचर का रियल कनेक्शन। दोस्तों, कभी कभी लाइफ में लग्जरी होटल्स नहीं, बस माउंटेन्स और मेंटल पीस चाहिए होता है, और रानीखेत गिव्स एग्जैक्टली डेट फीलिंग। तो दोस्तों, अगर आप नेक्स्ट ट्रिप अपना नेक्स्ट ट्रिप प्लान कर रहे हो तो सी प्लेसेस और मॉल से थोड़ा सा ब्रेक ले लो और माउंटेन्स को हेलो हाई कर लो। जल्दी से अपनी हुडीज को पैक कर लो, अपने कैमरा को चार्ज कर लो और अपनी वाइब्स को स्ट्रांग कर लो, क्योंकि आप रानीखेत आ रहे हो। तो दोस्तों, इसी के साथ हम सुन लेते हैं एक और ब्यूटीफुल सा ट्रैक फ्रॉम द मूवी हमारी अधूरी कहानी से, जिसको आवाज़ दी है श्रेया घोषाल ने।

हेलो, वेलकम बैक टू योर फेवरेट रेडियो शो युववाणी। दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं एक ऐसे क्लाइमेट फिनोमेना की जिसका नाम सुनते ही लगता है कोई सुपर हीरो या एनिमे करेक्टर हो, एल नीनो। अब आप सोच रहे होंगे कि ये एल नीनो आखिर है क्या। दोस्तों, सिंपल लैंग्वेज में अगर हम इसको समझें तो एल नीनो एक वेदर फिनोमेना है जो पैसिफिक ओशन के टेम्परेचर को अफेक्ट करता है और फिर उसका इम्पैक्ट दुनिया भर के वेदर पर पड़ता है। जैसे कि अभी हमने कुछ पिछले हफ्ते भी देखा था कि अचानक से जगह जगह क्लाइमेट चेंज हुआ था, कहीं बारिश हो रही थी, कहीं स्नोफॉल हो रहा था ऊपर पहाड़ों पर, तो ये सब उसी का इफेक्ट था। दोस्तों, नॉर्मली पैसिफिक ओशन का पानी बैलेंस रहता है, लेकिन कभी कभी ओशन का सरफेस वाटर अनयूजुअली वार्म हो जाता है और इसी कंडीशन को कहते हैं एल नीनो। और जब ओशन का वाटर का लेवल चेंज होता है तो वेदर भी फुल ड्रामेटिक हो जाता है। कहीं ज़्यादा हीट वेव्स आती हैं, कहीं हैवी रेनफॉल होती है, तो कहीं स्टॉर्म्स और ड्रॉट्स यानी कि सूखा पड़ना शुरू हो जाता है। दोस्तों, इंडिया में भी एल नीनो का इफ़ेक्ट मानसून पर पड़ सकता है। कभी बारिश कम हो जाती है तो कभी मौसम अनप्रिडिक्टेबल हो जाता है। दोस्तों, आज क्लाइमेट चेंज और एक्सट्रीम वेदर की बातें हर जगह हो रही हैं, इसलिए एल नीनो को समझना इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली हमारे यूथ के लिए और हम यूथ के लिए, क्योंकि फ्यूचर जनरेशन यानी हम लोग ही एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने वाले हैं। और वो हम प्रोटेक्ट कैसे करेंगे दोस्तों? स्मॉल स्टेप्स हैं, जैसे कि वाटर को सेव करना, ट्रीज लगाने हैं, इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट हमें से बचना है और चीज़ों का उतना ही इस्तेमाल करना है जितना कि उसकी ज़रूरत। ये सब क्लाइमेट को बेटर बनाने में दोस्तों हेल्प

0: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
1: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
0: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं।

0: आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग,
1: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
0: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
1: 8700001-4242।
2: वेलकम बैक दोस्तों। इस अभी आप सुन रहे थे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, क्या है ईएल नीनो। दोस्तों वैसे तो स्टूडियो की घड़ी इशारा कर रही है आपसे विदा लेने का, बट अभी हमारे पास आपके लिए एक और प्यारा सा म्यूजिकल ब्रेक है फ्रॉम द मूवी, जिसको आवाज़ दी है अरिजीत सिंह ने। मूवी है धुरंधर।

दोस्तों, आज का कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा, आप हमें खत द्वारा जरूर बताएं। हमारा पता है कार्यक्रम युववाणी, द्वारा निदेशक कार्यक्रम आकाशवाणी देहरादून, हरिद्वार बाईपास रोड, निकट रिस्पना पुल। हमारा पिन कोड है 248001। दोस्तों, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है youthddn@gmail.com। और इसके साथ ही दोस्तों, आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7088000731। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट प्रोग्राम में। तब तक के लिए मुझे यानी सिमरन अग्रवाल को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे युवा साथियों का दैनिक कार्यक्रम युवाणी FM 100.5 MHz पर आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से। श्रोताओं, शाम के 5:45 होने को हैं। अब आप सुनेंगे पर्वतीय अंचलों का दैनिक कार्यक्रम ग्राम जगत।

0: कार्यक्रम ग्राम जगत सुनदारा सभी भाई बंधु हैं, विनय ध्यान छोड़ बटे की नमस्कार।
1: हाँ आशीष चौहान, आप सब लोगों का ग्राम जगत कार्यक्रम में स्वागत करूँ।
0: आज कार्यक्रम में श्रोता भाई बंधु एक महत्वपूर्ण बातचीत आप खातिर लेके आया छवा, मानव और वन्य जीव संघर्ष। हम बात करला श्री योगेंद्र सिंह रावत से, और ये कलावा गीत छन छुई बत छन हमारे
1: जी।
0: लेकिन शुरुआत हम कना छुआ एक इन छुई से, जय पर कि हम ये बोल सकदा कि सिर्फ और सिर्फ हम भावनात्मक तौर से संवेदनात्मक तौर से उन्हें याद करना छुआ। हमार बीच अब निराय पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड मेजर जनरल भुवन चंद खंडूरी उन्हें एक श्रद्धांजलि। मेजर जनरल भुवन चंद खंडूरी अलविदा, जय हिंद। उत्तराखंड राज्य का पूर्व मुख्यमंत्री मेजर जनरल भुवन चंद खंडूरी अब हमर बीच मने छन। 91 वर्ष के आयु में उनको निधन हुए। मेजर जनरल भुवन चंद खंडूरी ना पहले सेना में रह के देश सेवाकार और बाद में राजनीतिक क्षेत्र में भी उन समाज राज्य और राष्ट्र की सेवा करे। केंद्र सरकार में मंत्री रहन उन भूतल और परिवहन मंत्रालय बहुत भल के एक समाज और पूरा देश में सड़कों को निर्माण कराए की एक अमिट छाप छोड़। एक बार उन्हें प्रदेश की जनता को सेवा करने का मौका मिला, वो बने राज्य का मुख्यमंत्री। ये से पहले उन उत्तराखंड राज्य का आंदोलन में भी बढ़ चढ़ हिस्सा ले और सड़क बटे की और संसद तक राज्य का आंदोलनकारियों की पीड़ और पृथक उत्तराखंड राज्य की मांग उठे। उनका निधन पर प्रदेश का मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने शोक संवेदना प्रकट कर बोली,
2: बहुत अपूर्णीय क्षति है और बड़ा हम सबको बहुत ही उनके जाने का बहुत दुख है, क्योंकि लंबा कालखंड उनके सानिध्य में रह के मैंने भी काम किया है और उन्होंने सेना में रहे हों तो देश की सीमाओं की रक्षा के लिए पूरे जीवन भर काम किया और राजनीतिक जीवन में आए तो भारत सरकार में, राज्य सरकार में, भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री रहते हुए और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने अनेक विकास के कामों को आगे बढ़ाया। पारदर्शिता, भ्रष्टाचार, इन सब के खिलाफ बहुत सादगी से काम किया और बिना किसी लाग लपेट के अपनी बात कहते थे। अंतिम समय तक मैंने उनको देखा कि जिस प्रकार की एक बेबाकी उनके अंदर थी, साफ गोई थी, उनका जीवन बहुत ही हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे।
0: मेजर जनरल भुवन चंद खंडूरी तय उनकी ईमानदारी, निष्ठा और देश प्रेम का खातिर याद करे जाल। प्रदेश का मुख्यमंत्री रेंद उन प्रदेश में पारदर्शी और ईमानदार सरकार को संचालन करी। उनक पुत्री उत्तराखंड विधानसभा की अध्यक्षा श्रीमती ऋतु भूषण

0: खंडूरी ने अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर बोली,
1: ऐसा है परिवार के लिए तो हमारे लिए बहुत ही आज दुख का समय है। मैंने अपना पिता खोया है और हम सब दुखी हैं, परेशान हैं, लेकिन ईश्वर की जैसी इच्छा होती है, जैसा ईश्वर चाहता है वही होता है। बोलना थोड़ा सा इस वक्त कठिन हो रहा है मेरे लिए, लेकिन एक पिता के तौर पर मैंने जो उनसे सीखा है, देखा है, जिस तरह से देश की सेवा में वो लगातार लगे रहे, 3 लड़ाइयाँ उन्होंने लड़ी, वही संस्कार हमें, हम दोनों बच्चों को उन्होंने वही संस्कार दिए कि देश के लिए ही जीना है, देश के लिए ही मरना है।
0: सच मां खंडूरी जी एक सच्चा सैनिक है, किले कि उन बीमारी से भी एक लंबा समय तक लड़े लाड़, लेकिन बोल दिन ना कि समय और ईश्वर का अग्नि कैक ने चली। आखिरकार मेजर जनरल भुवन चंद खंडूरी पंचतत्व में विलीन हो गए। हमार छोड़ बेटे की उनके श्रद्धापूर्वक श्रद्धांजलि। श्रोता भाई बंधु, अभी यह छह हमारे छोड़ बेटे की एक श्रद्धांजलि पूर्व मुख्यमंत्री मेजर जनरल भुवन चंद खंडूरी थे। और आशीष जी, आज एक दिन एक और महत्वपूर्ण दिन छे और वो छे विश्व मधुमक्खी दिवस। क्या बोल आप?
2: रैला को जो दूसरे से बजाई महत्वपूर्ण है, जैसे मधुमक्खी दिवस जो हम मनाओ है, या हमें तो वजह से मनाओ कि आजकल हम लागी देख देखी जो मधुमक्खियों का है वो ऐसे खत्म लगा हुई देखने को मिलना। जैसे आजकल मिलो तो गौर के बिला सीधी उड़ाओ तो भी आम देखो तो गौर है भी पानी छिड़को तो बैठो तो सिर्फ बूट दे तो बूट भी काटी ले लोग ही, और ये तो कामों को बजाई नुकसान भी लगा हुई। और जबकि जो हमारे पर्यावरण है तो उसके वास्ते बजाई जरूरी थी मधुमक्खियाँ आगे के समय मुझ भी, और अब धीरे धीरे जो चीजें खत्म लगी हुई तो हम इसके ऊपर भी कौन से विचार करना चाहिए।
0: आशीष जी आपन भी देख हो लो, आप छोड़ भी हुना होला कि जब घर बनाना चाहे ना हम तो मुरी हूं चाहे
2: जी,
0: वो बड़ी गिन गिन गिन गिन गिन गिन दिन भर वो बाज आने रहें चाहे मधुमक्खियों की, और वो जलो ठोक पुटक बना देना चाहे, तब साल में आए 6 महीना जब भी गाँव आन चाहे कि चलो शायद ले लूला तब मुँह तक खोल देना चाहे।
2: से जी बात ली थी ध्यान जिम्मे करी कि हमारे विलेश में जो आओ भी तो सब हम बोलते मोखियों को जहाल लगवाई।
0: अच्छा।
2: तो सब आगे बूटूच बैठो तो बूटूच का आकर तो जब एक जगह बैठी हो तो जो सी कोठो नहीं होती दार के पानी तो तू कोठो नहीं पुंड फिर कहो तो पानी तो बैठा होते सी कोठो नहीं पुंडी पे तो ये चीज है देखने की ना मिली।
0: और आज आप ही देखना चाहन कि जनाब बना चाहन कि साहब धीरे धीरे मधुमक्खियों तय हम एक व्यवसाय का तौर पर अपनाना छुआ, लेकिन जो प्राकृतिक तौर पर मधुमक्खियों का हम छु करना छुआ उमा भी जो एक वो जो ना पर्यावरणीय संकट से वो दिखेणु हम तय।
2: बिल्कुल सही बात है से भी, और जो ऐबे बाणो जो शायद बाणो मोया कृत्रिम मतलब मानव के ही द्वारा बाने के ही और तब करो कोटा, लेकिन जो आगे होता तो कामार विलास बनते है जो है ब्याहली से शोर दिया मो सच जोड़ियों के वास्ते भी हो।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
2: लेकिन जो है हम नेचुरल ऐसा खतमला कर जो हम वो चीजें लागी कर दे इतने लागी है ज्यादा होता।
0: हम तो ये भी बोला आशीष जी कि कखी ना कखी हम तो ये भी लगत कि जब फूल पाते निराई चौछोड़ी तो उनमे कग बटक रस लियाणर कम के शहद बना ला
2: सही बात
0: है ना। लेकिन आज के लगी मधुमक्खी दिवस छ और खास करी पूरी दुनिया मा ये देखे जानू छ कि साहब उनमे बोल देन शहद है ना अपना आप में एक प्राकृतिक गुण लेके रेंद, और पहला जमन में खूब लोग घ्यू शहद दे दूध ही दिखाना चाहे, लेकिन आज जब हम देखना चाहो कि एक व्यावसायिकरण हो गए तो बहुत सारा लोग ये माँ सुंदर रोजगार भी करना चाहें।
2: जी बिल्कुल, और रोजगार करो भी, और आजकल जो अमित की कीमत जो पूछो भी तो घर के विला जो है 1100 रुपये किलो 1200 रुपये किलो तो बजाय अच्छी एक भी है कि आप लोग जो है तो व्यवसाय के रूप में भी हमें कर सको तो यूज।
0: मौन पालन से जुड़ी बहुत सारी सरकारी योजनाएं भी चलना छन, किला की कुछ न कुछ तो छेच भाई ये मैं धानी धंधा रोजगार छेच तभी बहुत सारी इन कई प्रशिक्षण कार्यक्रम जो संबंधित विभाग जो दीन लोग होता है काश्तकार होता है गों का लोग होता है और बोलत कि भाई बाकी और धानी का दगड़ जखन बोल दो ना हम की एकीकृत कृषि तो वे माँ मौन पालन मत्स्य पालन मुर्गी पालन बहुत सारी चीज हो सकते
2: हैं।
0: तो आप ये तो एक शानदार व्यवसाय के तौर पर भी अपना सकते हैं, ये का खातिर भी आज पूरी दुनिया में चर्चा होनी चाहिए कि भाई एक इन प्राकृतिक जो हमारे पास संसाधन जो वो एक भल के उपयोग हम करा। ये छुई बात का बाद अब जरा गीत तक बात करो दी
2: जी। अब जो हम अपने श्रोताओं के गढ़वाल की तरफ नो और आओ सुनो गढ़वाली गीत अनिशा गोसाई के स्वर में।

0: पूरे उत्तराखंड में शुरू हो चुकी है जनगणना। पहले चरण में 25 अप्रैल से 24 मई 2026 तक प्रगणक द्वारा घर घर सर्वे किया जाएगा। आपकी सभी जानकारी पूरी तरह सुरक्षित और गोपनीय रखी जाएगी। कृपया सही और पूर्ण जानकारी दें, यही आपके क्षेत्र के विकास की नींव है। जनगणना 2027 आपकी भागीदारी, देश की प्रगति। ये सूचना जनगणना कार्य निदेशालय उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
1: श्रोता भाई बंधु, अभी आपन रंतर बार का दगड़ी सुन अनिशा गुसाई का स्वरमा यू खुदेड़ गीत और घड़ेक में आपता हम एक बातचीत सुनो लेकिन वैसे पहले आप जरे से हमार छुई सुन। अब यह चे कि अगर हम बात करना छुआ अपना रोजगार की या बाकी और ध्यान की, तो ये बता आप ही देखा कि मौसम जो चुन वो कितना करवट बदलनु। आप ही देखा कि ऊंचाई वाला पहाड़ी क्षेत्रों में कखी कखी बरखा होनी चाहिए, लेकिन मैदानी इलाकों में बप्पा क्या गर्म हुई हो है
2: जी। बिल्कुल, और ये जी बात तो समझे किया बे, जो हमारा पहाड़ की जो क्षेत्र है ते की वे गर्मी पड़ी लागी धीरे धीरे, काहे की जो मौसम है इच्छा तेजी से लागे बदल आजकल यहाँ नहीं रहो कि इच्छी गर्मी रो ही पड़ी। और जब कोणी से आप पहाड़ की तरफ जाऊँ बे तो कोणी राहत असो है, पर तो इच्छी राहत आती ना जो इच्छी आ गया होती।
1: लेकिन अभी भी पहाड़ी जाए चाहे
2: जी
1: तो हमन पता क्या देखे कि ठीक छे वातावरण बहुत सुंदर छे और ये चूल्हे तो बढ़िया छे, लेकिन जंगलों की आगन ना चो छोड़ी फिर धुआं रोल करें और वही माँ भी घुटन किसी एक माहौल बढ़ गया। तो भाई हाथ जोड़े आप से यह छे कि जंगलों तय हम आग से बचाऊंगा, रूढ़ियों का यूं दिनों में जरे से लापरवाही हमारी बड़ी भयानक वनाग्नि का तौर पर समझ में आंद।
2: बिल्कुल सही बात है बोली। और ये जी हमें बार बार अपने इतकी आकाशवाणी से भी लागी रहो, हम प्रार्थना कर दे अपने श्रोताओं से कि जो आप लोग जो है बाकरवारी जाओ गोरवारी जाओ तो कोलाई कहा कि गलती से नोटो कोई की चिंगारी नोटो चूटी या किची नोटो ही तो उसका विशेष ध्यान रखो, काहे कि जो हमारा पर्यावरण है जो हमारी जंगल है बूट है जो हमें से बचाओ माँ तो भी हम भी सुरक्षित रहें। और तो भी हम जो बात लगी कर दे कि अत के बजाय गर्म और पहाड़ू वो जो है कौन ही जो टंडो है तो सही राहत हमों के तो भी मिल।
1: बिल्कुल बिल्कुल, और एक माँ हम एक बात और जोड़ ला कि जंगलक आग सिर्फ डाल बूटों को नुकसान नहीं
2: है जी,
1: बल्कि वही पुटक रहने वाला जो वन्य जीव छन पौन पंछी छन ऊ तभी नुकसान पहुंचे। और हम तो ये देखना छुआ कि जय जय जंगलों में जख ज्यादा आग लगनी छे वख का जो जंगली जानवर छन अरे ऊन भी तो अपना जान बचान वो भजना छन अरे भाजी का खाना छन गुस्सा में बस्ती का तरफ
2: बस्ती की तरफ
1: और तब होनो छे मानव वन्य जीव संघर्ष। तो कत्ते जगह हम देखना छुआ कि एक बहुत घटना होना छन, तो आवा ये ही बाबत तो हम मानव और वन्य जीव संघर्ष विषय पर जो वन्य जीव का जानकार छिन अध्ययन करना छिन शोध करना छिन श्री योगेंद्र सिंह रावत से हमारी मुलाकात हुए खिरसुमा जेका की आसपास ही गुलदार को बड़ो आतंक छ, तो हमने उनसे ही कुछ बातचीत करी कि भाई कनके की चुनौती थे हम संभाल सकदा कनके के समाधान हो सकद, तो आवा या भेंटवार्ता सुनदा। श्रोताओ ये दौरान पहाड़ मा मानव और वन्य जीव संघर्ष की लगातार घटना बढ़नी छिन, ये एक चिंता को विषय छ। जक एक तरफ गांव का लोग खेतीबाड़ी से परेशान छा कि जंगली जानवर परेशान करना छन या आवारा पशु परेशान करना छन खेत नहीं होने, लेकिन अब तो जान पर बन गई और लगातार पौड़ी जनपद में जो वन्य जीव संघर्ष मानव की होनी छन वो इससे बहुत ज़्यादा चिंता होनी छ। ये विषय पर एक लंबा समय से अध्ययन करना छन श्री योगेंद्र सिंह रावत, आवा उनसे ही यूँ कुछ बिंदुओं पर बातचीत करना। रावत जी स्वागत है आपको।
3: आपको बहुत बहुत धन्यवाद जी।
1: आप पहले बताएं कि यह घटना मानव और वन्य जीवों के सबसे बड़ा कारण क्या मानना चाहिए?
3: ये घटना पिछले एक मुख्य कारण ये हो कि जो क्लाइमेट चेंज होना चाहिए, एक ये हो पहली सबसे पहली। और फिर दूसरी बात यहाँ मेन कि जो हमारा मतलब ये का डेटा नहीं हमों में एग्जैक्ट डेटा नहीं कि भाई कितना छन लगभग, मना अगर हम बात करता यही मतलब किट्स और पौड़ी रेंज पर तो हम तो एग्जैक्ट डेटा कुछ नहीं हमों में, खाली हम बात करना छन कि भाई एक आंकलन तौर पर कि भाई 100 होला 200 होला, परंतु ये बहुत ज़्यादा छन। और मोटा माटी अगर आज हम दिखदा अगर उत्तराखंड में तो लगभग जो काम करे अभी तक अध्ययन करे तो लगभग 5000 से ज़्यादा आप मान सकदा लगभग जो हमारा आंकलन छ। मतलब
1: एक सवाल जो ज़्यादातर विशेषज्ञ छन जब उनसे बात करो तो बोल दिन के साहब घोस्ट विलेज हो गए पौड़ी में ज़्यादा और गाँव में लोग निरायत जो जानवर छन खास करे के रिख और बाघ ये आ जाना छन गाँव का छोड़ ये कितना कारक छे
3: यहाँ मत इन ची। देखो ये तो एक अलग विषय हुए पलायन थे खैर अलग बात हुई है, परंतु वहाँ में नहीं हुए कि अब एक मुख्य कारण है कि इन बीच की जन हम कुछ वेस्ट मतलब करना कुछ भी तो वहाँ से इन उनके जन हमल वो एक तो यहाँ कुछ वेस्ट मैनेजमेंट और कुछ पहाड़ों में कोई उन कारक को नहीं मतलब तो वहाँ मैंने उनकी भी जन हमल भाई कचरा डाले कमा तो वे खानों तो जन रिख आएगी नहीं या बाघ आएगी नहीं तो एक वो भी कारण यहाँ छाई चाहिए मतलब वो बात भी छाई चाहिए एक सही कि एक कारण वो छाई चाहिए यहाँ।
1: ये कलावा जब हम खिरसू और पौड़ी के आसपास की बात करना और पिछला कई समय से बहुत तेजी से ये घटना घटनी छन और अगर विभाग की बात करे जा गांव का लोगों की बात करे जा तो कै असमंजस मछीनी लोग
3: देखा ध्यानी जी हम अगर विभाग की बात करना हम तो विभाग यहाँ पूरी तरीके से फेल हुई है हम। अब पौड़ी अगर हम बात करना तो पौड़ी मुख्यालय से लगभग जो 10 किलोमीटर या 20 किलोमीटर जो रेडियस में गाँव छन जो वो खुद का आतंक मचे हुए गुलदारों को। अभी आज हम अगर बात करना चाहें मई में तो लगभग आप माना कि 9 मौत हुएगी नहीं यही बीच में। अभी 16 तारीख के बाद से एक महिला पर हमला करी मतलब दो गुलदारों और वैसे पहले एक भी घटना हुए कमंड में तो एक व्यक्ति छाओ शाम को काम से जाना चाहे तो ऊपर हमला हुएगी तो आप लगा हुआ कि कितना मतलब ये खतरनाक और भयावह स्थिति मतलब अब हुई पहाड़ों में तो ये से मतलब पलायन तो होनी चाहिए यहाँ से।
1: एक बात और चरावा जी अगर एक सीमित दायरा में यह घटना घटनी है ना तो वो जो एक कार्यवाही को या जो बोल सकते हम कि नियंत्रण का खातिर जो विभागीय काम जो वही मतलब थोड़ा आसानी हो सकत फिर ये बड़ू व्यापक रूप के लिए लेने वाले
3: यहाँ मैं इन ना कि देखो यहाँ में एक तो पूरा रोड मैप नहीं है एक पहली चीज़ के लेकिन जब डेटा नहीं हम तो डेटा आधार पर काम हों जब हम डेटा ही नहीं कि कितना गुलदार छन। अब अगर जो लोकल स्थानीय लोग छनी खागा जब उनसे पूछे जान तो बोल दन कि भाई साहब हमने 3 देखे 4 देखे एक बात ये भी लेकिन विभाग यहाँ पर सत्यता नहीं कर दो कि भाई कितना मूल दिखिन। अब जन अभी गजल्ड में घटना हुई है लगभग कुछ साल 3 या 4 महीने हुए वाला लगभग गजल्ड में तो राजेंद्र नौटियाल जी छा डेली वो छो रूटीन छो मंदिर में 12 साल बटी वो धूपबत्ती करना छा लगभग तो वही रास्ता पर ऊपर हमला हुए गए तो लुकुन कम से कम 2 या 3 गुलदार जो दिखिन हुआ तो आप लगाओ कि कितना मतलब खतरनाक स्थिति हुई थी। वहाँ के बाद बमठी में हुई घटना अभी 15-20 दिन पहले लगभग तो उक भी 2 गुलदार छा जो मतलब वो महिला पर हमला करे आप लगाओ कि कितना मतलब स्थिति भया हुई थी और डिपार्टमेंट ऑफ आज कोई भी मतलब कारगर विकल्प या उपाय छ ही नहीं कुछ भी टोटली मतलब फेल हुए छन।
1: संसाधनों की अगर हम बात करना तो क्या आज जबकि हम तकनीक का दगड़िया इधर विकास का नाच हुआ तो ये वन विभाग कखे संसाधनों की कमी नजर आनी चाहिए कि भाई वो कुछ कह नहीं सकना चन आज भी फटेल देख जन माछा मर देता है उजाल दे जाना चन तो आप क्या सोचना चन क्या देख
3: यहाँ मैं चाहिए कि हम बीच में एक रिपोर्ट भी कर छा में तो वहाँ में एक लड़का छो पंकज पालीवाल वेल AI बेस्ड मतलब केज बनाए छो अच्छा। पिंजरा और कुछ और भी वहाँ में एक अलार्मिंग सिस्टम भी छो तो हम वो इंट्रोड्यूस भी कर छो लेकिन डिपार्टमेंटल वही में कुछ खास इंटरेस्ट नहीं ले और दूसरी बात यहाँ मैं कि जो यू में तकनीक छन जो वो बहुत पुरानी हुई है ना आज आप वे बेस पर काम नहीं कर सकता के लेकिन आप एक सोचा कि आज मतलब नेट हुए गए नेटल पकड़ना चाह गुलदार तो आज कितना वो कारगर चाहिए मतलब वो तो छ ही नहीं ना कुछ भी कारगर आज टेक्नोलॉजी इतना हाई हुएगी नहीं तो हम तो मतलब सेंसर लगाना पड़ रहा है हाई टेक्नोलॉजी कैमरा लगाना पड़ रहा और तमाम चीज़ जो भी मतलब भेज सकते हैं तो वो हम उतें कन पड़ लिया।
1: आपन अपना अध्ययन के दौरान ये भी महसूस कर कि एक तरफ जख की रिजर्व फॉरेस्ट वक हम गणत कनक हो हमल बल वो भी लगा लेन चिप भी लगा लेन और कुछ कैमरा भी लगा लेन CCTV कैमरा छन हर 1 किलोमीटर पर तो जख जीवन च जख गाँव का लोग रहना छन वक माँ हम यूं तकनीक को इस्तेमाल के लिए नहीं करना क्या जान बहुत सस्ती है
3: जान तो देगा साफ सस्ती हुएगी जान की कीमत हुएगी 10 लाख आज और चाहे सरकार तमाम दावे कर ले आए लेकिन बात इंजी की जब तक हम मतलब ग्राउंड पर काम नहीं करे तब तक कुछ हो नहीं है और हम तमाम दावा करा कि भाई आज पलायन हम रुकनो है हम तमाम योजना करें शुरू तमाम करें पर एक कारण आज यू भी कि भाई जंगली जानवर एक बहुत ज़्यादा खतरा हुएगी चाहे हम गुणी हुएगी चाहे बांदर हुएगी चाहे रिक हुएगे चाहे बाघ हुए गए गुलदार छन ये तमाम चीज़ मतलब बहुत ही मतलब ज़्यादा हुएगी तो वहाँ से इनसे कि गाँव में जो छह भी छन लोग वो भी मतलब हताश हुएगी बिजाम की अब कन मामूल रोड और दूसरी बात यहाँ में इंच की टेक्नोलॉजी तो टेक्नोलॉजी इतना एडवांस होगी कि हम सेंसर लगा सकता जहाँ से मतलब एक अलार्मिंग सिस्टम भेजो कि भाई बगल में कुछ मतलब इंच है कि ऑब्जेक्ट की भाई जंगल में नहीं जाए या कुछ कन पुल होते तभी जाके हो नहीं तेरे दिन ब दिन स्थिति तो बहुत ज़्यादा मतलब खराब होनी चाहिए पहाड़ों में और कुछ ठीक ठाक नहीं लगन होगा।
1: गाँव का लोगों की मंशा उनकी भावना उनका विचार भी आपन बहुत नज़दीक से देखी वो क्या बोलना चाहिए
3: गाँव में तो लोग इतना हताश हुए कि बुना चन कि भाई साहब हम बहरी चल जाला के लिए कि हम कन क्या चाहिए माँ हमार रोजगार क्या चाहिए कि भाई गौड़ी रखी कह कि घर में 2 छन कह कि 4 छन चलो जन भी कनू चुके कनू छे बेचारो काम हो पर जब वे थे बचणु नहीं कुछ पैसा ही नहीं और जाना अलग खतरा हुई हूँ तो बनू कि भाई साहब वहाँ से बड़े हम बाहर चल जाला, 5-10 हज़ार नौकरी कर लेला और हमूल मतलब पलायन ही करनी। बहुत लोग चल भी गए ने, एक हमूल अभी एक स्टोरी कर छे पोखड़ा में, तो रिया एक 4 साल बच्ची छे वीत है मतलब गुलदारा वहाँ खत्म हो गई छे बच्ची, तो वीक फैमिली भी ईद का मतलब वो हताश हो गए छे। एक जो फादर छो बोल कि भाई साहब हम जो छो बहरी शिफ्ट हो गया, चल गए इन बहर हो मतलब वो पलायन हुए एक परिवार। तो सिर्फ एक परिवार नीचे हो, तमाम परिवार छह चनिया में, अब पता नहीं कितना परिवार छा, अगर वो डेटा निकल जाओ तो एक कारण आज मुख्य कारण ये भी छा पलायन।
1: योगेंद्र रावत जी, आपन ये विषय पर बहुत सारा अध्ययन करी, संवाद भी करा होला आपन, चाहे वो हमारा पर्यावरण विशेषज्ञ छन, चाहे जंगलात का उच्च अधिकारी छन, उनसे जब बातचीत कर तो निचोड़ी क्या निकलना चु कि आखिर इन समस्या को समाधान क्या हो सकत, वो लोग क्या बना छन, जनता क्या बनी छ, विशेषज्ञ क्या बना छन, वैज्ञानिक क्या बना छन, तो आप क्या वो एक लबो लबो आप क्या निकल रहा
3: यहाँ मतलब इन होने चाहिए। देखो ध्यानी जी, यहाँ की पहले तो हमूत है मतलब एक बटन पोड़ लू सबूत है, एक पॉजिटिव बात रखन पोड़ ली कि भाई आज मतलब ये खतरा सबू पर ची हो, कले कि खाली एक गाँव पर नहीं खतरा यो, ये तमाम गाँव यहाँ से प्रभावित छन। और दूसरी बात, डिपार्टमेंट थे भी थोड़ा गंभीर होन पड़ लो, कहले कि इन मनी चन कि भाई हम बोले कि ठीक है हम कर रहे हैं, हम पिंजरा लगा देंगे या हम कुछ कर देला, तो वहाँ से काम नहीं चन। अब कहले कि अब एक तरीके से ये आपदा जन हुए गए, आप लगा मतलब 9 मौत हुई जन अगर पौड़ी नज़दीक में 10 से 20 किलोमीटर रेडियस में, तो कितना मतलब वो जो 9 मौत की वो तो छह नहीं मतलब जाएगा, परिवार बेटी कोई चल गए बोली मानसिक स्थिति क्यों हुए की। और दूसरी बात यहाँ मैं इनसे कि सरकार थे भी कुछ रोड मैप लॉन्ड पुड़ लो, कहले कि इन व नीचन की खाली बुंद से कि भाई पिंजरा लगे न मूल या कुछ भी, तो वहाँ टोटल निचोड़ी हो चुकी। अब सरकारू थे या प्रशासन थे या फॉरेस्ट अफसर छन दो वो तो गंभीर होन पुड़ लिया यहाँ पर।
1: ये मैं एक सवाल और आनो छे जरेश रावत जी, वो भी जानना बहुत जरूरी छे कि जो क्षेत्र का जनप्रतिनिधि छन उनक रवैया इन समस्या के प्रति कुछ छे छे, ये ऊँ तो लगन छे कि ना ये इन समस्या छे वे जाला फिकार ला विभाग के लाला मन क्या कन।
3: क्षेत्र जो प्रतिनिधि छन ऊँ तो भी गंभीर होन पड़ लो, कहले कि वो भी इखी रंदन वो भी मानवाद कभी खुदा ना खास्ता ही नहीं होगी कि भाई चलो ऊपर ही कुछ इन विपदा आएगी, एक कह पर भी आ सकती है। तो ऊँथे भी गंभीर होन पड़ लो, और जो भी लोकल लोग छन या जो स्थानीय प्रतिनिधि छन ऊँथे बहुत गंभीर होगी बात रखन पड़ ली कि भाई ये सिर्फ एक ही समस्या नहीं, सभी लोग यहाँ से प्रभावित हुए छन और ये पर कुछ ना कुछ मतलब निष्कर्ष अब बहुत जरूरी होगा यहाँ पर।
1: अपन सुरक्षा का खातिर ग्रामीण कन्मा जागरूक रहे, क्या करें अब
3: अपन सुरक्षा खातिर जी भी जन जंगल जाना तो भाई ग्रुप में चला जन 4-6 लोग चला और कुछ भी मतलब थोड़ा शोर कराऊँ माँ, तो ये वे सब फिलहाल तो वैकल्पिक ही छन। और बाकी जमा लाइट नहीं तो सरकार या जो भी प्रतिनिधि छन जन सोलर लाइट दिए ले, तो लाइट से भी थोड़ा बचाव वे सब, तो ये 2-3 बहुत मुख्य बिंदु छन हमारे छोटे छोटा ऊपर ध्यान देन पड़ लो। तो
1: बच्चों की सुरक्षा बहुत बड़ा सवाल बन जानो,
3: बच्चों भी बहुत बड़ा सवाल छे जे कहला कि खाली छुट्टी देने से काम नहीं चलना, मतलब हमूल छुट्टी दे पर जो पढ़ाई जो पढ़ाई फिर वहाँ में डिस्टर्ब होगी बीच में, माने 10 दिन छुट्टी होगी या 5 दिन चलना, एकेश्वर में बीच में छुट्टी हुई जाए भी, तो वहाँ में भी आप लगा कि जो बच्चों पढ़ाई चो डिस्टर्ब होनी चाहिए वहाँ में, तो खाली छुट्टी भी विकल्प नहीं, वहाँ में भी ऑनलाइन क्लासेस भी थोड़ा ठीक ठीक ढंग से होनी चाहिए वहाँ में, और या फिर कुछ इन वैकल्पिक व्यवस्था भेजो कि भाई जन बस में बस लगे जाओ या कुछ इन मतलब भेजो, या सुरक्षा दृष्टिकोण से जन 2-4 लोग रखें बड़ा कि चलो भाई आप यूं था स्कूल छोड़ दिया कुछ कन पुड़ लिया।
1: रावत जी आपन ठीक बोली कि सिर्फ बातों से ना, हवा में ना, कागज पर ना, बल्कि धरातल पर हम तो कुछ ठोस कदम उठाना होला, चाहे वो विभागीय तौर पर हो, सरकार का तौर पर हो, जनता का तौर पर भी अपनी सुरक्षा हम तो देखने हो। मानव और वन्य जीवों का बीच ये संघर्ष का कई बिंदुओं पर योगेंद्र रावत जी आपसे महत्वपूर्ण चर्चा हुए, आपका खातिर बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। मानव और वन्य जीव संघर्ष, अभी ये विषय पर हम बात करना चाहे श्री योगेंद्र सिंह रावत से। आपन भी सुन आशीष जी, और हम भी सुनना छुआ ये बातें और मनना भी छुआ कि कखी ना कखी सरकार के पास विभाग के पास संसाधनों कमी तो छह साहब
2: जी।
1: कि अगर गुलदार पकड़ना खुण जाना छे तो वह सफलता तो उन मिलनी नहीं छे, वो सर सर सर इना बटे उना भेज जा, लेकिन जो क्षेत्रीय जनता छे बुजुर्ग छन बच्चा छन उनको जीवन संकट में छे भाई।
2: बिल्कुल,
1: कि अगर नरभक्षी बाग लगी छे गुलदार लगी छे तो भाई वेल एक बाद एक चोट करनी करनी छे।
2: बिल्कुल,
1: और ये देखने में आनु छे कि लगातार इतनी संख्या में ये जो मानव वन्य जीव संघर्ष छ वो एक परिणति यह होनी छे कि लोग अपन जान गंवाना छन। अब अगर हम मुआवजा भी दे दूँ तो क्या वे घर की स्थिति ठीक हो सके, बहुत मुश्किल।
2: बिल्कुल सही बात बोले ध्यान जी, कि जो ये चीज़ें हैं हेतु काम कोणीक्षा रोक ते तुझ लानी पड़ती और रोक आम कोणीक्षा सुझाव भी दोपो अरे कोणीक्षा आपकी चीज भी बोलो कि सरकार एक भी जो हमारे लोग है त्यों प्रशिक्षण चाहिए देवना गौर गौर भी तभी ये चीजें जो है रोकी शोक दी। और जो हम बात करो कि हमें पैसियों का दो या मुआवजा दो तो जान से बढ़ोते कि चीज आती है ना
1: उस एक परिवार बटे का अगर मुखिया चल जानो चे
2: जी
1: तो भाई वो एक परिवार तो कमर ही टूट गया ना फिर।
2: बिल्कुल सही बात।
1: तो कोशिश ये करे जा कि भाई ये संघर्ष है हम कम से कम रखा गों खाली होना छन तो जो जंगली जानवर छन उन अपने पनाह बनाया लोग है ना और जंगलों को लगातार कटान भी ये का खातिर जिम्मेदार छ आखिर उनको घर हम बिगड़ना छुआ तो उन अमर घरों के छौड़ाना है ना। और जो संबंधित विभाग छन भाई उन तभी कमर कसन छन कि जो सबसे पहली जरूरत छ वह मानव जीवन की रक्षा छ और वही का खातिर समूचा प्रयास पूरा ईमानदारी से होने चाहिए। तो अब आप कार्यक्रम में शामिल करना एक जौनसारी गीत कलाकार छन शिवा सरगम।

0: श्रोताओं अभी तो सुनिए आप लोगों ही है चौंसारी गीत शिवा स्वर्गम के स्वरमुच।
1: आप तक अमन आप अगर छुई बद भी लगे और महत्वपूर्ण बातचीत भी आप तक पहुंचाए और श्रद्धांजलि भी आज अमन पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड मेजर जनरल भुवन चंद खंडूरी तभी दे तो आप हमार दगड़ छे तो हम तक पता कन के चाललू जब भोल भी प्यारा दिन आप लोगों की चिट्ठी पत्री आली तो आशीष जी जरा धे लगाओ दी
0: श्रोताओं जब हमारी जो चिट्ठी पत्री का पता है सा है चिट्ठी ग्राम जगत @gmail.com और आप लोग जो है अमुक चिट्ठी जरूर लिखिया काहे कि आप लोगों की चिट्ठी का अमुक भी इंतजार रहा हूँ और हमारे जो बाकी श्रोता है त्यों भी इंतजार रहा हूँ कि कौशे जो है हमें गीत सुनाओ दे और कौशे अमुक सुझाव भी।
1: बिल्कुल बिल्कुल हम ये बना चाहे कि भाई अपना बात विचार चाहे आज अपन यह भेंटवार्ता सुन ये परी लेखा कि हाँ वो ठीक बना चाहे रावत जी की ना
0: जी
1: या हमन सही सवाल करें कि ना या आपके सोच दिन
0: जी
1: वही सकत आप क्षेत्र में भी होनी हो इन घटना
0: बिल्कुल
1: तो आप वे की बात भी हम तक पहुंचा सकते हैं कि बस आप हमारे पिछले साल हमारे छोड़ भी लाग छा लेकिन हम लोगों ने ये उपाय करें तो वैसे कुछ राहत मिल जाता तो यानी कुल मिला कि आप अपन छुई हमार दगड़ लगा सकते हैं है ना। और वही का खातिर माध्यम से कि आप हमता ई मेल भेजा आप हमता चिट्ठी पत्री भेजा हमार पता सादी चिट्ठी पत्री जो बोल देना साधारण डाक वाली हो चिट्ठी पत्री कार्यक्रम ग्राम जगत द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी देहरादून पिन 248001 तो ये पता पर आप लोगों की चिट्ठियों को हम तो इंतजार रहे और भोलक दिन तो आशीष जी पक्के चिट्ठी पत्री को दिन है ना तो खारी चिट्ठी आप लोग हम तक भेजला इन हम आस कना छुआ। और अब कार्यक्रम में क्या कना आपन
0: अब हम जो अपने श्रोताओं कुमाऊं की ओर भी नो बोल जी गढ़वाल और जौनसार पलागा चली तो आओ सुनो एक कुमाऊनी गीत शंभो सिंह अधिकारी के स्वर मुझे।

0: खुशहाल।
1: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
2: पारदर्शिता एवं जन कल्याण को प्राथमिकता देते हुए उत्तराखंड में लागू की गई समान नागरिक संहिता, नकल विरोधी कानून, भू कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून, अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम 2025 के माध्यम से प्रशासनिक व्यवस्था को किया गया और भी मजबूत।
1: मानस खंड मंदिर माला मिशन, श्री केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के पुनर्विकास एवं शीतकालीन यात्रा जैसी पहलुओं से पर्यटकों की संख्या बढ़कर पहुंची 6 करोड़ के पार।
2: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की डगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
3: श्रोताओं इबले तो सुनिए आप लोगों रेबार और रेबार की आगे लो तो सुनियो कुमाऊनी गीत संभव सिंह अधिकारी के स्वर मुच।
4: आज हमारे दगड़ रहना अपन और आज आशीष जी आप दगड़ और छुई बत लगाला आपका कुछ गीत गात भी सुनाला। ये बत सुना उत्तराखंड का प्रादेशिक समाचार।
5: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे।
6: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
5: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
7: हर घर सूर्य घर।
8: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

0: पहले मुख्य समाचार। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूड़ी की अंतिम यात्रा में उमड़ा जनसैलाब। हरिद्वार के खड़खड़ी शमशान घाट में राजकीय सम्मान के साथ किया गया अंतिम संस्कार। डीआरडीओ ने मानव रहित ड्रोन मिसाइल ULPGMV-3 का सफल परीक्षण किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसे महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। अग्निवीर भर्ती के लिए 1 जून से 12 जून के बीच ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी। और प्रदेश में गर्मी का प्रकोप जारी, अगले 24 घंटों के दौरान हरिद्वार, देहरादून, पौड़ी, उधम सिंह नगर और नैनीताल जिलों में कहीं कहीं लू चलने की संभावना। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं आशुतोष उनियाल और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूड़ी को आज हरिद्वार स्थित खड़खड़ी शमशान घाट पर पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। सेना और पुलिस के जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर देकर उन्हें अंतिम सलामी दी। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर सहित प्रदेश के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। मेजर जनरल खंडूड़ी की अंतिम यात्रा में जन सैलाब उमड़ पड़ा और हर वर्ग के लोगों ने नम आंखों से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वर्गीय खंडूड़ी ने उत्तराखंड के विकास और जनसेवा में जो योगदान दिया उसे प्रदेश सदैव याद रखेगा। मुख्यमंत्री ने उनके निधन को राज्य के लिए अपूर्णीय क्षति बताया।
1: मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूड़ी जी का जाना हमारे पूरे परिवार के लिए, राज्य के लिए और देश के लिए बहुत अपूर्णीय क्षति है। और उन्होंने सेना के अधिकारी के रूप में देश की रक्षा के लिए अपनी सेवाएं दी, अभूतपूर्व योगदान दिया। उसके बाद भारत सरकार में मंत्री के नाते और राज्य में मुख्यमंत्री के नाते उन्होंने शुचिता, पारदर्शिता और अनुशासन और समय की पाबंदी, ऐसे बहुत सारे अनुकरणीय जो कार्य हैं अपने समय में किए, वो हम सभी के लिए प्रेरणा के स्रोत रहेंगे और उनका जीवन हमेशा हमें प्रेरित करता रहेगा कि हम अनुशासन से, संयम से, नियम से और समय से सभी चीजों को पूरा करें।
0: इससे पहले उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वर्गीय खंडूड़ी के देहरादून आवास पर उनके पार्थिव शरीर पर पुष्प चक्र अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इसके बाद देहरादून स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण सहित कैबिनेट मंत्रियों, विधायकों, पार्टी पदाधिकारियों तथा कार्यकर्ताओं ने उनके पार्थिव शरीर पर पुष्प चक्र कर अंतिम विदाई दी। देश ने आत्मनिर्भर भारत पहल के अंतर्गत स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने अनमैन्ड एरियल व्हीकल लॉन्च्ड प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल ULPGMV-3 के अंतिम विकास परीक्षण को सफलतापूर्वक किया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि यह देश के रक्षा क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
2: ये परीक्षण आंध्र प्रदेश में कुरनूल के पास DRDO की टेस्ट रेंज में एयर टू ग्राउंड और एयर टू एयर दोनों तरह से किए गए। इस दौरान मिसाइल प्रणाली को एक एडवांस्ड इंटीग्रेटेड ग्राउंड कंट्रोल सिस्टम के माध्यम से संचालित किया गया। इन परीक्षणों से विभिन्न परिस्थितियों में मिसाइल की सटीक मारक क्षमता, विश्वसनीयता और प्रभावशीलता प्रदर्शित होती है। इस मिसाइल को हैदराबाद के रिसर्च सेंटर इमारत ने DRDO के साथ मिलकर विकसित किया है। पूरी तरह से स्वदेशी रूप से निर्मित ये मिसाइल आत्मनिर्भर भारत पहल की बढ़ती उपयोगिता को दर्शाती है। इससे देश के भीतर रक्षा प्रणाली को और सुदृढ़ करने में सहायता मिलेगी।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मिसाइल के सफल विकास परीक्षणों के लिए रक्षा, DRDO, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, रक्षा सह उत्पादन भागीदारों और उद्योग जगत की सराहना की। उन्होंने इसे रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक रणनीतिक उपलब्धि बताया। देहरादून में रिस्पना पुल के पास स्थित एक अस्पताल में आज आग लगने से एक महिला की मौत हो गई, जबकि 10 अन्य झुलस गए। सभी घायलों को उपचार के लिए निकटवर्ती अस्पताल में भर्ती किया गया है। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस और अग्निशमन दल ने राहत और बचाव

0: फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
1: भारतीय सेना की ओर से अग्निवीर भर्ती के लिए 1 जून से 12 जून के बीच ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी। परीक्षा का आयोजन देशभर के 206 शहरों में 403 परीक्षा केंद्रों में किया जाएगा। सेना भर्ती कार्यालय अल्मोड़ा के एआरओ कर्नल महेश कुमार ने ये जानकारी देते हुए बताया कि कुमाऊं मंडल के 4 जिलों अल्मोड़ा, बागेश्वर, नैनीताल और उधम सिंह नगर के जिन अभ्यर्थियों ने हल्द्वानी परीक्षा केंद्र का चयन किया है, उनके लिए 5 स्थानों पर परीक्षा केंद्र निर्धारित किए गए हैं।
2: कुमाऊं रीजन के 4 डिस्ट्रिक्ट अल्मोड़ा, बागेश्वर, नैनीताल और उधम सिंह नगर के जिन अभ्यर्थियों ने हल्द्वानी परीक्षा केंद्र का चयन किया है अपने रजिस्ट्रेशन में, उन्हें सूचित किया जाता है कि परीक्षा हल्द्वानी के 5 विभिन्न स्थानों पर आयोजित की जाएगी। अभ्यर्थियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इस बार 1 से अधिक श्रेणियों में जिन कैंडिडेट्स ने आवेदन किया है कि परीक्षा एक ही दिन में आयोजित की जाएगी। परीक्षा केंद्र तक पहुंचने में सुविधा हेतु एडमिट कार्ड में परीक्षा केंद्र की लोकेशन का लिंक भी उपलब्ध कराया गया है। साथ ही परीक्षा की तैयारी में सहायता के लिए अभ्यास प्रश्न पत्र, जिनको हम प्रैक्टिस पेपर बोलते हैं, जीआईए की वेबसाइट के ऊपर उपलब्ध कराए गए हैं। अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि वे इनका उपयोग कर परीक्षा की बेहतर तैयारी करें। सभी अभ्यर्थियों से एक और अनुरोध है कि वो अपना ज्वाइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट पर जाके अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करें, जो कि कलर्ड प्रिंट आउट होना चाहिए। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में किसी भी प्रकार से किसी भी अभ्यर्थी को, इन 4 डिस्ट्रिक्ट के अभ्यर्थियों को कोई परेशानी आती है तो वो जल्दी से जल्दी एआरओ अल्मोड़ा ऑफिस में आए और अपने जो भी उनकी समस्या है उसका निदान कराएं।
1: प्रदेश में चारधाम यात्रा सुचारू रूप से जारी है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु धामों के दर्शन कर रहे हैं। वहीं केदारनाथ धाम के दर्शनों के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु हेली सेवाओं के माध्यम से धाम पहुंच रहे हैं। अब तक 23,000 से अधिक श्रद्धालु हेली सेवा के जरिए बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं। हेली सेवा के नोडल अधिकारी राहुल चौबे ने बताया कि यात्रियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए सभी मानकों का कड़ाई से पालन किया जा रहा है।
3: चूंकि आप हेलीकॉप्टर देखेंगे कि एक बहुत रीढ़ की हड्डी है केदारनाथ यात्रा में, जिसमें अभी तक 23,000 यात्रियों ने हेलीकॉप्टर के माध्यम से दर्शन किए हैं। 1 मई के बाद से 15 मई तक लगभग मौसम काफी खराब चल रहा था, जिसकी वजह से जो हेलीकॉप्टर सेवाएं थी बहुत सुचारू रूप से संचालित नहीं हो पा रही थी, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को या तो पैदल जाना पड़ रहा था या अपने यात्रा को कैंसिल करना पड़ रहा था, और जो कि बहुत ही मतलब जरूरी भी है हेलीकॉप्टर सेवाओं को मौसम के खराब होने पर रोकने, क्योंकि सुरक्षा सर्वोपरि है, सुरक्षित यात्रा ही सरकार का उद्देश्य।
1: प्रदेश में गर्मी का असर लगातार बढ़ता जा रहा है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान हरिद्वार, देहरादून, पौड़ी, उधम सिंह नगर, नैनीताल जिलों और उत्तरकाशी जिले के समीपवर्ती क्षेत्रों में कहीं कहीं लू चलने की संभावना जताई है। विभाग के अनुसार अगले 2 से 3 दिनों में अधिकतम तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी हो सकती है। मैदानी जिलों में मौसम शुष्क बना रहेगा। ऑनलाइन दवा बिक्री और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के बढ़ते प्रभाव के विरोध में आज राजधानी देहरादून सहित प्रदेश के विभिन्न जिलों के मेडिकल स्टोर संचालकों ने एक दिवसीय सांकेतिक हड़ताल कर प्रदर्शन किया। ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट और उत्तराखंड औषधि व्यवसायी महासंघ के आह्वान पर मेडिकल स्टोर संचालकों ने अपने प्रतिष्ठान बंद रखकर आंदोलन को समर्थन दिया। देहरादून में दवा विक्रेताओं ने कहा कि ई फार्मेसी और क्विक डिलीवरी प्लेटफॉर्म बिना पर्याप्त निगरानी और नियमों के दवाओं की बिक्री कर रहे हैं, जिससे मरीजों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि दवाएं सामान्य उपभोक्ता वस्तु नहीं है, बल्कि सीधे लोगों के स्वास्थ्य और जीवन से जुड़ी होती हैं। ऐसे में इनके वितरण और बिक्री पर सख्त नियंत्रण आवश्यक है। उधर चंपावत जिले के सभी मेडिकल स्टोर आज बंद रहे, हालांकि जिले में जन औषधि केंद्रों के खुलने से लोगों को थोड़ी राहत मिली। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूड़ी की अंतिम यात्रा में उमड़ा जनसैलाब। हरिद्वार के खड़खड़ी शमशान घाट में राजकीय सम्मान के साथ किया गया अंतिम संस्कार। डीआरडीओ ने मानव रहित ड्रोन मिसाइल ULP GM V3 का सफल परीक्षण किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसे महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। अग्निवीर भर्ती के लिए 1 जून से 12 जून के बीच ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी और प्रदेश में गर्मी

0: का प्रकोप जारी। अगले 24 घंटों के दौरान हरिद्वार, देहरादून, पौड़ी, उधम सिंह नगर और नैनीताल जिलों में कहीं कहीं लू चलने की संभावना। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: श्रोताओं, ग्राम जगत कार्यक्रम के दूजे पाली में जाऊँ आप सभी लोगों का फिर से स्वागत करूँ। हाँ, आशीष चौहान। श्रोताओं, हम बात कर दे उत्तराखंड में जो पर्यटन आजकल आशा अभी बजाई लगा बड़ी और लोग बाहर से बजाई आंदे भी लगे, तो भी ये आमों के एक अच्छी बात भी उसमें है और एक खराब बात भी एक आई कि जो लोग है किच किच लोग ऐसे हों बाहर से जो आओ घूम दे फिर दे और तो भी हमारे पहाड़ों में जो आप सामान है मतलब जो खाने पीने को सामान है से राखों ले और से उतते ही कहीं न छोड़ी, तो ऐसा जो है आप लोग बिल्कुल न करिया। आप लोगों का हम बार बार लाइक बोल दे कि आप लोग हमारे पहाड़ों में जरूर आओ, लेकिन जो है पहाड़ जैसा हमारा आप लोगों का घर है तो सही हमारा भी ऐसा घर है, तो आप लोग जो है तो खराब न करिया, अच्छे तरीके से घूम जाओ और एक अच्छा संदेश बाहर भी ने और आमुक भी जो अच्छी चीज़ें रहने दो कि हम भी आप लोगों की तारीफ करवा कि जो यात्री हों से बेजाई अच्छे और अपने घर की तरह एत के जो है राखो है आप देखभाल तो ही करो जो से हमें करो। तो उत्तराखंड मुझे जो घूमने का क्षेत्र है से काका है वो भी आप लोगों को बोली दो जो लोग आओ आती हूँ कणी से जो ये नोट लाई। उत्तराखंड एक भारत का बजाई सुंदर और प्राकृतिक राज्य है जो तुक देवभूमि के नाम से जाना जाऊँ, काई की एत के बजाई सारे तीर्थ स्थल है, हिमालय की गोद मुझ बसी बजाई सारी झीलें, पहाड़, नदियाँ और जंगल की सुंदरता दुनिया भर के लोग को आकर्षित करो। और इतके जैसे कि ऋषिकेश, देवरे और अल्मोड़ा, नैनीताल ऐसे हर जनपद है कि आप लोग जो है आसानी से घूम ही सको और आप लोगों का उसमें भी कहीं कि आप लोगों को जो आकर्षित भी करो वो इतके की जो जगह है जैसे ऋषिकेश आप लोग जो जाले तो इतके गंगा नदी के किनारे बसी एक यह पवित्र शहर है जो तुक हमें और हमारे बाहर से आने वाले जो लोग हैं सुबह जाई पसंद करो। ज़्यादातर लोग इतके गर्मी में जाऊँ और ऋषिकेश जो से हमारा योग और अध्यात्म का केंद्र भी है, इतके गंगा आरती, राफ्टिंग और लक्ष्मण झूला प्रमुख है। बात करते हैं हमें जैसे देहरादून की है तो देवरे हमारे जो दो प्रकार से शको आप लोग घूमी, देवरे है एक तो है मैदानी क्षेत्र और वो का है पहाड़ी क्षेत्र। मैदानी क्षेत्र में जैसे एत के FRI हुआ, बुद्धा टेम्पल हुआ या टपकेश्वर हुआ, ये चीज़ें जो आपको देहरादून के नज़दीक एरिया में जाने मिली। और जोशी जोशी आप लोग पहाड़ सोच ले चढ़ना तो अभी पहाड़ में जो है ऊपरे काबलो माल देवर में चक्राता हो या मसूरी हो, चक्राता मुझ टाइगर फॉल, मोइला टॉप, कनासर रेंज ऐसी बेजाई सारी जगह है जी कि आप लोग जो है आसानी से सको घूमी, तो आप लोग आओ घूमो और बिल्कुल आनंद ने वो पहाड़ का। तो श्रोताओं, आप लोगों को नौ जौनसार की तरफ और आओ सुनो ये जौनसारी गीत, लेकिन तत् की आगे एक रेबार।
2: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे सो इजी
3: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: श्रोताओं अभी लो तो सुनिए आप लोग ही जौनसारी गीत धर्म सिंह राणा के स्वर मुझ। श्रोताओं समय लाई कड़वाली मुझ प्रादेशिक समाचार का, आओ सुनो थोड़ी देर मुझ कड़वाली मुझ प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून बटे गढ़वली मां प्रादेशिक समाचारों का दगड़ी मिछौ रुचि रावत। पहली मुख्य समाचार, प्रदेश का पूर्व मुख्यमंत्री मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूड़ी थे हरिद्वार मां पूर्व राजकीय सम्मान का दगड़ी अंतिम विदय दे गया। राज्य सरकारन जिला योजना का अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 खुणे सभी जिलों थे विकास कार्यों खुणे 1,018 करोड़ रुपया से बिजा की धनराशि बांटी। पौड़ी गढ़वाल मां श्रीनगर क्षेत्र मां डूंगरी पंथ रेलवे सुरंगकू SDRF और NDRF का संयुक्त दलन निरीक्षण कैरी की सुरक्षा व्यवस्थाओं को हालचाल देखी। और प्रदेश में गर्मी को प्रकोप जारी, मौसम विभागन अगले 24 घंटों का दौरान हरिद्वार देहरादून पौड़ी उधम सिंह नगर और नैनीताल जिलों में कखी कखी लू चलने की संभावना जताई। अब समाचार विस्तार से, प्रदेश का पूर्व मुख्यमंत्री मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूड़ी थे आज हरिद्वार स्थित खड़खड़ी शमशान घाट पर पूरा राजकीय सम्मान का दगड़ी अंतिम विदय दिए गया। सेना और पुलिस का जवान गार्ड ऑफ ऑनर देकी ऊँथे अंतिम सलामी दे। ये दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर सहित प्रदेश का कई वरिष्ठ नेता मौजूद छा। मेजर जनरल खंडूड़ी की अंतिम यात्रा में लुखों की बिजा भीड़ वे और हर वर्ग का लुखुन नम आंखों से ऊँथे श्रद्धांजलि अर्पित करी। मुख्यमंत्री ने बोली कि स्वर्गीय खंडूड़ीन उत्तराखंड का विकास और जनसेवा में जो योगदान दे वाँथे प्रदेश हमेशा याद रख लू।
2: मेजर जनरल भुवन चंद खंडूड़ी जी का जाना हमारे पूरे परिवार के लिए, राज्य के लिए और देश के लिए बहुत अपूर्णीय क्षति है। और उन्होंने सेना के अधिकारी के रूप में देश की रक्षा के लिए अपनी सेवाएं दी, अभूतपूर्व योगदान दिया। उसके बाद भारत सरकार में मंत्री के नाते और राज्य में मुख्यमंत्री के नाते उन्होंने शुचिता, पारदर्शिता और अनुशासन और समय की पाबंदी, ऐसे बहुत सारे अनुकरणीय जो कार्य हैं अपने समय में किए, वो हम सभी के लिए प्रेरणा के स्रोत रहेंगे और उनका जीवन हमेशा हमें प्रेरित करता रहेगा कि हम अनुशासन से, संयम से, नियम से और समय से सभी चीजों को पूरा करें।
1: यहाँ से पहले उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्वर्गीय खंडूड़ी का देहरादून आवास पर उनका पार्थिव शरीर पर पुष्प चक्र अर्पित करी उन्हें श्रद्धांजलि दे। यहाँ के बाद देहरादून स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण सहित कैबिनेट मंत्रियों, विधायकों, पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं उनका पार्थिव शरीर पर पुष्प चक्र अर्पित करी की उन्हें अंतिम विदय दे। प्रदेश सरकारन जिला योजना का अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 खुणे राज्य का सभी 13 जिलों का विकास कार्यों खुणे 1,018 करोड़ रुपये से ज्यादा की धनराशि बांटी। यह राशि जिलों की जरूरतों का अनुसार निर्धारित करेगा। आवंटित धनराशि में अनुसूचित जाति उप योजना का अंतर्गत करीब 200 करोड़ 22 लाख रुपया, अनुसूचित जनजाति उप योजना खुणे लगभग 30 करोड़ रुपया और सामान्य मध्य में 787 करोड़ से अधिक रुपया शामिल छिन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामिन बोली कि इन धनराशि से जिला योजना का माध्यम से स्थानीय आवश्यकताओं का अनुरूप आधारभूत संरचना, ग्रामीण विकास, पेयजल, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य जनोपयोगी योजनाओं तय गति मिलली। भारतीय सेना की तरफा बटे अग्निवीर भर्ती खुणे 1 जून से 12 जून का बीच ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा आयोजित करे जाली। परीक्षा को आयोजन देश भर का 206 शहरों में 403 परीक्षा केंद्रों में करे जालू। सेना भर्ती कार्यालय अल्मोड़ा का ARO कर्नल महेश कुमारन यह जानकारी दीन बताए कि कुमाऊं मंडल का 4 जिलों अल्मोड़ा, बागेश्वर, नैनीताल और उधम सिंह नगर का जो अभ्यर्थियों हल्द्वानी परीक्षा केंद्र को चयन करूँ चु ऊँखे 5 स्थानों पर परीक्षा केंद्र निर्धारित करेगी।
3: मऊ रीजन के चार डिस्ट्रिक्ट अल्मोड़ा, भागेश्वर, नैनीताल और उधमसिंह नगर के जिन अभ्यर्थियों ने हल्द्वानी परीक्षा केंद्र का चयन किया है अपने रजिस्ट्रेशन में, उन्हें सूचित किया जाता है कि परीक्षा हल्द्वानी के 5 विभिन्न स्थानों पर आयोजित की जाएगी। अभ्यर्थियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इस बार एक से अधिक श्रेणियों में जिन कैंडिडेट्स ने आवेदन किया है कि परीक्षा एक ही दिन में आयोजित की जाएगी। परीक्षा केंद्र तक पहुंचने में सुविधा हेतु एडमिट कार्ड में परीक्षा केंद्र की लोकेशन का लिंक भी उपलब्ध कराया गया है। साथ ही परीक्षा की तैयारी में सहायता के लिए अभ्यास प्रश्न पत्र, जिनको हम प्रैक्टिस पेपर बोलते हैं, GIA की वेबसाइट के ऊपर उपलब्ध कराए गए हैं। अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि वे इनका उपयोग कर परीक्षा की बेहतर तैयारी करें। सभी अभ्यर्थियों से एक और अनुरोध है कि वो अपना ज्वाइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट पे जाके अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करें, जो कि कलर्ड प्रिंट आउट होना चाहिए। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में किसी भी प्रकार से किसी भी अभ्यर्थी को, इन चार डिस्ट्रिक्ट के अभ्यर्थियों को कोई परेशानी आती है, तो वो जल्दी से जल्दी ARO अल्मोड़ा ऑफिस में आए और अपने जो भी उनकी समस्या है उसका निदान कराएं।
4: गढ़वाली में प्रादेशिक समाचारों को यू बुलेटिन आकाशवाणी का देहरादून केंद्र बटी प्रसारित करे जाणो जे। ताजा समाचारों खुड़ी आप हमारा सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड थे फॉलो कर सकते हैं। दगड़ा दगड़ी यू समाचार हमारा यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध छिन।
1: पौड़ी गढ़वाल में श्रीनगर क्षेत्र का अंतर्गत डूंगरी पंथ रेलवे सुरंग को SDRF और NDRF का संयुक्त दलन विस्तृत निरीक्षण कार्य। ये दौरान सुरंग की सुरक्षा व्यवस्थाओं, प्रवेश व निकासी मार्गों, आपातकालीन बचाव व्यवस्थाओं और संभावित आपदा की स्थिति में राहत और बचाव कार्यों की तैयारियों को आकलन करेगा। एक रिपोर्ट।
5: संयुक्त दलन सुरंगक भीतर जाय की विभिन्न सुरक्षा बिंदुओं को निरीक्षण कैरी और भविष्य में कै भी आपात स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटण खुण आवश्यक रणनीतियों पर चर्चा कैरी। अधिकारियों ने सुरंग में कार्यरत कर्मचारियों तय सुरक्षा मानकों के अनुपालन, आपदक बखत झटझटाक प्रतिक्रिया और समन्वित राहत कार्यो तय लेकर आवश्यक दिशा निर्देश भी देनी। निरीक्षण के दौरान रेलवे अधिकारियों ने दल तय सुरंग संरचना, सुरक्षा उपकरणों, निकासी मार्गों और उपलब्ध आपदा प्रबंधन संसाधनों को विस्तृत जानकारी दे। यहाँ के बाद SDRF और NDRF दल ने पूर्व सुरंग क्षेत्र के भ्रमण कैरी की संवेदनशील स्थलों थे चिन्हित करते हुए संभावित जोखिम वाला बिंदुओं को आकलन कैरी की। SDRF निरीक्षक मंजरी नेगी ने बताया कि निरीक्षण का उद्देश्य डूंगरी पथ रेलवे सुरंग के सुरक्षा व्यवस्थाओं का मूल्यांकन करण और कै भी आपदा या आपात स्थिति में झटझटाक और सुरक्षित राहत बचाव सुनिश्चित कारण खुण आवश्यक तैयारियों थे मजबूत करण च। मूल बोली की SDRF और NDRF द्वारा समय समय पर इन संवेदनशील स्थलों को निरीक्षण कैरी की सुरक्षा तंत्र थे और अधिक प्रभावी बने जान। आकाशवाणी देहरादून खुण समाचार कक्ष बटे दीपक सिंह रावत।
1: देहरादून में रिस्पना पुल का समण स्थित एक अस्पताल में आज आग लगने से एक महिला की मौत हुई, जबकि 10 अन्य झुलसी गिन। सभ्य घायलों था उपचार खुणा नजदीकी अस्पताल में भर्ती करे गया। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस और अग्निशमन दलन राहत और बचाव अभियान चले। आग बुझाना का दौरान गैस रिसाव, ऑक्सीजन की कमी और धुआं से 3 पुलिसकर्मी भी घायल हुए गिन। उनको भी नजदीकी अस्पताल में उपचार चलूण। घटना के बाद अस्पताल थे बंद कर दिया गया और सभी मरीजों थे दूसरा अस्पतालों में भेजे गया। पुलिस आग लगना का कारणों की जांच करूणी। प्रदेश में गर्मी को असर लगातार बढ़ूण। मौसम विभाग अगले 24 घंटों का दौरान हरिद्वार, देहरादून, पौड़ी, उधम सिंह नगर, नैनीताल और उत्तरकाशी जिलों का आसपास का सभी जगहों में कखी कखी लू चलने की संभावना जताए। विभाग के अनुसार अगले 2 से 3 दिनों में अधिकतम तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ना को अनुमान च। मैदानी जिलों में मौसम मुख्य रूप से रूख बढ़ू रालू। मौसम विभागन लुखुन थे दोपहर में तरतड़ू घाम से बचण और पर्वतीय क्षेत्रों में खराब मौसम का दौरान सतर्क रहने की सलाह दे। अवैध और अनियंत्रित ऑनलाइन दवा बिक्री का विरोध में आज राजधानी देहरादून सहित प्रदेश का विभिन्न जिलों का मेडिकल स्टोर संचालकों एक दिवसीय सांकेतिक हड़ताल को प्रदर्शनकारी। ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट और उत्तराखंड औषधि व्यवसायी महासंघ का अनुरोध पर मेडिकल स्टोर संचालकों अपना प्रतिष्ठान बंद रखना। देहरादून में दवा विक्रेताओं बोली कि ई फार्मेसी और क्विक डिलीवरी प्लेटफॉर्म बिना पर्याप्त निगरानी और नियमों का दवाइयों की बिक्री करना छिन, जैसे मरीजों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल उठना छिन। उना चंपावत जिला का सभी मेडिकल स्टोर आज बंद रहनी। हालांकि जिला में जन औषधि केंद्रों को खुलने से मरीजों तय जरसी राहत मिली। आखिर मामू के समाचार एकदम फिर प्रदेश का पूर्व मुख्यमंत्री मेजर जनरल भुवन चंद खंडूड़ी ते हरिद्वार में पूर्व राजकीय सम्मान का दगड़ी अंतिम विदय दिए गया। राज्य सरकार जिला योजना का अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 खुणे सभी जिलों को विकास कार्यों खुणे 1,018 करोड़ रुपये से बिजा की धनराशि बांटी। पौड़ी गढ़वाल में श्रीनगर क्षेत्र में डूंगरी पंथ रेलवे सुरंग को SDRF और NDRF का संयुक्त दल निरीक्षण कैरी की सुरक्षा व्यवस्थाओं को हालचाल देखी। और प्रदेश में गर्मी को प्रकोप जारी, मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों का दौरान हरिद्वार देहरादून पौड़ी उधम सिंह नगर और नैनीताल जिलों में कखी कखी लू चलने की संभावना जताई। यहाँ के दगड़ी ही गढ़वाले में प्रादेशिक समाचार को यू अंक समाप्त हूँ। नमस्कार।
0: श्रोताओं, हेती का ग्राम जगत कार्यक्रम समाप्त हो। मुका आशीष चौहान एक दो इजाजत। नमस्कार।

FM 16.5 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 7 बजे हैं। अब प्रस्तुत है किसान श्रोताओं का दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत।

नमस्कार किसान साथियों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है अच्छे होंगे। खेती बाड़ी भी अच्छी चल रही होगी। साथियों, गर्मी बहुत बढ़ चुकी है, तो ऐसे में अपने मवेशियों का ख्याल रखें। उन्हें समय समय पर पानी पिलाएं, समय समय पर नहलाएं, ताकि उनको भी इस गर्मी से थोड़ी राहत मिले। साथियों, आज हम बात करेंगे अन्न भंडारण की। हमारे किसान साथी इतनी मेहनत से अन्न खेतों में उगाते हैं, तो उस अनाज का भंडारण भी करना ज़रूरी होता है। यदि अनाज का भंडारण यानी कि रख रखाव सही तरह से ना हो, तो अनाज खराब हो जाता है और सारी मेहनत बेकार हो सकती है। भंडारण सही तरह से होने से उसे बाज़ार तक पहुंचाने में आसानी होती है, और सही अनाज बाज़ार में आम व्यक्ति तक तभी पहुंचता है जब हमारे किसान साथी उनका भंडारण सही तरह से करते हैं। हर किसान, चाहे वे ज़्यादा खेती करता हो या फिर कम, लेकिन भंडारण का पर्याप्त जो है जगह उनके पास होनी चाहिए। जगह से तात्पर्य कमरा भी है या फिर कोई गोदाम भी, लेकिन जगह जो भी हो वहाँ साफ़ सुथरी और नमी मुक्त होनी चाहिए, ताकि बरसात, तूफान, हवा, इन सब से गोदाम में या आपके भंडार गृह में कोई असर ना पड़े। साथियों, अनाज को भंडारण में रखने से पहले 3-4 दिनों तक सूखा लेना चाहिए धूप में, ताकि वे अच्छे से सूख जाए, साथ ही उसमें से नमी जो है हट जाए। जिन बोरियों में अनाज को रखना है, यदि वे पुरानी हैं, तो उन्हें कीट मुक्त जो है कीटनाशक से धो करके और धूप में अच्छे से सूखा करके फिर उसमें अनाज जो है भरना चाहिए। बोरों में अनाज भर के जब भंडार गृह में रखें, तो ध्यान रखें कि कोई भी बोरी दीवार से ना लगाएं और ना ही फर्श से। आपको लकड़ियों की मदद से फर्श के ऊपर एक परत बनानी होगी और उसके ऊपर बोरियों को रखना होगा। और जब आप बोरियों को रखें, तो भी इस बात का ख्याल रखना होगा कि बोरी जो है सीधी, एक सीधी है तो दूसरी जो है लेटी हुई होनी चाहिए, ताकि वे आपस में जुड़ी हुई न रहें। इस तरह जो है आपका अनाज सुरक्षित रहेगा। साथियों, आपको भंडार गृह की दीवारों और दरारों के छेदों का भी ख्याल रखना होगा। यदि आपका भंडार गृह जो है कहीं से उसकी दीवारें टूटी हैं या उसमें छेद है, तो उसको बंद करना होगा। दीवार अगर मिट्टी की है, तो उस पर जो है आप कीटनाशक लेप लगाएं या फिर चूना उस पर लगा दें। यदि पक्का मकान है, तो कीटनाशक को इस तरह से रखें कि अनाज को कोई नुकसान ना पहुँचे। आप भंडारण को जगह, जो भंडारण की जगह है, उसको मैलाथियन का घोल बनाकर उसका छिड़काव भी कर सकते हैं। भंडार गृह में कोई जगह ऐसी न हो कि चूहे अंदर आ सकें। साथियों, अन्न भंडारण पर हम आगे और भी चर्चा करेंगे, लेकिन आइए सबसे पहले सुनते हैं एक प्यारा सा लोकगीत।

0: लोकगीत के बाद एक बार फिर आप सभी का कार्यक्रम कृषि जगत में स्वागत है। साथियों, कार्यक्रम में अब वक्त हो चला है आज की भेंटवार्ता का। आज की भेंटवार्ता में श्री अजय सैनी से हम बातचीत करेंगे और जानेंगे मधुमक्खी एक कर्मठ श्रमिक इस विषय पर। और आज विश्व मधुमक्खी दिवस भी है, तो आइए सुनते हैं ये भेंटवार्ता।
1: किसान साथियों, आज हम मना रहे हैं विश्व मधुमक्खी दिवस। और आप सभी जानते हैं कि जो मधुमक्खी है, ये पर्यावरण संतुलन के लिए, पॉलिनेशन के लिए और तरह तरह के जो औषधीय गुणों से भरपूर उत्पाद हैं वो हमें देती है। और किस तरह से एक कर्मठ श्रमिक मधुमक्खी को माना जाता है, इस विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं मधुमक्खी पालक और नेशनल बी बोर्ड कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के मेंबर श्री अजय सैनी। तो सैनी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आकाशवाणी देहरादून।
2: नमस्कार
1: सैनी जी, आज की बात करें तो विश्व मधुमक्खी दिवस हम मना रहे हैं, थोड़ा बताएं कि क्या अवधारणा है इस दिवस को मनाने के पीछे।
2: हाँ, ये विकास जी, सभी का मैं स्वागत करता हूँ मधुमक्खी दिवस के अवसर पर। और मेरी ओर से सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं मधुमक्खी पालन मधुमक्खी दिवस के शुभ अवसर पर। देखिए, पूरी दुनिया में मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है आज 20 मई को। और मेरा मानना ये है कि इस प्रकृति में जो जन्मा है मनुष्य के साथ साथ, वो जीव, पशु, पक्षी, प्राणी जो भी है, उन सबको मधुमक्खियों के प्रति कर्तव्य होना चाहिए। क्योंकि हमारे जो भोजन की व्यवस्था है वो ये मधुमक्खियां ही करती हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जितना अनाज, फल, सब्जी हम खाते हैं, ये सारा इन मधुमक्खियों की देन है। बहुत कम लोग जानते होंगे कि मधुमक्खियां पोलिनेशन द्वारा, वो चाहे जंगल में आपका बायोडाइवर्सिटी, अलग अलग तरह की जड़ी बूटियों का उत्पादन हो जो हमारे पशु पक्षी खाते हैं, या फल बीज जंगल से खाते हैं। तो मतलब पूरा मनुष्य के साथ साथ सभी के भोजन का जिम्मा इस छोटे से जीव ने, आप आश्चर्य करेंगे, इस छोटे से जीव ने उठाया हुआ है। तो हम सबको इस मधुमक्खी दिवस के अवसर पर सबको कर्तव्य होना चाहिए मधुमक्खियों का, और उनके संरक्षण और संवर्धन के लिए लगातार प्रयासरत रहना चाहिए। अब बात आती है कि हम क्यों मनाते हैं। देखिए, सबसे पहले लगभग 1768 के आसपास स्लोवेनिया एक छोटा सा देश है, तो वहाँ एक साइंटिस्ट हुए एंटोन जानसा। उन्होंने सबसे पहले ये बताया था कि मधुमक्खियों को पढ़ाया जा सकता है, मधुमक्खियों को हम लोग अपने अनुसार काम करा सकते हैं। तो उसके बाद ये मधुमक्खी पालन को, यानी कि वो मधुमक्खी के टीचर जो है वो उनको कहा जाता है कि मधुमक्खियों को उन्होंने सबसे पहले बताया कि हम उसे पढ़ा सकते हैं और अपने अनुसार काम कर सकते हैं। तो उन्हीं की याद में हम लोग विश्व मधुमक्खी दिवस मनाते हैं कि साइंटिफिक मधुमक्खी पालन, जो कि इतना बड़े लेवल पे अब पूरी दुनिया में होता है, पहले जो अवैज्ञानिक तरीके से मधुमक्खी पालन होता था तो उसमें मधुमक्खियों की बड़ी हानि होती थी। हमारे पॉलिनेटर्स खत्म हो जाते थे, छत्तों को जलाया जाता था, खत्म किया जाता था। तो बढ़ने की बजाय वो मधुमक्खी को और खत्म करने की दिशा में काम होता था। लेकिन जब से उन्होंने बताया कि वैज्ञानिक तरीके से मधुमक्खी पालन आज हम उनके बताए रास्ते के अनुसार कर रहे हैं, तो आज मधुमक्खी पालन इतना पॉपुलर है, हम

0: और उसके बाद जिन किसानों के खेतों से मधुमक्खी नेक्टर लेकर के आएगी उनकी पैदावार भी बढ़ा करके आएगी।
1: जी
0: तो कभी ये नहीं लगा, मधुमक्खियां काटती थी उस समय, हमारे पास इक्विपमेंट्स भी नहीं होते थे, आज तो बहुत अच्छी स्थिति है, बहुत एक तरह से एडवांस इक्विपमेंट्स हमारे पास होते हैं, लेकिन उस समय बीवेल तक जिसमें हम फेस को प्रोटेक्ट करके काम करते हैं वो भी हमारे पास नहीं होता था,
1: जी
0: तो उसके बिना ही हम काम करते थे, आंखों पे काट लेती थी, मुंह पे काट लेती थी, लेकिन कभी ये नहीं हुआ कि हमें डर लगा हो या ये लगाओ यार छोड़ो ये क्या काम है, क्योंकि मधुमक्खियों की उपयोगिता इतनी बड़ी थी, इतनी ज्यादा थी, वो उसका काटना इसके सामने कुछ भी नहीं महसूस होता था। तो
1: बिल्कुल
0: ये सोच करके हम लोगों ने मतलब इसमें लगे रहे, और फिर 92 में ही हम लोगों को कृषि मंत्रालय भारत सरकार की एक योजना चली थी फसलों की उत्पादकता में वृद्धि हेतु मधुमक्खी पालन का विकास, उस योजना के अंतर्गत हम लोगों को एज ए प्रशिक्षण के ट्रेनिंग एजेंसी के रूप में हम लोगों को चुना गया था फार्मर्स को ट्रेनिंग देने के लिए।
1: जी
0: तो उस स्कीम में हमने पूरे देश में घूम घूम करके किसानों को प्रशिक्षित किया, तो लगभग मैं अब तक 22,000 से ज़्यादा लोगों को प्रशिक्षण दे चुका हूँ मधुमक्खी पालन का। और मैं एक और आश्चर्यजनक बात आपको बताऊं कि जब 1990 में मैंने शुरू किया था तो हमारे देश का शहद उत्पादन मात्र 7,000 मीट्रिक टन था, 7,000 मीट्रिक टन था। आज अगर हम पिछले साल की बात करें तो एपीडा के अनुसार 1,35,000 मीट्रिक टन शहद हमारे देश में पैदा हुआ, जिसमें से लगभग आधा एक्सपोर्ट हुआ, निर्यात हुआ, और आधा हमारे डोमेस्टिक उसमें यूज़ हुआ।
1: आपको इस चीज की शुभकामनाएं कि आपने इतने
0: धन्यवाद।
1: लोगों को प्रशिक्षण दिया है। अच्छा सैनी जी, अगर हम मधुमक्खियों की बात करें तो जैसा जाना जाता है मधुमक्खियों को उनकी कार्य कुशलता के लिए,
0: जी
1: एक कर्मठ श्रमिक अगर हम मधुमक्खी को कहें तो इसमें कोई दो राह नहीं है। थोड़ा बताएं कि
0: जी
1: किस तरह
0: बिल्कुल
1: से मधुमक्खी काम करती है।
0: हाँ, निश्चित रूप से मधुमक्खी बड़ी कर्मठ वर्कर है, और जैसे हमारी फैमिली होती है मधुमक्खी की, तो उसमें तीन तरह की मधुमक्खियां पाई जाती हैं। रानी मधुमक्खी, रानी मधुमक्खी का काम अंडे देना होता है, और वो प्रतिदिन 1200 से 3000 अंडे तक दे सकती है
1: जी
0: प्रतिदिन, अपने वेट का 2.5 गुना अंडा मधुमक्खी, रानी मधुमक्खी रोज दे देती है। और आपको आश्चर्य होगा कि अगर 3000 अंडे उसने दिए हैं तो 3000 ही बच्चे पैदा होंगे, उसमें एक भी अंडा खराब नहीं होगा, क्योंकि रानी मधुमक्खी ये देखती है कितने सोर्स उसके पास, कितना भोजन उसके पास है, क्योंकि उसके लिए अंडे देने के लिए फिर उनको नेक्टर चाहिए होता है, पोलन चाहिए होता है, तो उसकी बी ब्रेड बना करके बच्चों को खिलाती हैं। पैदा होने से पहले जो भोजन है बच्चों का वो बी पोलन और हनी है, तो वो इतना उसके पास अगर सरप्लस होता है तब वो उतने ही अंडे देती है। तो इतनी समझदार है कि अगर 1000 अंडों का भोजन है तो वो 1000 ही अंडे देगी, 1500 अंडों का भोजन है तो 1500 ही अंडे देगी। तो
1: अच्छा
0: ऐसे करके वो रानी मधुमक्खी का कार्य अंडे देना हुआ। उसके बाद जो नर मधुमक्खी होती है उसका काम केवल मेटिंग होता है, वो जब नई रानी बनती है तो वो लाइफ में अपनी एक ही बार मेट होती है,
1: अच्छा
0: दोबारा उसको मेटिंग की आवश्यकता नहीं होती, और एक ही मेटिंग में वो इतने स्पर्म्स अपनी स्पर्मेथिका में स्टोर कर लेती है, ताकि जिससे वो 2.5-3 साल जितनी उसकी आयु होती है, 2.5 वर्ष के आसपास, 2.5-3 साल, तो इतने दिन तक वो लगातार फर्टिलाइज एग और अनफर्टिलाइज एग देती रहती है। तो नर का काम केवल एक बार खत्म हो जाता है, उसके बाद वो मजे करता है, कोई काम नहीं करता।
1: जी
0: और इसके बाद फिर होता है हमारा श्रमिक मधुमक्खी, कर्मठ, जिनके आपने उनको कर्मठ मधुमक्खी भी कहते हैं। तो घर का सारा काम जो है वो श्रमिक मधुमक्खियों के ऊपर निर्भर होता है, और वो एज के अनुसार उनके काम बटे होते हैं। जो
1: अच्छा
0: बच्चे हैं जैसे उड़ना नहीं जानते तो वो
1: जी
0: घर का काम करते हैं, घर की सफाई करना, बच्चों को खाना खिलाना, क्योंकि जो रॉयल जेली खिलाते हैं हर एग को, वो भी जो नया बच्चा होता है 6 से 13 दिन की आयु का बच्चा होता है उसी में फेरेंजियल ग्लैंड डेवलप होती है, और वही सबको रॉयल जेली फीड कराते हैं। उसके
1: अच्छा
0: बाद फिर वैक्स ग्लैंड डेवलप होती है बच्चों में, वो फिर छत्ते बनाते हैं, नए घर बनाते हैं, ये भी काम बच्चों का ही होता है उड़ने
1: अच्छा
0: से पहले। तो ऐसे एज के अनुसार उसके बाद फिर वो एडल्ट हो जाती है, वो बाहर जाती है, नेक्टर लाती है, पोलन लाती है, और पानी लाती, जो भी उसकी आवश्यकताएं होती हैं वो बाहर से लाने का काम करती हैं।
1: जी
0: उसकी सेंस ऑर्गन डेवलप हो जाते हैं कि कहाँ किस तरफ जाना है, वो वापस आकर के एक विशेष प्रकार का डांस करते हैं जिसको वेगल डांस बोलते हैं, वो बाकी
1: अच्छा
0: मधुमक्खियों को बताती है कि उस तरफ पोलन है या नेक्टर है, सोर्स यहाँ से इस दिशा में इतनी दूरी पे जो है आपको पोलन मिलेगा या नेक्टर मिलेगा, ये तक बताती हैं डांस करके
1: अच्छा
0: मधुमक्खियाँ आपस में एक दूसरे को। तो ये फिर वो पोलन और नेक्टर लेकर के आती है। उसके बाद जब वो एज थोड़ा सा उसकी बढ़ती है तो उसके बाद वो फिर घर की सुरक्षा का काम करती है, बी बड़ी बी हो जाती हैं जो ज़्यादा लंबी फ्लाइट लेने में असमर्थ होती हैं, वो बच्चों को उड़ना सिखाती हैं, अपने घर की पहचान सिखाती हैं, कैसे सोर्स तक पहुँचना है ये सिखाती हैं। तो ऐसे करीब जो वर्कर मधुमक्खी है ये 24 घंटे काम करती रहती है, बिल्कुल आराम नहीं करती अपने जीवन में, और ये इसकी उम्र भी इसीलिए 2.5 से 3 महीने ही होती है,
1: जी
0: क्योंकि जबकि रानी मधुमक्खी 2.5 से 3 साल जिंदा रहती है, और श्रमिक मधुमक्खी जिसको हम कर्मठ कहते हैं वो केवल 2.5 से 3

0: महीना जिंदा रहती है।
1: जी, बहुत ही रोचक आपने ये इनके कार्य करने की
0: जी
1: शैली बताई कि
0: जी
1: किस तरह से आयु के अनुसार
0: आयु के
1: इन्होंने
0: अनुसार
1: अपने काम का विभाजन किया है। अच्छा सैनी जी, अगर हम एक बक्से की बात करें तो कितनी मधुमक्खियां एक बक्से में रह जाती हैं?
0: देखिए, मधुमक्खी जो हमारा दो तरह के बॉक्स जनरली प्रचलन में होते हैं, एक में ब्रूड चैम्बर होता है केवल, जिसमें रानी मधुमक्खी अंडे देती है और वो अपना उसका परिवार का जो पोषण के लिए शहद और पोलन होता है। मधुमक्खी की आदत होती है जो सरप्लस हनी होता है वो ऊपर की तरफ रखने की, उसको सुपर चैम्बर बोलते हैं। तो यदि हाइव आपका केवल ब्रूड चैम्बर है तो उससे 60 से 65 हज़ार मधुमक्खी उसमें होती हैं,
1: अच्छा,
0: और विद सुपर चैम्बर यदि है तो 1 लाख से ऊपर ज़्यादा मधुमक्खियाँ उसमें होती हैं, और 10 फ्रेम नीचे होते हैं, 10 फ्रेम ऊपर होते हैं। तो 10 फ्रेम में लगभग 60 हज़ार के आसपास मधुमक्खी पाई जाती हैं, और अगर वो सुपर सहित है तो 1 लाख से ऊपर मधुमक्खी उसमें होती हैं।
1: जी जैसे आपने बताया कि आपने तो बक्से में जो मधुमक्खी पालन किया है, शहद निकालते समय पूरा वैज्ञानिक तरीकों का आप इस्तेमाल करते हैं, जो भी इक्विपमेंट्स हैं उन सब का
0: जी
1: इस्तेमाल करते
0: जी
1: हैं, तो शहद निकालते समय कई बार मधुमक्खियों को भी नुकसान पहुंच जाता है। थोड़ा बताएं कि कैसे हमारा एक आम जो किसान है वो भी शहद निकालते समय थोड़ा सा अगर ध्यान रखे तो मधुमक्खियों को हम काफी हद तक सुरक्षित रख सकते हैं।
0: जो पहले अवैज्ञानिक तरीका होता था जिससे मधुमक्खी पालन होता था, उसमें जो गांव में लोग जनरली जाले में उसमें करते थे, तो क्या छत्ते सहित तो उसको काटते थे, तो उसमें हनी भी होता था और उसके बच्चे भी होते थे।
1: जी
0: जबकि अगर मैं बात कर रहा हूँ कि एक हाइव के अंदर 60 हज़ार मधुमक्खी होती हैं, तो 1 लाख से ज़्यादा मधुमक्खी उन सेल्स के अंदर होती है जो अंडा, लार्वा और प्यूपा की अवस्था में होती है। तो वो मधुमक्खी, वो जो 1 लाख अंडा, लार्वा, प्यूपा, वो आपने खत्म कर दिए,
1: जी
0: नेचर का इतना बड़ा नुकसान आपने कर दिया। वो कितना ज्यादा पोलिनेशन करते, कितना अनाज फल सब्जियों की पैदावार में वृद्धि करते, वो आपने खत्म कर दिया।
1: जी
0: तो मेरा एक निवेदन भी है जो हमारे मधुमक्खी पालक भाई हैं उसके, वो बिना जो वैज्ञानिक मधुमक्खी पालन करें, साइंटिफिक मधुमक्खी पालन करें, और जो मशीन होती है हनी एक्सट्रैक्टर होता है उससे ही शहद निकालें, डायरेक्ट छत्तों को काट करके शहद ना निकालें। अगर आप मधुमक्खी पालन करें, शहद आपको चाहिए, तो आप मशीन लेकर के मशीन से शहद निकालें, ताकि उसके अंडे बच्चों को नुकसान ना हो, मधुमक्खी का नुकसान ना हो। वो हमारे एसेट हैं एक तरह से, तो उसको हमें, उसका संरक्षण, उसका संवर्धन हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि हमें भोजन ये मधुमक्खियाँ देती हैं, तो
1: बिल्कुल
0: इनको बचाना भी हमारी जिम्मेदारी है। और जंगलों से उस तरीके से शहद ना निकालें, छत्ते काट करके मशीन से ही शहद निकालें।
1: जी सैनी जी, अगर हम मधुमक्खियों को देखते हुए बात करें तो जैसे हम मधुमक्खियों की इतनी मेहनत से जो इकट्ठा किया हुआ शहद
0: जी
1: है
0: जी
1: जब हम उसको निकालते हैं तो क्या मधुमक्खियों को भी कुछ क्षति का उनको लगता है कि उनको क्षति हुई है,
0: देखिए क्या है कि
1: क्योंकि
0: उसका,
1: इतनी मेहनत से उन्होंने भोजन तो एकत्रित किया
0: हाँ
1: है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, देखिए क्या है कि जो स्टेशनरी छत्ते होते हैं, जैसे एक जगह रखे हैं, पता होता है कि यहाँ 2 या 3 महीने फूल हैं, उसके बाद ये फूल खत्म हो जाएंगे,
1: जी
0: तो वो उस सीजन में खाने के लिए उसको इकट्ठा करती है। अब हमने क्या किया, हमने उसको, जो हाइव हमारा रखा है वहां, हमने उससे शहद मशीन से निकाल लिया। निकालने के बाद जब वहां फूल खत्म हो जाता है तो हम उसको दूसरी जगह फिर शिफ्ट कर देते हैं जहां पे फ्लावर वाली क्रॉप है, तो
1: अच्छा
0: मधुमक्खी को भोजन की कमी नहीं होती।
1: जी
0: हाँ, इतना है कि जैसे मैंने अभी बताया कि हम ब्रूड चैम्बर और सुपर चैम्बर की बात करते हैं, ब्रूड चैम्बर में जो शहद होता है मधुमक्खियों की अपनी जरूरत का होता है परिवार के लिए, और जो सुपर चैम्बर में शहद होता है वो ऑफ सीजन में खाने के लिए होता है। तो हम अगर ऑफ सीजन वाला शहद निकालें केवल, तो उसके परिवार की जरूरतों में कोई कमी नहीं आएगी,
1: जी
0: और जब हमने उसको जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम उसको जब वहां से क्रॉप खत्म होगी, फसल खत्म होगी, हम उसको दूसरी जगह रख देंगे। जैसे सपोज करिए आज हमारे मधुमक्खी बॉक्स हरियाणा में भी रखे हैं, सनफ्लावर में, और ऊपर पहाड़ में रखी हैं जहाँ पे वाइल्ड डेजी और दूसरी तरह के फूल आते हैं। तो मधुमक्खियाँ एक जगह से फसल खत्म होती है, हम उसको दूसरी जगह ले जाते हैं, ताजा भोजन उसे हर जगह मिलता रहता है। तो हाँ, जब आप अगर ब्रूड चैम्बर का हनी निकालते हैं तब मधुमक्खी को ये महसूस होगा कि तुम्हारा कुछ छीना है, तो 1-2 दिन वो शोकड रहती है।
1: जी
0: लेकिन इसलिए मैं कह रहा हूं कि सुपर चैम्बर से हनी निकालें, ताकि उसका पारिवारिक जरूरतें जो है वो पूरी होती रहें।
1: शहद को लेके भी हम देखते हैं कि लोगों के मन में कई सारी भ्रांतियां रहती है
0: जी
1: कि जैसे ये तो मधुमक्खियों की उल्टी है, या कोई बोलता है पॉटी है, तरह तरह की बातें सुनी जाती हैं। अच्छा, आपका क्या मानना है इस वजह से?
0: हाँ, ये आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया। हमारे सामने भी 1-2 बार इस तरह की बातें आई कि जी मधुमक्खी ठीक है, शहद फायदा करता है, लेकिन हम इसलिए खा लेते हैं, और ये तो होती तो उल्टी है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये बड़ी भ्रांति है। मधुमक्खी जब फूलों से रस लेकर के आती है, तो वो उसकी जो सकिंग ऑर्गन होता है वो एक थैली होती है जिसमें वो नेक्टर इकट्ठा करती है, और वहीं उसमें एंजाइम मिलते हैं, वहाँ
1: जी
0: एंजाइम्स पहले से मौजूद होते हैं, और वो वापस ला करके फिर छत्ते में उसको रखती है। तो ये स्टमक में नहीं जाता, उसके शहद जो है उसके पेट में नहीं जाता, केवल जो स्टोरेज वाली थैली होती है मधुमक्खी उसमें वो बूंद लेकर के आती है। सही मायने में वो हनी वहीं बनता है जब उसमें एंजाइम मिल जाते हैं और उसको छत्ते में फिर स्टोर करती है। तो ये प्रक्रिया हनी बनने की प्रक्रिया, हनी जो इतना रिच होता है, हम जैसे विटामिन मिनरल्स तो हनी में होते ही हैं लेकिन जो हनी की मुख्य प्रॉपर्टी है वो होते हैं उसके एंजाइम्स जो मधुमक्खी के शरीर से उसमें मिल, जहाँ मधुमक्खी ने नेक्टर कलेक्ट किया और उसको फिर ला करके स्टोर करते।
1: विश्व मधुमक्खी दिवस के अवसर पर आज इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आप हमारे तमाम श्रोताओं तक पहुँचा रहे हैं, और चलते चलते कार्यक्रम में आप मधुमक्खियों के संरक्षण के लिए क्या कहेंगे?
0: मधुमक्खियों का संरक्षण संवर्धन हम सबकी जिम्मेदारी है। मधुमक्खियां हैं तो हमारा अस्तित्व है, अगर मधुमक्खियां खत्म हो गई तो हमारा अस्तित्व, मानव का अस्तित्व, प्राणियों का अस्तित्व इस धरती से खत्म हो जाएगा
1: जी।
0: तो इसलिए मेरा बागवान भाइयों से भी निवेदन है कि अगर आपके क्षेत्र में कोई मधुमक्खी पालक आता है उसका स्वागत करिए, और मधुमक्खी यदि आपकी फसल में कोई कोई कीड़ा कोई इस तरह का वो आता है जिसमें आपको स्प्रे करना पड़े तो आप पहले मधुमक्खी पालक को बता दें, अवगत करा दें, ताकि वो उस दिन कुछ टाइम के लिए अपनी मधुमक्खियों के गेट बंद कर लें, मधुमक्खियां उस समय बाहर नहीं आएं। तो कीटनाशक का छिड़काव आप सुबह शाम में करें और मधुमक्खी पालक को बता करके करें, ताकि इस नेचर के महत्वपूर्ण जीव का कोई नुकसान इसको ना हो। ये आपकी हम लोगों की सबकी नैतिक जिम्मेदारी है कि कोई भी इस तरह के कृत्य हम लोग ना करें कि मधुमक्खियों का कोई नुकसान हो। कीटनाशकों का छिड़काव बहुत जिम्मेदारी के साथ और इस प्रकार करें कि मधुमक्खियां भी हमारी बची रहें और हमारी फसलों की पैदावार में भी फर्क ना पड़े।
1: आज आप आकाशवाणी देहरादून के स्टूडियो में हैं और विश्व मधुमक्खी दिवस के अवसर पर बहुत ही महत्वपूर्ण बातचीत आपने हमारे तमाम श्रोताओं के साथ साझा की। स्टूडियो में आने के लिए आपका धन्यवाद।
0: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
2: साथियों, भेंटवार्ता में श्री अजय सैनी से आपने जाना कि कैसे मधुमक्खी हम मनुष्यों के लिए कितनी जरूरी है और वे क्या क्या करती हैं और कैसे शहद बनाती हैं। मधुमक्खी वाकई में कर्मठ होती है, हमें भी मधुमक्खियों की तरह कर्मठ होना चाहिए। साथियों, आगे बढ़ने से पहले आइए सुनते हैं कुछ संदेश।

पूरे उत्तराखंड में शुरू हो चुकी है जनगणना। पहले चरण में 25 अप्रैल से 24 मई 2026 तक प्रगणक द्वारा घर घर सर्वे किया जाएगा। आपकी सभी जानकारी पूरी तरह सुरक्षित और गोपनीय रखी जाएगी। कृपया सही और पूर्ण जानकारी दें, यही आपके क्षेत्र के विकास की नींव है। जनगणना 2027 आपकी भागीदारी, देश की प्रगति। ये सूचना जनगणना कार्य निदेशालय उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।

0: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
1: पारदर्शिता एवं जन कल्याण को प्राथमिकता देते हुए उत्तराखंड में लागू की गई समान नागरिक संहिता, नकल विरोधी कानून, भू कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून, अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम 2025 के माध्यम से प्रशासनिक व्यवस्था को किया गया और भी मजबूत।
0: मानस खंड मंदिर माला मिशन, श्री केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के पुनर्विकास एवं शीतकालीन यात्रा जैसी पहलुओं से पर्यटकों की संख्या बढ़कर पहुंची 6 करोड़ के पार।
1: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की डगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
2: साथियों, हम बात कर रहे थे अन्न भंडारण के उपायों के बारे में। साथियों, आप जैसे अपने भंडार गृह बनाते हैं तो उसमें अगर खिड़कियां हों तो याद रखें कि वे ऊपर की तरफ हों, ताकि भंडार गृह में कोई कीड़े या फिर पक्षी प्रवेश न कर सकें। साथ ही हवा भी आती जाती रहे और नमी भी उतनी ही बनी रहे जितनी ज़रूरी है। साथियों, आप अपने भंडार घर में नीम की पत्तियां, लहसुन, पुदीना, ये सब कुछ रख सकते हैं। इसकी गंध से जो है कीड़े दूर रहते हैं। अगर आप अनाज को डिब्बों में रख रहे हैं तो वे एयरटाइट हो, इस बात का ख्याल रखें। आप राख तेल का प्रयोग भी अनाज पर कर सकते हैं, ये पुराने पारंपरिक तरीके हैं। तापमान नियंत्रण भंडारण के लिए सबसे ज़रूरी है। तापमान जो है 20% से 30 डिग्री प्रतिशत जो है सेल्सियस जो है होना चाहिए। तो साथियों, ये तो थी अन्न भंडारण के उपाय।

यदि आप अपने अनाज को सही तरह से रख पाएंगे तो ही आप एक अच्छी फसल को सही और अच्छे मूल्य पर बाजार में बेच पाएंगे। साथियों, हमें उम्मीद है कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी से आप ज़रूर फ़ायदा लेंगे और आपको अन्न भंडारण में बहुत ही मदद मिलेगी और आपका जो भी अन्न है वो सुरक्षित रहेगा और आप बाज़ार तक उसको सही तरह से पहुंचा पाएंगे और आपकी मेहनत भी जो है ख़राब नहीं होगी। आप हमें अब पत्र लिखकर और ईमेल करके बता सकते हैं कि आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा। पत्र लिखने के लिए हमारा कार्यक्रम है, कार्यक्रम का पता है, कार्यक्रम कृषि जगत द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी केंद्र देहरादून, पिन 248001। आप हमें jagatkrishi@gmail.com पर ईमेल भी कर सकते हैं। और इसी के साथ मुझे यानी वीना शर्मा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

0: लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
1: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
0: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
1: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
0: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
1: 8700001-4242।
2: अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि जगत आकाशवाणी देहरादून से FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब आप सुनेंगे कुमाऊनी में प्रादेशिक समाचार।
3: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून बटे कुमाऊनी में प्रादेशिक समाचार नौकदगढ़ में ममता पांडे। पहली मुख्य समाचार। प्रदेशक पूर्व मुख्यमंत्री मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूरी के हरिद्वार में पूर्व राजकीय सम्मानक दगड़ अंतिम विदाई दी गई। राज्य सरकार जिला योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 तक लीजिए सभी जिलों के विकास का मौक लीजिए 1018 करोड़ रुपये है ज्यादा धनराशि आवंटित करी। पौड़ी गढ़वाल में श्रीनगर क्षेत्र में डूंगरी पंथ रेलवे सुरंगक SDRF और NDRF संयुक्त दलल निरीक्षण कर बे सुरक्षा व्यवस्थाओं का हालचाल ले। और प्रदेश में गर्मी प्रकोप जारी, मौसम विभाग अगिल 24 घंटे के दौरान हरिद्वार, देहरादून, पौड़ी, उधम सिंह नगर और नैनीताल जिलों में कहीं-कहीं लू चलने का अंदाज जताए। और अब समाचार विस्तारल। प्रदेशक पूर्व मुख्यमंत्री मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूरी के आज हरिद्वार स्थित खड़खड़ी शमशान घाट पर पूर्व राजकीय सम्मानक दगड़ अंतिम विदाई दी गये। सेना और पुलिसक जवानों गार्ड ऑफ ऑनर दी बेर उनके अंतिम सलामी दे। यो बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टरक दगड़ प्रदेशक कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहीन। मेजर जनरल खंडूरी अंतिम यात्रा में जन सैलाब उमड़ पड़ो और हर वर्ग जानिनल नम आखन ले उनके श्रद्धांजलि अर्पित करी। मुख्यमंत्री को की स्वर्गीय खंडूरील उत्तराखंडक विकास और जनसेवा में जो योगदान दिए वे प्रदेश हमेशा याद रखोल।
4: जनरल भुवन चंद खंडूरी जी का जाना हमारे पूरे परिवार के लिए, राज्य के लिए और देश के लिए बहुत अपूर्णीय क्षति है। और उन्होंने सेना के अधिकारी के रूप में देश की रक्षा के लिए अपनी सेवाएं दी, अभूतपूर्व योगदान दिया। उसके बाद भारत सरकार में मंत्री के नाते और राज्य में मुख्यमंत्री के नाते उन्होंने शुचिता, पारदर्शिता और अनुशासन और समय की पाबंदी, ऐसे बहुत सारे अनुकरणीय जो कार्य हैं अपने समय में किए, वो हम सभी के लिए प्रेरणा के स्रोत रहेंगे और उनका जीवन हमेशा हमें प्रेरित करता रहेगा कि हम अनुशासन से, संयम से, नियम से और समय से सभी चीजों को पूरा करें।
3: यह पहली

0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामिल स्वर्गीय खंडूरी के आवास पर जाबेर उनर पार्थिव शरीर के फूल चक्र अर्पित कर बेर उनन के श्रद्धांजलि दी। यह एक बात देहरादून स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषणक दगड़, कैबिनेट मंत्री, विधायकों, पार्टी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं उनर पार्थिव शरीर पर फूल चक्र अर्पित कर बेर अंतिम विदाई दे। प्रदेश सरकार जिला योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 तक लीजिए राज्यक सपे 13 जिलों के विकास कामों के लीजिए 1,018 करोड़ रुपये है ज्यादा धनराशि बांटी। यो राशि जिलों जरूरत अनुसार निर्धारित करेगी। आवंटित धनराशि में अनुसूचित जाति उपयोजना के अंतर्गत करीब 200 करोड़ 22 लाख रुपये, अनुसूचित जनजाति उपयोजना के लीजिए लगभग 30 करोड़ रुपये और सामान्य मद में 787 करोड़ है बाकी रुपये शामिल छन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामिल को की यो धनराशि जिला योजना के माध्यम स्थानीय जरूरतों के अनुरूप आधारभूत संरचना, ग्रामीण विकास, पेयजल, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य व अन्य जन उपयोगी योजनाओं के सहायता मिलेली। भारतीय सेना ओर बठे अग्निवीर भर्ती के लिए 1 जून बठे 12 जून के बीच ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा आयोजित करी जाली। परीक्षा आयोजन देशभर 206 शहरों में 403 परीक्षा केंद्रों में करी जाली। सेना भर्ती कार्यालय अल्माड़क एआरओ कर्नल महेश कुमारल यो जानकारी दी बेर बताई कि कुमाऊं मंडलक 4 जिले अल्माड़, बागशर, नैनीताल और उधम सिंह नगरक जन अभ्यर्थियों हल्द्वानी परीक्षा केंद्र चयन करी छू। उन्हें लीजिए 5 जगहों में परीक्षा केंद्र निर्धारित करी गई।
1: मऊ रीजन के 4 डिस्ट्रिक्ट अल्मोड़ा, बागेश्वर, नैनीताल और उधम सिंह नगर के जिन अभ्यर्थियों ने हल्द्वानी परीक्षा केंद्र का चयन किया है अपने रजिस्ट्रेशन में, उन्हें सूचित किया जाता है कि परीक्षा हल्द्वानी के 5 विभिन्न स्थानों पर आयोजित की जाएगी। अभ्यर्थियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इस बार 1 से अधिक श्रेणियों में जिन कैंडिडेट्स ने आवेदन किया है कि परीक्षा एक ही दिन में आयोजित की जाएगी। परीक्षा केंद्र तक पहुंचने में सुविधा हेतु एडमिट कार्ड में परीक्षा केंद्र की लोकेशन का लिंक भी उपलब्ध कराया गया है। साथ ही परीक्षा की तैयारी में सहायता के लिए अभ्यास प्रश्न पत्र, जिनको हम प्रैक्टिस पेपर बोलते हैं, GIE की वेबसाइट के ऊपर उपलब्ध कराए गए हैं। अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि वे इनका उपयोग कर परीक्षा की बेहतर तैयारी करें। सभी अभ्यर्थियों से एक और

0: उपलब्ध छी।
1: पौड़ी गढ़वाल में श्रीनगर क्षेत्रक अंतर्गत डूंगरी पंथ रेलवे सुरंगक एसडीआरएफ और एनडीआरएफक संयुक्त दलल विस्तृत निरीक्षण करो। यो बीच सुरंगक सुरक्षा व्यवस्थाओं, प्रवेश व निकासी बाट, आपातकालीन बचाव व्यवस्थाओं और संभावित आपदाक स्थिति में राहत और बचाव कामों के लिए तैयारियों का आकलन करेगी। सुनो यो रिपोर्ट।
2: संयुक्त दलल सुरंग भितेर जबेर विभिन्न सुरक्षा बिंदुओं का निरीक्षण करो और आणवाल बखतम कसल प्रकारक आपात स्थिति है बे प्रभावी ढंगल निपटण के लिए आवश्यक रणनीतियों पर चर्चा करी। अधिकारियों सुरंग में काम करने वाले कर्मचारियों हेत सुरक्षा मानकों का अनुपालन और आपदाक बखत त्वरित प्रतिक्रिया और समन्वित राहत कार्यों के लिए आवश्यक दिशा निर्देश ले दी। निरीक्षण दौरान रेलवे अधिकारियों दल के सुरंगक संरचना, सुरक्षा उपकरणों और निकासी मार्ग और उपलब्ध आपदा प्रबंधन संसाधनों विस्तृत जानकारी दी। यह एक बाद एसडीआरएफ और एनडीआरएफ दलल पूर्व सुरंग क्षेत्र भ्रमण करो और संवेदन स्थलों के चिन्हित करते हुए संभावित जोखिम वाले बिंदुओं का आकलन करो। एसडीआरएफ निरीक्षक मंजी नेगिल बता कि निरीक्षण का उद्देश्य डूंगरी पथ रेलवे सुरंग सुरक्षा व्यवस्थाओं का मूल्यांकन करण और कसल आपदा या आपात स्थिति में त्वरित और सुरक्षित राहत बचाव सुनिश्चित करने के लिए जरूरी तैयारियों के मजबूत करण छो। उन्होंने कहा कि एसडीआरएफ और एनडीआरएफ बटी बखत बखत पर यश संवेदन स्थलों का निरीक्षण करबेर सुरक्षा तंत्र को और ज्यादा प्रभावी बनाई जा। आकाशवाणी देहरादून के लिए समाचार कक्ष बटी योगिता बिष्ट।
1: देहरादून में रिस्पना पुलक नजदीक स्थित एक अस्पताल में आज आग लगनल एक सैनिक मौत है गई जबकि 10 अन्य झुलसी गईं। सपे घायलों के उपचार अगलीजी पासक अस्पताल में भर्ती करी गयो। घटना की सूचना मिलन पर पुलिस और अग्निशमन दलल राहत और बचाव का अभियान चलाए और आग बुझौनक दौरान गैस रिसाव, ऑक्सीजनक कमी और धुंवल तीन पुलिसकर्मी ले घायल है गईं। उनर इलाज लिए नजदीक अस्पताल में चलनो। घटना के बाद अस्पताल के बंद कर हलो और सपे मरीजों के दुहर अस्पताल में भेजी गयो। पुलिस आग लगने कारणों की जांच करने। प्रदेश में गर्मी का असर लगातार बढ़ते जानो। मौसम विभाग अगले 24 घंटक दौरान हरिद्वार, देहरादून, पौड़ी, उधम सिंह नगर, नैनीताल और उत्तरकाशी जिलक आसपास तक जगहों में कैं लू चलने का अंदाज जताए। विभाग के अनुसार अगले 2-3 दिनन में अधिकतम तापमान में 1-3 डिग्री सेल्सियस जाने बढ़ने का अनुमान छू। मैदानी जिलों में मौसम मुख्य रूप रुखी बनी रोल और मौसम विभाग सपे जानिन के दिनक वक्त तेज घामल बचन और पहाड़ी जगहों में खराब मौसम होने के कारण सतर्क रूणक सलाह दी। अवैध और अनियंत्रित ऑनलाइन दवा बिक्री के विरोध में आज राजधानी देहरादून अग्दगढ़ प्रदेशक विभिन्न जिलों में मेडिकल स्टोर संचालकों एक दिवसीय सांकेतिक हड़ताल कर बेर प्रदर्शन करो। ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट और उत्तराखंड औषधि व्यवसाय महासंघक अनुरोध पर मेडिकल स्टोर संचालकों अपूर्ण दुकान बंद रख बेर आंदोलन के समर्थन दियो। देहरादून में दवा विक्रेताओं को कि ई फार्मेसी और क्विक डिलीवरी प्लेटफॉर्म बिन पूर्ण निगरानी और नियमों दवाई बिक्री करण रही जेल मरीजों की सुरक्षा पर गंभीर सवार थाड़ है गई। वहीं चंपावत जिलक सपे मेडिकल स्टोर आज बंद रही। हालांकि जिले में जन औषधि केंद्र खुलनल मरीजों के थोड़ा राहत मिली। और आखिर में मुख्य समाचार एक बार आजी। प्रदेशक पूर्व मुख्यमंत्री मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूरी के हरिद्वार में पूर्व राजकीय सम्मानक दगड़ अंतिम विदाई दी गये। राज्य सरकार जिला योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 अकलीजी सपे जिलों के विकास का मौकलीजी 1018 करोड़ रुपये है बाकी धनराशि आवंटित करी। पौड़ी गढ़वाल में श्रीनगर क्षेत्र में डूंगरी पंथ रेलवे सुरंगक एसडीआरएफ और एनडीआरएफ संयुक्त दल निरीक्षण कर बे सुरक्षा व्यवस्थाओं का हालचाल ले। और प्रदेश में गर्मक प्रकोप जारी। मौसम विभाग अगले 24 घंटक दौरान हरिद्वार, देहरादून, पौड़ी, उधम सिंह नगर और नैनीताल जिले में कैं लू चलनक अंदाज जताए। यह कदगढ़ ही कुमाऊनी में प्रादेशिक समाचारों को यू अंक समाप्त हूं। नमस्कार।
3: FM 100.5 MHz पर ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। शाम के 7:40

से 1960 और 70 के दशक में ये मंदिर बॉब डायलन, जॉर्ज हैरिसन, टिमोथी लेरी और डीएच लॉरेंस जैसे अंतर्राष्ट्रीय विचारकों का ध्यान आकर्षण केंद्र रहा। इस मंदिर का अद्भुत ऊर्जा क्षेत्र इसे एक विश्व स्तरीय साधना स्थल के रूप में प्रतिष्ठित करता है। श्रोता, जहां इस मंदिर के आध्यात्मिक और चुंबकीय क्षेत्र के बारे में अब तक हम बात कर रहे थे, तो अब इस मंदिर से जुड़े रोचक तथ्य के बारे में भी आपको बताते हैं। ये मंदिर पृथ्वी के उन दुर्लभ स्थलों में से एक है जहाँ अत्यधिक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र पाया जाता है। स्वामी विवेकानंद ने यहाँ ध्यान करके गहन आत्मिक अनुभूति की थी। पास स्थित क्रैक्स रिज 1960-70 के दशक में पश्चिमी साधकों का प्रमुख साधना स्थल था। श्रोताओं, इस मंदिर में कोई बड़ी मूर्ति नहीं है, यहाँ ऊर्जा आधारित पूजा की जाती है। नासा और इसरो के वैज्ञानिकों ने इस क्षेत्र की अद्भुत विद्युतीय चुंबकीय विशेषताओं का अध्ययन किया है। प्रत्येक पूर्णिमा के दिन यहाँ साधक ध्यान और साधना के लिए एकत्र होते हैं। श्रोताओं, कसार देवी मंदिर में वर्ष भर अनेक धार्मिक पर्व और तिथियां धूमधाम से मनाई जाती हैं। अक्टूबर नवंबर में कार्तिक पूर्णिमा के दिन कसार देवी मेला आयोजित होता है। हजारों श्रद्धालु इस दिन यहां विशेष पूजा हवन और ध्यान में भाग लेते हैं। श्रोताओं, ये मेला मार्च अप्रैल और सितंबर अक्टूबर में भी आयोजित होता है। इन दिनों माँ दुर्गा की विशेष पूजा होती है। श्रद्धालु व्रत कीर्तन और कन्या पूजन करते हैं। वहीं दुर्गाष्टमी और महानवमी के दिन यानी नवरात्रि के 8वें और 9वें दिन भी विशेष पूजा होती है। श्रोताओं, मासिक पूर्णिमा यानी कि प्रत्येक पूर्णिमा के दिन यहां साधक विशेष ध्यान के लिए एकत्र होते हैं। श्रोता, अब हम आपको बताते चलें कि मंदिर के आसपास घूमने वाले और कौन कौन से विशेष स्थल हैं। कसार देवी मंदिर के निकट अनेक दर्शनीय स्थल हैं। क्रैक्स रिज ध्यान और साधना के लिए प्रसिद्ध स्थल, हिमालय का मनोरम दृश्य यहां से दिखता है। ब्राइट एंड कॉर्नर लगभग 3 किलोमीटर दूर सूर्योदय और सूर्यास्त का अद्भुत दृश्य। चित्तई गोलू देवता मंदिर लगभग 10 किलोमीटर दूर स्थित न्याय के देवता गोलू देवता को समर्पित, यहां हजारों घंटियां अर्पित की जाती हैं। बिनसर वन्य जीव अभयारण्य लगभग यहां से 20 किलोमीटर दूर स्थित जैव विविधता से भरपूर वन क्षेत्र, 0 पॉइंट से हिमालय से अद्भुत दृश्य दिखाई देता है। श्रोताओं, यहाँ से अल्मोड़ा नगर की दूरी लगभग 8 किलोमीटर है। यहाँ परंपरागत बाजार, सांस्कृतिक धरोहर और स्थानीय व्यंजन का आनंद लिया जा सकता है। श्रोताओं, अब बात करेंगे कटारमल सूर्य।

श्रोताओं, तो चलिए बातों और मुस्कुराहटों के बीच सुनते हैं एक और शानदार नगमा, जिसको गाया है सुनिधि चौहान और शाहिल हड्डा ने। फिल्म का नाम है गुजारिश।

0: From this connectivity project, so does India. So we have a joint interest in taking the IMEC forward.
1: Ambassador Vadhva, before we take this conversation further, let's listen in to one more thing that the Prime Minister said at his joint press conference.
2: रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्रों में करीबी सहयोग हमारे गहरे आपसी विश्वास का प्रतीक है। हमारी सेनाओं के साथ साथ दोनों देशों के रक्षा उद्योगों के बीच भी सहयोग बढ़ रहा है। हमारे डिफेंस इंडस्ट्रियल रोडमैप से को डेवलपमेंट और को प्रोडक्शन का मार्ग प्रशस्त हुआ है। मैरिटाइम पावर्स के रूप में भारत और इटली के बीच कनेक्टिविटी के क्षेत्र में करीबी सहयोग स्वाभाविक है। हम मिलकर शिपिंग, पोर्ट्स मॉडर्नाइजेशन, लॉजिस्टिक्स और ब्लू इकोनॉमी पर काम करेंगे। हमने अपनी विन विन साझेदारी को तीसरे देशों तक ले जाने पर भी चर्चा की। इस दिशा में आगे बढ़ते हुए हम अफ्रीका में ठोस प्रोजेक्ट्स पर काम करने के लिए सहमत हुए।
1: Ambassador Vadhva, what struck me most was, you know, when he said that we've decided to take our win-win partnership to third countries and there are, India and Italy are now going to work on projects in Africa. How do you view this?
0: So Africa is the next frontier of development. It has got all the resources and it's got the emerging

0: बीते कुछ वर्षों में दुनिया ने एक बदलाव महसूस किया है, एक ऐसा बदलाव जहां भारत अब सिर्फ एक उभरती अर्थव्यवस्था नहीं बल्कि वैश्विक मंच पर एक निर्णायक आवाज बनकर उभरा है। कूटनीति के नए आयाम, विश्व मंच पर बढ़ती भागीदारी और हर बड़े वैश्विक मुद्दे पर भारत की स्पष्ट और सशक्त उपस्थिति, इन सब ने मिलकर रचा है एक नए भारत का आत्मविश्वास। और इसी बदलती तस्वीर का एक महत्वपूर्ण पहलू है दुनिया भर से मिल रहे वो सम्मान जो भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा की गवाही देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिले ये वैश्विक अलंकरण सिर्फ एक नेता की उपलब्धि नहीं बल्कि भारत की साख, सामर्थ्य और विश्वसनीयता का प्रतीक हैं। स्वीडन और नॉर्वे से लेकर दुनिया के कई देशों तक हर सम्मान एक कहानी कहता है, भारत के बढ़ते कद की कहानी। चर्चा का विषय है कार्यक्रम के आज के अंक में आपका स्वागत है, मैं हूं आनंद श्रीवास्तव और आज हम चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वैश्विक सम्मान, भारत की बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा। शुरुआत करते हैं बिल्कुल हालिया और ऐतिहासिक लम्हे से। मई 2026 का महीना भारत के राजनयिक इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्डिक देशों की यात्रा पर थे, तारीख थी 17 मई 2026 और जगह थी स्वीडन का गोथेनबर्ग शहर। स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन की उपस्थिति में प्रधानमंत्री मोदी को स्वीडन के सर्वोच्च नागरिक सम्मान रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार से नवाजा गया। साल 1748 में स्थापित हुआ ये ऐतिहासिक सम्मान किसी विदेशी शासनाध्यक्ष को मिलना ये दर्शाता है कि आज यूरोप की नजरों में भारत का स्थान क्या है। ये प्रधानमंत्री मोदी का 31वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान था।
1: कुछ समय पहले मुझे स्वीडन के रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया। ये सिर्फ मेरा सम्मान नहीं है, यह 140 करोड़ भारतवासियों का सम्मान है। यह स्वीडन के हमारे उन सभी साथियों का भी सम्मान है जिन्होंने भारत स्वीडन संबंधों को समृद्ध किया, एक मजबूत आधार दिया।
0: कहानी यही नहीं रुकी, इसके ठीक अगले ही दिन यानी 18 मई 2026 को नॉर्वे की राजधानी ओस्लो का शाही महल एक और इतिहास का गवाह

बना। नॉर्वे के राजा किंग हेराल्ड पंचम ने प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट से विभूषित किया। दो नॉर्डिक देशों से मिले इन सम्मानों ने साबित कर दिया कि भारत और नॉर्डिक देशों के बीच की साझेदारी अब एक नई रणनीतिक ऊंचाई पर पहुंच चुकी है। आइए समय के पहिए को थोड़ा पीछे ले चलते हैं। साल 2014 में शुरू हुआ ये कूटनीतिक सफर साल 2016 में सम्मानों की एक ऐसी श्रृंखला में बदल गया जो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। साल 2016 में खाड़ी देशों के साथ भारत के रिश्तों में एक नया अध्याय जुड़ा। सऊदी अरब ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ किंग अब्दुल अजीज सैश से नवाजा। इसी साल पड़ोसी देश अफगानिस्तान ने उन्हें स्टेट ऑर्डर ऑफ गाजी आमिर अमानुल्ला खान प्रदान किया। वर्ष 2018 में भारत की पर्यावरण नीतियों को वैश्विक पहचान मिली जब संयुक्त राष्ट्र संघ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पर्यावरण के क्षेत्र के सबसे बड़े पुरस्कार चैंपियंस ऑफ द अर्थ से सम्मानित किया। इसी साल फिलिस्तीन ने उन्हें ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ फिलिस्तीन दिया। दक्षिण कोरिया ने वैश्विक शांति और आर्थिक विकास के लिए सियोल शांति पुरस्कार भी प्रदान किया। वर्ष 2019 तो जैसे वैश्विक पुरस्कारों का वर्ष बन गया। दुनिया के नक्शे पर भारत की दोस्ती का दायरा कितना बड़ा था ये इन पुरस्कारों की सूची देखकर समझ आता है। संयुक्त अरब अमीरात का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ जायद, रूस का सबसे प्रतिष्ठित ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल, मालदीव का ऑर्डर ऑफ द डिस्टिंग्विश्ड रूल ऑफ इज्जुद्दीन और बहरीन का किंग हमद ऑर्डर ऑफ द रेनेसा शामिल रहा। 2019 में ही बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने स्वच्छ भारत अभियान की सफलता के लिए उन्हें ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड से सम्मानित किया। जब साल 2020 में पूरी दुनिया सदी की सबसे बड़ी महामारी कोरोना से जूझ रही थी तब भारत की वैक्सीन मैत्री ने दुनिया का दिल जीता। इसी दौरान अमेरिका ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने बेहद प्रतिष्ठित सैन्य सम्मान लीजन ऑफ मेरिट से सम्मानित किया। 2021 में हमारे पड़ोसी देश भूटान ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द ड्रैगन किंग से भारत के प्रति अपनी अटूट निष्ठा व्यक्त की। साल 2023 में जब भारत G20 की मेजबानी कर रहा था और उसी वर्ष जब प्रधानमंत्री मोदी पापुआ न्यू गिनी पहुंचे तो वहां के प्रधानमंत्री ने प्रोटोकॉल तोड़कर पैर छूकर उनका स्वागत किया और उन्हें ऑर्डर ऑफ लोगोहू से नवाजा। इसी तरह फिजी ने कमियान ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी और मिस्र ने अपना ऐतिहासिक ऑर्डर ऑफ द नाइल प्रधानमंत्री मोदी को प्रदान किया। वर्ष 2023 में ही फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक और सैन्य सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया, जिसके बाद ग्रीस ने भी उन्हें

0: ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना, साइप्रस का सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस, नामीबिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एनिशियंट वेलविचिया मिराबिलिस, ट्रिनिडाद और टोबैगो ने द ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ ट्रिनिडाद एंड टोबैगो, और ब्राजील ने द ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल अवार्ड ऑफ द सदर्न क्रॉस से भारत के बढ़ते कदमों का स्वागत किया। इसके अलावा ओमान की तरफ से फर्स्ट क्लास ऑफ द ऑर्डर ऑफ ओमान और इथियोपिया की तरफ से ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया भी प्रधानमंत्री मोदी को प्रदान किया गया। साल 2026 की शुरुआत में ही इसराइल ने भी उन्हें मेडल ऑफ द नेसेट से सम्मानित किया। इन 32 अंतर्राष्ट्रीय सम्मानों की फहरिस्त सिर्फ कागजी आंकड़े नहीं है, ये इस बात का सीधा प्रमाण है कि आज का भारत सिर्फ अपनी सीमाओं की रक्षा नहीं कर रहा, बल्कि दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम यानी पूरी पृथ्वी ही मेरा परिवार है का संदेश दे रहा है। चाहे वो पर्यावरण संकट हो, वैश्विक शांति की बात हो या आपदा के समय मदद का हाथ बढ़ाना हो, दुनिया आज भारत के नेतृत्व की ओर उम्मीद भरी नजरों से देखती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वर्ष दर वर्ष मिले ये सम्मान असल में भारत की 140 करोड़ जनता के कड़े परिश्रम, हमारी प्राचीन संस्कृति और हमारे बढ़ते आर्थिक और सामरिक सामर्थ्य का वैश्विक उत्सव है। विदेशी कूटनीति में क्या 2014 के बाद भारत ने विशेष हासिल किया है जिसे भारत अब दुनिया के मानचित्र में अब एक मजबूत स्तंभ बन गया है, इस पर खास चर्चा के लिए हमारे साथ हैं दो बेहद खास मेहमान, पूर्व राजदूत अशोक सज्जनहार और वरिष्ठ पत्रकार मदन जेड़ा। कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत
1: जी। धन्यवाद।
2: धन्यवाद आनंद जी।
0: अशोक जी, सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की जो यात्रा चल रही है इसमें वो यूएई, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 5 देशों की यात्रा पर हैं। नॉर्वे में हुए तीसरे इंडिया नॉर्डिक समिट में भारत और नॉर्डिक देशों के बीच ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पर सहमति बनी है। आपको क्या लगता है कि इस यात्रा के चलते जो वैश्विक परिदृश्य है और वैश्विक परिदृश्य में भारत की जो नॉर्थ वर्ड टर्न है यानी उत्तर की ओर जो रुख है, उस लिहाज से कितना अहम मानते हैं इस यात्रा को आप?
1: हम अभी देख रहे हैं जो ये जो यात्रा है वो उनकी नॉर्डिक देशों में है, तो इसमें कहा जाए जो ये नॉर्थ वर्ड हम टर्न देख रहे हैं, परंतु ये तो हम जानते ही हैं जो भारत तो एक जिसे कहा जाए वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ है। हमने वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट्स किए हैं जब भारत G20 की चेयर हमने संभाली थी 2023 में। परंतु इसको छोड़ते हुए मैं कहूंगा जो भारत की जो की कूटनीति है, अगर हम 2014 के बाद से देखें तो हमारी कूटनीति पूरे विश्व के साथ अपने संबंधों को आगे ले जाने में लगी है और हम इसमें बहुत ही तीव्र गति से काम कर रहे हैं। परंतु जहां तक ये नॉर्डिक देशों का संबंध है, आपने ठीक कहा है, इसको अभी करीब 8 साल हुए हैं। 2018 में जिसे कहा जाए पहला नॉर्डिक समिट हुआ था स्वीडन में, दूसरा डेनमार्क का हुआ 2022 में कोपेनहेगन में, और अब तीसरा पिछले साल होने वाला था परंतु पहलगाम के इंसिडेंट के होते हुए तो ये नहीं हुआ और अब हो रहा है। तो अभी जो हालात हैं पूरे विश्व में, विश्व की जो चुनौतियां हैं, जो चाहे हम जियोपॉलिटिकल स्तर पर देखें, रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, पश्चिम एशिया का युद्ध चल रहा है, तो उसमें रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर को आगे कैसे ले जाया जाए, और जो ग्रीन एनर्जी है, ग्रीन ट्रांजिशन है, इनोवेशन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, रोबोटिक्स है, इन सभी जो नई टेक्नोलॉजीज आई हैं इनके साथ कैसे संबंध बनाया जाए और देशों के साथ मिलकर सहयोग किया जाए, ये बहुत महत्वपूर्ण इशू थे और इस पर बातचीत हुई। और जो बताता है जो प्रधानमंत्री मोदी की और भारत की विश्वसनीयता कितनी बढ़ रही है पूरे विश्व में।
0: चर्चा कर रहे हैं 2014 से लेकर अब तक भारत की विदेशी कूटनीति के आइकॉनिक मोमेंट्स की, और उसमें जो सबसे बड़ा मोमेंट्स था मदन जी वो G20 का जो हमने मेजबानी की। साल 2023 में भारत की अध्यक्षता में हुआ G20 समिट नई दिल्ली डिक्लेरेशन की वजह से दुनिया भर में सराहा गया। आपको क्या लगता है कि भारत ने जिस तरह विकसित और विकासशील देशों के बीच एक पुल का काम किया, उसने वैश्विक कूटनीति में भारत का कद किस तरह बढ़ाया?
3: अगर हम G20 की बात करें, एक तो ये बहुत बड़ा सफल आयोजन था, ये तो निश्चित रूप से था। दूसरी सबसे बड़ी बात इसमें हुई कि ग्लोबल साउथ की आवाज को भारत ने मजबूती के साथ बुलंद किया और जो अफ्रीका यूनियन है, अफ्रीकी देश है, उनको G20 की सदस्यता दिलाने में सफलता हासिल की। भारत लगातार ग्लोबल साउथ की आवाज को उठा रहा था। दुनिया में एकमात्र देश है जो भारत ग्लोबल साउथ की आवाज को उठा रहा था। इसमें करीब 100 से भी ज्यादा देश आ जाते हैं, पूरा अफ्रीका रीजन इसमें आ जाता है, नॉर्थ अमेरिकी जो कंट्री हैं वो आ जाते हैं। इसके

0: अब और भी कई छोटे छोटे कंट्री हैं जो ग्लोबल साउथ में आते हैं, जो न तो किसी समूह के हिस्से नहीं है, लेकिन उनकी आवाज़ कहीं नहीं सुनी जा रही थी। अगर मैं G20 के आयोजन की बात करूं, पर भारत की कूटनीति की बात करें, तो ग्लोबल साउथ की आवाज़ को उठाना और अफ्रीकी यूनियन को G20 में सदस्यता दिलाना, तो मुझे लगता है कि भारत की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। और इससे भारत की जो कूटनीति है उसको पूरी दुनिया ने स्वीकार किया, और पूरी दुनिया ने स्वीकार किया कि जो भारत एक ऐसे देशों की आवाज़ उठा रहा है जिसकी आवाज़ बहुत पहले उठाई जाने की ज़रूरत थी। और ये पहल कायदे से देखा जाए तो जो विकसित कंट्री है उनको इसकी शुरुआत करनी चाहिए थी, लेकिन भारत ने, एक बहुत तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, उसने इन देशों की आवाज़ को उठाकर पूरी दुनिया को एक मैसेज दिया जो वसुधैव कुटुंबकम, और इस G20 सम्मेलन की थीम भी यही थी, तो वसुधैव कुटुंबकम का जो संदेश दिया उसको पूरी दुनिया ने स्वीकार किया और एक भारत के नेतृत्व में विश्वास जताया।
1: Dr. Ankrumah had said, and I quote, I am not African because I was born in Africa, but because Africa was born in me. In the same way, India carries Africa in its heart. India and Africa share a dream where every child gets opportunities. Where every voice is heard, where nations rise together, not apart. Let us build a partnership, not only for today, but for generations to come.
2: अशोक जी, अगर इस चर्चा को आगे बढ़ाएं तो भारतीय विदेशी कूटनीति का एक और अहम पड़ाव है आपदा और संकट में कूटनीति, चाहे वो ऑपरेशन संकट मोचन हो, ऑपरेशन गंगा हो, या फिर युद्ध और संकट के क्षेत्रों से अपने नागरिकों को वापस बुलाना, उसमें भी भारत ने एक अहम भूमिका निभाई। लेकिन एक और ऑपरेशन हुआ जिसे ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया गया, जिसमें भारत ने पूरी दुनिया को ये बताया कि अगर भारत की तरफ कोई आंखें दिखाएगा तो भारत युद्ध का जवाब और प्रबल युद्ध से देना जानता है। आतंकवाद को सिरे से ना करना, और ऑपरेशन सिंदूर के बाद दुनिया के अलग अलग देशों में अपने प्रतिनिधि को भेजकर ये बताना कि भारत की मंशा क्या है, कैसे देखते हैं, क्या वो भारतीय की विदेश कूटनीति का एक मील का पत्थर था ऑपरेशन सिंदूर?
3: भारत ने पूरे विश्व को संदेश दिया, वो यही था जो हम अपनी संप्रभुता के लिए, अपने जो नागरिक हैं उनकी सिक्योरिटी के लिए हम पूरी तरह से उनकी रक्षा करेंगे, और जो भी हद हो वो हम वहां तक जाएंगे। और यही बात हुई जो हम युद्ध को पूरा युद्ध में नहीं वैसे परिवर्तित करना चाहते, हमें जब अपना लक्ष्य मिल जाता है तो फिर हमने युद्ध उसी समय रोक दिया। परंतु पाकिस्तान ने अपनी बेवकूफी में उन्होंने सोचा जो वो भारत को ऊपर भी कुछ ऐसा नुकसान कर सकते हैं, परंतु 10 तारीख सुबह को तो उनके केवल बहुत सारे हवाई अड्डे थे, बहुत सारे ऐसे ठिकाने थे जिनको एकदम मिट्टी में मिला दिया गया, तो पाकिस्तान को अपने घुटने पर आना पड़ा। तो हमने तो उनको ये सिद्ध करके, और फिर उसके बाद हमने जब पाकिस्तान ने याचिका की जो ये युद्ध रोक दिया जाए तो हम मान गए, क्योंकि हमने ये देखा है, भारत ने ये पूरे विश्व को बताया जो हम युद्ध शुरू कर सकते हैं अपनी संप्रभुता को बचाने के लिए, और जब हमारे अपने ऑब्जेक्टिव लक्ष्य हम प्राप्त हो जाते हैं तो हम उसको बंद भी कर देंगे। तो हमने वहां पर से हमेशा से पाकिस्तान ये कहता रहा था जो हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स है तो आप हमारे ऊपर हमला कन्वेंशनल वॉरफेयर से नहीं कर सकते हैं, तो हमने ये बता दिया जो ये उनका जो ब्लैकमेल है ये हमारे विरुद्ध नहीं चलेगा।
2: और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ शब्दों में कहा है कि बुद्ध की धरती युद्ध करना भी जानती है और ऑपरेशन सिंदूर लगातार जारी है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा था।
4: आज पाकिस्तान भी भली भांति जान गया है कि भारत का हर जवाब पहले से ज्यादा तगड़ा होता है। उसे ये भी पता है कि अगर भविष्य में नौबत आई तो भारत आगे कुछ भी कर सकता है, और इसलिए मैं फिर से लोकतंत्र के इस मंदिर में दोहराना चाहता हूं, ऑपरेशन सिंदूर जारी है। पाकिस्तान ने दुस्साहस की अगर कल्पना की तो उसे करारा जवाब दिया जाएगा।
2: अशोक जी, इंटरनेशनल सोलर अलायंस और वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड का विचार भारत की तरफ से दिया गया, क्या आपको लगता है कि भारत अब ग्लोबल वार्मिंग जैसी वैश्विक समस्याओं के समाधानकर्ता के रूप में दुनिया में देखा जा रहा है?
3: 2015 में जब ये कॉप हुआ था, कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज हुआ था पेरिस में, तो तब भारत ने और फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं उस समय के, तो उन्होंने इसको लॉन्च किया था। और अब जैसे उन्होंने बताया 100 से ज्यादा देश इसमें मिल गए हैं। देखिए आजकल एनर्जी सिक्योरिटी, क्लाइमेट चेंज दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे बनकर उभर गए हैं पूरे विश्व के सामने।

0: और हम देख रहे हैं जब से ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का मुद्दा सामने आया है तब तो ऊर्जा एनर्जी फॉसिल फ्यूल्स बहुत देशों के लिए मुश्किल हो गई है क्योंकि वहां से 20% एनर्जी पूरे विश्व में आती है वो मिल नहीं रही है। तो इसीलिए ये जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है जिसकी भारत ने शुरुआत की है और भारत ने दिल्ली के निकटतम ही यहाँ पर इसका हेडक्वार्टर्स भी खोला है, तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण काम कर रहा है। उसके अलावा अगर आप देखें बायोफ्यूल्स अलायंस है जो कि जब हम G20 की बात कर रहे थे तो G20 के साइडलाइंस पर दो बहुत ही महत्वपूर्ण इनिशिएटिव्स लॉन्च किए गए थे। एक तो था इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, उसके अलावा एक CDRI है दैट इज कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिस्टेंस इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कैसे जो विश्व में पर्यावरण का बदलाव हो रहा है उसके साथ कैसे जूझा जाए और जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो बना रहे हैं जो बिल्डिंग्स बना रहे हैं उनको कैसे जो आपदा आती है उनसे बचाया जाए। तो भारत ने विश्व पटल पर बहुत से ऐसे इनिशिएटिव्स लिए हैं और बहुत से वैश्विक देशों ने भारत के साथ सहयोग कर रहे हैं, तो इसी से भारत का कद विश्व में और भी इससे ऊंचा हुआ है।
1: दिस इज द इनॉग्रल डे ऑफ ए डिफाइनिंग ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट चेंज। वी वॉन्ट टू ब्रिंग सोलर एनर्जी इन टू आवर लाइव्स। वी विल शेयर नॉलेज एंड एक्सचेंज बेस्ट प्रैक्टिसेस। वी विल कोऑपरेट ऑन ट्रेनिंग एंड बिल्डिंग इंस्टीट्यूशंस। वी विल डिस्कस रेगुलेटरी इश्यूज एंड प्रमोट कॉमन स्टैंडर्ड्स। वी विल अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट इन द सोलर सेक्टर, एनकरेज ज्वाइंट वेंचर्स एंड डेवलप इनोवेटिव फाइनेंसिंग मैकेनिज्म्स। वी विल पार्टनर विद अदर इंटरनेशनल इनिशिएटिव्स ऑन रिन्यूएबल एनर्जी। देयर इज ऑलरेडी अ रिवोल्यूशन इन सोलर एनर्जी। टेक्नोलॉजी इज इवॉल्विंग, कॉस्ट आर कमिंग डाउन एंड ग्रिड कनेक्टिविटी इज इंप्रूविंग। It is making the dream of universal access to clean energy become more real.
2: मदन जी, अब बात थोड़ी वैक्सीन डिप्लोमेसी की भी कर लेते हैं। COVID-19 और वैक्सीन मैत्री की भी चर्चा काफी रही। जब COVID-19 महामारी के दौरान भारत ने वैक्सीन मैत्री के तहत दुनिया के 100 से अधिक देशों को मेड इन इंडिया वैक्सीन पहुंचाई, वो भी दौर था जब दुनिया के कई देश अपनी वैक्सीन जमा कर रहे थे, तब भारत की इस मानवतावादी कूटनीति ने वैश्विक स्तर पर भारत के प्रति जो विश्वास पैदा किया उसका लॉन्ग टर्म लाभ आप कैसे देखते हैं?
3: जब कोविड काल चल रहा था तो 100 से ज्यादा देशों को वैक्सीन की सप्लाई की थी और उस समय वैक्सीन की हमारे पास भी कमी थी। हम दूसरे कंट्री से कुछ ग्लोबल इनिशिएटिव है उनसे हम वैक्सीन ले भी रहे थे, लेकिन इसके बावजूद हम वैक्सीन दूसरे कंट्री को भी दे रहे थे और 100 से ज्यादा देशों को हमने वैक्सीन की सप्लाई की थी और उसमें से ज्यादातर देश या तो हमारे पड़ोसी देश थे या फिर वो ग्लोबल साउथ के देश थे जिनको हमने वैक्सीन की आपूर्ति की थी। तो इस इनिशिएटिव से भारत का, जैसे मैंने माना कि एक डिप्लोमेसी है, ये भी एक डिप्लोमेसी है कि अगर आप अपने सहयोगी देशों को, अपने मित्र देशों को किसी प्रकार की मदद करते हैं तो ये भी एक डिप्लोमेसी का ही मैं इसे एक पार्ट कहूंगा। और इससे एक जो लॉन्ग टर्म में भारत पर भरोसा बढ़ा है, चाहे वो छोटा कंट्री हो चाहे वो एक अफ्रीका का कोई देश हो, भारत पर उन लोगों का भरोसा लगातार बढ़ा है। और लॉन्ग टर्म में अगर इसमें इसकी बात करें, जब एक बार भरोसा बढ़ता है और लगातार भारत उनके किसी न किसी रूप में मदद करता है या उनकी आवाज़ को बुलंद करता है, या जैसे मैंने बताया कि ग्लोबल साउथ की आवाज़ भारत ने उठाई, उसके बाद यूएन सुधारों में भारत लगातार बोल रहा है, तो इसका भी फायदा दूसरे देशों को होने वाला है। भारत को उतना फायदा नहीं होने वाला है, दूसरे देशों को ज़्यादा होगा अगर यूएन में सुधार होते हैं। ऐसे में जो भारत पर दूसरे देशों का भरोसा है वो लगातार बढ़ रहा है, और जब ये भरोसा बढ़ता है और जैसे हम कह रहे हैं कि जो दुनिया धीरे धीरे बढ़ रही है वो मल्टीपोलर दुनिया हो रही है, बहुध्रुवीय दुनिया हो रही है, तो भारत उसमें एक मजबूत ध्रुव के रूप में उभर रहा है, एक मजबूत पक्ष के रूप में उभर रहा है।
2: अशोक जी, एक और इम्पॉर्टेंट पहलू है, काफी अहम पक्ष रहा है 2014 के बाद भारत की विदेश कूटनीति का, वो है मुक्त व्यापार समझौते। भारत ने हाल में UAE, ऑस्ट्रेलिया और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन देशों के साथ ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते किए, जिसे हम सब FTA के नाम से जानते हैं। आपको क्या लगता है कि ये समझौते भारत को एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेड हब बनाने में मददगार साबित हो रहे हैं?
0: जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, पिछले कुछ वर्षों में भारत ने बहुत ही ये फ्री ट्रेड अग्रीमेंट या मुक्त व्यापार समझौते जो हैं वो किए हैं, और अपने महत्वपूर्ण जो साझेदार हैं, जो व्यापारिक साझेदार हैं जिनके साथ हमारे व्यापारिक सहयोग, आर्थिक सहयोग बड़ा अच्छा है, उनके साथ किए हैं। अगर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का देखा जाए तो वो हमारा दूसरा सबसे बड़ा ऐसा डेस्टिनेशन है जहां हमारे एक्सपोर्ट्स जाते हैं, जहां हमारे निर्यात जाते हैं। वो तीसरे नंबर पर है, जो कि सबसे बड़ा

0: हमारा आर्थिक साझेदार है, सहयोगी है, और इसके अलावा हमने यूनाइटेड किंगडम के साथ भी किया है, वो भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण आर्थिक व्यवस्था है और आर्थिक सहयोग उनके साथ हमारा बहुत बड़ा है। यूरोपियन यूनियन तो जिनके साथ 2007 में ये बातचीत शुरू हुई थी, मुझे याद है जब मैं ब्रसल्स में था तब हमने ये बातचीत शुरू की थी, नेगोशिएशन शुरू किए थे, और ये 17-18 साल के बाद हम देख रहे हैं, जो इस साल के शुरू में फरवरी में हमने देखा 19 साल के बाद ये वाला समझौता हुआ है, और इसको वहां की जो यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट है उर्सुला वॉन डर लेन, उन्होंने इसको मदर ऑफ ऑल डील्स करार दिया था। इसका इतना व्यापक रूप है। ऐसे ही हमने एफ्टा के साथ जो 4 देश हैं यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के, जैसे मैं पहले बोल रहा था, ये आइसलैंड और नॉर्वे तो उसके सदस्य नहीं है और ये एफ्टा के सदस्य हैं, और उसके अलावा स्विट्जरलैंड और लिख्टेनस्टाइन, उनके साथ भी बहुत महत्वपूर्ण ये एक सहयोग किया है, जिसमें $100 बिलियन भारत में वो निवेश करेंगे अगले 15 साल में, जिससे 10 लाख जॉब यहाँ पर क्रिएट होंगे। इसके अलावा हम देखें तो ऑस्ट्रेलिया के साथ, न्यूजीलैंड के साथ, ओमान के साथ, ये सब हमने फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स किए हैं, जो कि मेरे विचार से विन विन अग्रीमेंट्स होंगे, ये इन सभी देशों के लिए भी और भारत के लिए भी।
1: आज भारत ने अपने इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट संपन्न किया है। यह एक ऐतिहासिक समझौता हमारे किसानों, हमारे छोटे उद्योगों, इसके यूरोपियन मार्केट तक पहुंच आसान बनाएगा, मैन्युफैक्चरिंग में नए अवसर पैदा करेगा और हमारे सर्विसेज सेक्टर के बीच सहयोग को और प्रबल करेगा। इतना ही नहीं, यह एफटीए भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच इन्वेस्टमेंट को बूस्ट करेगा, नई इनोवेशन पार्टनरशिप बनाएगा और वैश्विक स्तर पर सप्लाई चेन को मजबूत करेगा। यानी यह सिर्फ ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है, यह साझा समृद्धि का नया ब्लूप्रिंट है।
2: अशोक जी, फॉरेन डिप्लोमेसी के क्षेत्र में रूस यूक्रेन युद्ध पर भारत का स्टैंड भी काफी चर्चा में रहा। रूस यूक्रेन युद्ध पर प्रधानमंत्री मोदी का ये बयान कि ये युद्ध का युग नहीं है, पूरी दुनिया में ये गूंजा। बिना किसी दबाव में आए भारत का अपनी स्वतंत्र विदेश नीति पर टिके रहना और दोनों पक्षों से बातचीत की वकालत करना, भारत की परिपक्व होती कूटनीति का कितना बड़ा प्रमाण रहा।
0: डिप्लोमेटिक पार्लेंस में कहें तो इसको हम स्ट्रेटेजिक अटोनमी कहते हैं, जो जिससे कि हम अपने हितों की रक्षा स्वयं करेंगे और हम किसी और को दखल अंदाजी नहीं करने देंगे, जो वो हमें बताए, भारत को बताए, जो आपके लिए क्या अच्छा है, आपके लिए क्या ठीक है, आप इसमें क्या करिए। तो इसीलिए जब रूस यूक्रेन का युद्ध हुआ तो बहुत दबाव पड़ा पहले भारत के ऊपर, जो आप तेल मत खरीदिए रूस से, परंतु भारत ने ये बता दिया, भारत करीब अपने जो जरूरतों का 80-85% तेल है वो आयात करता है, तो इसको हम जहां से भी हमारी कंपनियों को सभी ठीक दाम में तेल मिलेगा हम वहां से वो लेंगे। तो हमने अपने संबंध भी बनाए रखे और ये भी बनाए रखा, परंतु ऐसा नहीं किया जो हमने अपने संबंध और जो पश्चिमी देश हैं उनके साथ खराब कर दिए, और उन देशों को भी फिर बाद में समझ आ गया, जो अगर रूस का तेल वैश्विक बाजार में नहीं आता तो तेल के दाम बहुत ही ज्यादा बढ़ जाते हैं, जो कि सभी अर्थव्यवस्थाओं के लिए बहुत ही हानिकारक सिद्ध हो सकता था। तो इसीलिए भारत ने ये बता दिया है, भारत वैश्विक फायदे के लिए, ग्लोबल गुड के लिए काम करेगा सबके साथ, परंतु अपने हितों को वो सैक्रिफाइस नहीं करेगा, और हमारा जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है वो केवल वो ट्रांजैक्शनल नहीं है, जो केवल अपने हितों की हम रक्षा करें, हम और देशों के हितों के लिए भी हम उनके साथ बराबर परस्पर सहयोग बनाते रहेंगे और काम करते रहेंगे।
1: विद यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट वॉर हैज रिटर्न टू यूरोप, इट इज कॉजिंग ग्रेट पेन इन द रीजन, सिंस इट इन्वॉल्व्स मेजर पावर्स, द आउटकम्स are severe. Countries of the global south have been particularly affected. The global order is based on the respect for the principle of the UN Charter. Peaceful resolution of disputes and respect for sovereignty and territorial integrity. As I have said directly and publicly, this is not an era of war, but it is one of dialogue and diplomacy. And we all must do what we can to stop the bloodshed and human suffering.
2: अशोक जी, कार्यक्रम के अंत में एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि 2047 तक भारत का लक्ष्य है विकसित भारत बनने का। हमारी विदेश नीति और विदेश कूटनीति इस लक्ष्य

0: को हासिल करने में किस तरह की भूमिका निभा रही है, कैसे देखते हैं आप?
1: भारत की जो कूटनीति है बहुत ही एक महत्वपूर्ण इसमें योगदान कर रही है, भारत को अपने लक्ष्य की तरफ पहुंचाने में, विकसित भारत 2047 तक पहुंचाने में, क्योंकि सामने हमारे चुनौतियां बहुत ज्यादा हैं। तो इसीलिए हमको देखना है जो किन देशों के साथ हमको अपना परस्पर सहयोग बढ़ाना है, हमारे अपने संबंधों को और तेज करना है, और वही हम कर रहे हैं। चाहे पहले हमारे अमेरिका के साथ, जिसे हम कहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, परंतु अब हम देखते हैं जो अमेरिका का रवैया काफी ट्रांजैक्शनल हो गया है, परंतु फिर भी हमारे संबंध चाहे रक्षा क्षेत्र में हो, व्यापार क्षेत्र में हो, उनके साथ बड़े अच्छे रहेंगे, परंतु फिर भी हम डाइवर्सिफाई करेंगे। तो हर तरीके से लेकर अपनी आर्थिक समृद्धि को बढ़ाने के लिए और अपने सुरक्षा को बढ़ाने के लिए, जिससे कि अपनी संप्रभुता की हम रक्षा कर सकें, इस मार्ग पर अग्रसर होते हुए भारत की कूटनीति उसमें एक बहुत ही अहम योगदान करेगी।
2: एक तो हमारा लक्ष्य है 2047 हिंदुस्तान विकसित होना ही चाहिए, नो कॉम्प्रोमाइज। आजादी के 100 साल हम ऐसे ही नहीं बिताएंगे, आजादी के 100 साल ऐसे बनाएंगे कि दुनिया में विकसित भारत का झंडा फहरता होगा।
0: कभी दुनिया के मंच पर भारत को सिर्फ एक बड़ा देश माना जाता था, लेकिन आज भारत एक बड़ी सोच बन चुका है। चाहे G20 की मेज हो या संकट में फंसे देशों तक मदद पहुंचाने का संकल्प, भारत ने हर बार ये साबित किया है कि नई सदी की कूटनीति केवल ताकत से नहीं, विश्वास से चलती है। आज जब दुनिया नए संतुलन की तलाश में है, तो उसकी निगाहें हिंद महासागर के उस किनारे पर टिकती हैं जहां एक लोकतंत्र 140 करोड़ सपनों के साथ विश्व मंच पर आत्मविश्वास से कह रहा है, ये नया भारत है जो मित्रता भी निभाना जानता है और नेतृत्व करना भी जानता है।

श्रोताओं, कार्यक्रम को जारी रखते हुए अगली फरमाइशें शामिल करते हैं जो हम तक पहुंची है पद्मा टॉकीज नेपा नगर मध्य प्रदेश से। सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विन शाह, मंगला बेन शाह और राजेंद्र जी शाह के। इसके साथ ही अगला मैसेज हमें मिला है भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, ईशान छीपा और पूजा परिहार की। अगली फरमाइश हम शामिल कर रहे हैं जो हम तक पहुंची है नई बस्ती गंज डुंडवारा से मोहम्मद यासीन हाशमी, नाजमा बेगम हाशमी, मोहम्मद तौसीफ हाशमी, मोहम्मद तैमूर हाशमी, मोहम्मद कलीम अंसारी की। इसके साथ ही अगला मैसेज हमें भेजा है संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव ने। अगला मैसेज हमें मिला है आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, साइना शर्मा, निवान शर्मा की। इसके साथ ही अगला मैसेज हमें मिला है करणवीर हाउस भूचो कैंचियां भटिंडा पंजाब से प्रेम सिंह जोड़ा, मंजीत कौर जोड़ा, करणवीर करण, दीपिंदर वीरिंदर, कुलदीप, सिमू, एकम, दमन और अभिजीत ने। तो आइए श्रोताओं, आप सबकी फरमाइश पर सुनते हैं ये अगला बहुत ही खूबसूरत गीत जिसको गाया है मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर ने। फिल्म का नाम है धरती।

श्रोताओं, अगला मैसेज हम शामिल कर रहे हैं जो हम तक पहुंचा है मालियाना सरधना मेरठ से। अनिल जैन, जैन साहब, संयम जैन, मुस्कान जैन, मास्टर जीवियम जैन, दिग्दर्शन। इसके साथ ही अगला मैसेज हमें मिला है गांव झुगड़ी जिला यमुनानगर से रणधीर बांगड़ गुरमेजो गौरव परवीन युगम और वीरेन की। अगली फरमाइश हम शामिल कर रहे हैं जो हम तक पहुंची है गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा जसवीर जस्सी सीता और गीता की। इसके साथ ही कस्बा बराड़ा जिला अंबाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल रंजीत कौर जयप्रकाश राहुल प्रियंका मन्नत गुरकीरत गुरशबद सिंह राहुल की। अगली फरमाइश हमें मिली है रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा की। इसके साथ ही चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और विमला अनेजा की। तो आइए श्रोताओं, आपकी फरमाइश पर सुनते हैं ये अगला गीत लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ों में। फिल्म का नाम है जुगनू।

0: उम्र है
1: छोड़ो बहाना
0: ना ना ना।
2: श्रोताओं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अगली फरमाइश शामिल करते हैं जो हम तक पहुंची है ग्राम पजौनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंसौलिया आदर्श सार्थक अलौकिक चंसौलिया की। इसके साथ ही अगला मैसेज हमें मिला है कस्बा उगेती से देवेंद्र कुमार गुप्ता धीरज कुमार गुप्ता पंकज बजाज प्रिंस कुमार प्रशांत गुप्ता कार्तिक गुप्ता और निर्भय गुप्ता की। इसके साथ ही अगला मैसेज हमें भेजा है नर्मदा पार्क मंगलवेड़ा से मास्टर अलीम पटेल मुजाहिद पटेल नदीम पटेल ने। इसके साथ ही अगली फरमाइश हम शामिल कर रहे हैं जो हम तक पहुंची है ग्राम पंचायत बठेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा अंजनी वर्मा ज्योति प्रहलाद वर्मा राजेंद्र मनहरन वर्मा की। अगला मैसेज हम शामिल कर रहे हैं जो हम तक पहुंचा है गांव कुम्हारहेड़ा सहारनपुर से सैयद मशरूर साइना हसन अक्षा नाजिया आफिया इब्राहिम सद्दाम और अदीब हसन की। अगली फरमाइश हमें मिली है गांव हरुडीह चांडिल झारखंड से तुलसीदास महतो कल्पना महतो मनोरमा महतो मनमोहनी महतो दीनबंधु महतो की। तो आइए श्रोताओं आप सबकी फरमाइश पर आपको सुनाते हैं अगला प्यारा सा गीत जिसको गाया है मोहम्मद रफ़ी और किशोर कुमार ने। फिल्म का नाम है दोस्ताना।

FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से, और अभी हमारे श्रोता सुन रहे हैं फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश। तो श्रोताओं, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए शामिल करते हैं अगली फरमाइशों को जो हम तक पहुंची है। सांगली जिले के जत शहर से अल्ताफ हुजरे, सैफुल्ला सबाहत, किरत हुजरे और रेहान शेख की। इसके साथ ही अस्तुपुरा जिला मऊ से मजहर अली अंसारी, रजिया बेगम अंसारी, मोहम्मद सादिक अंसारी की। साथ ही बहादुरगंज गाजीपुर से आज़ाद अली अनवर, रिजवाना परवीन और अब्दुल्ला आज़ाद की। अगली फरमाइश हमें मिली है बलवी रोड देहरादून से लेफ्टिनेंट अनिरुद्ध की। इसके साथ ही अगली फरमाइश हम शामिल करें जो हम तक पहुंची है, ग्राम पंचायत कालेगांव जाफराबाद से श्री सुधाकर राजे जाधव, डॉक्टर प्रशांत राजे जाधव, कुमार संचित वयाल, कुमार प्रथमेश देशमुख, कुमारी प्रणाली देशमुख, कुमार सर्वत देशमुख, कुमारी सानवी देशमुख, कुमारी कल्पना देशमुख की। इसके साथ ही अगला मैसेज हमें मिला है मनाली हिमाचल से हर्ष, विनय, विनीत और रोजेस की। और इसके साथ ही चंडीगढ़ से सैफाली, सैफी, डेविस, विमला और सतीश अनीजा की। अगली फरमाइश हम शामिल कर रहे हैं जो हम तक पहुंची है, मुकाम पोस्ट फुल चिंचोली तालुका पंढरपुर से जाकिर मुलानी, सुमैया मुलानी, सुबान मुलानी, समीर मुलानी, सलमा मुलानी, मुमताज मुलानी, दिलशाद मुलानी, नशीर मुलानी, बाबू माफ़ करना बानू बी मुलानी और बादशाह मुलानी की। तो आए श्रोता, आप सबकी फरमाइश पर सुनते हैं ये अगला प्यारा सा गीत जिसको गाया है किशोर कुमार और उषा खन्ना ने। फिल्म का नाम है जॉनी मेरा नाम।

श्रोताओं, अगली फरमाइश शामिल करते हैं जो हम तक पहुंची है। गांव चौहलदा बागपत से संजय ढिंगिया, नमन ढिंगिया, अपार ढिंगिया की। इसके साथ ही अगला मैसेज हमें मिला है कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय की। साथ ही दुबिहा नेवादा जिला गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय और प्रांजल राय की। अगला मैसेज हमें मिला है नैनीताल से

करण सोनी, रानू दीप, बीरपाल कुलदीप, और इसके साथ ही अगली फरमाइश हमें मिली है अनारकली बाज़ार जगराव से, सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गवैया मल्होत्रा, भाई सुच्चा सिंह पाठक, विनोद पुरी और जयपाल यादव की। अगली फरमाइश हम शामिल कर रहे हैं जो हम तक पहुंची है कस्बा अग्रवाल मंडी टटीरी बागपत, बागपत से आसिफ अली खान, मोमिना नाज, मुस्काम आसिफ, सादिक अली खान, शारिक अली खान की। इसके साथ ही मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता गौड़ की। अगली फरमाइश हमें मिली है मारहरा दरवाज़ा एटा से नबी हसन अब्बासी, सहनाज अब्बासी, नावेद हसन अब्बासी, रसीद वारसी, सुहेल हसन अब्बासी और अनम अब्बासी की। साथ ही सिकंदरा राव से मुबीन अब्बासी और इशरत परवीन की। आइए श्रोताओं, आपकी फरमाइश पर आपको सुनाते ही अगला गीत अलका याग्निक और कुमार शानू की आवाज़ों में। फिल्म का नाम है राजा हिंदुस्तानी।

जारी रखते हैं और अगली फरमाइशों को शामिल करते हैं जो हमें मिली है नथवा वाला देहरादून से नुमान मलिक की। इसके साथ ही अगला मैसेज हमें मिला है, मुबारकपुर ऊंची तकिया आलमगढ़ उत्तर प्रदेश से दिलशाद हुसैन, फातमा सोगरा, वकार हैदर, कनी सकीना, हसीन हसीना दिलशाद की। इसके साथ ही अगला मैसेज हमें मिला है जो हम शामिल कर रहे हैं, आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम सबीरा ही, मेहरा जहां की। इसके साथ ही गंज डुंडवारा से शमशुल कमर राही, शाहीन फातमा, अदनान खान, फैज़ान खान, अनु खान, उस्मान खान और कलीम अंसारी की। अगला मैसेज हमें मिला है ऊपरकोट मोहल्ला चौखंडी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगर परवीन अब्बासी, सहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान अब्बासी, अरबाज अब्बासी और अबान अब्बासी की। अगला मैसेज हमें मिला है एमएलबी रोड ग्वालियर से सुरेश खुराना, किरण खुराना, लव्या आरव, मेघा साक्षी, आशीष अनुज, विशु छोटू और एस के पपी खुराना की। इसके साथ ही पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक और कैथल हरियाणा से मधु नायक की। अगला मैसेज हमें मिला है कस्बा बराड़ा जिला अंबाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका मन्नत, गुरकीत और गुरसबत सिंह राहुल की। इसके साथ ही कैनरा मोहल्ला पटियाला से मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन पलक, करण गीतू, निहारिका हार्दिक और वंश बत्ता की। अगला मैसेज हम शामिल करें जो हम तक पहुंचा है, गांव झुकड़ी जिला यमुनानगर से रणधीर बाघड़, गुरमेज, गौरव, परवीन, युगम और वीरेन की। इसके साथ ही आदर्श नगर मलोट पंजाब से राजेश शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, साइना शर्मा और निवान शर्मा की। तो श्रोता, आप सबकी फरमाइश पर सुनते हैं प्यारा सा गीत जिसको गाया है किशोर कुमार ने। फिल्म का नाम है धर्मात्मा।

श्रोताओं, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अगली फरमाइशों को शामिल करते हैं जो हमें मिली हैं। नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नवनकर, निर्मला नवनकर, विशाल नवनकर की, और मलकपुर से नारायण इंगले और आशीष इंगले की। साथ ही अगली फरमाइश हमें मिली है बरेली नबई से नवाब खान, इशरत जहां मास्टर अजहर खान और अजीम खान की। साथ ही अगली फरमाइश हम शामिल कर रहे हैं जो हम तक पहुंची है कुशेश्वर प्रसाद गुप्ता, शारदा गुप्ता, रंगकनी रुद्र गुप्ता, माला मिश्रा, ऐशाबाग लखनऊ से। इसके साथ ही रानी मुकेश गुप्ता, कुसुम गुप्ता, रश्मि गुप्ता, नीलम गुप्ता और रूपा इलाहाबादी की। अगली फरमाइश हमें मिली है संजीव कुमार विलेज कुखानी, तहसील इंद्र डिस्ट्रिक्ट करनाल हरियाणा से, संजीव कुमार और अमन कुमार की। इसके साथ ही अगला मैसेज हम शामिल कर रहे हैं जो हम तक पहुंचा है विहारी कॉलोनी दिल्ली से तुलसी मस्कीन, चैतन्य मस्कीन और रचिता मस्कीन की। साथ ही मुजफ्फरनगर से सलमान अख्तर, फौजी अंसारी, सभी परवारे। इसके साथ ही अगला मैसेज हम शामिल करें जो हम तक पहुंचा है गोवर्धन विहारी कॉलोनी दिल्ली से तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन और आशीष राजा चैतन्य मस्कीन मेघा, और चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना और केशु रिधान खुराना की। इसके साथ ही हम अगला मैसेज शामिल कर रहे हैं जो हम तक पहुंचा है गांव फरासी, जिला हिसार से राज कुमार हुड्डी, प्रमोद कुमार हुड्डी, पुष्पेंद्र कुमार, माफ करना, गांव फरासी जिला हिसार से राजकुमार डुड्डी, प्रमोद कुमार डुड्डी और पुष्पेंद्र कुमार डुड्डी की। तो आइए श्रोताओं, आपकी फरमाइश पर आपको सुनाते हैं अगला गीत। फिल्म का नाम है 2 बीघा जमीन, जिसको गाया है लता मंगेशकर और मन्ना डे ने।

श्रोताओं, अगला मैसेज हमें मिला है करुणा मुरादाबाद से अयूब खान, इरम गुड़िया और सोएब खान की, साथ ही सिंधौली परेली से जिशान वारशी की। अगला मैसेज हम शामिल कर रहे हैं जो हमको मिला है रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा की, साथ ही नूर नगर गंज डुंडवारा से उजमा से एक शिफा से एक रिफा शेख की। अगला मैसेज हमें मिला है जिला मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल पंकज, काजल सीमा, मानवी तन्वी, लक्ष्य सोनी, मोहनी ऋतिक और बलवीर की। इसके साथ ही अगला मैसेज हमें मिला है तेलंगाना भोंगिर से मोहम्मद बुराहुद्दीन, फजान लल्ला, फरहान लल्ला और समायरा अजीन गुड़िया की। इसके साथ ही अनारकली बाजार जगराओं से कमल पाठक, सुनील पाठक, गवैया मल्होत्रा की। अगला मैसेज हम शामिल कर रहे हैं पटेल नगर मलहौट से डॉक्टर रमेश कुमार जजोरिया, गीता रानी जजोरिया, गगनदीप जजोरिया, आरजू जजोरिया और गुड्डू की। अगला मैसेज हमें मिला है जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज रिफाकत, मोहम्मद रिहान, समरीन परवीन और माहिरा नूर की। इसके साथ ही प्रेम सिंह जोड़ा, मनजीत कौर जोड़ा और करणवीर जोड़ा की फरमाइश हमें मिली है भूजो कैचनिया भटिंडा पंजाब से। अगला मैसेज हमें मिला है विदर्भ श्रोता क्लब जलगांव जंक्शन से दिनेश काले, वंदना काले, आदेश कुमार काले और प्रोफेसर वसुधा वज्रसेन की। अगला मैसेज हमें मिला है उच्च भट्टी विलासपुर छत्तीसगढ़ से मुकेश गोस्वामी, मधु गोस्वामी, आशी गोस्वामी, सिवन्या गोस्वामी और अन्नू गोस्वामी की। अगला मैसेज हम शामिल कर रहे हैं जो हम तक पहुंचा है भटिंडा रोड मंडी डब्वाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग, लकी नारंग, तानिया नारंग। इसके साथ ही राहट गांव कंप अमरावती महाराष्ट्र से दिलीप रामेकर, हर्षा रामेकर, अक्षय रामेकर, रुद्रा रामेकर, रुचिका रामेकर और राहट कंप अमरावती आप शामिल हो चुके हैं। इसके साथ ही अगला मैसेज हमें मिला है शांति निवास लहीगांव रेलवे जिला अमरावती महाराष्ट्र से कुम्हारी कल्पना कुरहाड़े, वंदना कुरहाड़े, आशीष कुरहाड़े, दीपक कुरहाड़े की। तो आइए श्रोताओं, आपकी फरमाइश पर सुनते हैं प्यारा सा गीत। फिल्म का नाम है डर और इस गीत को गाया है उदित नारायण ने।

0: श्रोताओं, इसी गीत के साथ कार्यक्रम आपकी फरमाइश यहीं पर संपन्न होती है। हमारी पूरी कोशिश रही कि हम ज़्यादा से ज़्यादा फरमाइशों को शामिल कर सकें, पर समय के अभाव के कारण हमें आपसे विदा लेना पड़ रहा है। अब आप सुनेंगे समाचार जिन्हें हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। भारत और इटली ने आज कृषि, दुर्लभ खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, समुद्री परिवहन और बंदरगाह के क्षेत्र में सहयोग को और बढ़ाने के लिए 15 महत्वपूर्ण समझौते किए। इन समझौतों पर आज रोम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के बीच प्रतिनिधि मंडल स्तर की बातचीत के बाद हस्ताक्षर किए गए। दोनों देशों ने भारतीय नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने के लिए भी एक समझौता किया। एक अन्य समझौता लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के विकास पर केंद्रित है। दोनों देशों ने कर से जुड़े अपराधों, धन शोधन और आतंकवाद के लिए पैसे जुटाने के खिलाफ तालमेल को मजबूत करने पर भी सहमति व्यक्त की है। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने घोषणा की कि भारत और इटली ने संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने का फैसला किया है।
2: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025 टू 2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
1: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश भारत इटली नवाचार केंद्र स्थापित करने पर काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि दोनों देश जहाजरानी, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक्स और समुद्री अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में भी मिलकर काम करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद को मानवता के लिए गंभीर खतरा मानते हैं।
2: भारत और इटली एकमत है कि आतंकवाद मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ हमारी साझा पहल ने पूरे विश्व के सामने एक महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत किया है। यूक्रेन, पश्चिम एशिया तथा

0: अन्य तनावों को लेकर हम लगातार संपर्क में रहे हैं। भारत का मत स्पष्ट है कि सभी समस्याओं का समाधान डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से होना चाहिए।
1: इटली की प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच की दोस्ती सम्मान और आपसी विश्वास पर आधारित है। इसके बाद रोम में प्रधानमंत्री मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया। उन्होंने इस सम्मान को भारत के लाखों किसानों, पशुपालकों, मछली पालकों, कृषि वैज्ञानिकों और श्रमिकों को समर्पित किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एग्रीकोला पदक से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि ये सम्मान भारत के किसानों, मछुआरों, वैज्ञानिकों और कृषि क्षेत्र से जुड़े अन्य कर्मियों के योगदान की पहचान है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि मोदी सरकार ने कृषि और इससे जुड़े क्षेत्रों के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के एक मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र में परिवर्तन का प्रमाण बताया है। दक्षिण कोरिया में प्रवासी भारतीयों से बातचीत में रक्षा मंत्री ने कहा कि ये ऑपरेशन इस बात का प्रमाण है कि भारत किसी भी रूप में आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। रक्षा मंत्री ने सोल में भारत दक्षिण कोरिया रक्षा उद्योग व्यापार गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता भी की। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को देश से निकालने की प्रक्रिया तुरंत शुरू करने की घोषणा की है। सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन सौंपने के एक समारोह के दौरान नाबन्ना में उन्होंने कहा कि अब घुसपैठियों को सीधे सीमा सुरक्षा बल के हवाले कर दिया जाएगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज नई दिल्ली में असम में 4000 किलोमीटर से अधिक राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की गुणवत्ता और रखरखाव कार्यों की समीक्षा की। आईपीएल क्रिकेट में आज कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला जारी है। कोलकाता ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Aparajita Nair. India and Italy today finalized 15 outcomes across diverse sectors. The agreements were signed following delegation-level talks between Prime Minister Narendra Modi and his Italian counterpart Giorgia Meloni in Rome today. The outcomes mark the elevation of bilateral relations to a special strategic partnership. Both sides also inked several memorandums of understanding to deepen cooperation in key areas including critical minerals, defence, agriculture, Ayurveda, science and technology, maritime transport and ports. India and Italy also agreed to strengthen coordination against tax crimes, money laundering and terror financing. In a press statement after the talks, Prime Minister Modi said, India-Italy Joint Strategic Action Plan 2025-2029 will provide a practical and futuristic framework for bilateral ties. He said, both sides are working towards establishing an India-Italy Innovation Centre and noted that the India-Italy Defence Industrial Roadmap has opened new avenues for co-development and co-production in the defence sector. Later in the day, Prime Minister Modi was conferred the prestigious Agricola Medal by the Food and Agriculture Organization at its headquarters in Rome. The medal was presented by FAO Director General Ki Dong-gyu. Speaking on the occasion, the Prime Minister said the award reflects India's unwavering commitment to food security, sustainable development and human welfare.
0: ये भारत के करोड़ों किसानों, पशुपालकों, मत्स्य पालकों, कृषि वैज्ञानिकों और हमारे श्रमिकों का सम्मान है। यह भारत की उस अटूट प्रतिबद्धता का भी सम्मान है जिसके केंद्र में मानव कल्याण, खाद्य सुरक्षा और सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। मैं इस मेडल को अत्यंत विनम्रता के साथ स्वीकार करते हुए भारत के अन्नदाताओं को यह मेडल समर्पित करता हूं।
2: Union Minister for Commerce and Industry Piyush Goyal has congratulated Prime Minister Narendra Modi for being honoured with the Food and Agriculture Organization's Agricola Medal. In a social media post, Mr. Goyal said, "This is an acknowledgement of the immense contributions of India's farmers, fisherfolk, scientists and other workers in the agriculture sector." Union Finance Minister Nirmala Sitharaman has also expressed happiness over the conferment of FAO's honour to Prime Minister Modi. West Bengal Chief Minister Suvendu Adhikari today announced immediate initiation of deportation proceedings against illegal Bangladeshi infiltrators under the Citizenship Amendment Act or CAA. The Chief Minister made the announcement at State Secretariat Nabanna during a handover ceremony to the Border Security Force for border fencing. He said infiltrators identified in the state would now be directly handed over to the BSF for further action and coordination with the Border Guards Bangladesh. Mr. Adhikari clarified that no action would be taken against members of the seven communities protected under the CAA, provided they had entered India before 31st of December 2024. India is set to remain the world's fastest growing major economy as the United Nations in its report projected a growth rate of 6.4% this year for the country despite global uncertainty caused by the West Asia conflict. UN senior economist Ingo Pitele, briefing reporters on the mid-year update to the World Economic Situation and Prospects report yesterday, said India's strong consumer demand, public investment and growth in services exports continue to support its economy. Cyprus President Nikos Christodoulides, along with a high-level delegation, arrived in Mumbai this evening for a three-day official visit to the country. He was warmly received at the airport by Maharashtra Governor Jishnu Dev Verma and Chief Minister Devendra Fadnavis. The swearing-in ceremony of the newly elected members of the 16th Puducherry Legislative Assembly was held today at the Assembly Hall. Pro Tem Speaker A. Anbalagan administered the oath to the newly elected members of the Legislative Assembly. In IPL cricket, Mumbai Indians have set a target of 148 runs for Kolkata Knight Riders at the Eden Gardens in Kolkata tonight. In reply, KKR were 51 for 2 in 6 overs when reports last came in. Put into bat, Mumbai Indians posted 147 runs for the loss of 8 wickets in the allotted 20 overs. Earlier, Kolkata Knight Riders won the toss and opted to bowl. Tomorrow, Gujarat Titans and Chennai Super Kings will clash at Narendra Modi Stadium, Ahmedabad at 7:30 p.m. local time. And that is the end of this news bulletin.
3: FM 100.5 MHz पर हम आकाशवाणी देहरादून